0: कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए, उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
0: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए, क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली, त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो, मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोपों तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति

0: बादल जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
1: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
2: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के, जो एसओपी रहता है, तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
1: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
2: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है, पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है, और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था, जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए, वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
0: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर

0: रही है।
1: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
2: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
3: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
3: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते,
6: यहीं रहते हैं।
3: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक।
9: बात अब गुजरात की करेंगे, जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यह हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I said, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly.
3: Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेनजी को संदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की युवा शक्ति से बात। मैसूर में शुरू में कहा देश की तरक्की में बताया योगदान। छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार रहने की तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। बीजेपी ने और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई FIR। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। चेन्नई में कहा ये बीजेपी की बड़ी साजिश है, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को दे रहे हैं धोखा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का सनसनीखेज दावा। वर्धमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। 7 बॉक्सर्स ने जीता है गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। इसी के साथ पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारत की तरफ से किया गया। और आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रचा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत के नाम किए हैं और रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। तो पैरा एथलेटिक्स में और शॉर्ट पुट में भारत को 2 मेडल्स मिले हैं। तो भारत का गोल्डन पंच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार देश का नाम रोशन किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही संस्करण में भारतीय बॉक्सर्स ने 7 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए हैं।

तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर से भारत ने इतिहास रचा है। और आपको ये भी बता दें कि इस शानदार कामयाबी के बाद तमाम बधाइयों की भी झड़ी लग गई है।

0: तो गुजरात में बारिश और आफत बनकर बरस रही है और सामरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है।
1: गुजरात में मॉनसून एक बार फिर कहर बनकर बरसा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर दक्षिण गुजरात में दिखाई दे रहा है, जहां जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। गुजरात के सावरकांठा में महज एक घंटे में करीब 2 इंच बारिश हुई और शहर के बीच से गुजरने वाली नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहती हुई नजर आई, वहीं सड़कों पर पानी का दरिया बहता दिखा। खेड़ा में 24 घंटे में 17 इंच से ज्यादा बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। मुख्य बाजार, रिहायशी इलाके, सरकारी स्कूल और दफ्तर सब पानी में डूब गए हैं। वहीं लोग अपने घरों को बचाने के लिए अस्थायी दीवारें बना रहे हैं, जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मोरबी में लगातार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के 10 गेट 10 फीट तक खोले गए हैं। डाउनस्ट्रीम के 32 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सूरत में जल भराव ने आम जनजीवन और औद्योगिक गतिविधियों पर असर डाला। कई इलाकों में फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। एक वायरल वीडियो में घुटने तक पानी के बीच अंतिम यात्रा भी निकलती दिखाई दी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गुजरात के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लगातार बरसते बादलों ने लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो।

कल्याणपुर में भी भारी बारिश की वजह से बीएसएफ कैंप की बाढ़ की चपेट में देखी जरा किस तरह की तस्वीरें यहां पर। कैंप में अचानक से पानी भर गया था और इसी वजह से जवानों को जान बचाने के लिए छतों की तरफ और पेड़ों की तरफ भागना पड़ा। 7 जवान बैरक की छत पर थे, 2 जवान पेड़ों पर और 1 जवान मेस की छत पर पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आया। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद सुरक्षित इन तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन जवानों का वायरल वीडियो अब बाढ़ के भयावह हालात को और उनकी जद्दोजहद को जरूर बयां कर रहा है।

0: और दमन के पटलारा स्थित पावर हाउस में भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था कि ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर से दिखाई दिया। एहतियात के तौर पर कई इलाकों की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह ये आग लगी हुई है। और जानकारी ये है कि इस इलाके में चारों ही तरफ इस आग से भय का माहौल था, क्योंकि दूर दूर तक धुआं देखा जा रहा था। शुक्रवार को संसद के भीतर साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर तंज वाला एक नाटक किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें नेता शामिल हुए। और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और साथ ही हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया है।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजें और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई, इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: गलत किया मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और आपको बता दें कि आप प्रधानमंत्री मोदी के नए वीडियो संदेश की बात हम करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेनजी को बड़ा मैसेज दिया था। रात का तकरीबन 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर के बारे में, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो राजनीति गरमा चुकी है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के हमले पर पलटवार किया है।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोपों तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई एक और बड़ी खबर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में कल शाम आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी थी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही जान चली गई जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
12: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
13: रात में टारगेटेड अटैक हुआ जहां जैसे आपने कहा फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
12: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
13: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
12: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
6: तो गुलगांव में आतंकवादी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यही रहना मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय।
8: हम लोग जाते नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
6: हैं, यही रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक।
9: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िए के साथ मारपीट और उसकी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़िए की कार की टक्कर एक कांवड़ से हो गई थी और उसके बाद कांवड़ खंडित हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने चालक के साथ मारपीट कर डाली, उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी शिव भक्तों से शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
11: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
12: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
13: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
12: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.
14: सावन में चंद्रमा की बाधा कैसे दूर करेंगे, सावन में शनि की 7.5 को कैसे शांत करेंगे, सावन में कैसे करें नवग्रहों की पीड़ा दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
15: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

जेंजी को संदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की युवा शक्ति की बात। एसुरू में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को देश की तरक्की में योगदान करने के लिए कहा। छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई FIR। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। चेन्नई में कहा बीजेपी की बड़ी साजिश है, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को दे रहे हैं धोखा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का सनसनीखेज दावा। बर्दवान से हमी मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। 7 बॉक्सर्स ने जीता है गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड जीते हैं और आपको ये भी बता दें कि नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही पैरा एथलेटिक्स की अगर हम बात करें, साथ ही ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया है नया इतिहास। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, उन्होंने भी कमाल कर दिखाया है। पैरा एथलेटिक्स एंड ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो भारत का गोल्डन पंच हम आपको दिखा रहे हैं। प्रीति पचार हैं, जैस्मिन है, अरुंधति हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। साथ ही साथ प्रिया, सचिन, अंकुश, इन्होंने भी गोल्ड भारत के नाम किया है। पैरा एथलेटिक्स और साथ ही शॉर्ट पुट में भारत के 2 मेडल्स हैं। कॉमनवेल्थ में इस बार भारत का दबदबा बरकरार रहा है। और अब बात करेंगे गुजरात के बारे में, क्योंकि हालात वहां बहुत ज्यादा खराब है, बारिश और बाढ़ जैसे। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले साउथ गुजरात के बहुत से जिले इसकी वजह से प्रभावित थे, कई शहरों में जबरदस्त तरीके से। इन तमाम जिलों में बुरा हाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नदियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नदियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। उधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारी बारिश ने बीएसएफ कैंप को बाढ़ की चपेट में ला दिया और कैंप में अचानक से पानी घुसने से जवानों को जान बचाने के लिए छतों और पेड़ों का सहारा लेना पड़ गया। 7 जवान बैरक की छत पर चढ़ गए थे, 2 जवान पेड़ों पर और एक और ऐसा जवान तो था जो मैस की छत पर पूरी रात फंसा रहा। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में आपको बता दें कि कोई हताहत नहीं हुआ है। जवानों का जो वीडियो है वो जबरदस्त तरीके से वायरल है और दिखाता है कि किस तरह बाढ़ की वजह से हालात वहां पर भयावह हैं, जद्दोजहद कितनी ज्यादा है जिंदगी को बचाने के लिए। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर तंज कसने वाला एक नाटक किया था और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं जिसे लेकर कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी किया गया।
5: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
6: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
5: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
7: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली

0: सड़कों पर उतरे, जहां पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
1: लोग कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया।
2: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
3: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
4: गलत किया मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर के बारे में, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के हमले पर पलटवार किया है।
6: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
6: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
8: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
9: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
10: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
6: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बात जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई एक बड़ी और अहम खबर के बारे में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केल्लाम इलाके में कल शाम आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकवादी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही जान चली गई थी, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है और

0: दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
1: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
2: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
1: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
2: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
0: कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखे का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताया कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्टा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय।
8: पहली बात, हम लोग जाते नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते हैं,
6: यहीं रहते हैं,
8: बस यहीं रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक।
9: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िए के साथ मारपीट और उसकी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़िए की कार की टक्कर एक कांवड़ से हो गई थी और उसके बाद कांवड़ खंडित हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने चालक के साथ मारपीट कर डाली, उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी शिव भक्तों से शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। और इसी के साथ हमारे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, 7 बॉक्सर्स ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। जेनजी को लेकर देश में गरमाई सियासत, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की तरक्की में युवाओं का अतुलनीय योगदान, गाली देने वालों को किया माफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का पलटवार, बीजेपी को माफ नहीं करेगा जेनजी। कुलगांव आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर सियासत बोले, जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं फारूख। चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें, बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई एफआईआर, राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। और परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को दे रही है धोखा।

चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको नव ग्रहों की अगर शांति करनी है, नव ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में कौन से उपाय करके आप नौ ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 9:37 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:26 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि सावन में छोटे छोटे उपाय करके, शिव जी की पूजा करके आप अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं, नवग्रहों की बाधा से छुटकारा पा सकते हैं। तो सावन में किस प्रकार शिव जी की पूजा करें कि नवग्रहों की शांति हो जाए? देखिए, भगवान शिव सृष्टि के नियंत्रक हैं, ब्रह्मा और विष्णु उनके अंदर समाहित हैं। शिव जी की उपासना से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत भी किया जा सकता है। सावन में थोड़े से प्रयास करके, छोटा सा उपाय करके किसी भी ग्रह की समस्या को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। सावन में अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, शिव जी की पूजा करें, तो ग्रहों की बाधा को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य को शांत करना चाहते हैं, सूर्य की वजह से बाधा है, तो सावन में क्या करेंगे? इसके लिए रोज सवेरे सावन में जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। साथ में शिवलिंग पर एक गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 या 3 माला जप करिएगा। सावन के किसी भी रविवार को अगर आप ऐसा करें, 1 रविवार या 2 रविवार सावन में ऐसा कर दें, तो सूर्य की बाधाएं आपके जीवन से कम हो जाएंगी।
बाकी ग्रहों की शांति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और सावन का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अगर आपके जीवन में चंद्रमा की वजह से दिक्कत है, चंद्रमा की वजह से समस्या है, तो चंद्रमा की शांति के लिए क्या करेंगे, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करेंगे, दूध दही शहद शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएंगे और शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद सफेद फूल भी अर्पित करेंगे और फिर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। पूरे सावन का महीना चंद्रमा का महीना है, तो सावन में किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ये प्रयोग करके शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो चंद्रमा की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली या आपके जीवन में मंगल की समस्या है तो मंगल की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे, शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करेंगे, लाल पुष्प यानी लाल फूल भी अर्पित करेंगे और इसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद शिव जी की कपूर से आरती करेंगे और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि मंगल संबंधी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएं।

भी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर बुध की वजह से जीवन में दिक्कत है, बुध आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, तो बुध की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करेंगे और जल में गुलाब जल मिलाकर सुगंधित जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद कम से कम 3 माला या 11 माला बुध के मंत्र का जप करेंगे। ओम बुम बुधाय नमः। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बाकी ग्रहों की शांति पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, काम में रुकावट आ सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संजय कुमार ने हमें लिखा है और संजय कुमार जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1988, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है पंचकुला। संजय जी कह रहे हैं कि मैं अपना एक रिजॉर्ट खोलना चाहता हूं, अपने व्यापार में जाना चाहता हूं या होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा या मुझे नौकरी में रहना चाहिए? संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 के नवंबर तक अभी आप नौकरी करिए, अभी नौकरी का उपयुक्त समय है। 2028 में आप किसी समय अपना होटल खोल लें, अपना रिजॉर्ट खोल लें, काम कर लें, 2028 में आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल जल्दबाजी में निर्णय न लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन सफलता से चले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बृहस्पति और शिव जी का सीधा संबंध होता है और अगर आप बृहस्पति की शांति करना चाहते हैं, बृहस्पति की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिव जी की पूजा ही करनी होगी। बृहस्पति की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और शिवलिंग की वेदी पर हल्दी लगाइएगा। शिवलिंग पर नहीं, उसके किनारे के अर्घा पर, वेदी पर हल्दी लगाइए। इसके बाद 3 माला या 11 माला ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा और पीली मिठाई का भोग भी लगाइएगा। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार को
अगर आप ये उपाय करें तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बृहस्पति बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में शुक्र की वजह से दिक्कत हो रही है, शुक्र आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो शुक्र की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जरा सा दूध और जल अर्पित करिए। सफेद रंग के सुगंधित फूल अर्पित करिए, लेकिन केतकी या केवड़ा अर्पित मत करिएगा। इसके बाद एक मंत्र पढ़िए, 3 माला या 11 माला। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। सावन में किसी भी शुक्रवार को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके शुक्र की स्थिति में सुधार होगा। मन की चिंताएं, पारिवारिक दिक्कतें ये दूर होंगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। बाकी ग्रहों की शांति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के

स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की वजह से समय बुरा चल रहा है, तो शनि की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? थोड़ा सा गन्ने का रस ले जाइए, थोड़ा सा जल ले करके शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं और उसके बाद जल अर्पित करें। साथ में शिवलिंग पर नीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद एक माला या तीन माला या 11 माला ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। सावन में किसी भी शनिवार की शाम के समय अगर आप ये प्रयोग करें तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर राहु या केतु की वजह से आपके जीवन में दिक्कत है, राहु या केतु की समस्या है, तो उसकी शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जल की धारा धीरे धीरे अर्पित करें, साथ में भांग और धतूरा भी अर्पित करिएगा। अगर राहु की शांति चाहते हैं तो ओम रां राहवे नमः इस मंत्र का जप करें और अगर केतु की शांति चाहते हैं तो ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप करें और शिव जी के मंदिर में एक नारंगी रंग का झंडा नारंगी रंग की ध्वजा अर्पित करिएगा। सावन में किसी भी बुधवार को या शनिवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु और केतु की बाधा शांत होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

पर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

है धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग पर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर कोई मारण प्रयोग हो, अगर कोई शत्रु संहार का प्रयोग हो, तब शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करके मारण प्रयोग किया जाता है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना सख्त मना है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लाल फल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

कार्यों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना बहुत बेहतर होता है। अब जान लेते हैं सावन के महीने में करने वाला महा उपाय। सावन सूत्र में सावन के महीने में बेल पत्र पर चंदन से राम लिखें। कम से कम 3 बेल पत्र पर राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन में किसी भी दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और इस वक्त बड़ी और अहम खबर अमेरिका के डाउस से है, जहां पर एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको ये भी बता दें कि जिस शख्स ने हमला किया था उसको सुरक्षा बलों ने ढेर भी कर दिया है। कई लोग गोलीबारी में घायल हो गए हैं। रेस्टोरेंट के भीतर ये जबरदस्त गोलीबारी हुई है और आपको बता दें कि इस गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन जिस शख्स ने गोलीबारी शुरू की थी उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। वजह क्या रही इस गोलीबारी की, इसके बारे में साफ नहीं हो पाया है, लेकिन घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। अमेरिका के इडाहो शहर की यह घटना है जहां एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई थी। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ अफरा तफरी मची हुई थी और लोगों ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे शूट आउट हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि रेस्टोरेंट के भीतर ये शूट आउट हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हमलावर को पुलिस की तरफ से मार गिराया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे नॉन स्टॉप 100 प्रेजेंटेड बाय

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में मिला सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल हैं। पदक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा है भारत। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में लोगों को संबोधित किया। मैसूरू में देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को सजोकर रखा है। मैसूरू में ही प्रधानमंत्री ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। मैसूरू में जेनजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया था उद्घाटन। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी गाली देने वाले जेनजी को माफ करने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बताया बड़े दिल वाला। टी20 पेट्रोल मामले पर गर्मा गई है सियासत। 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में आम आदमी पार्टी संस्थापक केजरीवाल। केजरीवाल का ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। कहा, वही आए जो लाठी और जेल से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्ते का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नशा मुक्ति व विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत आज। नशे के खिलाफ हर रविवार देश भर में होंगे जागरूकता कार्यक्रम। अभियान में 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोग जुड़ेंगे। खेल, नुक्कड़, नाटक और जागरूकता के होंगे कार्यक्रम। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जनभागीदारी पर रहेगा जोर। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद। प्रधानमंत्री मोदी से माफी वाले बयान पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के माफ करने वाले बयान पर कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए उनसे कौन मांगेगा माफी। शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए भी अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी का, ये बीजेपी की बड़ी साजिश है। तमिलनाडु के लोगों का साथ विश्वासघात कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मीडिया से बातचीत से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की बिगड़ गई है तबीयत। वॉमिटिंग के बाद घर लौटे। मुंबई में शिवसेना यूपीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में धान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में संतों और भगवान श्री राम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव। शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो जारी भी किया, मेरा विरोध आस्था के नाम पर चल रही लूट से है। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई एफआईआर। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार में सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी में मामले में छात्रों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जाना हालचाल। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार, भूपेश बघेल के कार्यक्रम के हंगामे के बाद पंजाब भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गया है दोषियों की जांच पर और सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब कांग्रेस में बढ़ गई है कलह। संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के तहत एक कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में लगे थे नारे। भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी हुई।
यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने की कांवड़ियों से की सेवा, बोले हमारी संस्कृति की पहचान है सेवा। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, बोले कांग्रेस के नेताओं और तेजस्वी यादव की जनता से कोई सरोकार नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में श्रीराम के अपमान के आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा, बोले ऐसे पाखंडियों को सनातन के अपमान की मिलेगी सजा। दो दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंची लेखिका तस्लीमा नसरीन, सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी, पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सती नदी में कूद डूबने से तीन मासूमों की मौत हुई, नहाने गए चार बच्चों में से तीन की जान गई। हरिद्वार में सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हुई, हंगामे के बाद लगा जाम। एमपी के खरगोन में उफंदी नदी पार करने की कोशिश में दो बाइक सवार डूबे, एक दोस्त तैरकर किनारे पहुंचा, दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जल नल योजना में बड़ा हादसा, पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन, चार दिन बाद मिट्टी के अंदर मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चाएं, लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में दिया कावड़ का रूप। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न, मां बोली बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जलंधर के डीएवी हाट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी, 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हुए। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी में बरामद किया गया है, तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा हुआ। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या कर डाली, नशीला पदार्थ खिलाया, गला दबाकर मर्डर किया, आरोपी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शख्स, शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। बिहार के हाजीपुर में मामूली से विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लंबे समय से चल रहा था रास्ते को लेकर विवाद। हरियाणा के सोनीपत में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट हुई, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चांदी के गहने लेकर 2 बदमाश फरार हुए, को लोगों ने पकड़ा। एमपी के इंदौर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, सड़क पर हंगामा करने और महिला को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हुई, स्थायी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मेरठ में सरकारी बस अड्डे पर रिटायरमेंट पार्टी में महिला डांसर का वीडियो वायरल हुआ, बस ड्राइवर की पिटाई के बाद सरकारी परिसर में आयोजन पर उठाए जा

अमरावती में मूसलाधार बारिश में 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूब गई है। बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण। 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर चला बुलडोजर। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय लगी थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट में 4 घर खाक हुए। 10 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा। बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या। पति सहित 4 की गिरफ्तारी। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नामालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा कसा। प्रेम प्रसंग से नाराजगी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। मॉस्को में कैफे के पास धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत हुई। धमाके में कम से कम 15 लोग घायल हुए। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीमें। मॉस्को धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। पेरू में पर्यटक विमान हादसा। 13 लोगों की मौत हुई। नाजका लाइंस के ऊपर उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे की जांच में जुटे हैं विमान के अधिकारी। हादसे में कुछ इटली के पर्यटकों के होने की भी आशंका। पाकिस्तान कश्मीर पर ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने जताई है चिंता। बातचीत और वार्ता जल्द शुरू करने की मांग रखी। खून खराबा नहीं होने की चेतावनी दी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला। 9 लोगों की मौत। 33 घायल। 1 दर्जन से ज्यादा धमाकों से दहला शहर। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने रणनीति को लेकर मतभेद जताया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है अमेरिका। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में F-35B लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के बाद घटनास्थल से उठता हुआ धुआं नजर आया। गजा के दील अल बलाह में शनिवार रात इजरायली सेना का बड़ा हमला। अस्पताल के गोदाम को बनाया गया निशाना। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्मन मैनचेस्टर में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत उन्होंने की। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते हुए तनाव के बीच पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ने आर्मी ने शनिवार को हुआंग द्वीप में समुद्री और हवाई क्षेत्र में किया बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। कई शहरों में बाढ़ से लोग परेशान। ग्रीस में तेज हवाओं के कारण शनिवार को कई इलाकों में तेजी के साथ फैली जंगल की आग। राजधानी एथेंस में पश्चिम में आगे आग। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच सीमा चौकी पर भारी ट्रैफिक जाम। मॉस्को में 100 साल से ज्यादा पुरानी सोवियत दौर की फैक्ट्री को बचाने का अभियान शुरू किया गया। फैक्ट्री को संरक्षित करने की मांग वाली 2 ऑनलाइन याचिकाओं पर काम।

और अब बात करेंगे गुजरात के बारे में, क्योंकि हालात वहां बहुत ज्यादा खराब है बारिश और बाढ़ जैसे। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले साउथ गुजरात के बहुत से जिले इसकी वजह से प्रभावित थे। कई शहरों में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आ गई थी और एक बार फिर से कुछ इसी तरह के हालात फिर से नजर आ रहे हैं। सूरत है, नवसारी है, डांग है, खेड़ा है, भरूच है, इन तमाम जिलों में बुरा हाल है।

गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण

0: सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़।
3: और इसी के साथ हमारे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
7: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
4: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
5: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए है? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
4: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
3: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
5: वो तो काले नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
6: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कन में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
7: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
8: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
3: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
9: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
10: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
3: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अमेरिका के इडाहो में शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी से चीख बुखार मची। 3 लोगों के मारे जाने की आशंका। पुलिस ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। जेंजी पर चढ़ा सियासी पारा। प्रधानमंत्री की माफी देने वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल। कहा पुलिस एक्शन पर छात्रों से माफी मांगे। दीपक ने भी सुर में सुर मिलाया। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम बोले। जब हम ही करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती हैं गोलियां। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर FIR दर्ज करवाई। वाराणसी में साधु संतों ने भी दर्ज करवाया केस। कई शहरों में प्रदर्शन। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम। शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर। अब तक 13 स्वर्ण 39 पदक। बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पंच से 7 गोल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बजे और वक्त तो चला है खास बुलेटिन का, सुपर 8 का। और इस बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के जेंजी को संदेश के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा शक्ति की बात की है मैसूरू में। आपको बता दें कि देश की तरक्की में अहम योगदान उन्होंने बताया है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले पर जो प्रदर्शन किया गया था पप्पू यादव की तरफ से, उसके बाद जबरदस्त तरीके की मुश्किलें उनकी बड़ी। अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज करवाई गई है। प्रदर्शन उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िए के साथ मारपीट और उसकी कार में तोड़फोड़ का जो मामला है वो सामने आया है। बात करेंगे मौसम के बारे में भी, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही दमन के पलटारा में पावर हाउस में भीषण आग लगने से कैसे हड़कंप मच गया था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हम बात करेंगे, क्योंकि गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। 7 बॉक्सर्स ने गोल्ड जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। पैरा एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो सुमन राणा ने शॉटपुट में सीजन बेल्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है। और आखिर में बात युद्ध की भी करेंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। तो सबसे पहले जो ये खबर है वो अमेरिका के इडाहो से है, जहां पर एक रेस्टोरेंट के भीतर गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। आपको ये भी बता दें कि इस रेस्टोरेंट में जिस शख्स ने गोली चलाई थी, जिस शख्स ने हमला बोला था उसे सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर कर दिया गया है। कई लोग गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हुए हैं। घबराहट और हंगामा इस गोलीबारी के दौरान आसपास महसूस किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग भागते हुए नजर आए और जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जानकारी है कि इस गोलीबारी में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छी बात यह रही कि इस हमलावर को पुलिस ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है। तो सुना आपने ज्यादा जानकारी के साथ। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, और क्या जानकारी मिल पा रही है शूटआउट से जुड़ी हुई?
1: देखिए शशि, स्थानीय समय के मुताबिक करीब 2:30 बजे की ये घटना है जब एक बर्गर रेस्टोरेंट के अंदर ये शख्स दाखिल होता है जिसके पास ऑटोमेटिक राइफल थी और उसने गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद वहां पर जो स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद थे पुलिस को कॉल किया गया। उसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ कुछ शूटआउट हुआ इस शख्स का और न केवल इसे मार गिराया गया बल्कि उस पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम के अंदर 3 लोग जिसमें हमलावर भी शामिल है वो मारे गए हैं। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनका इलाज स्थानीय जो मेडिकल स्पेशलिटी सेंटर्स हैं वहां पर चल रहा है। लेकिन ये घटना एक बार फिर रिमाइंडर देती है क्योंकि ये ट्विन फॉल्स की घटना है, आइडाहो जो कि उत्तर पश्चिम का राज्य है अमेरिका का, और ये कोई अकेली घटना नहीं है शशि। इस तरीके की कई घटनाएं जो कि मास शूटिंग की है, कभी स्कूल में, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, या कभी किसी जो वर्क प्लेस के ऊपर इस तरीके की घटनाएं अमेरिका के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल है, जो कि गन कल्चर को से भी जुड़ा हुआ मामला है कि हथियार जिस तरीके से रखने की आजादी होती है और उसके बाद नशे की स्थिति में या किसी आउटरेज के अंदर या किसी गुस्से के कारण इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता है जो कई मासूम जिंदगियों को लील लेता है।
0: बिल्कुल हम समझ सकते हैं और ये बिल्कुल सच बात है। बार बार वेपन पॉलिसी के बारे में हम बात करते रहे हैं और मास शूटआउट कई बार हम अलग अलग जगहों पर अमेरिका के भीतर देखते रहे हैं, लेकिन प्रणय इस पूरी घटना के बारे में और ज्यादा क्या जानकारी मिल पाई है? कितने लोग घायल हुए हैं? हमलावर ने ये गोलीबारी क्यों की या उससे पहले उसे मार गिराया गया था? कुछ और ज्यादा जानकारी
1: शशि, हमलावर अभी कौन था, कहां से आया, क्या स्थानीय था, उसके पीछे मोटिव क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फिलहाल जो स्थानीय पुलिस है ट्विन फॉल्स की, उसकी तरफ से इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 2:30 बजे की ये स्थानीय समय के अनुसार ये घटना है। ट्विन फॉल्स एक छोटा सा शहर है, करीब 56,000 की आबादी वाला ये शहर है आइडाहो का, और वहां पर ये घटना हुई और उसके बाद जिसके अंदर हमलावर समेत 3 लोग मारे गए हैं, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोग घबराते हुए नजर आए और आपको बता दें कि इस घटना में जो हमलावर था उसे मार गिराया गया है। आगे बढ़ेंगे और ये जो खबर है रूस की राजधानी मॉस्को से है, जहां पर एक कैफे में धमाका हुआ है और जानकारी है कि 3 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई, कम से कम 15 लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारणों का अभी तक कोई खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी है मॉस्को में जहां जबरदस्त धमाका हुआ एक कैफे के भीतर। जानकारी यह है कि 3 लोगों की जान इस धमाके में चली गई है। कैफे के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट की खबर है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, 15 से ज्यादा लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। विस्फोट के कारणों को अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर क्या रहे, आधिकारिक खुलासा इसके बारे में नहीं हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पेरू में एक बड़े विमान हादसे की खबर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नाजका लाइंस के ऊपर पर्यटकों को लेकर उड़ान भर रहा एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसा हुआ मारिया रायशे एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद। शुरुआती जानकारी में पता ये चला कि मृतकों में विदेशी पर्यटक हैं, जिनमें कुछ इटालियन नागरिक भी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि तेज हवाओं की वजह से बंद की गई पर्यटन उड़ानें एक दिन पहले ही दोबारा शुरू की गई थी। सोचिए, एक दिन पहले ही दोबारा से उड़ानों को शुरू किया गया था, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से इन उड़ानों को पहले बंद किया गया था एहतियातन, और शुरुआत के दोबारा से दूसरे ही दिन ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। और अब बात करेंगे बारिश और बाढ़ के बारे में। देश के कई हिस्सों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात के नवसारी, खेड़ा और भरू समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। खेड़ा के कुछ इलाकों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है, जबकि कई जगहों पर सड़कें और बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात की जाए तो लगातार बारिश के बाद वहां पर भी पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े थे, यातायात जिससे बाधित हुआ। हालात का जायजा लेने के लिए शिमला के मेयर भी मौके पर पहुंचे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो शिमला में लगातार हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ साफ नजर आने लगा है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात का जायजा लेने के लिए शिमला नगर निगम के मेयर और अधिकारियों को तत्काल राहत और सड़क बहाली के निर्देश दिए गए। तस्वीरें देखिए, तेज बारिश और हवाओं की वजह से पेड़ गिरने की वजह से कई मार्ग बुरी तरह से बाधित हुए हैं। तो गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आपको बता दें कि साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, तो कहीं डैम के गेट खोलने पड़े हैं।
2: Gracias. गुजरात में मॉनसून एक बार फिर कहर बनकर बरसा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर दक्षिण गुजरात में दिखाई दे रहा है, जहां जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। गुजरात के साबरकांठा में महज एक घंटे में करीब 2 इंच बारिश हुई और शहर के बीच से गुजरने वाली नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहती हुई नजर आई, वहीं सड़कों पर पानी का दरिया बहता दिखा। खेड़ा में 24 घंटे में 17 इंच से ज्यादा बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। मुख्य बाजार, रिहायशी इलाके, सरकारी स्कूल और दफ्तर सब पानी में डूब गए हैं। वहीं लोग अपने घरों को बचाने के लिए अस्थायी दीवारें बना रहे हैं, जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मोरबी में लगातार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के 10 गेट 10 फीट तक खोले गए हैं। डाउनस्ट्रीम के 32 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सूरत में जल भराव ने आम जनजीवन और औद्योगिक गतिविधियों पर असर डाला। कई इलाकों में फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। एक वायरल वीडियो में घुटने तक पानी के बीच अंतिम यात्रा भी निकलती दिखाई दी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गुजरात के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लगातार बरसते बादलों ने लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो।
0: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश ने बीएसएफ कैंप को बाढ़ की चपेट में ले लिया था। और आपको बता दें कि कैंप में अचानक से पानी घुसने के बाद जवानों को जान बचाने के लिए छतों की तरफ भागना पड़ गया, पेड़ों का सहारा लेना पड़ा। 7 जवान बैरक की छत पर थे, 2 जवान पेड़ों पर और 1 जवान मेस की छत पर पूरी रात फंसा रहा। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन जवानों का जो वीडियो है जबरदस्त तरीके से वायरल है और दिखाता है कि किस तरह हालात बहुत ज्यादा भयावह हैं, जद्दोजहद भरे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। एक दिन में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टैली में 4th नंबर पर पहुंच गया भारत। शनिवार को भारत ने कुल 16 मेडल्स जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ है टॉप पर और आपको बता दें कि इंग्लैंड दूसरे और कैनेडा तीसरे नंबर पर काबिज है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गोल्डन पंच हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन भारत की तरफ से इस बार किया गया है। प्रिया, सचिन, अंकुश इन सभी ने गोल्ड जीता है। पैरा एथलेटिक्स में भी शॉटपुट में 2 मेडल्स भारत ने अपने नाम किए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खेलों का सुपर शनिवार जो बहुत ही खास रहा। 16 पदकों की बरसात हुई है। वहीं बॉक्सिंग में किस तरीके से भारत ने धमाल करके दिखाया है और बेटियों का गोल्डन पंच सबके लिए चर्चाओं का विषय है और गौरव की बात है। तो देखिए, प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साथी साक्षी, 5 जो गर्ल पार है भारत की, गोल्डन पंच जिसे लगातार कहा जा रहा है और भारत के लिए गौरव की बात कहा जा रहा है। एक बार फिर से भारत ने कमाल कर दिखाया है। 4th पायदान पर है भारत इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग रिंग में इस बार भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया है। पहली बार भारतीय मुक्केबाजों ने एक ही गेम्स में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। महिलाओं में प्रीति पवार, जैस्मिन लामबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीतकर तिरंगा बुलंद किया। वहीं पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने शानदार जीत के साथ भारत की झोली में दो और स्वर्ण पदक डाले। अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि सचिन सिवाच ने रोमांचक मुकाबले में नामीबिया के खिलाड़ी ट्राइगेन को 3-2 से हराया। आखिरी राउंड में लगाया गया सचिन का दमदार पंच उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बना। हालांकि लवलीना बोरगोहेन, जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल फाइनल में अपना जादू चलाने से चूक गए, लेकिन तीनों ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। बॉक्सिंग के अलावा पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉर्ट पुट में सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए, जबकि शुभम जोयाल ने सिल्वर अपने नाम किया। वहीं ट्रैक पर गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही संस्करण में 5000 और 10000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। भारत के खाते में अब 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत 29 मेडल हो चुके हैं और टीम पदक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है। भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे जेंजी के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी करके जेंजी छात्रों को ये कहकर माफ कर दिया कि बच्चे गुमराह हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में थे और जहां उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को देश के विकास में योगदान देते रहना चाहिए। उधर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है, माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत युवाओं से माफी मांगनी चाहिए।
3: आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है।
0: और इस पूरे मामले पर राजीव राय और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए।
4: प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नौजवानों से माफी मांगे, उन्होंने मजबूर कर दिया ये पेपर लीक करने वालों को संरक्षण देकर कि छात्र हमारे सड़कों पर आए। गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। जब सड़कों पर उतरे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, हमारे बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन ऐसे छोड़े गए जैसे वो आतंकवादी हो। तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी खौफ में, दहशत में जी रहे हैं, सदन में को फेस करने की ताकत नहीं है, न गृह मंत्री में न प्रधानमंत्री में, और रोज रात को उठकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बना देते हैं।
5: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपड़े फाड़े गेले, ज्या पद्धति ने तो वीडियो मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि ते पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली, त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर तंज कसने वाला नाटक किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी उस नाटक में शामिल हुए थे। अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं, जिसे लेकर कई जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन भी जारी है।
6: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
7: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजें और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
6: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन की।
8: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
6: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
9: लोग कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
6: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया। इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
10: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
11: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
6: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अप।
13: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
17: Electric Savaris.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम अप। There was Dhirubhai Ambani. He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
10: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत।
2: डाई हार्ड म्यूजिक फैन, क्वेलो कॉन्सर्ट्स ब्रिंग्स यू थाउजेंड्स ऑफ फुल लेंथ कॉन्सर्ट फिल्म्स एंड बिहाइंड द सीन्स म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज। फ्रॉम टुडेज आइकॉन्स टू यस्टरडेज लेजेंड्स, वी हैव इट ऑल। क्वेलो कॉन्सर्ट्स बाय स्टिंगरे, नाउ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्लूटो टीवी। स्ट्रीम नाउ, पे नेवर।
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
3: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
2: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
4: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
2: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
5: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

गुजरात में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। खेड़ा जिले में सिर्फ 16 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मुख्य बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से कारोबार ठप पड़ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीर आनंद से सामने आई, जहां एसपी कार्यालय के सामने बारिश के पानी में खेल रहे 3 बच्चे तेज बहाव में बह गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। उधर नवसारी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवसारी में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। भरूच, सूरत, वडोदरा और भावनगर में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भरूच में कई सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि सूरत और वडोदरा में जल भराव से जनजीवन प्रभावित है। एहतियात के तौर पर सूरत के स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन लोगों से निचले इलाकों, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल गुजरात में बारिश राहत नहीं, बल्कि लगातार नई मुसीबत बनकर बरस रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अमेरिका के गांव में शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी से चीख पुकार मची, तीन लोगों के मारे जाने की आशंका, पुलिस ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। जेंजी पर चढ़ा सियासी पारा, प्रधानमंत्री की माफी देने वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल, कहा पुलिस एक्शन पर छात्रों से माफी मांगे, दीपके ने भी मिलाए सुर। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद संग्राम, बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज करवाई, वाराणसी में साधु संतों ने कराई एफआईआर, कई शहरों में प्रदर्शन।

और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम। शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे स्थान पर है भारत। अब तक 13 स्वर्ण 39 पदक। बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पंच से 7 गोल्ड।

अमेरिका के गांव में रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई, कई लोगों की मौत की खबर। हमलावर भी मारा गया। गिराओं के हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोगों के घायल होने की जानकारी। घटना के बाद इलाके में सड़कों को बंद कर दिया गया था, कई एजेंसियां मौके पर पहुंची, लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावर को मार गिराया, इलाके में खतरों का खत्म होने का दावा। मॉस्को में कैफे के पास धमाका हुआ, 3 लोगों की मौत की खबर, धमाके में 15 लोगों के घायल होने की जानकारी। इस धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीम, मॉस्को धमाके की जांच में जुट गई है पुलिस। पेरू में पर्यटक विमान हादसा, 13 लोगों की मौत की खबर, नास्का लाइंस के ऊपर उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की जांच में जुड़े हैं विमान अधिकारी, हादसे में कुछ इटली के पर्यटकों के होने की भी जानकारी। पाकों की बैठ कश्मीर की स्थिति पर ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने चिंता जताई, बातचीत और वार्ता जल्द शुरू करने की मांग की, खून खराबा नहीं होने की चेतावनी दी गई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात, शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते हैं गोल्ड, अलग अलग वर्ग में मिला है सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला है स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल हैं, पदक तालिका में भारत है चौथे नंबर पर। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में लोगों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री बोले मैसूरू में देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को सजोकर रखा गया। मैसूरू में प्रधानमंत्री ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन भी किया। मैसूरू में जैनजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ के विकास परियोजना की सौगात दी थी, भोगपुरम में नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने गाली देने वाले जैनजी को माफ करने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बताया बड़े दिल वाला। G20 पेट्रोल मामले पर गर्मा गई सियासत, 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में है केजरीवाल। केजरीवाल का ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, कहा वही लोग आए जो लाठी खाने के लिए और जेल जाने से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्तों का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। नशे के खिलाफ हर रविवार देश में जागरूकता अभियान कार्यक्रम होंगे, अभियान में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। खेल, नुक्कड़, नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जन भागीदारी पर भी जोर रहेगा। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं को संदेश, प्रधानमंत्री से माफी वाले बयान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी करने वाले बयान पर कहा छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए उनसे कौन माफी मांगेगा। शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा लेने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे हैं राहुल गांधी, कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश है, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। मीडिया से बातचीत से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की बिगड़ी तबियत, वॉमिटिंग के बाद घर लौटे। मुंबई में शिवसेना यूपी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। संसद परिसर में संतों और भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए वीडियो वायरल किया, मेरा विरोध आस्था के नाम पर लूट के विरोध में था। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवा दी एफआईआर, राहुल गांधी का नाम भी इसमें शामिल।
पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी मामले में छात्रों के घायल होने के घायल छात्र से मिलने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पहुंची। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार, भूपेश बघेल के कार्यक्रम में हंगामे के लिए भगवंत मान सरकार पर लगाया आरोप। पंजाब कांग्रेस में बढ़ गई कलह, संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के तहत एक कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में लगे थे नारे, भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने की कांवड़ियों से सेवा, बोले सेवा हमारी संस्कृति की पहचान है, शिव भक्तों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, बोले कांग्रेस नेताओं तेजस्वी यादव का जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में श्रीराम के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा, बोले ऐसे पाखंडियों को सनातन के अपमान की सजा मिलेगी। दो दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंची लेखिका तस्लीमा नसीम, सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी, पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सतीब नदी में डूबने से 3 मासूमों की जान जाने की खबर, नहाने गए थे 4 दोस्त, 3 बच्चे नदी में डूबे। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हुई, हंगामे के बाद लंबा जाम लगा रहा। एमपी के खरगोन में उफनती हुई नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूब गए थे, एक दोस्त तैरकर किनारे पहुंच गया, दूसरे की तलाश अभी भी जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नल जल योजना में बड़ा हादसा, पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन, 4 दिन के बाद मिट्टी के अंदर से शव पाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चाएं, लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख रुपए में कावड़ का रूप दिया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न।

कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार की गई। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय लगी थी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 घर जलकर खाक हुए, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान। यूपी के अमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा, बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या कर डाली और आरोपी के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा, प्रेम प्रसंग में नाराजगी से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला, 3 लोगों की मौत की खबर, 33 से ज्यादा घायल, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के धमाकों के बाद दहल गया था इलाका। ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर प्रशासन ने रणनीति को लेकर मतभेद है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है अमेरिका और अधिकारियों के बीच है अलग अलग राय। कैलिफोर्निया के सैनडिएगो में F-35B लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे के बाद दुर्घटना स्थल से उठता हुआ नजर आया धुआं। गाजा के दीर अल बला में शनिवार को इजरायली सेना का बड़ा हमला, अस्पताल के गोदाम को बनाया गया था निशाना, हमले में मेडिकल सप्लाई वाला गोदाम पूरी तरह से नष्ट। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एनी बर्मन ने मैनचेस्टर में प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत की है, हफ्ते में एक दिन नंबर 10 नॉर्थ मैनचेस्टर कार्यालय में काम करेंगे। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते हुए तनाव के बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को हुयायांग द्वीप के समुद्री और हवाई क्षेत्र में किया है बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, कई शहरों में बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, घरों में घुसा पानी, बिजली और आपूर्ति भी बाधित हुई। ग्रीस में तेज हवाओं की वजह से शनिवार को कई इलाकों में तेजी के साथ फैली जंगल की आग, राजधानी एथेंस में पश्चिम में पोटो जर्मनी में लगी है सबसे भयानक आग। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बागाकोबो सीमा चौकी पर भारी ट्रैफिक जाम है, सीमा पार करने के लिए वाहनों की लंबी कतारें। मॉस्को की 100 साल से ज्यादा पुरानी सोवियत दौर की फैक्ट्री को बचाने का अभियान शुरू हुआ, फैक्ट्री को संरक्षित करने वाली ऑनलाइन याचिकाओं पर काम जारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको नव ग्रहों की अगर शांति करनी है, नव ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में कौन से उपाय करके आप नौ ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 9:37 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:26 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा

यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि सावन में छोटे छोटे उपाय करके, शिव जी की पूजा करके आप अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं, नवग्रहों की बाधा से छुटकारा पा सकते हैं। तो सावन में किस प्रकार शिव जी की पूजा करें कि नवग्रहों की शांति हो जाए? देखिए, भगवान शिव सृष्टि के नियंत्रक हैं। ब्रह्मा और विष्णु उनके अंदर समाहित हैं। शिव जी की उपासना से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत भी किया जा सकता है। सावन में थोड़े से प्रयास करके, छोटा सा उपाय करके किसी भी ग्रह की समस्या को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। सावन में अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, शिव जी की पूजा करें तो ग्रहों की बाधा को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य को शांत करना चाहते हैं, सूर्य की वजह से बाधा है, तो सावन में क्या करेंगे? इसके लिए रोज सवेरे सावन में जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। साथ में शिवलिंग पर एक गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का कम से कम एक या तीन माला जप करिएगा। सावन के किसी भी रविवार को अगर आप ऐसा करें, एक रविवार या दो रविवार सावन में ऐसा कर दें, तो सूर्य की बाधाएं आपके जीवन से कम हो जाएंगी। बाकी ग्रहों की शांति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और सावन का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अगर आपके जीवन में चंद्रमा की वजह से दिक्कत है, चंद्रमा की वजह से समस्या है, तो चंद्रमा की शांति के लिए क्या करेंगे? शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएंगे और शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद सफेद फूल भी अर्पित करेंगे और फिर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। पूरे सावन का महीना चंद्रमा का महीना है, तो सावन में किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये प्रयोग करके शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो चंद्रमा की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली या आपके जीवन में मंगल की समस्या है तो मंगल की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करेंगे। लाल पुष्प यानी लाल फूल भी अर्पित करेंगे और इसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और इसके बाद शिव जी की कपूर से आरती करेंगे और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि मंगल संबंधी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएं।

ही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर बुध की वजह से जीवन में दिक्कत है, बुध आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, तो बुध की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेल पत्र अर्पित करेंगे और जल में गुलाब जल मिलाकर सुगंधित जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद कम से कम 3 माला या 11 माला बुध के मंत्र का जप करेंगे। ओम बुम बुधाय नमः। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बाकी ग्रहों की शांति पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में रुकावट आ सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संजय कुमार ने हमें लिखा है और संजय कुमार जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1988। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है पंचकुला। संजय जी कह रहे हैं कि मैं अपना एक रिजॉर्ट खोलना चाहता हूं, अपने व्यापार में जाना चाहता हूं या होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा या मुझे नौकरी में रहना चाहिए? संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 के नवंबर तक अभी आप नौकरी करिए, अभी नौकरी का उपयुक्त समय है। 2028 में आप किसी समय अपना होटल खोलने, अपना रिजॉर्ट खोलने, काम करने, 2028 में आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल जल्दबाजी में निर्णय न लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन सफलता से चले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बृहस्पति और शिव जी का सीधा संबंध होता है और अगर आप बृहस्पति की शांति करना चाहते हैं, बृहस्पति की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिव जी की पूजा ही करनी होगी। बृहस्पति की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और शिवलिंग की वेदी पर हल्दी लगाइएगा। शिवलिंग पर नहीं, उसके किनारे के अर्घा पर, वेदी पर हल्दी लगाइए। इसके बाद 3 माला या 11 माला ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा और पीली मिठाई का भोग भी लगाइएगा। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार को अगर आप ये उपाय करें तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बृहस्पति बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में शुक्र की वजह से दिक्कत हो रही है, शुक्र आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो शुक्र की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जरा सा दूध और जल अर्पित करिए। सफेद रंग के सुगंधित फूल अर्पित करिए, लेकिन केतकी या केवड़ा अर्पित मत करिएगा। इसके बाद एक मंत्र पढ़िए, 3 माला या 11 माला ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। सावन में किसी भी शुक्रवार को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके शुक्र की स्थिति में सुधार होगा,
मन की चिंताएं, पारिवारिक दिक्कतें ये दूर होंगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। बाकी ग्रहों की शांति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की वजह से समय बुरा चल रहा है, तो शनि की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? थोड़ा सा गन्ने का रस ले जाइए, थोड़ा सा जल ले करके शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं और उसके बाद जल अर्पित करें। साथ में शिवलिंग पर नीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद एक माला या तीन माला या 11 माला ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। सावन में किसी भी शनिवार की शाम के समय अगर आप ये प्रयोग करें तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर राहु या केतु की वजह से आपके जीवन में दिक्कत है, राहु या केतु की समस्या है, तो उसकी शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर जल की धारा धीरे धीरे अर्पित करें, साथ में भांग और धतूरा भी अर्पित करिएगा। अगर राहु की शांति चाहते हैं तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें और अगर केतु की शांति चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप करें और शिव जी के मंदिर में एक नारंगी रंग का झंडा नारंगी रंग की ध्वजा अर्पित करिएगा। सावन में किसी भी बुधवार को या शनिवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु और केतु की बाधा शांत होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग पर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर कोई मारण प्रयोग हो, अगर कोई शत्रु संहार का प्रयोग हो, तब शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करके मारण प्रयोग किया जाता है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना सख्त मना है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:07:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लाल फल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

क्रियाएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना बहुत बेहतर होता है। अब जान लेते हैं सावन के महीने में करने वाला महा उपाय सावन सूत्र में। सावन के महीने में बेल पत्र पर चंदन से राम लिखें। कम से कम 3 बेल पत्र पर राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन में किसी भी दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
3: अमेरिका और ईरान की जंग के बीच बड़ी और अहम खबर वॉशिंगटन डीसी से। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा यह किया है कि अमेरिकी सेना में हथियारों की कमी हो गई है। अमेरिकी मीडिया ने सैन्य ऑफिसर्स के हवाले से लिखा है कि अमेरिका की एयर डिफेंस स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम से कम आधे थार इंटरसेप्टर मिसाइल, लगभग 50% पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, करीब 30% टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, 20% से ज्यादा जॉइंट एयर टू एयर सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और साथ ही लगभग 20% SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग किया जा चुका है। यानी कि अमेरिकी सेना का आयुध भंडार तेजी के साथ खाली हो रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी इस तरह की खबर आई थी जिसका खंडन किया गया था खुद ट्रंप की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, और क्या जानकारी है? और इससे पहले भी इस तरह की खबर आई थी जोर शोर से जिसके बारे में कहा जा रहा था और ट्रंप ने बहुत खुलकर उसका खंडन किया था।
4: देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसका खंडन करते आए हो शशि, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले 7 मार्च और उसके बाद 24 जून को अमेरिका के जो बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी और उन्होंने आग्रह किया था कि जो हथियारों का उत्पादन है वो तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका इस समय एक संकट के दौर से गुजर रहा है और इस लड़ाई को सस्टेन करने के लिए हथियारों की जरूरत है। और हथियारों की जरूरत इसलिए भी है कि अमेरिका न केवल ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई में इस समय मौजूद है या इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, बल्कि जो पूरे पश्चिम एशिया के देश के अंदर देशों में करीब जो 19 अमेरिकी बेसेस हैं, और यानी उन तमाम देशों में चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर हो, इन तमाम देशों के अंदर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या अमेरिका वहां पर जो एक सिक्योरिटी गारंटी देता है, वो जो एयर इंटरसेप्शन हो रहे हैं, चाहे कुवैत के अंदर एयर इंटरसेप्शन हो या कतर के अंदर हो, उन एयर इंटरसेप्शन यानी जो ईरान की तरफ से दागी जाने मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया हो रहा है वो अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा के लिए जॉर्डन के अंदर भी जो बड़ा पेट्रियट और थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है उसकी भी सुरक्षा या उसके हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका से ही आती है। साथ ही इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसके लिए भी हथियारों की सप्लाई अमेरिका ही कर रहा है। यानी अमेरिका में हथियारों की खपत बहुत ज्यादा है और अगर आप अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ के बयान को देखें तो इस लड़ाई के शुरुआती हफ्ते में ही अमेरिका $11 अरब जो है वो खपा चुका था और साथ ही अब तक इस लड़ाई की जो कीमत है वो करीब करीब $38 अरब को पार कर चुकी है। ये केवल अमेरिकी डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर है उसका आंकड़ा है और अगर आप ओवरऑल मानेंगे तो ये कई अरब डॉलर जो है वो इससे ज्यादा हो चुका है इस लड़ाई का जो दाम है या जो इसकी कीमत है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, कुल मिलाकर बहुत ही चिंता की बात है और ये साफ किया गया वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को प्रणय हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को भी ये भी बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच ट्रंप निर्णायक हमले की बात भी कर रहे हैं। उधर ईरान भी जैसे को तैसा की करने की लगातार चेतावनी दे रहा है। एक तरफ ट्रंप डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमला भी करवाते रहते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही है। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: तो ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि अगर अमेरिका इसराइल का क्षेत्र का कोई भी देश ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई करता है, उसमें शामिल होता है, तो उसका निर्णायक जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यह जानकारी अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर साझा भी की है। अब बात करेंगे स्पेन की, क्योंकि स्पेन ने मोरक्को से लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाया है। आपको बता दें कि सेउटा तट पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्पेनिश अधिकारियों ने समुद्र में करीब 500 मीटर लंबा फ्लोटिंग बैरियर लगाना शुरू कर दिया है। यह कदम उस बड़े पैमाने पर हुई घुसपैठ की कोशिश के बाद उठाया गया है, जिसमें कम से कम 67 लोगों की जान चली गई थी। स्पेन के मुताबिक 30 जुलाई के से करीब 50,000 लोगों ने जमीन और समुद्री रास्ते से सेउटाओं में प्रवेश की कोशिश की थी। हालांकि 48,000 से ज्यादा लोगों को 48 घंटे के भीतर मोरक्को वापस भेज दिया गया। यूरोपीय संघ के कई देशों ने भी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर संयुक्त कार्रवाई की मांग की है। भारत और चीन ने एक बार फिर से नाथुला दर्रे को कारोबार के लिए खोल दिया। लगभग 6 साल के बाद सिक्किम का नाथुला दर्रा फिर से सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया है। समुद्र तल से 4,302 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पास में से एक है। जहां कार से आवागमन होता है। 2020 में कोविड महामारी की वजह से इस रूट को बंद कर दिया गया था। कारोबार पूरी तरह से बंद था, लेकिन एक बार फिर से अब इसे खोला गया है।
4: 6 साल के लंबे समय के बाद आखिरकार भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध शुरू होने जा रहा है और 6 साल के बाद नाथुला में भारत और चीन का सीमा खोला गया है और ये बायलैटरल ट्रेड शुरू किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, भारत सरकार के, सिक्किम सरकार के तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ITBP के जवान और अफसर भी मौजूद हैं, इंडियन आर्मी के अफसर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये गेट खोला गया है और इस समय हम 0 पॉइंट पर मौजूद है भारत और चीन के बीच। यहाँ चीनी सेना को भी आप देख सकते हैं और यहाँ ये बॉर्डर ट्रेड शुरू होने जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि चीन के जो डेलीगेशन है वो यहां आ पहुंच रहे हैं और यहां 40 जो व्यापारी हैं उन्हें पासेस इश्यू किया जाएगा, 40 चीन के और 40 भारत के, और उन पासेस के द्वारा इस ट्रेड का नए सिरे से शुरुआत किया जाएगा। कोविड के बाद लगातार 6 साल ये ट्रेड बंद रखा गया था, उसके बाद भारत और चीन के बीच जिस तरीके का संबंध हुआ था उसके बाद ये पूरी तरीके से बंद था। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि चीन के जो ऑफिशियल्स आ पहुंचे हैं और यहाँ ये औपचारिक तौर पर ये जो ट्रेड है ये बायलैटरल ट्रेड को शुरू किया जा रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तरीके से सचेत है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से संबंध रहे हैं भारत और चीन के बीच, दोनों ही तरफ से डिप्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा तादाद में रखा गया है। इस बीच दोनों देशों के तरफ से ये कोशिश की जा रही है ताकि जो संबंध है वो बेहतर हो, लेकिन जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है उससे सीख लेते हुए भारत पूरी तरीके से सचेत है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्घ्य घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक नाथुला।
3: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अमेरिका के इडाहो में शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी से चीख पुकार मची, तीन लोगों के मारे जाने की आशंका। पुलिस ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। जेंजी पर चढ़ा सियासी पारा, प्रधानमंत्री की माफी देने वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल, कहा पुलिस एक्शन पर छात्रों से माफी मांगे, दिपके ने भी मिलाए सुर। कुलगांव आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम, बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा, बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज करवाई। वाराणसी में साधु संतों ने कराई FIR, कई जगहों पर प्रदर्शन। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम, शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर आ गया है भारत, 13 स्वर्ण समेत 39 पदक। बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पन से 7 गोल्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, गांधरबल में साफापोरा में बादल फटने से फ्लैश फ्लड की खबर। भारी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में भर गया पानी, प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। आसमानी आफत पर का सड़कों पर असर, सैलाब में बदल गई हैं सड़कें, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालते हुए नजर आए लोग। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, 50 से ज्यादा लोग घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, दो बच्चियों की मौत की खबर, कई परिवार प्रभावित। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद जलभराव, श्रीकंदापुरम नगर पालिका क्षेत्र प्रभावित। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में बड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री मोदी बोले मैसूर में देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को संजोकर रखा गया। मैसूर में ही प्रधानमंत्री ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन भी किया। शुरू में जेंजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ का विकास की परियोजना को सौगात दी थी। भोगपुर में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया था। भोगपुर में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने गाली देने वाले जेंजी को माफ करने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें की, बताया बड़े दिल वाला। E20 पेट्रोल मामले पर गर्मागी है सियासत, 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में है आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल। केजरीवाल का ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, कहा साथ वही आएं जो लाठी खाने और जेल जाने से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्तों का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। नशे के खिलाफ हर रविवार देश भर में होगा जागरूकता कार्यक्रम, अभियान में 10,000 से ज्यादा स्थानों से लोग जुड़ेंगे। खेल नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के होंगे कई कार्यक्रम, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जन भागीदारी पर रहेगा जोर। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद, प्रधानमंत्री से माफी वाले बयान पर बोले प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री से माफ करने वाले बयान पर कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, उनके खिलवाड़ के लिए उनसे कौन माफी मांगेगा। शिवसेना यूपी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्रों से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और पीएम विक्टिम कार्ड खेलकर उसका फायदा उठाने में माहिर है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश है, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा, डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मीडिया से बातचीत से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत खराब हो गई थी, वॉमिटिंग के बाद घर लौटे। मुंबई में शिवसेना यूपीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता को देना चाहिए जवाब। संसद परिसर में संतों और भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव, शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो जारी किया, बोले मेरा विरोध आस्था के नाम पर लूट पर है। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई एफआईआर, राहुल गांधी का भी नाम है इसमें। कई शहरों में प्रदर्शन। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी के मामले में घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पहुंची थी। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार, भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में हंगामे के लिए भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, का दोषियों की जांच कर होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस में बढ़ गए कलह, संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के तहत एक कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगे थे, भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों से मुलाकात की, बोले सेवा हमारी संस्कृति की पहचान, शिव भक्तों का सम्मान सभी की जिम्मेदारी। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला, बोले कांग्रेस नेताओं तेजस्वी यादव को जनता से कोई लेना देना नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में श्रीराम के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा, बोले ऐसे पाखंडियों को सनातन के अपमान की मिलेगी सजा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर ग्रंथ का लोकार्पण किया, हिंसा विश्व भारत में लोकेश से मिले सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद थे। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी, पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सती नदी में डूबने से तीन मासूमों की मौत की खबर, नहाने गए थे चार बच्चे, तीन की डूबने से मौत हुई, एक को बचाया गया। हरिद्वार में सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हुई, हंगामे के बाद लगा था लंबा जाम। एमपी के खरगोन में उफनती हुई नदी पार करने की कोशिश में दो बाइक सवार डूब गए थे, एक दोस्त तैरकर बाहर निकला, दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नल योजना में बड़ा हादसा, पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन हुआ, चार दिन के बाद मिट्टी हटाने के बाद शव अंदर मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चाएं, लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डबी को महज 8 लाख रूपये दिया कावड़ का रूप। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर में जश्न, मां बोली बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जलंधर में डीएवी हार्ट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई, हादसा सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। यूपी के चित्रकूट में स्कूली बच्चों से भरी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी में बरामद किया गया, तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा हुआ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात, शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते हैं गोल्ड, अलग अलग वर्ग में मिला है सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला है स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल, पदक तालिका में 4th नंबर पर पहुंचा। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दिए बधाई, अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या कर डाली, नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाया, आरोपी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शक, शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। बिहार के हाजीपुर में मामूली से विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लंबे समय से चल रहा था रास्ते को लेकर विवाद। हरियाणा के सोनीपत में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट हुई, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चांदी के गहने लेकर फरार 2 बदमाश, एक को लोगों ने पकड़ा। एमपी के इंदौर में एक महिला का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, सड़क पर हंगामा करने और महिला को पीटने के आरोप में एक की गिरफ्तारी। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हुई, स्थायी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने दिया है 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मेरठ में सरकारी बस अड्डों पर रिटायरमेंट वाली पार्टी में महिला डांसर का वीडियो वायरल हुआ है, बस ड्राइवर की विदाई पार्टी के सरकारी परिसर में आयोजन पर सवाल उठाए गए। अमरावती में मूसलाधार बारिश हुई, 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूबी, बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की भी मौत की खबर। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण, 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर चला बुलडोजर। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़कियों और लड़कियां गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय आग लगी थी, सिलेंडर ब्लास्ट में चार घर पूरी तरह से खाक हुए, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान। यूपी के अमीरपुर में महिला की हत्या के हैरान कर देने वाले खुलासे, बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या की गई, पति सहित चार की गिरफ्तारी। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा, प्रेम प्रसंग से नाराजगी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। अमेरिका के गांवों में रेस्टोरेंट के भीतर गोलीबारी हुई, कई लोगों की मौत, हमलावर भी मारा गया। गांवों में हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 5 लोग इसमें घायल हो गए। घटना के बाद इलाके की सड़कें बंद कर दी गई हैं, कई एजेंसियां मौके पर पहुंच गई थी, लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावर को मार गिराया था, इलाके में खतरा खत्म होने का दावा किया गया। मॉस्को में कैफे के पास धमाका हुआ, 3 लोगों की मौत की खबर, धमाके में कम से कम 15 लोग घायल हुए। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीमें, मॉस्को धमाके की जांच में जुट गई है पुलिस। पेरू में पर्यटक विमान हादसा, 13 लोगों की मौत की खबर, नाजका लाइंस के ऊपर उड़ान भर रहा छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे की जांच में जुटे हुए विमान के अधिकारी, हादसे में कुछ इटली के पर्यटकों के होने की भी जानकारी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति पर ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने जताई है चिंता, बातचीत और वार्ता जल्द शुरू करने की मांग की, खून खराबा नहीं होने की चेतावनी दी। यूक्रेनी राजधानी कीव और ओडिशा पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला, 9 लोगों की मौत की खबर, 33 घायल, 1 दर्जन से ज्यादा धमाकों से दहल गया था शहर। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने रणनीति को लेकर मतभेद हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ईरान पर नए हमलों की तैयारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच अलग अलग राय। कैलिफोर्निया के सैनडियागो में F-35B विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे के बाद घटनास्थल से धुआं उड़ता हुआ देखा गया। गजा के दीर अल बला में शनिवार को इजरायली सेना का बड़ा हमला, अस्पताल के गोदाम को बनाया गया निशाना, पूरा गोदाम जलकर खाक। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने मैनचेस्टर में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत की, हफ्ते में कम से कम 1 दिन नंबर 10 नॉर्थ मैनचेस्टर कार्यालय से काम करेंगे। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते हुए तनाव के बीच पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ने आर्मी ने शनिवार को हुयांगयांग द्वीप के समुद्री और हवाई क्षेत्र का दौरा किया, संयुक्त सैन्य अभ्यास की खबर। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है, कई शहरों में बाढ़ से घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिजली और पानी भी गुल। ग्रीस में तेज हवाओं की वजह से शनिवार को कई इलाकों में तेज से फैल गई थी जंगल की आग, राजधानी एथेंस के पश्चिम में सबसे भयावह हालात। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बाजाकोवो बात्रोवची सीमा चौकी पर भारी ट्रैफिक जाम, सीमा पार करने के लिए वाहनों की करीब 7 किलोमीटर लंबी कतारें। मॉस्को की 100 साल से ज्यादा पुरानी सोवियत दौर की फैक्ट्री को बचाने का अभियान शुरू किया गया, फैक्ट्री को संरक्षित करने वाली 2 ऑनलाइन याचिकाओं पर काम 21,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
4: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
5: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है।
3: गेम्स के बॉक्सिंग रिंग में इस बार भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया है। पहली बार भारतीय मुक्केबाजों ने एक ही गेम्स में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। महिलाओं में प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीतकर तिरंगा बुलंद किया। वहीं पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने शानदार जीत के साथ भारत की झोली में 2 और स्वर्ण पदक डाले। अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि सचिन सिवाच ने रोमांचक मुकाबले में नामीबिया के खिलाड़ी ट्राइगेन को 3-2 से हराया। आखिरी राउंड में लगाया गया सचिन का दमदार पंच उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बना। हालांकि लवलीना बोरगोहेन, जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल फाइनल में अपना जादू चलाने से चूक गए, लेकिन तीनों ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। बॉक्सिंग के अलावा पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉट पुट में सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए, जबकि शुभम जोयाल ने सिल्वर अपने नाम किया। वहीं ट्रैक पर गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही संस्करण में 5000 और 10000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। भारत के खाते में अब 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत 29 मेडल हो चुके हैं और टीम पदक तालिका में 4th स्थान पर बनी हुई है। भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काले नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
5: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
6: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
7: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
8: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
9: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

में शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी से चीख पुकार मची थी। लोगों के मारे जाने की आशंका। पुलिस ने हमलावर को मौके पर मार गिराया। जेंजी पर चढ़ा सियासी पारा। प्रधानमंत्री की माफी देने वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल। कहा पुलिस एक्शन पर छात्रों से माफी मांगे। दीपके ने भी मिलाए सुर। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम। बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर की शिकायत। वाराणसी में साधु संतों ने एफआईआर दर्ज करवाई। कई शहरों में प्रदर्शन। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम। शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर। अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक। बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पंच से 7 गोल्ड।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज वॉर रूम में देखिए कैसे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक युद्ध की नई लपटें एक साथ उठने लगी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब लाल सागर तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही इस संघर्ष में सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। इस पूरे समीकरण को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्षेत्रीय संघर्ष किस तरह वैश्विक संकट का रूप ले रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यूक्रेन युद्ध अब और बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। और साथ ही बात होगी पाकिस्तान की, जहां पीओजेके और बलूचिस्तान से सामने आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं, लेकिन दुनिया की चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। इसी बीच एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ईरान के लिए भेजे जा रहे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर्स की खेप पाकिस्तान के रास्ते जा रही है। शुरू करते हैं वॉर रूम में हर एक विश्लेषण।
1: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की मौत, सैकड़ों घायल होने की खबर आ रही है। विरोध में इस्लामाबाद में प्रदर्शन भी हुआ है। बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए ब्रिटेन के 50 से अधिक सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर तुरंत तनाव कम करने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए मानवाधिकारों की रक्षा की मांग भी की है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालिया हिंसा ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स और प्रदर्शनकारियों के दावों के अनुसार अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोग लगातार मदद और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर लोकतंत्र और मानवाधिकार पर खुलकर बोलती है, वो भी चुप है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे रोटी, बिजली, महंगाई और बुनियादी हक से जुड़ी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और उसके मंत्री आंदोलन के पीछे बाहरी हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। उधर प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। ऐसे में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक असंतोष की कहानी बयां कर रहा है।
1: पीओजेके यानी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें और तस्वीरें लगातार पीओजेके से बाहर आ रही हैं, वो गवाह है कि पीओजेके पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है।
2: शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को, तू फैलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर। यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है।
1: चुनाव के नाम पर फर्जीवाड़ा,
3: प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है इनकी इंक्वायरी की जाए।
1: आजादी के नाम पर गुलामों से बदतर जिंदगी और जानवरों सी मौत। ये है पीओजेके।
4: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
5: इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जहां मर गए हैं आप सब लोग।
1: पाकिस्तानी हुकूमत तानाशाही से भी एक कदम आगे बढ़ गई है। कत्लेआम अब केवल एक तरह से पाकिस्तान के लिए सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। रावलपुर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का खेल खेला जा रहा है।
6: پاکستان ان تمام مظلوم و محروم عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس پار کشمیر کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، یہ وقت ہے اس غلامی کے خلاف کھڑے ہونے کا، یہ وقت ہے سڑکوں پہ آنے کا۔
1: اسلام آباد سے لے کر ترکیہ تک مسلم امت کی بات کرنے والے پاکستان کی حیوانیت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پاکستانی سینا نے مسجدوں کو بھی نہیں بخشا۔ میرپور کی بلال مسجد کے اندر نمازیوں پر گولی چلائی گئی، لوگوں کے ساتھ ساتھ امام عنایت اللہ کا بھی قتل کر دیا گیا۔
7: اب تو یہ آواز آ رہی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس بار بہت بدلاؤ ہے، اور اس بار لوگ کہہ رہے ہیں ہم آر پار کی لڑائی لڑیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان نے 80 سال ان کے ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کیا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن کیے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو کچھ نہیں دیے ہیں، جو 38 پوائنٹ دے رکھے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پہ کوئی بھی انہوں نے کاروائی نہیں کی، بلکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بین کر دیا۔ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے جو کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، پی او جے کے اور گلگت بلتستان جو کہ بھارت کا حصہ ہے، جو اللیگلی اوکیپائڈ کیا ہے پاکستان نے، وہ واپس بھارت میں آئے گا۔
1: پی او جے کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جے اے اے سی کے نیتا سردار امن کشمیری کا آروپ ہے کہ پاکستانی فوج نے کیول 48 گھنٹوں میں 31 عام ناگرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
8: جو پاکستان کی فورسز ہیں انہوں نے بڑی بے رحمانہ انداز میں، ظالمانہ انداز میں 90 عوام پہ جو ہے گولیاں برسائی، جدید اسلحہ کا استعمال کیا گیا اور 90 عوام پہ جو ہے 20 کے قریب ہماری کل شہادتیں ہوئی اور 400 سے اباؤ ہمارے جو زخمی ان کو گولیاں لگی۔
1: 5 جون سے 28 جولائی تک کی رپورٹ کے انوسار پی او جے کے میں حالات بے حد گمبھیر ہیں، 75 لوگوں کی جان چلی گئی، 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے، 200 سے زیادہ اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں اور قریب 800 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔
9: ہمارا یہی پیغام ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے کشمیری موجود ہیں۔
1: جے اے اے سی نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج کے اس دمن چکر کے باوجود ان کا آندولن جاری رہے گا اور وہ اس لڑائی کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔
10: عوام کے ٹیکس پیسوں پہ عیاشی کرنے والے، ساری زندگی اپنی نسلیں پالنے والے ہمارے پیسے پہ، ان سے ہم کہتے ہیں اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو ادھر ہی رکنا، وہاں سے بھاگنا نہیں، آپ کشمیر ہاؤس نہیں جانا، ادھر ہی رکنا، انشاءاللہ تعالی آئیں گے، ایک بھی زندہ رہا ہے تو وہ آئے گا، ادھر تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی، ابھی یہ سفر شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اپنے وطن پہ اپنا راج ہوگا، اپنے وطن پہ۔
1: لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بھارت پر ہی الزام لگا رہا ہے
11: کہ میں ان کو ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کو بریکٹ کرتا ہوں، اسی زمرے میں اجتماع کو شمار کرتا ہوں جس میں ہم ہندوستان کو دشمنوں کی صف میں دیکھتے ہیں، یہ لوگ بھی پاکستان دشمن۔
1: اپنے ہی ناگرک جب روٹی، بجلی اور بنیادی حق کی مانگ کرے اور انہیں دشمن یا بھارتی ایجنٹ کہہ دیا جائے تو سوال سرکار پر اٹھتے ہی ہیں، لیکن پاکستان سرکار کے اس نیریٹو پر سب سے بڑا سوال کسی ودیشی میڈیا نے نہیں بلکہ پاکستان کے اپنے پترکار شہزاد اقبال نے اٹھایا۔
12: اس کو اب یہ جوڑا جا رہا ہے، قلدم کرا دیا گیا اور ان کے تانے بانے ملتے ہیں بھارت سے یا فنڈنگ لے رہے ہیں وہ، تو میرا حکومت سے ایک سوال ہوتا ہے بار بار کہ اس کا علم آپ کو کب ہوا، جب آپ کے ڈائیلاگ جو ہے وہ ناکام ہو گئے اس کے بعد آپ کو یہ خیال آیا؟ کیونکہ میں اگر کسی سے ڈائیلاگ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے پیسے لیے کسی بھارتی ایجنسی سے یا کسی اور ملک سے، تو میں تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کروں گا، تو آپ پھر 2 سال تک مذاکرات کیوں کر رہے تھے ان سے؟ آپ ان کو وقت بار بار کیوں دے رہے تھے؟ آپ نے ان کی 36 ڈیمانڈ کیوں مانی؟ 38 ڈیمانڈ میں سے 36 کیوں مانی ایک ایسے گروہ کی جو کہ فورن فنڈیڈ ہے؟ یہ حکومت جواب نہیں دیتی ہمیں، یا تو بتائیں نا کہ کیا معاملہ ہوا، 2 ڈیمانڈ رہ گئی تو پھر وہ فورن فنڈیڈ ہو گئے، تو 36 کیوں مانی؟
13: یہ شیلنگ اس کو آپ چھوڑ دیں، ہمیں اپنے شہر کے اندر داخل ہونے دیں۔
1: پاکستانی میڈیا کو پی او جے کے کی زمینی حقیقت دکھانے سے روکا جا رہا ہے، جب سرکار سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔
12: جو بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس تو ایگزیکٹ رپورٹس بھی نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ اور میں اس پہ بات نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ وہاں پہ بند تھا کافی عرصے تک. کیا ہم کھل کر اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے جو ہم ویژولز دیکھ سکیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سب یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ شترمرغ کی طرح ہم منہ زمین میں ڈال لیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ باقی کشمیر میں کیا ہو.
14: ایک طرف پی او جے کے میں ہنسا اور مانوادھیکار الگھن کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں, دوسری طرف پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ روٹی بجلی اور بنیادی ادھیکار مانگنے پر انہیں گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے. اب یہ آندولن کیول مانگوں کا نہیں بلکہ ادھیکار کی لڑائی بن چکا ہے.
0: اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے اس حصے کا جو حال میں ہی خود کو پاکستان سے آزاد گھوشت کر چکا ہے. بات ہو رہی ہے بلوچستان کی. پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ آتنکواد کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ کی آڑ میں بلوچستان میں عام لوگوں پر بھی کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا آتنکواد کے نام پر پورے علاقے کو سینیہ ابھیان کا اکھاڑا بنا دیا گیا ہے؟ اور کیوں پاکستان کے اتیاچاروں پر پشچمی میڈیا ایک دم خاموش ہے؟
14: بلوچستان سے جو خبر آ رہی ہے وہ اور ڈراوی. یہاں پاک فوج نے بلوچستان کے مصنوع علاقے میں قریب 140 لوگوں کو آتنکی بتا کر قتل کر دیا. پاک فوج کی یہ بربرتا پورن کارروائی 6 جولائی کو شروع ہوئی. پاک فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کے آپریشن میں آتنکیوں کے کئی ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور بڑی سنکھیا میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. لیکن کہانی کا ایک اور پہلو ہے. پاکستان فوج اور اس کے حکمران نہیں چاہتے کہ اس پہلو کی بات بھی ہو. بلوچ سنگٹھنوں اور مانوادھیکار کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ آتنکواد کے خلاف کارروائی کے نام پر عام بلوچ ناگرکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلوچ گاؤں میں چھاپے ماری, بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور لگاتار سینیہ کارروائی نے لوگوں میں ڈر کا ماحول پیدا کر دیا.
15: بلوچستان کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا, نہ 1947 میں تھا. کلات سٹیٹ ہوتی تھی, وہاں کے اپنے ہیڈ ہوتے تھے, اور بلوچستان کئی ٹرائبلز اس میں بٹا ہوا ہے, اور یہ سارے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اور سوورین یعنی کہ اپنے علاقے میں اپنا راج چلاتے تھے, اور یہ کافی حد تک مانا جاتا تھا. تو یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ الائن یا ان کے کلچر میں مکس اپ نہیں ہوئے. تو اسی لیے بلوچی ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان سے الگ سمجھتے رہے. ان کے دماغ میں یہی رہا کہ ہمارے یہاں سے جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے ایکسپلوائٹ کر کے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے کاپر ہے, چاہے کوئی اور ہے, وہ سب گولڈ ہے, وہ سب پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں بھیجا جاتا ہے, اور ہمیں اس کا کوئی بھی حصہ یا فائدہ نہیں ملتا. اس لیے وہ ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں. سب سے مین ان کا جو ہے یہی ہے.
14: اس آپریشن کی شروعات اس حملے کے بعد ہوئی جس میں 9 پولیس کرمی مارے گئے اور 18 پولیس کیڈٹس کا پہلے اپہرن کیا گیا, پھر ان کی ہتیا کر دی گئی. اس کے بعد پاکستانی سینا نے پورے علاقے میں ابھیان تیز کر دیا. لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس کارروائی میں آتنکیوں اور عام ناگرکوں کے بیچ فرق کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ جو پاکستان بھارت کو لے کر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ آج اپنے ہی شہریوں کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے جو پاکستان کو چاہیے بلوچستان سے؟ سارے سوالوں کا جواب ہے سی پیک, یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. دنیا دیکھ رہی ہے کیسے سی پیک کے نام پر بلوچ زمین کو قبرگاہ بنایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ ڈنڈے کے زور پر آزادی کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا.
15: دیکھو, سی پی ای سی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, یہ اس کا مین مقصد جو چائنا کا تھا وہ تھا کہ ہم اپنا جو راستہ ہے, جو تیل کا راستہ ہے موٹے طور پہ گلف, جو جہاں لڑائی چل رہی ہے آج کی, وہاں سے ملکا سٹیٹ ہوتے ہوئے پیسیفک ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے یہ ان کے پوروی تٹ پہ چائنا کے تیل اترتا ہے, اور وہاں سے ان کے پشچمی باؤنڈری تک لے جانا, زنجیانگ ہے جہاں, بہت ڈسٹینس ہے, اور اس کے بیچ میں کئی جگہ ان کو ڈر لگتا ہے, جیسے انڈین اوشن میں ہے, ملکہ میں ہے, کہ ان کا ये चौक हो सकता है, जैसे आज चौक हुआ हुआ है, कोई भी लड़ाई में चौक हो जाएगा। तो एक अल्टरनेट रूट के लिए उन्होंने गवादार पोर्ट को डेवलप किया। प्रॉब्लम जो आ रही है इंटीरियर कनेक्टिविटी की आ रही है कि जो रास्ते से निकलते हैं वो सारा बलोचिस्तान है, और वो सारे रास्ते में बलोच आज तो BLA है, मजीद ब्रिगेड है, जो ये समझते हैं कि चाइनीज जो यहाँ पे हैं हमें एक्सप्लॉयट करने के लिए हैं, हमारे रिसोर्सेज ले जाने के लिए हैं, और सन्स ऑफ द सॉयल कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसी वजह से चाइनीज बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
14: बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ गैस, कोयला, तांबा और सोने का बहुत बड़ा भंडारण, लेकिन विडंबना देखिए, वहीं के लोग पाकिस्तान में सबसे गरीब हैं। इस बात को समझना है तो पहले हमें फैक्ट और पाकिस्तानी धोखे के नजरिए को समझना है। फैक्ट ये कि 1952 में वहां गैस मिली, लेकिन फायदा किसे हुआ? पाकिस्तानी पंजाब और सिंध को, क्योंकि यही दोनों पाकिस्तान की रूलिंग क्लास हैं, मतलब सरकार किसी की हो, सत्ता में यही जातियां होती हैं, यही क्षेत्र होते हैं। अब समझिए धोखे के एंगल को। 1973 के संविधान में ऐसी चालाकी की गई कि बलूचिस्तान को उसकी अपनी गैस की रॉयल्टी भी कौड़ियों के भाव मिलती है। विद्रोहियों का कहना है कि इस्लामाबाद और वहां की फौज उनके संसाधनों को लूट रही है, बलूचिस्तान को केवल एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आग में घी डालने का काम किया चीन ने, ग्वादर पोर्ट और सीपैक के नाम पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बलोच लोग उन्हें अपनी बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन पर चीन का कब्जा करवाया जा रहा है, और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? केवल मिलिट्री की पाबंदियां। इसीलिए विद्रोहियों ने सीधा चीन के प्रोजेक्ट्स और वहां के वर्कर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। PUJK, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, हर जगह पाकिस्तान घिर रहा है। अब तो उसके गृह मंत्री ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है और हालात बहुत खराब है।
16: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने।
14: लेकिन सवाल है, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? सरकार उनकी, सेना उनकी, फिर इतने सालों में किया क्या? सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपनी ऊर्जा आतंकवाद को पालने में लगाई, जबकि अपने देश के हालात बिगड़ते गए। अब यही सवाल पाकिस्तान की मीडिया भी उठा रही है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इतने साल आखिर करते क्या रहे?
17: मुल्क का निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब ये निजाम नहीं चल सकता। तो भाई आप पिछले 1.5-2 साल से क्या कर रहे हैं? अगर ये निजाम खत्म हो चुका है तो आप घर जाएं, आप वजीर दाखला हैं, आपका जो अपना काम है वो तो आप कर नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें मुल्क की क्या है, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी भी करनी है, फिर वजारत खारजा और सफारतकारी भी करनी है आपने, और फिर आके आप सुबह के ऊपर बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं सियासतदानों के और लोगों को कि जी छोटे सूबे बनाने बहुत जरूरी है, ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता। आप किस हैसियत में ये बातें कर रहे हैं?
14: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम संदेश दे रहे हैं कि जल्द ही हाइब्रिड मॉडल से पाकिस्तान चलेगा।
18: ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये चीजें पॉसिबल करेगा, ये मुमकिनात में ये चीजें हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आएंगी। ये PMLN या मैं या शिवाज शरीफ या कोई बंदा इसको अकेला सॉल्व नहीं करेगा। ये हाइब्रिड सिस्टम की सक्सेस, द ग्रेटेस्ट सक्सेस जो होगी ये होगी कि इस मुल्क में एक रोबस्ट सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का हो, इसमें जो है वो सूबे जो है वो मल्टीपल जो है उनकी मल्टीप्लाई करें, ज्यादा हो, 15 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी हो, ये तो कंसेंसस से होगा ना। ये एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए और ये 4-5 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। फिर ये जो एक नया निजाम आएगा जिसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक वेट रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना वेट रखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली।
14: मतलब साफ है, पाकिस्तान में अघोषित तानाशाही की आहट सुनाई दे रही है, वजह भी साफ दिख रही है। POJK हो, खैबर पख्तूनवा हो, बलूचिस्तान या सिंध, लगभग हर इलाके में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में हालात संभालने के बजाय सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं।
0: POJK और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, हम आपको अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ इकलौते पत्रकार हैं जो कि POJK का हाल अपनी आंखों से देख चुके हैं। क्या यह सिर्फ अशरफ कानून व्यवस्था का संकट है या पाकिस्तान के भीतर गहराता राजनीतिक और सुरक्षा का संकट?
19: बिल्कुल श्वेता, ये दरअसल गहराता राजनीतिक और सुरक्षा संकट पाकिस्तान के लिए शायद इतिहास में सबसे बड़ा। दरअसल पीओके की काफ़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी राजनीति के लिए। वो दशकों से कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से ही राजनीति जो को साधते रहे, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही लगा हुआ है भारत के साथ। तो उस बीच कहीं ना कहीं जो भारत का सालों से और दशकों से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दलील थी, उसमें अब कहीं ना कहीं वजन आता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग अब खुद भारत सरकार और भारत से समर्थन मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की चिंताएं बढ़ा रहा है।
0: अशरफ, अगर हम ऐसे समझना चाहें कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका अवैध कब्जा कहीं से हट जाए, तो क्या वो सिर्फ फोर्स के जरिए, बल प्रयोग के जरिए हर आवाज को दबाना चाह रहा है, या फिर पीओजेके के इलाकों में वो अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता और इसके कई आर्थिक कारण भी हैं?
19: दशकों से पाकिस्तान की एक पॉलिसी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रही थी, बांटो और आपस में उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, लेकिन अब की बार वो जो एक रणनीति पाकिस्तान की है वो पूरी तरह से विफल हो रही है। और अब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट से ये प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जो है फैल रहे हैं, और जिस अंदाज से कल आह्वान दिया था, शुक्रवार को आह्वान दिया था पाकिस्तान की इस अवामी एक्शन कमेटी ने, उसका असर जिस अंदाज से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में देखने को मिला, और जिस अंदाज से अब जम्मू कश्मीर के इसी समय भी मुख्यमंत्री के साथ साथ अलगावादी नेता भी और हुर्रियत नेता भी जो हैं कहीं ना कहीं उनका मुद्दा जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन के साथ खड़े हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जो है मुश्किल होता जा रहा है।
0: क्या वहां पर जो लोग, वहां के जो पत्रकार हैं जो इस मुद्दे को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो प्रेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो आमतौर पर बहुत सीख सबको देता है, वो इसको, इस मुद्दे को उठाए? क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो खामोश क्यों है?
19: श्वेता, दरअसल हमने सदियों से और दशकों से देखा है कि मानव अधिकार को लेकर जिसकी ठेकेदारी ली है दुनिया में, वो अमेरिका ने ली है। अमेरिका ही दुनिया में ये तय करता है कौन मानव अधिकार का उल्लंघन करता है और कौन नहीं करता है, अपने स्वार्थ के अनुसार, जहां पर उसके जो हित हो तो वहां पर वो मानव अधिकार की अनदेखी करता है, और जहां पर उसके हित ना हो, जहां पर उसकी दुश्मनी हो, वहां पर वो मानव अधिकार का जो है नगारा पीटता है। और यही कुछ हाल पाकिस्तान को लेकर भी है। पाकिस्तान को जिस अंदाज से अब की बार एक जो है एक दोस्ती का ढिंडूरा है अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर जो है अनदेखी कर रहा है, और बाकी देश जितने भी वेस्ट के हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप के देश हो, वो अमेरिका के साथ ही हाहिया बनते हैं। इसराइल की सबसे बड़ी मिसाल है, गाजा में जेनोसाइड करने के बावजूद पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, तो वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जिस अंदाज से अमेरिका की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं पाकिस्तान के साथ, ना ही बलूचिस्तान के मानव अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों को नजर आ रहे हैं, और ना ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर।
0: शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वॉर रूम में दुनिया के हर कोने में होती हलचल के साथ लौटेंगे बस इस ब्रेक के बाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
10: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
11: I didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
10: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

और अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में घुसे कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को एयर डिफेंस ने मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमलों का संकेत दिया है। उधर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दो और टैंकर्स उड़ाए और अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि जंग भड़काई तो स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। गाजा में शांति के लिए हमास ने हथियार डालने की पुष्टि कर दी है। पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही बल्कि पूरा इलाका एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर नए हवाई हमले किए। दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल है कि क्या इससे ईरान पीछे हटेगा या जवाब और जोरदार देगा। दरअसल जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अब अमेरिका की बारी है। और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ भारी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त कार्रवाई हुई, जबकि मिस्र के बंदरगाह पर अमेरिकी स्वामित्व वाले गैस टैंकर में धमाके और आग लगने की घटना ने इस संघर्ष को एक नया मोर्चा दे दिया। अब सवाल केवल अमेरिका और ईरान का नहीं, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इन सारे देशों तक फैलता यह संघर्ष क्या पूरे पश्चिम एशिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ धकेल चुका है? क्या ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए जवाबी हमला और तेज करेगा?

0: पश्चिम एशिया में जंग एक बार फिर भड़क उठी। ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की न होके इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र को भी अपने लपेटे में ले रही है। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है।
1: ईरान ने अपने आप एक तरह का इनिशिएटिव लिया कि अब तक तो रिटेलिएट कर रहे थे कि उनके ऊपर अटैक होंगे तब वो अटैक करेंगे, अब उन्होंने कई जगह इधर उधर शुरू कर दिया अटैक करने। जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर हूती से करवाया, हूती भी उनका ही एक एक्सटेंडेड आर्म कहिए, और इजिप्ट के अंदर अटैक हुए जिसको वो कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजिप्ट में हमने अटैक नहीं किया है, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो सारी जगहों में एक्सपेंड हो गया है।
0: अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकाने और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिकी हमलों से ईरान रुकेगा और एक बार फिर बातचीत शुरू होगी, या फिर तेहरान की तरफ से ऐसा पलटवार होगा जो पूरे पश्चिम एशिया को दोबारा युद्ध की आग में झोंक देगा।
1: देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटजी की बात है तो ज्यादातर ऑब्जर्वर इस बात को मानते हैं कि अमेरिका की कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं। वो नेतन्याहू के कहने में आके उन्होंने और अपने ही जो एडवाइजर्स थे उनके खिलाफ जाकर के ये ईरान के ऊपर अटैक किया। दूसरा चीज, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीने के अंदर में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बड़े जल्दी से एक विक्ट्री टाइप चाहिए, तो इसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए आगे या प्रेशर किया जाए ईरान को और ज्यादा।
0: दरअसल इस तनाव की शुरुआत हुई अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अब अमेरिका की बारी है।
2: So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: 28 जुलाई 2026 को अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला किया। इस कार्रवाई में कई लड़ाके और ईरानी सलाहकार मारे गए, और सऊदी अरब पहली बार औपचारिक रूप से इस संघर्ष में शामिल हो गया। अमेरिका का कहना है कि ये हमला ईरानी सेना और उसके सहयोगी संगठनों की उन गतिविधियों का जवाब है जिनसे अमेरिकी सैनिकों, खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा हुआ।
1: पिछली बार जो 10 दिन की लड़ाई चल रही थी उस वक्त में ईरान ने कहा हुतीस को कि भाई आप तैयार रहिए दोबारा से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक देंगे तो आपने वहां बाबल मंदब में या रेड सी में रोकना है सारा ट्रैफिक। अब आप सोच सकते हैं कि सारा मैरीटाइम ट्रैफिक अगर रुक जाए, ऑयल और गैस का जाना बंद हो जाए, खाने पीने की सब चीजों की, फर्टिलाइजर की खपत रुक जाए या वहां से आना जाना, तो उससे कितना बड़ा फर्क ग्लोबल कम्युनिटी को पड़ेगा।
0: वहीं ईरान क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी संगठनों द्वारा अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, जिस वजह से अब सऊदी उसके निशाने पर है। लेकिन इससे निपटने के लिए इराक का मोर्चा खोल दिया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की। इस संघर्ष का एक नया मोर्चा खुला है मिस्र में। मिस्र के एक बंदरगाह पर 2 जहाजों में धमाका हुआ जिसमें एक अमेरिकी स्वामित्व वाला गैस टैंकर भी शामिल था। समुद्री सुरक्षा कंपनियों ने आशंका जताई कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए ईरान पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है। IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तबाह कर दिए और 3 अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया। IRGC का ये भी दावा है कि हमले में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मारे गए। ईरान ने इन हमलों को केश्म आइलैंड पर हमले का जवाब बताया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और फिलहाल किसी स्वतंत्र स्रोत से भी इनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब नए किरदार सामने आए हैं। चीन और पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की एक कंपनी के जरिए ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। दावा है कि करीब 400 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ईरान पहुंचाए जा सकते हैं। रूट बताया जा रहा है चीन का उरुमकी, वहां से पाकिस्तान और उसके बाद बलूचिस्तान के रास्ते ईरान। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो अमेरिका के लिए ये नई चुनौती होगी।
3: President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
2: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, but he knows I'd be quite disappointed.
0: लेकिन अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका जवाब देगा। अब सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के तनाव के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने यहां जगह दी थी। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका एक तरफ ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के संभावित सहयोगियों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अमेरिका की तरफ से जो तमाम बातें की जा रही हैं उस सब के बीच बहुत सारे सवाल इस पूरे स्थिति को लेकर उठ रहे हैं कि युद्ध है, सीज फायर है या फिर क्या चल रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। सुमित, ये बताइए कि अमेरिका जो जवाबी हमले कर रहा है, जो सेंटकॉम की तरफ से कई बार अचानक सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर एक व्यवस्थित तरीके से वो उनकी सैनिक क्षमता को खत्म कर रहे हैं ईरान की?
4: श्वेता, अगर अभी के ताजा हमलों को देखें तो बार बार ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग दी वाटर्स हो रहा है, यानी वो बार बार ये देखना चाहते हैं कि ईरान की क्षमताएं क्या है या ईरान किस एक्सटेंट तक जा सकता है। अभी आपको याद होगा कि 12 से 13 दिन तक फिर दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए थे, बहुत दिनों की सीज फायर के बाद फिर एकदम से अमेरिका रुक गया। अमेरिका ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लगातार बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं। एकदम से हमने फिर देखा 48 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ईरान अगर रिटेलिएट करना चाहे क्या वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रिटेलिएट कर सकता है या अमेरिका को नुकसान गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचा सकता है, रेड सी में पहुंचा सकता है जहां पर हूती हमले कर रहे हैं और यहां तक कि अब मेडिटेरियन सी तक भी इसका दायरा बढ़ चुका है। तो ये टेस्टिंग वाटर्स वाला जो फिनोमिना है वो अमेरिका इसलिए कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि ईरान की जो मिसाइल की रेंज है वो किस एक्सटेंट तक जा सकती है, किस इलाके तक जा सकती है। और शायद इसी वजह से वो बार बार रह रहकर अपने आप देखें कि वो अपनी रीडेवलपमेंट तो कर रहे हैं, रीअसाइनमेंट तो कर रहे हैं चीजों को, नई नई डेवलपमेंट, नई नई चीजों की आप कह सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अपने वेपन्स की, लेकिन साथ साथ वो ये एक्सटेंड भी देख रहे हैं कि इनकी रेंज मिसाइलों की, इनकी ड्रोन की रेंज की किस कैपेसिटी की है।
0: दो चीजें बड़ी अजीब सी हैं, एक कि इसराइल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल शून्य की तरह दिख रहा है, जीरो, वो भी मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी ही हम कह सकते हैं सुमित उसको। और इसके साथ ही जो अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, क्या उसी के जरिए वो अमेरिका को बेहतर जवाब देगा अभी?
4: बिल्कुल, और अगर अभी आप देखें क्योंकि जो पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बदला उसने जरा एक कंसर्न पैदा कर दिया, क्योंकि अब इजिप्ट के पास भी कई जगहों पर ऑयल टैंकर्स को अटैक किया गया और वो भी पोर्ट के आसपास के इलाकों में। तो वो तमाम अटैक जो थे वो जॉर्डन को बाईपास करते हुए, इजराइल को बाईपास करते हुए इजिप्ट की तरफ अटैक किया। तो ये संदेह पैदा किया कि देखिए ईरान के पास वो स्ट्रेटजी है कि वो मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकता है। हूती भी लगातार रेड सी में बड़ा कंसर्न बने हुए, वो भी यूएस के टैंकर्स को अटैक कर रहे हैं या यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तैनाती है। तो अगर आप तीनों स्टेट्स को देखें, तीनों जगहों पर देखें, तो इस समय ये एक्टिव वॉर फ्रंट के अंदर तब्दील हो गया। और आप मानिए कि ईरान सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ एक इलाके में पैदा कर रहा है, वो दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उनको प्रभावित कर रहा है।
0: पर अब सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे जिस तरीके से अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अभी तक जो अमेरिका इसराइल ईरान के बीच जो संघर्ष था, क्या अब यहीं पर इसी क्षेत्र में मल्टी नेशन का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर?
4: देखिए, दो तीन देशों को लेकर तो ईरान बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर या चेतावनियां दे चुका है जो बहुत कड़ी। आईआरजीसी ने 24 घंटे में 3-4 बार अपनी एडवाइजरी, अपनी चेतावनी दी है, जिसमें सऊदी को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने आग्रह किया है या फिर चेतावनी दी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि यूएई को लेकर भी, अभी जो इराक पर हमले हुए जिसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट भी था, जिसमें कहा गया कि जो मिलिशिया जो ईरान को समर्थित थे उन पर अटैक किया गया, मुझे लगता है कि वो ईरान के लिए कंसर्न था कि अगर सऊदी मिलकर भी अटैक करता है इराक के ऊपर या ईरान के ऊपर, तो ऐसे में ईरान उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, इसीलिए इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है। और अभी आप देखिए मौजूदा हालात में IRGC की तरफ से रीमाइनिंग का काम, माइनिंग को दोबारा से डिप्लॉय किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो अमेरिका के लिए कंसर्न था। इसके अलावा आप देखिए कि रेड सी के अंदर हूती के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी गई, और अगर इराक में वो हमले कर रहे हैं उसके पीछे का भी एक कारण है। ये कहा जा रहा है कि पिछले एक महीनों के अंदर इराक के मिलिशिया के पास भी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिनसे वो इजिप्ट, आप कह सकते हैं यूरोप तक को टारगेट कर सकते हैं या फिर यूरोप के कई इलाकों को अपनी जद में ले सकते हैं। शायद ये कंसर्न सऊदी के साथ

0: ये चीजें पूरी दुनिया को क्या संकेत दे रही है, जो अर्थव्यवस्था को अपनी संभालने की कोशिश कर रहा है?
1: देखिए, पूरी दुनिया के लिए तो एक बड़ा कड़ा संदेश है कि अमेरिका इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल, देखिए अभी नेतन्याहू लगातार अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिला, और उसके तुरंत बाद हमने देखा ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ही विकल्प है। नेतन्याहू की तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया कि तीन विकल्प हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से क्लियर हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव था ब्लॉकेड को जारी रखा जाए, दूसरा था कि डील कर ली जाए, तीसरा था कि बड़े ऑपरेशंस किए जाए, और तीनों के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव है दोनों का कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। तो शायद इन तीनों ऑब्जेक्टिव के पीछे इजराइल की मंशा बहुत क्लियर है, वो चाहता है कि ये युद्ध चले ताकि वो अपने कम से कम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले। इससे अमेरिका को क्या बर्डन झेलना पड़ेगा, यूरोप को या दुनिया को, उसको उसकी परवाह दिखती नहीं है।
0: बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।
2: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। वहां के मेयर के मुताबिक 9 लोगों की मौत इसमें हो गई है, 28 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने नेटो पर युद्ध की तैयारी का आरोप लगाते हुए कहा कि यूरोप में 10,000 किलोमीटर लंबे ईंधन नेटवर्क का विस्तार गठजोड़ के आक्रामक इरादों को साफ करता है कि तैयारी जंग की है।
0: रूस यूक्रेन युद्ध भी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। यूक्रेन अब सिर्फ रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ईरान से जुड़े एक जहाज पर हमले ने इस युद्ध को पश्चिम एशिया के संघर्ष से जोड़ने की आशंका बढ़ा दी है। उधर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ऐसे हमले जिनकी आशंका ज़ेलेंस्की पहले जता चुके थे। सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है? क्या ईरान रूस और यूक्रेन के बीच बनता यह नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल देगा?
3: रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज में जाता हुआ दिख रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के अहम शहरों और इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं। ये केवल एक मोर्चे पर बढ़ती हुई जंग नहीं रह गई है, बल्कि अब इस जंग का दायरा भी लगातार फैलता नजर आ रहा है। यूक्रेन ने 27 जून को ईरान के मालवाहक जहाज को हमला करके नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है।
4: ग्रुपिंग्स बनती आपको दिख रही हैं, यूक्रेन और वेस्ट और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज एक तरफ होती दिख रही हैं शायद कुछ, दूसरी तरफ ईरान और रशिया एक साथ होते दिख रहे हैं। उधर याद रखिये रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशियन के साथ युद्ध में एंगेज्ड है। तो समीकरण जो दुनिया के बन रहे हैं, एक बन रहे हैं जैसे वेस्टर्न आप मान लीजिए, दूसरा ये अगर बन रहा है जैसे रशिया ईरान का, ये एक अलग बन रहा है। और इन सब के अलावा एक चाइना का भी तो समीकरण बन रहा है। अब चाइना का समीकरण कितना टाइट है ईरान के साथ कह नहीं सकते, बट चाइना का समीकरण रशिया के साथ तो काफी टाइट है। रशिया की सारी इकोनॉमी इस समय चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो समीकरण बदल रहे हैं और तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस पोटेंशियल दिख रहे हैं इस समय इसी रीजन में।
3: रूस ने भी हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों बढ़ा दी है। कीव, लविव और कई दूसरे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की भारी बारिश हुई। बीते कुछ दिनों में ही रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बना दिया। इन हमलों में यूक्रेन में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। यही नहीं, एक रूसी क्रूज मिसाइल के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने की खबर ने नाटो देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की चेतावनी दे चुके हैं कि रूस बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा है। उनका दावा है कि रूस नई सैन्य भर्ती कर रहा है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को भी मोर्चे पर लाने की तैयारी है। उधर जमीन पर भी रूस लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना सूमी, खारकीव और दोनेत्स्क में आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन की सेना लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, बिजली घरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है।
4: बेसिकली ये जो टकराव है ये हॉरिजॉन्टल रूप से फैल रहा है, राइट? क्योंकि अब जो ये अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर यूक्रेन कर रहा है कैस्पियन सी में, जहां पर ईरान का इंटरेस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। अब ईरान या तो वापस रिटेलिएट

0: करें यूक्रेन के ऊपर, वो मुश्किल है उसके लिए क्योंकि दूर है और ड्रोन मिसाइल वगैरह इसके अभी काफी ओवर फ्लाइंग की प्रॉब्लम है। तो ईरान क्या करेगा, रशिया को और मदद कर सकता है ड्रोन्स देने में ताकि रशिया यूक्रेन के ऊपर और अटैक करे। और उधर यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स या जो भी कुछ ला करके इन्हें गल्फ स्टेट्स को दे रहा है, वो भी तो युद्ध फैल ही रहा है ना। आपस में जितने भी प्लेयर्स इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ईरान की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या एक्सपोर्ट्स की, रशिया की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या रशियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रशियन एक्सपोर्ट्स ब्लैक सी में फंस गए हैं, यूक्रेन उनको डोमिनेट कर रहा है। ये युद्ध का अब एक तरह से कहें डेफिनेटली फैल गया है और फैलने का चांस और ज्यादा बढ़ता दिखता है।
1: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं? क्या रूस ईरान और यूक्रेन के बीच बनता ये नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि अगर यह जंग सीमाओं से निकलकर नए देशों और नए मोर्चों तक फैलती है तो इसके असर पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s। फैमिलियर सॉन्ग्स, इजी मेलोडीज एंड अ साउंड दैट लेट्स यू स्लो डाउन, परफेक्ट फॉर स्टेपिंग बैक एंड कैचिंग योर ब्रेथ। एक्सप्लोर द न्यू स्टिंगरे म्यूजिक कलेक्शन विद स्टेशंस लाइक दिस। Just search Soft Hits to start listening now.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: No.
2: Oh no.
1: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
1: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
2: Oh my God.
3: It's got to be deliciously desperate.
2: Why do these girls forgive him?
4: She has a soft spot for troubled men.
3: Boo bloody.
1: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
2: Love runs deeper than we know.
1: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नशा मुक्ति अभियान में प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से सीधा संवाद, एक साथ 10,000 जगहों से वर्चुअल जुड़ेंगे, 1 करोड़ युवाओं के साथ लेंगे ड्रग्स फ्री इंडिया का संकल्प। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर की शिकायत दर्ज, वाराणसी में साधु संतों ने कराई एफआईआर, कई शहरों में प्रदर्शन। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम, बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम, शनिवार को ओवर से 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर, अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक। बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पन से 7 गोल्ड। और बारिश से त्राही त्राही आधा भारत, गुजरात के सूरत नवसारी साबरकांठा में भारी तबाही, जम्मू कश्मीर में फिर फटा बादल, कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 3 की मौत।

0: जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, गांदरबल के साफापुरा में बादल फटने से अचानक से बाढ़ जैसे हालात। बादल फटने के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी, प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा गया, भारी बारिश के बाद कबिनी बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कर्नाटक के शिवमोगा में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, बारिश के बाद मजदूरों की झोपड़ी मलबे में दबी। हादसे में 3 साल के बच्चे समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, गांदरबल के साफापुरा में बादल फटने से फ्लैश फ्लड। भारी बारिश के बाद कई रिहायशी मकानों में भी पानी भरा, प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। आसमानी आफत का सड़कों पर असर, सैलाब में बदली सड़कें, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालते हुए नजर आए लोग। छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़ में बाढ़ का कहर, 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए, 2 बच्चियों की मौत हुई, कई परिवार प्रभावित हुए। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद जलभराव, श्रीकंदापुरम श्रीनगर पालिका क्षेत्र प्रभावित हुआ। कर्नाटक के मैसूरु में प्रधानमंत्री मोदी के ने रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री बोले, मैसूरु ने देश की संस्कृति और पहचान और परंपरा को संजोकर रखा है। मैसूरु में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया। मैसूरु में जेनजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वागत किया। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की गाली देने वाले जेनजी को माफ करने के बाद प्रधानमंत्री की तारीफ, बताया बड़े दिल वाला। E20 पेट्रोल मामले में गरमाइए सियासत, 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल। केजरीवाल का ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, कहा वही लोग साथ आए जो लाठी खाने के लिए और जेल जाने से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्तों का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत आज से। नशे के खिलाफ हर रविवार देश भर में होगा जागरूकता अभियान, अभियान में 10,000 से ज्यादा स्थानों से जुड़ेंगे युवा। खेल, नुक्कड़ नाटक और साथ ही जागरूकता के होंगे कार्यक्रम, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अब जन भागीदारी पर जोर। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद, प्रधानमंत्री मोदी के माफी वाले बयान पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, कहा एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी के माफी वाले बयान पर कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए उनसे कौन माफी मांगेगा। शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं, इसका फायदा उठाएंगे। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश है, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने NSAG डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। मीडिया से बातचीत से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की बिगड़ गई तबीयत, वॉमिटिंग के बाद घर लौटे। मुंबई में शिवसेना UPT विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में धान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में संत और भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव, शिवलिंग की पूजा करते हुए नजर आए और वीडियो जारी किया, कहा आस्था के नाम पर लूट का विरोधी हूं मैं। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बीजेपी ने और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवा दिया FIR, राहुल गांधी का नाम भी इसमें शामिल है, कई शहरों में प्रदर्शन। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में SSP कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी के मामले में घायल छात्र से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के हंगामे के बाद भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाए। दोषियों की जांच पर सख्त कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस में कलह बढ़ गई है। संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के तहत एक कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगे थे। भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की कांवड़ियों की सेवा। बोले, सेवा हमारी संस्कृति की पहचान है, शिव भक्तों का सम्मान सभी की जिम्मेदारी। और सीधे आपको ले चलते हैं जहां नशा मुक्ति अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यंगस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है, अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से एक साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित छे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है, 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संतगण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं।
3: युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है।
4: नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलोंग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहाँ लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माई भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माई भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार।
5: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
6: ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का, और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बनें।

0: पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक।
1: ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: With Instacart Shopper Notes, you can be specific about what kind of steak you want. Like asking your shopper to get you thick cuts of steak. Bright red, marbling you can see from across the room, a fat cat that knows exactly what it's doing. While you're at it, ask for a cut that can single-handedly carry the cookout on its back. Something so tantalizing, even the neighbor you got beef with asks, what's the secret? Okay, so maybe you can't quite get that specific with Shopper Notes, but you get the idea. Want to get groceries just how you like? Download the Instacart app.
7: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
4: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
3: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा के केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी जिससे अफरा तफरी मच गई।
5: कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है।
4: शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गांव में अचानक बाढ़ आ गई जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशफ वानी के साथ वीर फरीद, श्रीनगर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नशा मुक्ति अभियान में प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से सीधा संवाद, एक साथ 10,000 जगहों से वर्चुअल जुड़ेंगे, 1 करोड़ युवाओं के साथ लेंगे ड्रग्स फ्री इंडिया का संकल्प। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद वानसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज करवाई, वाराणसी में साधु संतों ने कराई एफआईआर, कई शहरों में प्रदर्शन। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम, बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम, शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर, अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक, बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पंच से 7 गोल्ड। और बारिश से त्राहि त्राहि आधा भारत, गुजरात के सूरत नवसारी साबरकांठा में भारी तबाही, जम्मू कश्मीर में फिर से फटा बादल, कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 3 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, और आपको बता दें कि कई करोड़ लोग आज वर्चुअली प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने वाले हैं। नशा से किस तरीके से इंसान, परिवार और समाज को जबरदस्त नुकसान होता है, इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। जीवन शैली में किस तरीके से बहुत ज्यादा बदलावों की जरूरत है, नशा किसी भी तरह का उपाय नहीं है, इसी को लेकर एक बड़ा मेगा प्रोग्राम शुरू किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आज युवा जेंजीज प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं। जो मुख्य संदेश है वो ये कि किसी समस्या का समाधान नहीं है नशा, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच। एक जागरूकता युवा ही मजबूत भारत का निर्माण कर सकता है, और नशे को न कहना ही सबसे बड़ा साहस है।
1: आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन, करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तैयार किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलेंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन

नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है, आपको ध्यान रखना है। ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराया न पिछाणे, खस बहू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उन

0: का सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं, आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते, जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं, मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं, आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है, पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे, दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं भाई भारत के वॉलेंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलेंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता है, जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं, वहां जाकर के आए। उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलेंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, करोड़ों स्टूडेंट्स ने इसमें, जेंजीज ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसका उन्होंने धन्यवाद दिया। और उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया कि अगर युवा ठान लें तो वो कर दिखाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि पूरी तरह से भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk, so you don't miss a second of the action.
5: They score.
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, माँ की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी माँ की गाली देना इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन प्रधानमंत्री जी। सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे, कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया
1: देखिए, प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है। कल के उनके वीडियो संदेश पर फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, प्रधानमंत्री जी को मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई, आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों, देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री।

नशा मुक्ति अभियान में प्रधानमंत्री मोदी का जंजीर से सीधा संवाद, एक साथ 28,000 जगहों से वर्चुअल जुड़े 1 करोड़ युवाओं के साथ ड्रग्स फ्री इंडिया का संकल्प, 100 हफ्ते का टारगेट। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद वाले ड्रामे का मामला थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज कराई, वाराणसी में साधु संतों ने कराई FIR, कई शहरों में प्रदर्शन। कुलगाम आतंकवादी हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर संग्राम, बोले जब हम करते हैं पूर्ण राज्य की मांग तभी चलती है गोली, बीजेपी ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दिखाया दम, शनिवार को बरसे 16 पदक से मेडल टैली में चौथे नंबर पर भारत, अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक, बॉक्सिंग में बेटियों का गोल्डन पंच से 7 गोल्ड। और बारिश से त्राही त्राहे आधा भारत, गुजरात के सूरत नवसारी साबरकांठा में भारी तबाही, जम्मू कश्मीर में फिर से फटा बादल, कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 3 की मौत।

एक दिन में आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं? 10, 20, 25, पर अगर बिना रुके, बिना बैठे या बिना आराम किए, बिना कुछ भी खाए, नंगे पांव कंधे पर वजन उठाकर कितनी दूर तक आप चल सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज ये अविश्वसनीय सवाल आपसे पूछने की वजह है सावन के महीने की शुरुआत और सावन में कांवड़ की अद्भुत परंपरा। क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्वी राज्यों में डाक बम का ऐसा प्रचलन है जहां एक भक्त 24 घंटे से कम समय में 105 किलोमीटर की यात्रा कंधे पर कांवड़ के साथ पूरी करता है, बिना रुके, बिना कुछ भी खाए, बिना सुस्ताए, अकेले। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, वो हम आपको बताएंगे और सावन के महीने में अपने साथ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कांवड़ यात्रा कराएंगे।

0: अलग अलग, अंदाज अलग अलग, शहर अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक, महादेव। रास्ते आस्था के पवित्र पथ बन जाते हैं, भक्त खुद श्रद्धा का रूप बन जाते हैं। ये है सावन के महीने में भोले के भक्तों की कावड़ यात्रा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत धार्मिक यात्रा, जिसके हर कदम पर कोई ना कोई अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यता है।
1: बाबा का असीम कृपा है हम लोगों को, 5 साल से आ रहे हैं लगातार।
2: बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेंशन फ्री लग रहा है, यहाँ किसी चीज का टेंशन नहीं है।
3: हम 350 किलोमीटर हरियाणा में जाएंगे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार से कावड़ उठा के।
0: अविश्वसनीय है, 24 घंटों के अंदर डाक बम कांवड़ यात्रियों का 105 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर तय करना।
4: हम लोग लगभग 22 किलोमीटर आ चुके हैं।
5: हर की पौड़ी से हम कावड़ उठाए और बड़ेसर धाम सिक्कर, जो राजस्थान में मशहूर है बड़ेसर धाम, वहाँ पर हमारी कावड़ चढ़ेगी।
0: अकल्पनीय है, नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर कंधों पर कावड़ लेकर आस्था के नियमों के अनुसार चलना। लेकिन अद्भुत है, शिव भक्तों को शरीर के सहने की सीमाओं को तोड़ते हुए जलाभिषेक की तपस्या करते हुए देखना। कोई निकल पड़ा है महादेव का जलाभिषेक करने, दंडवत मुद्रा में सैकड़ों किलोमीटर लौटते हुए चलने के लिए। कोई निकल पड़ा है कावड़ को कंधे पर रखकर हजारों किलोमीटर तक बिना रुके, बिना आराम किए, बस चलते रहने के लिए। न कोई टिकट, न कोई तय आयोजन, लेकिन करोड़ों शिव भक्त निकल पड़ते हैं अद्भुत अनुशासन के साथ उस यात्रा पर, जो जितनी अद्भुत है उतनी ही चमत्कृत करने वाली थी।
6: आज से 10-12 साल पहले कावड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं, भोले बाबा की फुल कृपा जी।
7: और यहाँ पर आने से मेरी बहुत सी मनोकामना सिद्ध हुई है और मैं यही कामना करूंगा कि जो भी यहाँ भक्त आते हैं, मन से भाव से आए और जल अर्पण करें और बाबा का स्मरण करें, तो उसकी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए।
0: नमः पार्वती पते। हम बताएंगे कि वो कौन थे जिन्होंने उठाई थी पहली कावड़। हम बताएंगे कि क्या है बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक की अद्भुत महिमा। हम बताएंगे कि क्यों सावन में हर शिवालय महातीर्थ बन जाता है। हर, हर महादेव। सबसे पहले सबसे अकल्पनीय परंपरा के बारे में बताते हैं जो बिहार झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। यूं तो बाकी हिस्सों में भी डाक कांवड़ की परंपरा है जो 24 घंटे में पूरी करनी होती है, लेकिन वहां एक समूह यानी एक ग्रुप साथ रहता है। पर बिहार झारखंड में एक अकेला महादेव का भक्त, जिन्हें कहा जाता है डाक बम, ये भोले के वीवीआईपी भक्त होते हैं।

0: बाबा के बुलावे पर दौड़े चले जा रहे हैं। पांव में कंकड़ चुभे तो भी जय शिव शंकर, पांव में छाले पड़े को तब भी जय शिव शंकर। बिहार झारखंड के बीच सावन के महीने में आस्था की ये ऐसी अद्भुत तस्वीर है जो संसार में कहीं और नहीं मिलती। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करना है, वो भी 24 घंटों के भीतर। इस बीच 105 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, वो भी बिना रुके, न नींद न भूख न पल भर आराम, न दौड़ने की गति जरा भी धीमी। ये है विश्व की सबसे अनोखी भक्ति का अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय रूप, डाक बम। 24 घंटों के अंदर 105 किलोमीटर की यात्रा, नंगे पांव तय करनी है, रास्ते में पड़ने वाली जलेबिया पहाड़ की खड़ी चढ़ाई भी हौसले तोड़ नहीं सकती, सुइया पहाड़ के सुई जैसे चुभने वाले नुकीले पत्थर पैरों को लहूलुहान तो कर सकते हैं, लेकिन महादेव के प्रति भक्ति के भाव को जरा भी डिगा नहीं सकते। इसी विश्वास के साथ डाक बम कांवड़िए ये असाधारण अकल्पनीय आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं।
1: डाक बम की विशेषता यही है कि जाकर के आपको सुल्तानगंज में जाह्नवी गंगा उत्तरवाहिनी से जल लेके 24 घंटे के अंदर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करना है। ये बहुत ही कठिन यात्रा है, भूख पिशाब पैखाना सब कुछ रोकते हुए आपको वहां पहुंचना है, और जो यात्री सफलता पूर्वक इस कर्म को कर लेते हैं उनकी हर एक मनोकामना बाबा बैद्यनाथ पूरा करते हैं बाबू। ये महत्व है इसका, और ये सबसे संभव नहीं है। जाने का तो हजारों रोज जाते हैं डाक बम, लेकिन कुछ व्यक्ति ही, कुछ यात्री ही जा करके सक्सेस हो पाते हैं।
0: कहा जाता है कि डाक बम के कांवड़िए यानी वो भक्त जिन्हें स्वयं महादेव बुलाते हैं, भक्त भगवान का संदेशा पाकर दौड़े चले जाते हैं और जलाभिषेक कर अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। ये पूरी यात्रा अद्भुत धार्मिक मान्यताओं का विराट रूप है।
2: मन में जो आदमी अपना संकल्प करता है कि हमारी मनोकामना को भगवान पूर्ण कर दे, शंकर भोलेनाथ पूर्ण कर दे, तब हम डाक जल चढ़ाएंगे। उनके माता पिताजी ने कबूल किया था कि हम डाक जल को हमारा पुत्र चढ़ाएगा, हम चढ़ाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लोग डाक जल को प्रदान करते हैं, बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं ले जाकर के, और डाक जल देने से मन स्थिर हो जाता है।
0: डाक बम की कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थापित अजगैबीनाथ प्राचीन मंदिर से और समाप्त होती है देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के साथ। अजगैबीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो त्रेता युग के समय से है। अज का अर्थ अजन्मा, गैबी का अर्थ अदृश्य और नाथ का अर्थ स्वामी, यानी अनंत अविनाशी अदृश्य शिव का स्थान। जहाँ ये मंदिर है वहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। वाराणसी के अलावा सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है। भगवान शिव को उत्तर दिशा का स्वामी भी माना जाता है। सावन में भक्त इसीलिए सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरते हैं, और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बिहार झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, तो वही जल चढ़ाते हैं। डाक बम कांवड़ की मान्यताएं और संकल्प यदि अद्भुत लग रहे हैं तो आपको इसके अविश्वसनीय और अकल्पनीय पहलू से भी परिचित कराते हैं। खेलों में लंबी दूरी का जो मैराथन रेस होता है उसमें एक एथलीट को 42 किलोमीटर तक दौड़ लगानी होती है। खिलाड़ी रास्ते में एनर्जी ड्रिंक्स पी सकते हैं। वहीं एक डाक बम गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर लगातार दौड़ता है। अगर वो रास्ते में कुछ खाएगा या पिएगा तो कांवड़ अशुद्ध हो जाएगा। रुकना, थकना, यहाँ तक कि शॉट जाना भी मना है। और कांवड़ इंसान या जानवर किसी के शरीर को छू भी गया तो तपस्या बेकार। मुजफ्फरपुर की अब रिटायर्ड शिक्षिका कृष्णा बम ने लगभग 4 दशक तक डाक बम के रूप में जलाभिषेक किया। एक समय में वो एक लौती महिला होती थी जो 105 किलोमीटर की यात्रा करती थी, और वो भी केवल 17 से 18 घंटों में पूरा कर लिया करती थी, यानी हर घंटे करीब 6 किलोमीटर दौड़ते हुए वो चलती। अब वो 74 साल की हो चुकी हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन डाक बम के रूप में शिव भक्ति को लेकर उनका उत्साह आज भी अद्भुत है।
3: से 24 तक सावन के प्रत्येक सोमवारी 42 वर्षों तक 16 घंटे में सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम डाक कामर के रूप में अनवरत चलकर बिना रुके हुए पैदल चढ़ाती रही हूँ। अभी भी मैं विल पावर से स्ट्रांग हूँ। शारीरिक रूप से दोनों घुटना तो टूट गया मेरा, यही रास्ते में ट्रेन में जाने में एक आदमी तोड़ा एक और रास्ते में, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है कि मैं उसी से चलती हूँ।
0: 24 घंटों के अंदर ही जलाभिषेक करने की बाध्यता के पीछे भक्तों का संकल्प होता है, जो अद्भुत हठ योग और तपस्या का रूप है। यदि कोई इस तय समय में जलाभिषेक न कर पाए तो उसका संकल्प टूट जाता है। भोले शंकर के भक्त किसी भी कीमत पर अपने संकल्प को टूटने नहीं देना चाहते, इसीलिए जल चढ़ाते समय बाकी भक्तों के लिए भले ही अलग व्यवस्था हो, लेकिन डाक बम के लिए एक VVIP रूट खुला होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये भगवान भोले के VVIP भक्त हैं।
4: डाक बम नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो 24 घंटा उनका पैर चलते रहना चाहिए। डाक बम का नियम है जैसे कि आप यहाँ से जल जो उठाइएगा, आपको जो पर्ची मिलता है, पर्ची के अनुसार अगर आप जल उठाते हैं तो वह 24 घंटा के अंदर जल आपको चढ़ाना है। अब पैर आपका कदम चलते रहे, पैर रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका पैर रुक गया तो वह जल बेकुंठी हो जाएगा, वह डाक नहीं रहेगा। या 24 घंटा के बाद आप अगर देवघर पहुंचते हैं तो वह जल बेकुंठी हो गया, वह डाक जल नहीं रहा।
0: डाक कांवड़ लेकर भक्त देश के दूसरे हिस्सों में भी निकलते हैं, जैसे हरिद्वार से पलवल लगभग 250 किलोमीटर, हरिद्वार से नीमराना करीब 200 किलोमीटर। लेकिन बिहार झारखंड के डाक बम से अलग ये अकेले कांवड़ नहीं होते, बल्कि कांवड़ियों की पूरी टीम होती है जिसमें एक से अधिक कांवड़िए होते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसे लेकर भागता है, टीम के बाकी कांवड़िए तब तक गाड़ी में सवार होकर आगे चलते हैं। पर ये भोले की भक्ति की शक्ति ही है कि इतनी लंबी दूरी तक उमस भरे मौसम में नियमों का पालन करते हुए डाक कांवड़ कठिन यात्रा पूरी कर पाते हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों कांवड़िए जहां पहुंचते हैं, यहां की भी अद्भुत कहानी हम आपको सुनाते हैं। यहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही प्रांगण में है, यानी शिव और शक्ति एक साथ। यहां शिवजी का त्रिशूल नहीं, शिखर पर पंचशूल है। यह धाम अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।

0: प्रत्येक डाक बम की मंजिल है बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां पहुंचने की इच्छा उनके रास्ते की हर बाधा को हर लेती है। अद्भुत है ऐसी आस्था जो भक्तों के कठिन व्रत के कारण उन्हें भी देव तुल्य बना देती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि ऐसी आध्यात्मिक भूमि है जहां हर पत्थर और हर जयकारे के पीछे हजारों साल पुरानी मान्यताएं हैं। विश्व में ये एकमात्र शिवधाम है जहां शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल होता है। अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है महादेव की यहां महिमा, जहां शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। अविश्वसनीय है यहां के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा, जिसने देवघर को महातीर्थ बना दिया। बाबा के दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल सावन के महीने में मंदिर की छटा ही कुछ और हो जाती है। लाखों कांवड़िए 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पैदल चलकर गंगा जल से बाबा का अभिषेक करने पहुंचते हैं।
1: अमृत वाणी है शिव शिव शिव शिव हो।
2: गंगाजल लोग बहते हैं उत्तरवाहिनी सुल्तानगंज से लेके चलते हैं, पांव पैदल इसको लेके बाबा बैद्यनाथ तक आते हैं, फिर इसका यहाँ संकल्प होता है, फिर जलाभिषेक शंकर जी के ऊपर किया जाता है। ये रावण के द्वारा लाए गए हैं और रावण ने ही सावन में पहला कांवर लाके यहाँ चढ़ाया हुआ था, इसी वजह से यहाँ का महत्व ज्यादा होता है। शिव के भक्तों में सबसे ऊपर है रावण, इसीलिए उनके नाम से रावणेश्वर बैद्यनाथ भी रखा गया है और सावन का जो महत्व है उन्हीं के द्वारा कांवर पहला लाके यहाँ चढ़ाया गया।
3: बाबा का मानता है कि जो मुराद मांगे वो सब पूरा होता है, बाबा देते हैं, सामर्थ्य दिए हैं, आते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। बाबा की नगरी है, बहुत सौभाग्यशाली लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग धन है, हम लोगों का बाबा हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग इनके शरण में आए हुए हैं। बाबा हम लोग सारे लोगों की पूरे विश्व का कल्याण करे और हम लोग की मनोकामना पूर्ण करे, यही बाबा से बार बार निवेदन है।
0: बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है बल्कि ये उन दुर्लभ तीर्थ में है जहां ज्योतिर्लिंग और आदि शक्तिपीठ एक ही परिसर में है।
4: ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, यहाँ पे माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, इसलिए इसको हृदय पीठ भी कहते हैं, शक्तिपीठ भी है।
0: एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर आदि शक्ति, यानी शिव और शक्ति एक साथ। भक्तों के लिए ये विशेष है कि शिव जी की पूजा के साथ शक्ति की आराधना भी हो जाती है, एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है।
4: पूरा बाबा धाम ही नहीं, सारा ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के सारे ज्योतिर्लिंग में एकदम शिवमय हुए लोग रहेंगे। और बाबा बैद्यनाथ जी से हम सभी तीर्थ पुरोहित यही मनाते हैं कि जो जो कामना लेके आप लोगों के दरबार में भगवान आते हैं, हमारे भक्त सारे, उनकी सारी मनोकामना आप पूर्ण करें और सबों को खुश रखें, आनंद में रखें, यही कामना के साथ हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।
5: बाबा बैद्यनाथ की नगरी में गेरुआ केसरिया पूरे मंदिर में मर चुके हैं, सुल्तानगंज से पैदल जाने लाने वाले भी पैदल जल लेके आ रहे हैं और जो वाहन से आते हैं वह भी अपने अपने गंतव्य स्थान से बाबा बैद्यनाथ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। भीड़ भी प्रचंड है, भीड़ में भी कोई नमी नहीं है और रहना भी चाहिए, सावन का मेला है।
0: देवघर वो पवित्र स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था।
5: माता सती का हृदय गिरा यहाँ पे, शक्तिपीठ है, उसी जगह विष्णु भगवान ने लाकर उनको स्थापित किया यहाँ, इसीलिए शिव पार्वती का विशेष पूजन गठबंधन होता है।
0: बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अन्य शिव धामों में से एक और मायने में अलग पहचान रखता है। हर शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के शिखर पर त्रिशूल नहीं पंचशूल स्थापित है।
2: जो है ना ये पंचशूल ही सब जगह दिया जाता है, यहाँ त्रिशूल नहीं है कहीं। इसका अर्थ है कि पांच कोस तक यहाँ कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकता, जिससे ये पंचशूल रक्षा करते हैं।
6: ये बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसके शिखर के ऊपर में चंद्रकांत मणि लगाया गया है और मंदिर के ऊपर में जो गुंबद है उसमें अष्टकमल है, आठों देवी देवताओं के पूरक है। चंद्रकांत मणि से मिनटों में जल की धारा बहती है जो डायरेक्ट बाबा के सर पर गिरती रहती है। यह प्राचीन काल से रावण के द्वारा ही तभी से लगाया गया है और अभी तक ये विराजमान है।
0: ये पांच नुकीले शूल पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे इंसानी शरीर बना है। ये पांच तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, और पंचशूल इंसानों के पंच विकारों को नष्ट करने का भी प्रतीक है, जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या माना गया है।
3: बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, पर हर साल हम लोग आते हैं और बाबा बुलाएंगे तो हर साल आए, हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आएंगे, बाबा बुलाते रहेंगे। तो
7: बाबा जो भी मांगते हैं, बाबा जो है सारी इच्छाएं हम लोगों की पूरी करता है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और इस साल भी आए हैं। हम लोगों की आत्मा जो है आज पूजा करके तृप्त हो गई, हम लोगों को बाबा से जो है मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बाबा की ही देन है कि वहाँ से हम लोगों को यहाँ खींच लाते हैं और हम लोग अपना पूजा पाठ करके जो है सालों भर खुश रहते हैं।
0: देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग युगों पुराना है और तब से ही भक्तों के लिए तीर्थ है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं वैद्य बने यानी डॉक्टर, और उन्होंने रावण के सभी सर फिर से जोड़ दिए। तभी से भगवान शिव का एक नाम पड़ा बैद्यनाथ, यानी रोग हरने वाला, जीवन देने वाले महादेव। बाबा बैद्यनाथ देवघर में कैसे स्थापित हुए इसकी मान्यता भी अद्भुत है।
8: रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार ऐसी कथा मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों में कि वो हिमालय जाकर के कठोर तप करते हैं और रावण को दशानन भी कहा जाता है, उनके 10 सिर थे, तो एक एक सिर काट करके शिव चरणों में अर्पित करते हैं। जब 10वां सिर रावण काटने लगते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के रावण के सामने आ जाते हैं और रावण से पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो रावण कहता है उनसे कि आप लंका चलिए, मैं आपको अपने स्थान लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो हमारा स्वरूप है शिवलिंग जिसको तुम लंका ले जाना चाहते हो, उसका नाम था कामना लिंग। तो कामना लिंग को रावण लंका ले जाना चाहता था, तो भगवान शिव ने कहा कि इसे कहीं जमीन पर रखना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। रावण ने कहा बिल्कुल प्रभु, कहीं नहीं रखेंगे। और रावण उस कामना लिंग को लेकर के चला। तब देवता परेशान हुए कि रावण तो भगवान शिव के स्वरूप को लेकर के जा रहा है लंका। तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी चिंता जताई, तो भगवान विष्णु ग्वाले का रूप धारण करके रावण को रास्ते पर मिले और प्रभु प्रेरणा से रावण को बहुत तेजी से लघु शंका आई, बहुत तीव्र। तो रावण ने ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु को देखा और उनसे कहा कि थोड़े समय के लिए तुम ये शिवलिंग पकड़ लो, इसे जमीन पर मत रखना, मैं लघु शंका करता हूँ। तो रावण लघु शंका करने गया, भगवान विष्णु जो ग्वाले के रूप में थे उन्होंने शिवलिंग को रखा, लेकिन वो शिवलिंग बहुत भारी था और भगवान ने उसे जमीन पर रख दिया। और जब रावण लौट कर आया तो देखा, भैया तुमने ये क्या कर दिया? बोले बहुत भारी था, मैं संभाल नहीं पाया। और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, वही जो है बैद्यनाथ धाम है, आजकल झारखंड में वो स्थान है बैद्यनाथ धाम, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है।
0: भक्तों को विश्वास है कि बैद्यनाथ धाम में शिव जी साक्षात रूप में विराजे हैं और वहां जलाभिषेक का पुण्य उनके हर कष्ट को दूर कर देगा। अब हम आपको समय में पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि सड़कों पर एक महीने तक जो लाखों लोगों को कांवड़ यात्रा करते हुए आप देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, या इसका संबंध श्रवण कुमार की सेवा भावना से है, या फिर इसकी जड़ें समुद्र मंथन के समय से मानी जाती हैं? आखिर क्यों कांवड़ यात्रा को कोई पारंपरिक यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत रूप माना गया है?

0: कब शुरू हुई, ये यात्रा कितनी प्राचीन है, किसने उठाई थी पहली कांवड़, इन सवालों के जवाब कई प्रचलित मान्यताओं में मिलते हैं। कहा जाता है पहला कांवड़िया रावण था और रावण ने हरिद्वार से जल भरकर बागपत जिले के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। समुद्र मंथन का विष भगवान शिव ने पी लिया था तो विष के असर को कम करने के लिए रावण ने जल चढ़ाया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था, तो उसके बाद से ही ये परंपरा बन गई जो अब तक शिव भक्तों द्वारा कायम।
1: भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे नंबर के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने आजकल जो उत्तर प्रदेश का बागपत का इलाका है वहाँ पूरा महादेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में गढ़ मुक्तेश्वर से, जिसे आजकल ब्रज घाट भी कहते हैं, वहाँ से जल ला करके, गढ़ मुक्तेश्वर से जल ला करके पूरा महादेव को अर्पित किया था और कावड़ का प्रयोग किया था। तो इसलिए कुछ जो धर्म के जानकार हैं भगवान परशुराम को पहला कावड़िया मानते हैं।
0: यहाँ पूरा महादेव मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी समझा देते हैं। कहा जाता है कि जहाँ आज पूरा महादेव मंदिर है उसे कभी कजली वन कहा जाता था। कजली वन में भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका रहती थी। बाद में भगवान परशुराम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया और स्थान का नाम शिवपुरी रखा, जो धीरे धीरे शिवपुरा और फिर सिर्फ पुरा रह गया। महादेव का मंदिर होने के कारण इसे पूरा महादेव कहा जाने लगा।

एक मान्यता ये भी है कि अयोध्या के राजा बनने के बाद श्री राम ने अपने चारों भाइयों के साथ सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलाभिषेक किया था, जिसके बाद से ये क्रम अनवरत जारी है।

0: कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि श्रवण कुमार ने कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा की और इस दौरान जलाभिषेक भी किया। तब से ही कांवड़ और जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई।
1: श्रवण कुमार की जो कथा है वो बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें, तो श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाई, एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ पिताजी को बिठाया और उन्हें हरिद्वार ले गए, गंगा स्नान कराया और लौटते समय वहाँ से गंगा जल लेकर के आए थे और फिर शिव मंदिर में अभिषेक किया था। तो श्रवण कुमार को भी कांवड़िए के रूप में देखा जाता है।
0: सामान्य तौर पर कांवड़िए गंगा नदी के करीब स्थित ज्योतिर्लिंग और प्रचलित मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। उत्तर भारत के लोग इस जल को मेरठ में पड़ने वाले मंदिरों जैसे मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर, बागपत के पुरा महादेव मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में चढ़ाते हैं। वहीं अवध क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जल को बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा में जलाभिषेक के लिए दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, एक देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम, दूसरा काशी में बाबा विश्वनाथ धाम। झारखंड के दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी कांवड़ियों का तांता लगा रहता है। कांवड़ियों का लक्ष्य एक होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक। लेकिन जैसे उनके तरीके अलग अलग होते हैं, उसी तरह कांवड़ भी अलग अलग तरह की होती है। ये अलग अलग तरह की कांवड़ अलग नियम और तपस्या का प्रतीक होती है और इसी के साथ जुड़ी होती है हर कांवड़िए की अलग कठिन साधना।

अद्भुत होता है वो दृश्य जब केसरिया बाना पहने हजारों लाखों शिव भक्त जयकारों के साथ सड़कों पर निकलते हैं। दूर से एक ही रंग में रंगे प्रतीत हो रहे कावड़ यात्री अलग अलग संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग संकल्प के कारण ही कावड़ के भी अलग अलग रूप नजर आते हैं। कावड़ रंग रूप आकार में कई तरह की हो सकती है, लेकिन कावड़ यात्रियों के संकल्प के अनुसार मुख्य रूप से ये चार तरह की होती है, जिनमें बिना रुके सीमित समय में जलाभिषेक वाली डाक कावड़ भी शामिल है। डाक कावड़ के अलावा एक होती है सामान्य

0: इसमें भक्त जल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें कावड़ यात्री बीच में आराम भी कर सकते हैं और सीमित रूप से कहीं कहीं वाहन का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि यात्रा का अधिकांश भाग पैदल ही तय करना होता है। इस कावड़ का सख्त नियम होता है कि इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा। भक्तों को बारी बारी से इसे कंधों पर लेकर ही चलना होता है। जब कोई कावड़ यात्री आराम करता है तो उसका कोई साथी उसकी कावड़ को अपने कंधे पर लेकर चलने के अंदाज में हिलाता रहता है। बेहद कठिन और शरीर को पीड़ा देने वाली कावड़ होती है डांडी कावड़। इसमें कावड़ यात्री गंगा के तट से शिवालय तक दंड बैठक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। साथी उनका जल लेकर साथ में चलते हैं। कई बार इसमें हफ्ते भर से अधिक समय भी लग जाता है। कावड़ यात्रा के कई अद्भुत पहलू ऐसे भी हैं जो सदियों पहले चलन में थे और कई श्रद्धालु आज भी उनका पालन करते हैं। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोग या उनके पुरोहित गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुख तक पैदल जाते थे और इन पवित्र स्थलों से जल लेकर वापस लौटने के बाद जलाभिषेक करते थे। उन्हें भी कावड़ियां कहा जाता था। आज भी राजस्थान के चुरू, पाली, सीकर, अलवर जैसे क्षेत्रों में ये परंपरा जारी है। कावड़ यात्रा एक रूप से पूरे भारत को एक रूप में पिरोने का प्रतीक भी होती है। कई शिव भक्त उत्तराखंड के गोमुख से जल लेकर पैदल निकलते थे, जिन्हें कावड़ियां कहा जाता था। ये कावड़ यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करते थे और रामेश्वरम द्वीप पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होती थी। इसमें 5 से 6 महीने लग जाते थे। आज भी कई शिव भक्त पूरे मनोभाव से इस तरह की कावड़ यात्रा करते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? पौराणिक इतिहास और परंपराएं हम आपको बता ही रहे हैं, पर नई पीढ़ी के कई सवाल होते हैं। ऐसा करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों करना है? तो चलिए हम आपको इन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन को पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का महीना माना गया है। शिव आराधना को समर्पित इस महीने में कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जिनका आधार धार्मिक तो है ही, वैज्ञानिक रूप से भी उन्हें समझा जा सकता है। सावन के महीने में ये मान्यता है कि नॉनवेज खाना यानी कि मांसाहार नहीं किया जाता, साथ ही शराब भी नहीं पिया जाता। तो ऐसा क्यों? इसका धार्मिक कारण यह है कि भगवान शिव की आराधना के लिए सात्विक और संयमित आचरण होना चाहिए। वैज्ञानिक कारण यह है कि आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिससे पेट के रोग हो सकते हैं। साथ ही इस मौसम में बैक्टीरिया अधिक तेजी से बढ़ता है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इस महीने में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और शराब शरीर में जल संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द, किडनी आदि पर बुरा असर अधिक होता है।
1: मांस और मदिरा तामसिक चीजें हैं, इनको सेवन करने से व्यक्ति का जो सत्व तत्व है वह कम होता है और इसमें व्यक्ति को इस मास में सात्विक रह करके भगवान शिव का पूजन करना होता है, इसलिए इसमें मांस और मदिरा का सेवन वर्जित किया गया है।
2: जो मीट होता है वो डाइजेशन वाइज टफ होता है हमारे डाइजेशन के लिए, इसलिए उसको पहले हम लोग कुकर वगैरह में पकाते हैं, तो इस समय हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव पावर होता है वो वीक होता है। वर्षा ऋतु में अग्नि हमारी कमजोर होती है। अल्कोहल को तो आयुर्वेद ने कहा है कि उसका सेवन नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि वर्षा के बाद शरद ऋतु आने वाली होती है और जो मध्य होती है वो अम्ल गुण युक्त होती है।
0: सावन में अधिकतर लोग दाढ़ी बाल नहीं कटवाते, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? धार्मिक कारण ये है कि शिव भक्ति के लिए सांसारिक बनावट से दूर रहने के लिए इसे तपस्या की तरह समझा जाता है। भगवान शिव स्वयं जटाधारी हैं, तो लोग श्रद्धावश भी ऐसा करते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि माना जाता है कि बारिश के महीने में फंगल इन्फेक्शन और त्वचा संबंधित बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। बाल प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करते हैं।
1: चूंकि व्यक्ति पूरे श्रावण मास भर जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए क्षौर कर्म वर्जित है, इसी कारण दाढ़ी बाल बनवाने के लिए लोक में परंपरा में उसका निषेध किया गया है।
2: हमारा वातावरण बहुत हॉट होता है और ह्यूमिड भी होता है, ये ऋतु फंगल ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी वृद्धि इसमें बहुत होती है, तेजी से वो स्थानांतरित भी होते हैं, तो इस समय तो इनका बढ़ना होता ही है। शरीर हमारा गीला रहता है, बाहर गर्मी रहती है, पसीने से हम गीले रहते हैं, तो सामान्यतः देखा भी जाता है कि फंगल इन्फेक्शन इस ऋतु में बढ़ते हैं।
0: कुछ लोग सावन भर प्याज और लहसुन का प्रयोग भी बंद कर देते हैं, उसकी वजह भी जान लीजिए। धार्मिक कारण यह है कि प्याज लहसुन को तामसिक और राजसी आहार में गिना जाता है, जो आलस और सुस्ती बढ़ाते हैं और जिसके सेवन से साधना और मन की एकाग्रता कम होती है। वैज्ञानिक कारण यह है कि पाचन पर अतिरिक्त भार न पड़े, क्योंकि इस मौसम में पेट अधिक संवेदनशील होता है।
3: सावन के महीने में प्याज लहसुन इसलिए परहेज किया जाता है क्योंकि यह तामसी आहार माना जाता है। मंत्र आदि का जो भी प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके में हमारी दुर्गंध आएगी, तो हमारी जो पूजा पाठ है वह सुगंधित है और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के लिए मानी जाती है, तो तामसी आहार के रूप में प्याज लहसुन का प्रयोग होता है, तो इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते।
2: चूंकि ये अम्ल और तीक्ष्ण होता है इसलिए अगली ऋतु में पित्त का प्रकोप होने वाला रहता है, इसलिए इसको संयमित मात्रा में हमको इस ऋतु में लेना चाहिए।
0: दही और कढ़ी जैसे आहार भी न खाने की सलाह सावन में दी जाती है। धार्मिक कारण यह है कि भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग सावन में आध्यात्मिक रूप से ही करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश के मौसम में दही और कढ़ी आदि से कफ और वात यानी वायु संबंधी रोग हो सकते हैं, जो शरीर में दर्द और गैस जैसी तकलीफ बढ़ाते हैं।
3: सावन के महीने में दूध दही कढ़ी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सावन का महीना बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है। दूध सावन के महीने में शंकर जी को चढ़ता है तो लोग भगवान भोलेनाथ के लिए भी वह प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी वर्जित होता है। तो दोनों खंड देखा जाए, तामसिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक खंड, तो इसलिए इन सभी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है।
2: वर्षा ऋतु में दही अच्छी जमती नहीं, तो वर्षा ऋतु में जो दही हमको चाहिए वो स्वादु दही होनी चाहिए, पूरी अच्छी जमी होनी चाहिए, वो हमें नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो मंद दही होती है या अत्याम्ल दही जिसमें खट्टापन बहुत होता है वो इस समय हमें नुकसान करती है।
0: सावन में शिव भक्त कठोर संकल्प लेकर निकलते हैं, ऐसे में वो स्वस्थ रहें और अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें, इसको लेकर ही धार्मिक नियम बनाए गए हैं जिनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। इसीलिए सावन महीने में स्वच्छता और सात्विकता पर अधिक जोर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के नियम भी बहुत कठोर होते हैं, इसमें नंगे पांव चलने से लेकर कांवड़ को जलाभिषेक से पहले जमीन पर न रखने तक का संकल्प होता है। समय के साथ साथ कई बातें बदल गईं, पर कांवड़ का मतलब होता है अनुशासन, ईश्वर को पूर्णतः समर्पण और सम्मान।

0: कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि संयम, आस्था और अनुशासन की परीक्षा भी है। इस यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है, जो इस धार्मिक यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा नियम है कि जमीन पर कांवड़ नहीं रखी जाती। किसी भी परिस्थिति में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाएगा, और ये अद्भुत मान्यता सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक है। जब कांवड़ यात्री विश्राम करते हैं, तब कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है ताकि गंगा जल के पात्र अशुद्ध न हो।
1: एक संकल्प की सिद्धि है कि जिस तीर्थ के लिए कांवड़ को उठाया गया और जहां उसको जाना है, उस निमित्त मध्य में जहां उसको उठाने वाला शयन करता है, विश्राम करता है, उसको अपने साथ ही वो रखता है। स्थान पर रखते ही वह जो उसकी अभंगिता है, अर्थात जो निरंतरता है उसकी, उसमें भंग उसमें आ जाता है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि उसका स्पर्श पृथ्वी पर ना हो।
0: कांवड़ यात्रा में नंगे पांव चलना न केवल परंपरा है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और तपस्या का प्रतीक है। यात्री गर्मी, बारिश, कांटे और पथरीले रास्तों के बावजूद बिना चप्पल जूते के चलते हैं। ये दिखाता है कि भक्ति में सुविधा नहीं, समर्पण आवश्यक है।
1: पूरी पृथ्वी ही या जिस स्थान में हम चल रहे हैं वो जलमय है, अर्थात चंद्रमय है, वो शिव का ही साक्षात स्वरूप है। तो श्रावण मास में पूरी प्रकृति ही शिवमय रहती है, इसलिए हमें पादरक्षा का या ऐसे किसी भी अन्य साधन का प्रयोग अपनी धर्म यात्रा में नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान।
0: कांवड़ यात्री के लिए किसी भी तरह का नशा पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा शुद्ध मन और पवित्र आचरण से ही फलीभूत मानी गई है।
1: नशा या ये सभी जो उपकरण हैं, ये इंद्रियों को असंतुलित करते हैं। तो हमारे पंच तत्वों की जो संवेद इंद्रिय है, वो इंद्रिय अगर असंतुलित है तो उपासना में एकाग्र चित्तता नहीं हो सकती।
0: कांवड़ यात्रा का सबसे पवित्र तत्व लाया हुआ गंगा जल ही होता है। गंगा जल को जलाभिषेक से पहले कहीं भी अनुचित स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि

परीक्षा आत्मिक विश्वास की हो रही होती है। कांवड़ियों का मानना है कि कांवड़ वो ही उठाते हैं जिन्हें स्वयं शिव बुलाते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर गॉट रिड ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ किलिंग्स इन पंजाब इंक्लूडिंग मेनी प्रोमिनेंट पीपल। सो थिंग्स हैड गॉन रियली बैड इन पंजाब।
7: कांग्रेस पार्टी वाज ट्राइंग टू से कि अकालीज हैव टू बी डिफीटेड। You must not allow some other faction of the Akali Dal to prop up so that votes are divided.
8: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया?

0: था कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज, तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
1: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर
0: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
2: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
0: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
3: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

शादी ब्याह का मौसम हो, त्योहारों की खरीदारी हो या फिर निवेश की योजना, सोना हमेशा भारतीयों की पहली पसंद रहा है। लेकिन जब कीमतें लगातार ऊपर नीचे होने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि खरीदारी की जाए या इंतजार किया जाए। दिलचस्प बात है कि इस वक्त सोने को लेकर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका जताई है, तो दूसरी तरफ एक बड़े विदेशी निवेश एक्सपर्ट ने सोने में ऐतिहासिक तेजी का अनुमान लगाया है। मजबूत डॉलर और ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स फिलहाल सोने पर दबाव बनाए हुए हैं। WGC के मुताबिक अमेरिकी 10 वर्षीय TIPS यील्ड 2.44% तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये ऊंचे यील्ड्स आमतौर पर सोने जैसे गैर ब्याज वाले एसेट्स पर दबाव बढ़ाते हैं। ऐसे में अमेरिकी महंगाई और फेडरल रिजर्व के अगले संकेतों पर बाजार की नजर टिकी है। वहीं टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दबाव बढ़ा तो घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,18,800 से 1,19,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है। टोरंटो के अनुभवी निवेश बैंकर जॉन इंग का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोना $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तरों से काफी ऊपर होगा। इसकी वजह अमेरिका का बढ़ता कर्ज है, जो $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इसके चलते सालाना ब्याज भुगतान करीब $1 ट्रिलियन के आसपास हो गया है और वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 71% से घटकर 54% रह गई है। जॉन इंग का मानना है कि बढ़ता कर्ज और डॉलर पर घटती निर्भरता निवेशकों को सोने की तरफ आकर्षित कर सकती है। इसी बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। डेटा के मुताबिक पहली तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 244 टन सोना खरीदा। इसमें चीन का बड़ा रोल है, जो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं पोलैंड ने भी इस साल बड़ी मात्रा में सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। कई देश अपने स्वर्ण भंडार को विदेशी वॉल्ट से वापस अपने देश लाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। इससे सोने की रणनीतिक अहमियत और बढ़ी है। यानी फिलहाल सोने की दिशा दो अलग ताकतों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ मजबूत डॉलर और ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितता है, जो सोने को सहारा दे रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े ही तय करेंगे कि सोना नई ऊंचाई छुएगा या पहले कुछ और नीचे आएगा। आदित्य राणा, आज तक।

0: ड्रग्स फ्री इंडिया के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ जेंजी से किया सीधा संवाद। कहा, दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद। 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। चढ़ावा चोरी पर सांसद वाला ड्रामा थाने तक पहुंचा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। साधु संतों ने कराई FIR। हावड़ा में फूका गया पुतला। यूपी में मॉनसून सत्र से पहले सियासी एक्शन। अखिलेश ने 10 साल में 26,000 स्कूल बंद करने के आरोप लगाए। शाम को सीएम योगी की सचेतक मंडल एनडीए विधायकों के साथ मंथन। 2027 के लिए मायावती का बड़ा एक्शन। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बाहर। राजाराम को 3 राज्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी। रामजी गौतम को दिल्ली की कमान। और बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। बोले, पटना SSP ने वर्दी की आड़ में चुनाव प्रभावित किए। गड़बड़ी के सबूतों का दावा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। जनरेशन यानी सिर्फ अलग अलग उम्र के लोग नहीं, बल्कि अलग अलग दौर की सोच, अलग अलग अनुभव और अलग अलग प्राथमिकताएं। किसी ने विश्व युद्ध के बाद बिखरती हुई दुनिया को फिर से बसते हुए देखा, किसी ने रेडियो से टेलीविजन तक का सफर तय किया, किसी ने इंटरनेट क्रांति को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते हुए देखा, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के साथ बड़ा हो रहा है। तो आखिर हर जनरेशन की पहचान क्या है, उसके नाम कैसे पड़े और किस पीढ़ी ने अपने समय में दुनिया को सबसे अधिक बदलने की कोशिश की, आज कहानी अलग अलग जनरेशन्स की।
3: धीरे धीरे आप देखेंगे सोच में, समझ में लोगों के परस्पर बदलाव आ रहे हैं। युवाओं में तो खासकर ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
4: पहले वाली पीढ़ी के अंदर जो भी कार्य किया जाता था बहुत ही सोच समझ के किया जाता है।
5: हमारे टाइम में हम बड़ों की इज्जत किया करते थे, बड़ों का रिगार्ड किया करते थे। जहाँ आप देखते हैं बड़ों का सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है।
6: सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इंस्टाग्राम में इस पे कम फोकस करके थोड़ा अपने स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो।
3: इस बदलते हुए तकनीक के दौर में आए दिन कुछ न कुछ नया चेंजेस हो रहे हैं।
7: वहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ा कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिश्तों से ज्यादा या अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा महत्व देते हैं।

अगर आप किसी बुजुर्ग, अपने माता पिता और आज की किसी युवा को एक ही कमरे में बैठा दें तो सिर्फ दुनिया का फर्क नहीं दिखेगा, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी अलग होगा, पसंद अलग होगी, भाषा अलग होगी, सपने अलग होंगे और संघर्ष भी अलग अलग। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या वक्त इंसानों को बदलता है या इंसान वक्त? खैर जो भी हो, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि बदलती तकनीक के साथ इंसान भी बदल जाता है।

0: कुछ सालों में दुनिया बदलती है और उसके साथ बदल जाती है एक नई पीढ़ी।
1: युवा पीढ़ी में बदलाव है।
2: क्या बदलाव?
1: धार्मिक विचार, धार्मिक परिवर्तन।
3: जो सोच है आज की पीढ़ी की वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो ये नहीं सोचती आज की पीढ़ी कि किस टाइम क्या डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है।
4: हम जो भी काम करते हैं वो हमारी एक अलग से विचारधारा या पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से करते हैं। आज का जो यूथ है वो इनोवेशन के साथ काम करता है।
0: एक पीढ़ी जिसने युद्ध के बाद दुनिया को बसते देखा, एक पीढ़ी जिसने टेलीविजन के साथ सपने देखे।
5: हाँ, आज की पीढ़ी जिम्मेदार है, जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती और अपने काम के प्रति रुचि रखती है।
6: आज की युवा पीढ़ी जागरूक ज्यादा है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी से निर्वाह नहीं कर पाती, वो जल्दी से पल्ला झटक लेती है।
7: हमारे टाइम में हम बड़ों की इज्जत किया करते थे, बड़ों का रिगार्ड किया करते थे। जहाँ आप देखते हैं कि बड़ों का इतना सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है। आजकल बच्चे हमको तो अनपढ़ समझते हैं।
0: एक पीढ़ी जिसने इंटरनेट को जन्म लेते देखा।
8: मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो समझ ही पाते हैं, एज जो मैंने लोगों को देखा है वो तो समझ ही पाते हैं। हाँ, शायद होंगे कोई, अभी मेरे को तो नहीं दिखता।
9: थोड़ा सा और समझ पाते हैं कि मतलब इनके लिए लाइफ कैसी होती है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, इनकी सोच क्या है आजकल के बच्चों के। एंड हर साल जो बैच आते हैं उनसे बातचीत भी ज़्यादा रहती है टीचर्स की। पेरेंट्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा और लाइक मतलब डिफिकल्टी रहती है, पर पेरेंट्स भी इसी टाइम से निकले हैं और बस एक ही मतलब ज़्यादा डिफरेंस है कि थोड़ा कल्चर का डिफरेंस है।
10: हमारी जनरेशन में ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, जिस वजह से वी आर एबल टू एक्सप्रेस मोर, एंड वो पार्ट आई फील पेरेंट्स इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई मीन दे डू ट्राई, सम डू नॉट एट ऑल, बट वहाँ पे वो गैप रहता है।
11: टीचर से थोड़ा क्लोजनेस होता है, पेरेंट्स भी समझ तो पाते ही होंगे, वो भी तो हमारे जगह में थे एक टाइम में, बट आई थिंक हमेशा उनके पास चॉइस नहीं होता हमेशा पूरा अंडरस्टैंडिंग होने का, उन्हें भी हमारे तरफ हमारे बारे में केयर करना होता ना।
0: और एक पीढ़ी जिसने आँख खुलते ही दुनिया को मोबाइल की स्क्रीन पर पाया। आज हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, बेबी बूमर्स, जेनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ नाम है या फिर हर नाम के पीछे छिपी है एक अलग सोच, एक अलग संघर्ष और एक अलग कहानी।
12: जनरेशन जो कि ना ट्रांजिशन आता है जनरेशन टू जनरेशन, मिक्सटर्न स्टर्नबर्ग है उसकी 2014 की स्टडी है, जब आप देखेंगे तो क्या होता है जब आर्थिक हालात बदलते हैं, सोशलाइजेशन जो सामाजिक परस्परता जो बदलती है, जब समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो वैसे वैसे हमारे दिमाग में हमारे DNA सेम रहता है लेकिन जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से हमारे व्यवहार में चेंजेज आते हैं, हमारे सोच में चेंजेज आता है, हमारे एक नज़रिए में बदलाव आता है। तो चूँकि अभी मैं मिलेनियल जनरेशन का हूँ तो हमारे समय में जो चीज़ें पारस्परिक रही है जो एक वो अलग है बिल्कुल, जो मेरा बच्चे आएंगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएंगी वो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, उससे पहले देखेंगे तो तकनीक इस तरह से नहीं डेवलप हुई थी। तो जैसे जैसे हमारा समाज और टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है वैसे वैसे हमारा माइंडसेट चेंज होता है और उसका एक पर्सनैलिटी पर चेंज दिखता है।
0: आखिर किसने तय किया कि कौन सी पीढ़ी किस नाम से जानी जाएगी? सवाल ये भी कि उम्र बदलने से जनरेशन बदल जाती है या वक्त, तकनीक, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज मिलकर एक नई जनरेशन बनाते हैं।
13: ये हर जनरेशन के साथ होता है कि वो अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ बातों में भिन्न होती है और इसमें सबसे बड़ा योगदान इस अंतर के पीछे जो होता है वो तकनीक का होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसके साथ जो नई पीढ़ी आती है उसका इवोल्यूशन अलग तरीके से होता जाता है और इसी मामले में हम जो आज की जेंजी है उसको अपनी पिछली पीढ़ी से अलग देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिकल बॉर्डर्स के इररिस्पेक्टिव आज की जो पीढ़ी है वो पूरी दुनिया में अपने जो काउंटर पार्ट से उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी को यदि मैं देख लूं तो हम कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन आज की आप पीढ़ी को देखेंगे, ये एक उदाहरण है, तो उनके लिए कुछ भी नई टेक्नोलॉजी का एक फोन ही खरीदना या बार बार बदलना कोई नई बात नहीं है।
0: कभी घर का सबसे कीमती सामान रेडियो हुआ करता था, फिर टेलीविजन आया, फिर कंप्यूटर, फिर इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: हर तकनीक ने सिर्फ मशीनें नहीं बदली, उसने इंसानों की सोच भी बदल दी।
1: सोशल मीडिया लाइक उनके जमाने में नहीं था, तो फिर ऑफ कोर्स एक न्यू टर्म है, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है।
2: एक्चुअली इतना नहीं समझ पाते, बिकॉज वहाँ पे गैप आ जाता है, जनरेशनल गैप आ जाता है।
0: जिस पीढ़ी ने चिट्ठियाँ लिखी, उसके बच्चे ईमेल लिखने लगे, और उनके बच्चे अब 2 सेकंड की रील में पूरी कहानी कह देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तकनीक बदली है या रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई? क्या आज की जनरेशन पहले से ज्यादा आजाद है या पहले से ज्यादा अकेली?
3: समाज, हमारी संस्कृति हमेशा से फैमिली ओरिएंटेड रही है, और इस फैमिली का विस्तार फिर एक गांव या कॉलोनी या मोहल्ले के रूप में हम होते हुए देखते थे, और फिर इसको हम राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर लेकर के जाते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो नई तकनीक यानी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से, और आज तब जबकि सबके पास एक मोबाइल फोन हाथ में होता है, जिसने कैमरे की, संगीत के अलग अलग यंत्रों की या अलग अलग प्रकार के जो संवाद के माध्यम थे उनकी यूटिलिटी खत्म कर दी है, तो हर कोई इस मोबाइल में डूबा रहना पसंद करता है।
0: इतिहास कहता है हर जनरेशन अपने साथ एक नया सवाल लेकर आई, और कई बार एक नया आंदोलन भी।
1: मेरे पेरेंट्स थोड़े तो हैं कंजर्वेटिव, पर वो स्टिल धीरे धीरे मतलब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उनके भी विचार, उनके ओपिनियन। टीचर्स तो हमारे चिल हैं, वो हमारे फ्रेंड्स जैसे हैं, मम्मी पापा भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर रहने से।
0: कभी युवाओं ने युद्ध का विरोध किया, कभी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो कभी जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पहचान और अधिकारों के लिए पूरी दुनिया को एक मंच पर खड़ा कर दिया। आंदोलनों का चेहरा भी जनरेशन के साथ बदलता चला गया। पहले नारे दीवारों पर लिखे जाते थे और अब हैशटैग ट्रेंड करते हैं।
4: अगर हम ऑनलाइन लिखेंगे व्हाट्सएप पे तोड़ने लगेगा शायद, हमारा बच्चा वहां जाकर मोबाइल चला रहा है दिन भर।
0: सोशल मीडिया ने पहली बार किसी जनरेशन को दुनिया भर में एक साथ बोलने की ताकत दी है। आज कहानी में जानेंगे क्या आने वाले सालों में यही पीढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती, और क्या जनरेशन गैप अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है या सिर्फ पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है। साथ ही जानेंगे कि बेबी बूमर से लेकर जनरेशन अल्फा तक हर जनरेशन की पहचान क्या है, इनके नाम कैसे पड़े, किस दौर ने किस पीढ़ी को गढ़ा, किस जनरेशन ने कौन से बड़े आंदोलन किए, और कैसे हर दौर के युवाओं ने अपने अपने तरीके से इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की। साथ ही समझेंगे क्या सचमुच हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अलग होती है या हर पीढ़ी बस अपने समय का आईना होती है।
5: जेनरेशन जी को अक्सर डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ये वो पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन को खिलौने की तरह, सोशल मीडिया को संवाद की तरह, इंटरनेट को अपनी दुनिया की तरह अपनाया है। लेकिन क्या यही तकनीक इस जेन जी, इस पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति है या फिर सबसे बड़ी चुनौती? क्या सोशल मीडिया ने जेन जी को पहले से कहीं अधिक जागरूक बना दिया है या पहले से कहीं ज्यादा बेचैन? और क्या जेन जी सिर्फ रील्स और ट्रेंड्स की पीढ़ी है या फिर बदलाव की एक सबसे बुलंद आवाज?
0: अगर ये शब्द आपको समझ में आते हैं तो शायद आप जनरेशन जी का हिस्सा हैं या फिर उसके बेहद करीब।
6: तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ भाई स्टारबक्स की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कॉफी। भाई अंदर चलते हैं।
7: इसको घबराना मत, सीट लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये जो आइटम देख रहे हो ये कितने रुपए की है कमेंट करके बता दो, तुम्हारे साथ कितने की हो सकते हैं। 20 रुपए की बैठी होगी, ये बड़ा है तो 80 रुपए का होगा, 40-40 रुपए की दूंगी, बट नहीं ये है 1480 रुपए की आइटम है भाई।
0: ये वो पीढ़ी है जिसके लिए रील बनाना, स्टोरी डालना, ब्लॉग रिकॉर्ड करना और हर पल को कंटेंट में बदल देना जिंदगी का हिस्सा है।
8: आजकल के चौंचले मेरी फ्रेंड ने रखी है ब्रेकअप पार्टी,
9: जिसके लिए मैं बन के जाऊंगी सुंदर सी, क्योंकि ब्रेकअप पार्टी उसकी है मेरी नहीं।
10: बहुत सारे प्रोडक्ट निकले हैं, ब्रश, क्लीनर, आईलैशेस, दो ड्रेस है, इसको बाद में खोलूंगी, पहले ये खोल लेते हैं। आई होप ये अच्छी निकली।
11: ऊंची दुकान, फीके पकवान।
0: आज खाना खाने से पहले कैमरा ऑन होता है।
12: आज मुझे तंदूरी मोमोज खिलाओ।
13: ये कौन से मोमो होते हैं?
12: होते हैं बाबा, इसके अलावा अफगानी मोमोज और मलाई मोमोज भी होते हैं, पर फिलहाल तुम तंदूरी मोमोज लेकर आओ।
13: रुको पता करके आता हूँ। ये लो तंदूरी मोमोज।
12: वाह, ये तो तंदूर में बने हैं, है ना टेस्टी, बहुत यम है।
0: घूमने जाने से पहले लोकेशन टैग होती है और कई बार घर वालों को फोन करने से पहले स्टोरी अपलोड हो जाती है।
14: तो मेरी ट्रेन थी चेन्नई सेंट्रल से और मैं वहीं पहुंच जाती हूं। और भाई यहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। और आप सोच रहे होगे कि इतने सारे बैग लेके जा रही हूँ मैं, नहीं भाई ये सब खाली है, उधर से सामान लेके जो आना है।
3: हमने जो जेंजी का एक आंदोलन देखा जंतर मंतर पे और इसकी बहुत इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, और वाकई में ये देखना दुखद रहा कि अपने स्त्री अंगों की स्त्रियां लड़कियां स्वयं गालियों के रूप में पेश कर रही थी। जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया वो पिछली पीढ़ी या उनकी पिछली पीढ़ी ने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया, भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में हमने इस तरह से देखा नहीं, तो ये देखना दुखद रहा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वहां पर ऐसा दिखाई पड़ा कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिश्तों से ज्यादा या अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा महत्व देते हों, लेकिन हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की कुल आबादी का जो 22% हमारी युवा आबादी है उसके मुट्ठी भर बच्चे।
0: ये सिर्फ इंटरनेट के शब्द नहीं है बल्कि जनरेशन जी की नई भाषा है। आज हर चीज कंटेंट है, कॉफी पीना भी कंटेंट, जिम जाना भी कंटेंट,
15: और जल्दी उठना क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन का टाइम मैनेज करना होता है तो जल्दी उठना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चले जाता हूँ,
0: कॉन्सर्ट में जाना भी कंटेंट,
16: बोल आई लव यू,
17: आई लव यू,
16: आपके घर वालों को दिखाऊंगा, शादी करेगी मुझसे?
17: नहीं,
16: आई लव यू वाली वीडियो दिखाऊंगा, करेगी ना?
18: ए फटक वाले भैया, अरे फटकवा खोल दे, ओ गर्लफ्रेंडों को अपने भगा के लेके जाए थे घर वाले, पिछवा जल्दी खोलना है, बहुत मरी है भैया।
0: यहाँ तक कि दुख, ब्रेकअप और नौकरी मिलने की खुशी भी कंटेंट। इन्फ्लुएंसर आज कई फिल्मी सितारों जितना असर रखते हैं, लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
19: 2 लाख का फोन लेकर स्टोरियां लानी स्टार्ट कर देंगे, मैं यू ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने 25 लाख का लोन ले रखा, मैंने कहीं स्टोरी पाई।
0: क्या ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट और वायरल होना आज आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन चुके हैं? क्या लाइक्स और फॉलोअर्स पहचान का नया पैमाना बन गए हैं?
20: हम बात करते हैं तो एक ऐसा युवा है जो 24/7 डिजिटल वर्ल्ड में 90% पॉपुलेशन है जो डिजिटल एंगेजमेंट से उनके, वो उनको दुनिया भर की सारे नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा अपडेटेड हैं, नॉलेज है, तो उसमें गलत भी नॉलेज वो कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आप मानसिकता में बदलाव देखेंगे। आज के समय में आप देखेंगे कि हर आदमी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो सारे इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से धीरे धीरे उसके मानसिकता में चेंजेस आता है। लोग इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं पॉजिटिवली, जैसे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी आता है, उसकी वजह से लोगों में एक पॉजिटिविटी भी आती है, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन और कुंठा भी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे सोच में, समझ में लोगों के परस्पर बदलाव आ रहे हैं, युवाओं में तो खासकर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
0: लेकिन जनरेशन जी की पहचान सिर्फ डिजिटल लाइफस्टाइल नहीं है बल्कि डिजिटल एक्टिविज्म भी है। #MeToo आंदोलन ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ करोड़ों लोगों को एकजुट किया नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन सत्ता परिवर्तन की वजह बना। बांग्लादेश में छात्रों ने वर्षों पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू में भी युवाओं ने व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत में भी पेपर लीक को लेकर जनरेशन जी का आंदोलन सफल रहा। जब आंदोलन नई शक्ल ले रहे थे, उसी समय तकनीक भी नई रफ्तार पकड़ रही थी। 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब ने दुनिया को बदल दिया। अब खबर अखबार में आने से पहले फोन पर पहुंच जाती है। एक वीडियो कुछ मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। एक पोस्ट सरकार से जवाब मांग सकती है। एक हैशटैग वैश्विक आंदोलन का चेहरा बन सकता है।
1: हाँ, मतलब सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी समझते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ में, बट कुछ चीज़ें वो नहीं भी समझते उतना, और टीचर्स भी लाइक कुछ चीज़ों में दे सपोर्ट, बट कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, और सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव्स तो बताते ही हैं।
2: जो हमारे खेल कूद वाले फॉर एग्जाम्पल ऐसे अट्रैक्शन के लिए अलग जैसे इंस्टा, वो उनको समझने में थोड़ा बेशक मुश्किल आती होगी, बट सिंस द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग और टीचर्स भी अब समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि ये भी नेसेसिटी है।
1: ऑब्जेक्शन तो नहीं करते हाँ, बट ये जरूर कहते कि थोड़ा कम, जैसे स्नैपचैट इंस्टाग्राम है, इस पे कम फोकस करके थोड़ा अपने स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो।
0: जनरेशन जी सिर्फ डिजिटल दुनिया की पहली पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये पहली ऐसी वैश्विक पीढ़ी है जिसने मोबाइल को आंदोलन का मंच, सोशल मीडिया को संगठन की ताकत और इंटरनेट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। रील्स और रील लाइफ के बीच जीने वाली यही पीढ़ी आज सत्ता से सवाल भी पूछ रही है, समाज को आईना भी दिखा रही है और आने वाले समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दिशा भी तय कर रही है।
5: एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे किसने दिया जनरेशन्स को नाम और कैसे बनी अलग अलग जनरेशन्स की कहानी। देखते रहिए कहानी।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
22: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
21: Sokudo.
23: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
24: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
25: आगे आगे, अरे उधर उधर घर, करेक्ट करेक्ट।
26: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
4: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
1: इन एसोसिएशन विद
0: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
1: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
0: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ड्रग्स फ्री इंडिया के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ जेंजी से किया सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। चढ़ावा चोरी पर सांसद वाला ड्रामा थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, साधु संतों ने कराई FIR, हावड़ा में फूका गया पुतला। यूपी में मानसून सत्र से पहले सियासी एक्शन, अखिलेश ने 10 साल में 26,000 स्कूल बंद करने के आरोप लगाए, शाम को सीएम योगी की सचेतक मंडल, एनडीए विधायकों के साथ मंथन। 2027 के लिए मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बाहर, राजाराम को 3 राज्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी, रामजी गौतम को दिल्ली की कमान। और बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, बोले पटना SSP ने वर्दी की आड़ में चुनाव प्रभावित किए, गड़बड़ी के सबूतों का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। कहानी जनरेशन की, हर पीढ़ी अपने समय की उपज होती है और इसीलिए उनके सपने अलग होते हैं, उनकी चुनौतियां अलग होती हैं और दुनिया को देखने का उनका दृष्टिकोण भी अलग होता है। लेकिन क्या सिर्फ जन्म का वर्ष किसी जनरेशन की पहचान तय करता है? आइए जानते हैं कि किस तरह इतिहास की बड़ी घटनाएं, तकनीक, राजनीति और समाज ने मिलकर नई पीढ़ी को हर बार नया नाम दिया है।

कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं लोकतंत्र बचाने की तख्तियां, कहीं नस्लभेद के खिलाफ गूंजते नारे, तो कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए सड़क पर उतरे लाखों युवा। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये इतिहास के वो मोड़ हैं जहां हर पीढ़ी ने दुनिया में बदलाव देखा भी और बदलाव लाया भी, किसी जनरेशन में ज्यादा, किसी में कम। 20वीं सदी की शुरुआत हुई, दुनिया पर यूरोपीय साम्राज्यों का राज बढ़ता ही जा रहा था। एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देश गुलाम थे, पूरी दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 में हो गया, लेकिन इस दौर में कई ऐसे आविष्कार हुए जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया था। रेडियो संचार की खोज हुई, आसमान में पहली बार विमान नजर आया, मॉडर्न फिजिक्स में क्रांति आई, सड़कों पर कार दौड़ने लगी। इस दौर में महिलाओं ने भी बराबरी की लड़ाई शुरू की, और वो भी पूरे यूरोप और अमेरिका में। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में आजादी की लड़ाई भी जोर पकड़ने लगी थी। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में करोड़ों लोग सड़कों पर थे। कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका के लोग आजादी की लड़ाई जीत भी रहे थे। दुनिया का नक्शा बदल रहा था। इस पीढ़ी ने दुनिया को सिखाया, अधिकार दिए नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। ये सिर्फ एक समय नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे दौरों में से एक था। इसी दौर में जन्मी पीढ़ी को कहा गया साइलेंट जनरेशन। इनका बचपन खेल के मैदानों में नहीं, बल्कि युद्ध, भय और आर्थिक संकट के साए में बीता था। 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी थी। यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद का उभार हुआ। 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था।

0: लेकिन ये दौर सिर्फ युद्ध का नहीं था, बड़े बदलाव का भी था। इस दौर में टेलीविजन युग की शुरुआत हुई, पेनिसिलिन की खोज हुई, लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई गई, दुनिया ने रडार तकनीक को अपनाया, टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई और न्यूक्लियर फिशन के जरिए परमाणु ऊर्जा का मार्ग खुला। इतना ही नहीं, 1945 में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिसके बाद युद्ध और वैश्विक राजनीति बदल गई। भारत जैसे कई देशों में आजादी की अंतिम लड़ाई का आगाज हो चुका। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया ने राहत की सांस ली, लाखों सैनिक घर लौटे, नए परिवार बसने लगे और अगले 18 सालों में जन्म दर में जबरदस्त उछाल आया। सिर्फ अमेरिका में ही इस दौरान करीब 7,60,00,000 बच्चों का जन्म हुआ। इसी बेबी बूम की वजह से इस पीढ़ी का नाम पड़ा बेबी बूमर्स।
1: पहले वाली पीढ़ी के अंदर जो भी कार्य किया जाता था बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, आगे पीछे का अच्छा भला बुरा देखा जाता था, कहीं कोई वो तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी की आसपास के लोगों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, आसपास के समाज के लोग क्या कहेंगे, तो सारी चीजों को पहले सोच समझ के डिसीजन लिया जाता था। आज की पीढ़ी में वो बात नहीं है।
0: लेकिन ये सिर्फ बढ़ती आबादी का दौर नहीं था, ये दुनिया को बदल देने वाले आंदोलनों और क्रांतियों का दौर भी था। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, वियतनाम युद्ध के खिलाफ दुनिया भर के लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, क्यूबा क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, चे ग्वेरा दुनिया भर के युवाओं के लिए विद्रोह और बदलाव का प्रतीक बन गए। इधर महिलाओं ने भी समान अधिकार, समान वेतन और बराबरी की आवाज बुलंद की, दुनिया भर में लैंगिक समानता पर बहस होने लगी। इसी दौर में डीएनए की संरचना का पता चला, पोलियो वैक्सीन ने लाखों बच्चों की जान बचाई, स्पुतनिक के साथ अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने। यानी बेबी बूमर्स सिर्फ सबसे बड़ी आबादी वाली पीढ़ी नहीं थी, बल्कि वो पीढ़ी थी जिसने बराबरी के आंदोलन देखे, क्रांतियों को जन्म लेते देखा, विज्ञान को नई उड़ान दी और आधुनिक दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी दिशा बदल दी। ये वो दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। शीत युद्ध अपने चरम पर था, परमाणु हथियारों की होड़ भी थी और तकनीक की दौड़ भी। इसी दौर में जन्मी पीढ़ी को कहा गया जेनरेशन एक्स।
2: करते थे बड़ों का रिगार्ड किया करते थे, जहां देखते थे कि बड़ों का सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है। आजकल बच्चे हमको तो अनपढ़ समझते हैं, और जब से ये कंप्यूटर आया है, जो इंटरनेट या कंप्यूटर आया है, तब से बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं जो बड़े लोग हैं वो तो अनपढ़ हैं, हम ही पढ़े लिखे हैं।
3: अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है, जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहा है, बस यही बदलाव। और
0: ये वो पीढ़ी थी जिसने रेडियो से टेलीविजन और टाइपराइटर से कंप्यूटर तक का सफर अपनी आंखों के सामने देखा, इसलिए इन्हें अक्सर ब्रिज जनरेशन भी कहा जाता है, जिसने एनालॉग और डिजिटल दुनिया के बीच पुल का काम किया। लेकिन इस पीढ़ी की पहचान सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति की भी थी। दुनिया के बड़े आंदोलन, बर्लिन की दीवार गिर गई, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, पूर्वी यूरोप में एक एक कर कम्युनिस्ट सरकारें ठहरने लगी, शीत युद्ध के अंत की शुरुआत यहीं से हुई, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया, चीन में अंतिम बार हजारों छात्र लोकतंत्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, भारत में भी मंडल आयोग के बाद बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। इधर समाज बदल रहा था, उधर तकनीक भी नई छलांग लगा रही थी, पर्सनल कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचने लगे, वीसीआर और रंगीन टेलीविजन घरों का हिस्सा बने, वीडियो गेम्स की शुरुआत हुई और मोबाइल फोन की पहली पीढ़ी दुनिया के सामने आई। इसी दौर ने आने वाली इंटरनेट क्रांति की नींव भी रख दी। यानी जेनरेशन एक्स ने सिर्फ दुनिया को बदलते नहीं देखा बल्कि दो युगों के बीच खड़े होकर बदलाव को अपनाया। ये वो पीढ़ी थी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में जिया, एक बचपन बिना इंटरनेट के और जवानी इंटरनेट के साथ। इन्हें कहा गया मिलेनियल्स। क्योंकि ये वो पीढ़ी थी जिसने नई सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम के साथ युवावस्था में कदम रखा।
4: जनरेशन बाई जनरेशन जब सामाजिक बदलाव आता है, हर डिकेड्स में ना एक ट्रांजिशन का फेज होता है, समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इन्वायरमेंट बदलता है, तो कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ इस बदलते हुए तकनीक के दौर में हर आए दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी पहले की जो जनरेशन थी, जो अभी हम हैं और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उन सब में एक कहीं ना कहीं एक वो ट्रांजिशन और वो एक चेंजेस लगातार देखने के वजह से क्या होता है, कई बार एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सकता है सामने वाले ने उस तरीके से अलग युग में जन्म लिया है, तो वो उसकी उसका जो एक्सपीरियंसेस है वो बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंसेस से हटके है। चूँकि चाइल्डहुड एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी पर्सनैलिटी में, शुरू के एक से लेकर 5 साल तक, जैसे सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं।
0: ये वो दौर था जब घरों में पहली बार कंप्यूटर पहुंचे, इंटरनेट ने दस्तक दी, ईमेल ने चिट्ठियों की जगह लेनी शुरू की और मोबाइल फोन लोगों की जेब तक पहुंच गया। लेकिन इस पीढ़ी की पहचान सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में बदलाव की नई लहर भी थी। दुनिया के बड़े आंदोलन अरब स्प्रिंग ने ट्यूनेशिया, मिस्र, लीबिया, यमन और सीरिया समेत कई देशों में दशकों पुरानी सरकारों को चुनौती दी। कई शासक सत्ता से बाहर हुए, कई देशों में गृह युद्ध हुए। भारत में 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ। इसी दौर में एलजीबीटी अधिकार आंदोलन भी तेज हुआ। दुनिया के कई देशों में समान लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। जब सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, उसी समय तकनीक भी दुनिया को नई दिशा दे रही थी। वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, स्मार्टफोन और 3G इंटरनेट ने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ दिया। अब जानकारी सिर्फ किताबों में नहीं, हथेली पर थी। यानी मिलेनियल्स वो पीढ़ी थी जिसने एनालॉग दुनिया को अलविदा कहा, डिजिटल दुनिया का स्वागत किया और पहली बार ये दिखाया कि एक ट्वीट, एक पोस्ट या एक ऑनलाइन अभियान भी लाखों लोगों को सड़क पर ला सकता है। यही पीढ़ी इंटरनेट क्रांति और जन आंदोलनों के नए दौर के बीच सबसे मजबूत कड़ी बनी। ये वो पीढ़ी है जिसने दुनिया को इंटरनेट पर नहीं खोजा, बल्कि इंटरनेट के साथ ही जन्म लिया। इन्हें कहा गया जनरेशन जी। ये पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके लिए स्मार्टफोन कोई तकनीक नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। सोशल मीडिया, हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दौर के साथ बढ़ी हुई इस पीढ़ी ने जानकारी का इंतजाम नहीं किया बल्कि उसे अपनी उंगलियों पर पाया। लेकिन जनरेशन जी की पहचान सिर्फ डिजिटल दुनिया नहीं बल्कि डिजिटल आंदोलन भी है। 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, AI, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल पेमेंट ने पूरी दुनिया की जीवन शैली बदल दी। अब एक हैशटैग कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। यानी जनरेशन जी सिर्फ डिजिटल दुनिया की पहली पीढ़ी नहीं है बल्कि ये पहली ऐसी वैश्विक पीढ़ी है जिसने मोबाइल को आंदोलन का मंच, सोशल मीडिया को संगठन की ताकत और इंटरनेट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। 2010 के बाद एक ऐसी पीढ़ी दुनिया में आई जिसने न डायलअप इंटरनेट देखा, न कीपैड फोन, न टीवी के सामने रविवार की सुबह का इंतजार। इनके लिए दुनिया की शुरुआत ही टच स्क्रीन से हुई। इन्हें कहा जाता है जनरेशन अल्फा।
4: जो जेंजीज की जब हम बात करते हैं।

0: और सर्च इंजन से पहले एआई से परिचित हो चुकी है। अब उस जनरेशन की बात करते हैं जिसके लिए डिजिटल दुनिया कोई विकल्प नहीं बल्कि जन्म से ही उसकी वास्तविक दुनिया है। हम बात कर रहे हैं जनरेशन अल्फा की, जेन अल्फा।
1: जिस उम्र में कभी बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, आज उसी उम्र में बच्चे कंटेंट बना रहे हैं। कोई खिलौनों का अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा है तो कोई लाखों व्यूज वाली रील का सपना देख रहा है। मोबाइल अब सिर्फ खेलने का खिलौना नहीं बल्कि इनकी दुनिया का सबसे बड़ा साथी बन चुका है। यही है जनरेशन अल्फा। लेकिन इस पीढ़ी की कहानी सिर्फ रील, ब्लॉग और वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस पीढ़ी पर दिन भर मोबाइल में खोए रहने का आरोप लगता है, वही पीढ़ी अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही है। अब ये सिर्फ कंटेंट नहीं बना रही बल्कि सिस्टम से सवाल भी पूछ रही है।
2: और हमारे 5 सालों से मैथ की टीचर नहीं है, हमारी स्कूल 2 साल पहले 12th तक हो चुकी है लेकिन अभी तक एक भी लेक्चरर नहीं आया है। और हमें संस्कृत, विज्ञान और बहुत सारी 2-3 लेक्चरर भी चाहिए और हमारे जल्द से जल्द टीचर लगा।
3: डिपोर्टेशन पे टीचर नहीं चाहिए हमें, हमारे परमानेंट टीचर चाहिए।
4: ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे टीचर नहीं आते।
1: राजस्थान के अजमेर में सरवाड़ तहसील के सापला गांव की छात्राओं ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राओं ने पहले नारे लगाए, स्कूल पर ताला जड़ दिया और उसके बाद हाईवे तक जाम कर दिया। 2 साल पहले स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड किया गया लेकिन आज तक विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं पहुँचे थे। गणित का स्थायी शिक्षक वर्षों से नहीं है, विज्ञान और संस्कृत के शिक्षक भी नहीं। बार बार शिकायत हुई लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो किताबें छोड़कर छात्राएं सड़क पर उतर आई।
5: कल स्कूल बंद किया था, जब तक हमें शिक्षक नहीं मिलेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें शिक्षक मिलना ही चाहिए, ये हमारा हक है।
6: स्कूल में पिछले 4 सालों से शिक्षक की कमी है, हमें शिक्षक क्यों नहीं दिया जाता, हम पे ये अन्याय क्यों किया जाता है, हमें इसका उत्तर चाहिए आपसे।
1: ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, महाराष्ट्र के धाराशिव में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही दिखी। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी धरने पर बैठ गए। स्कूल में वर्षों से शिक्षकों के पद खाली है, गणित और विज्ञान पढ़ाने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं पूरे भविष्य का है। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें 130 से ज्यादा छात्राएं हैं लेकिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक टॉयलेट, छात्र खुले में शौच जाते हैं। लेकिन छात्राओं को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, यानी डिजिटल इंडिया के दौर में देश के कुछ स्कूल अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज कई बच्चे होमवर्क से पहले एआई से सवाल पूछते हैं, लेकिन जनरेशन अल्फा की कहानी सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। ये वही पीढ़ी है जो अपने अधिकारों के लिए बोलना भी सीख रही है। अभी ये पीढ़ी वोट नहीं देती, संसद में नहीं बैठती और सरकारें भी नहीं चलाती, लेकिन ये अपने सवालों से व्यवस्था को आईना जरूर दिखा रही है। यानी जनरेशन अल्फा अभी इतिहास नहीं लिख रही लेकिन इतिहास लिखने की तैयारी जरूर कर रही है।
0: कहानी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
3: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
5: आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, माँ की गालियां दी गई. बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी की भी माँ की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता. वाकई नहीं देना चाहिए. साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप. एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं. कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे. कोई माँ की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है. एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं. शर्म आएगी आपको. कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है.
6: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया. प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां दी. लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता. भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी. लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं. गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दाव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी से लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
1: प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
0: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा वेश में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर है।
3: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में RSS और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें, वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के RSS के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है। और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, RSS के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
4: भाई, हम दान पत्र ला दिए तो भाजपा नाराजगी जता रही है, वो दक्षिणा लूट रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, तो उनको पुण्य लग रहा है, तो ऐसी सोच का क्या कहेंगे।
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया ही बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सुरक्षा के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने एक करोड़ जैनजी से किया सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। चढ़ावा चोरी पर संसद वाला ड्रामा थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, साधु संतों ने कराई एफआईआर, हावड़ा में पुतला फूंका गया। यूपी में मानसून सत्र से पहले सियासी एक्शन, अखिलेश ने 10 साल में 26,000 स्कूल बंद करने का लगाया आरोप, शाम को सीएम योगी की सचेतक मंडन और एनडीए के विधायकों के साथ मंथन। मिशन 2027 के लिए मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बाहर, राजा राम को 3 राज्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी, रामजी गौतम को दिल्ली की कमान। और बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, बोले पटना एसएसपी ने वर्दी की आड़ में चुनाव प्रभावित किया, गड़बड़ी के सबूतों का दावा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर प्राइम टाइम 2 बजे में आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि क्या खास है इस बुलेटिन में। आगे बात हम करने वाले हैं चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के संसद वाले ड्रामे पर। बीजेपी और साधु संतों ने कैसे घेरेबंदी की है, साथ ही साथ आपको बताएंगे जेनजी को प्रधानमंत्री मोदी का ड्रग्स फ्री इंडिया का संदेश, जिसमें करोड़ों युवाओं ने आज हिस्सा लिया। साथ ही आपको बताएंगे कश्मीर के आतंकवादी गोली पर क्या क्या अब सियासी बोली लगने लगी है, किस तरीके से जबरदस्त उस पर भी सियासत देखी जा रही है। तो सबसे पहले पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, ये हम आपको बता दें। इन्हीं दावों के बीच अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। संगरूर के बाद अब बरनाला में भी कांग्रेस की बैठक के दौरान चन्नी जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा गया। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में आपको बता दें कि हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की, और ये दूसरी बार है इससे कुछ देर के लिए बैठक को हंगामे की स्थिति को देखते हुए स्थगित करना पड़ा था। और आपको यह भी बता दें कि मंच पर मौजूद प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा बड़िंग और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अनुशासन बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजिया सुल्ताना का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पार्टी का माहौल खराब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और 2027 में चुनावों में पंजाब में कांग्रेस ही जीतने वाली है। इससे पहले की बैठक में भी चन्नी जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और साथ ही साथ बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, उनके अगेंस्ट जबरदस्त नारेबाजी की गई थी, बैठक को स्थगित करना पड़ गया था। और इस बैठक में भी भूपेश बघेल मंच पर मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कमलजीत जुड़ गई हैं। कमलजीत, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है और ये स्थितियां तो और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ आलाकमान है या फिर जो पार्टी के बड़े नेता हैं जो साफ संदेश दे रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, दूसरी तरफ चन्नी गुट है जो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और अलग अलग जगहों पर अब ये जो फूट है, जो गुस्सा है और ज्यादा निखर कर और ज्यादा सामने आने लगा है।
1: देखिए, कांग्रेस एक समय पे मजबूत हो रही थी, खासतौर पे जब कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे बैठी थी और किस तरह से कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के अलावा हमने देखा कि पंजाब के कई नेता है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी है, राजा अमरिंदर वड़िंग है, एकजुट होकर एक साथ आए और इस तरह से लगा कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो रही है। लेकिन जब भूपेश बघेल हैं जो कि पंजाब के प्रभारी आए हैं और जिस तरह से हम एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, तो यानी ऑल इज नॉट वेल, यानी सब कुछ सही नहीं है, अंदरूनी कलेश अभी भी जारी है। और शायद क्योंकि एक गुट है खास तौर पे जहां पे तमाम नेता हैं वो राजा अमरिंदर वड़िंग का रिमूवल चाह रहे थे कि वहां पे कोई चेंज ऑफ फेस हो, चेंज ऑफ गार्ड हो, और यही चीज उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को बताई। पर जहां तक अभी तक बयानबाजी हुई है वहां तक सीधा संकेत यह दिया गया है कि चेंज ऑफ गार्ड नहीं होगा। और भूपेश बघेल अब जब आए हैं और यहां पे मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस को, और आप ये देखिए उसी बीच में इस तरह की नारेबाजी लगना अपने आप में एक संकेत देता है कि जो डिसीजन इस वक्त नहीं लिया गया है चेंज ऑफ गार्ड को लेके, उसको लेके अभी भी नाराजगी है। अब ऐसा है कि दो गुट तमाम तरीके से बट गए हैं और खासतौर पे जैसे हमने देखा है कि पटियाला में और फिर संगरूर में हुआ, जहां पे वड़िंग और चन्नी का जो ग्रुप है उसमें क्लैश हुए, कई जगह तो कुर्सियां चल गई। और आज हम बरनाला में देख रहे हैं और 3 बजे बाद हम मानसा में देखेंगे, और अभी तो ये दौर शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये संकट जल्दी खत्म नहीं होता। और जब
0: तक तो बहुत बड़ी चुनौती है कमलजीत,
1: में सॉल्व नहीं कर पाती है कांग्रेस, ऐसा लग
0: बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और सवाल ये है कि बहुत लंबे समय से ये हंगामा देख रहे हैं, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर सबके सामने ये जो सिर्फ फुटबॉल है बार बार सामने आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, बयानबाजी, हंगामा, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है विधानसभा के पंजाब में, ये बहुत बड़ा सिरदर्द है आलाकमान के लिए भी।
1: 6-7 महीने बच गए हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं है। 2022 में हमने देखा जो चरणजीत सिंह चन्नी बनाम नवजोत सिंह सिद्धू हुआ था, उस वक्त भी इस तरह का जो कलेश था वो हुआ था कांग्रेस पार्टी में, और ऐसा लग रहा है कि कोई तोड़ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। और ये सिर्फ पंजाब कांग्रेस में नहीं है, हमने हरियाणा में भी इस तरह से देखा जहां पे जीते जीते कांग्रेस पार्टी हार गई, उसके बाद कर्नाटका में भी हमने देखा इन फाइटिंग है। तो पंजाब कांग्रेस में अब बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका एग्जिट हो गया, जिसमें कैप्टन अमरिंदर हैं, सुनील झाकड़ हैं।
0: बिल्कुल समल जी, तो किसानों, बेरोजगारी, नशे जैसे तमाम बड़े मुद्दे हैं पंजाब में, उन तमाम मुद्दों की बजाय कांग्रेस आपस में ही भिड़ी हुई नजर आ रही है और कई मंचों पर एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कसी हुई है। बीजेपी भी आज एक बड़ी बैठक करने वाली है, एनडीए के सहयोगियों के साथ सीएम योगी की बैठक होगी और उसमें एक प्लान पर चर्चा होगी कि कैसे समाजवादी पार्टी के मुद्दों को हैंडल किया जाए। यूपी का विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, यानी लगभग साल भर बची हुई है, उससे पहले ये आखिरी मानसून सत्र है, तो इसमें हंगामा होने के पूरे आसार हैं। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती आरक्षण, सरकारी स्कूलों का मर्जर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ शेयर किया है और समझा दिया है कि कल करना क्या है। तो देखा जाए तो कल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, कल से यूपी का विधानसभा का सत्र शुरू होगा मॉनसून का। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से तमाम अपने विधायकों को समझाया गया कि कैसे अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना है, क्योंकि ये इस सेशन का आखिरी सेशन है, इसके बाद विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं। हालांकि यूपी काफी लंबे समय पहले से ही इलेक्शन मोड में नजर आने लगा है।
2: शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, जिसमें प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, केजी से लेकर पीजी तक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने जानबूझ करके ध्वस्त किया है। न केवल शिक्षा ध्वस्त किया बल्कि रोजगार के जो अवसर होने चाहिए थे वो भी खत्म किए, नौकरी नहीं, और जब नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सरकारी सेवाओं में सामाजिक न्याय की भागीदारी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाए, तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए, सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का,
0: और अब आज चढ़ावा चोरी पर छिड़े हुए घमासान की भी करेंगे, क्योंकि शुक्रवार को संसद परिसर में से अनोखी तस्वीरें सामने आई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में विरोध करते हुए नजर आए और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए थे, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल हो गया है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया है, वाराणसी में FIR दर्ज करवाई गई है। बीजेपी इस बहाने पूरे विपक्ष को घेर रही है, तो जबरदस्त हंगामा अलग अलग शहरों में देखने को मिला है। कई जगहों पर FIR दर्ज करवाई गई है, वाराणसी में भी सांसद पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो ये नाटक किया गया था साधु के भेष वाला, पप्पू यादव की तरफ से कुछ और वीडियोज भी जारी किए गए जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि चढ़ावा चोरी के खिलाफ उनका ये अभिनय था,

0: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी से लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
1: प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
0: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा वेश में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर है।
3: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में RSS और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें, वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के RSS के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, RSS के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
4: भाई, हम दांग पत्र ला दिए तो भाजपा नाराजगी जता रही है। वो दक्षिणा लूट रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, तो उनको पुण्य लग रहा है, तो ऐसी सोच का क्या कहेंगे।
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया ही बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
5: और यह खबर है झारखंड से, जहां JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज हुआ है। रांची के राज्यपाल ने आपको बता दें, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज है 9वां दिन। और आपको यह भी बता दें कि छात्र 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा।
0: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। JPSC और JSSC में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की CBI जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
6: बताया कि हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूं कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना कहो।
7: पेपर थर्ड का जो एलिगेशन आप सर्च कीजिए, दावे के साथ कह सकते हैं 28 का 28 जो पेपर थर्ड का है इक्विवेलेंट मार्क्स है।
8: ये वो लड़ाई जो लड़े सबको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर, पढ़ तो रहे दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
0: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है। इन्हीं छात्रों में पलामू के नक्सल प्रभावित मनातू गांव से आए संतोष भी हैं। संतोष कहते हैं उनके 80 साल के पिता आज भी मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। अगर मेहनत के बाद भी न्याय नहीं मिला तो सिर्फ उनका सपना नहीं टूटेगा बल्कि गांव के बच्चों का पढ़ाई से भरोसा भी खत्म हो जाएगा।
9: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर।
0: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
10: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटरस्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
0: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशामुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से इस अभियान का शुरुआत उन्होंने किया और देश के युवाओं से अपील की उन्होंने कि वो नशामुक्ति अभियान से जुड़े।
11: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
5: और इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
16: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
9: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
10: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
9: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
11: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
12: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
11: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
11: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
13: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: So...
4: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
6: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की सुरक्षा बल हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे पुलवामा के केल्लम इलाके और आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन इस एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी वारदात को अलग ही मुद्दे से जोड़ दिया फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं
7: और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले
8: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है
7: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते
6: आतंकी वारदात के बीच फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर सियासत भड़कते देर नहीं लगी बीजेपी फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर हमलावर हो गई वहीं कांग्रेस को इस बयान के बहाने केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया
9: देखिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा रहता है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही यहां पर अटैक्स होते रहे हैं आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण जिनके ऊपर दोषारोपण इनके माध्यम से हो रहा है सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक सुरक्षा बल के लोग जिनके कारण घरों में हम लोग सुरक्षित हैं और आज इन परिस्थितियों में ये लोग भी ये जो बड़े नेता अपने आप को कहते हैं अगर सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण इन सुरक्षा बलों के लोगों के कारण इस पुलिस के कारण आज उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है
10: और इस तरह की बातें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं एक तरफ से केंद्र सरकार दावे करती है कि हालात बिल्कुल काबू में है नॉर्मलसी है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और सिक्योरिटी बंदोबस्त इतने मजबूत होने चाहिए इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और उस वक्त ये वारदातें पहले भी एक वारदात हुई और इस तरह का अंजाम देने से ये वो बताते हैं कि उनकी प्रेजेंस है
6: अभी स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल छिड़ा ही था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लंबी लड़ाई का दावा कर इस विवाद को और भड़का दिया
11: हम भी जानते हैं ना अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था लाखों में स्टूडेंट्स आए उन्हें भी 25 दिन लगे हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिल्ली आके सिलसिला चलता रहेगा जब तक और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो
6: उधर इस बयानबाजी के बीच मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ ये हमला इसीलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की धरपकड़ में लगी है लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नई सियासी जंग भी शुरू हो गई मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े
3: करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूपी में मॉनसून सत्र से पहले सियासी एक्शन, अखिलेश ने 26,000 स्कूल बंद करने के लगाए आरोप, चढ़ावा चोरी पर भी घेरा, शाम को सीएम योगी की सचेतक मंडल, एनडीए विधायकों के साथ मंथन। चढ़ावा चोरी पर संसद वाला ड्रामा थाने तक पहुंचा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, साधु संतों ने कराई एफआईआर, हावड़ा में पुतला फूंका गया। पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आई, संगरूर के बाद बरनाला की बैठक में भी चन्नी जिंदाबाद के नारे, बघेल वर्डिंग की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। ड्रग्स फ्री इंडिया के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ जेंजी से सीधा संवाद किया, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। और कश्मीर से लेकर केरल तक बारिश से बेहाल, गांदरबल में बादल फटने से आई बाढ़, गुजरात में खेड़ा, नवसारी, साबरकांठा में सूरत तक भारी तबाही, महाराष्ट्र के नांदेड़, जालना में भी त्राही त्राही।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन में हम आपको आगे दिखाएंगे भारी बारिश और बाढ़ से बदहाल आधे हिंदुस्तान की तस्वीर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस देकर पूछताछ शुरू की गई। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने दोबारा पूछताछ की तैयारी की। ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। बैंक खातों, संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच जारी। जांच टीम ने फॉरेंसिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ सीए भी शामिल। दान पेटियां अलग अलग दिनों में खोली जा रही है। 360 डिग्री कैमरों और वीडियोग्राफी से रिकॉर्ड हो रही है पूरी प्रक्रिया। अवधेश प्रसाद का पुतला फूंके जाने पर बीजेपी पर बरसे पवन पांडे बोले, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी चुप रही। E20 पेट्रोल और जौहर यूनिवर्सिटी होने के मुद्दे पर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, बोले पीडीएस समाज को पढ़ने नहीं देना चाहती सरकार। अखिलेश को लेकर बोले, आरक्षण को लेकर अखिलेश ने बोला, हमने लैपटॉप और इंटरनेट दिया, नई पीढ़ी अपनी बात खुलकर रख रही है, नौकरियां घटाकर आरक्षण से बच रही है सरकार। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए। कार्यकर्ताओं की साजिशों से सतर्क रहने की भी अपील। मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से निष्कासित किए गए, कहा अब पार्टी में कभी वापसी नहीं होगी। नशा मुक्ति कार्यक्रम में बोले सम्राट चौधरी ने कहा शराबबंदी के बाद बिहार में बदलाव आया, शराबबंदी से बिहार की स्थिति बदली है। पंजाब कांग्रेस की कैंपेन मीटिंग से पहले हंगामा, बरनाला में बैठक के दौरान चन्नी जिंदाबाद के नारे लगे। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने लगाए थे नारे। जिया सुल्ताना ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई, कहा कुछ लोग पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। बैठक में पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल समेत कई और नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नेता ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। संसद में भगवा चोला पहनने पर विवाद, हावड़ा में पप्पू यादव का पुतला फूंका गया, 3 सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा पहनने पर सफाई दी, कहा भगवा मेरा रंग है, आरएसएस की पपौती नहीं है। E20 पेट्रोल मामले पर गरमागी है सियासत, 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल के ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे, कहा वही लोग साथ आए जो लाठी खाने और जेल जाने से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्ते का अभियान शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत आज से हुई। नशे के खिलाफ हर रविवार देशभर में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। अभियान में 10,000 से ज्यादा स्थानों से जुड़ेंगे युवा। खेल, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के होंगे कार्यक्रम। नशामुक्त समाज बनाने के लिए जन भागीदारी पर रहेगा जोर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात, शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते हैं गोल्ड, अलग अलग वर्ग में मिला सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा, 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल, पदक तालिका में 4 नंबर पर पहुंचा। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दिए बधाई, अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है, वहीं गुजरात में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। इसी बीच दक्षिण में केरलम में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसका असर कई जिलों में नजर आ रहा है।

सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के बाद नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, जिंदगी मुसीबत में पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही है।

0: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
1: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और कहीं डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं।

गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई।

0: पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया। आज तक ब्यूरो।
1: और असम में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही यहां पर हुई है। अब तक बाढ़ के चलते असम में 82 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं शिवसागर जिले के। इसी बीच शिवसागर से अभिनेता रणदीप हुड्डा की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां वो राहत और बचाव कार्य में मदद करते हुए नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जानकारी यह है कि 82 लोगों की यहाँ जान जा चुकी है और लगातार भरा हुआ जो पानी है अलग अलग जगहों पर कई जगहों से संपर्क काट चुका है और ये सबसे बड़ी परेशानी निचले इलाकों के लिए बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश के बाद बीएसएफ कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था। कैंप में अचानक से पानी घुसने की वजह से जवानों को जान बचाने के लिए छतों पर पेड़ों का सहारा लेना पड़ गया। 7 जवान बैरक की छत पर बैठे हुए, 2 जवान पेड़ों पर और 1 जवान मेस की छत पर पूरी रात फंसा रहा, बैठकर इंतजार करते रहे रेस्क्यू का। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर सभी जवानों को रेस्क्यू किया गया। बात करेंगे केरलम की क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद यहां पर भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है।

0: केरला में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी और कई जगहों से भारी बारिश के बीच मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है, कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है, बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब पथानमथिट्टा का हाल देखिए, यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में, घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है, कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मैं उन्हें माफ करना चाहता।
1: पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला, जबरदस्त सियासी बवाल उठा। आंदोलन के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां हुई, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए गाली देने वाले छात्रों को माफ कर दिया।
0: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
1: लेकिन पीएम मोदी की इस पहल के बाद भी सवालों और हमलों का दौर जारी है। पीएम के इस वीडियो पर अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया है और मांग की है कि पीएम मोदी को माफी देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए।
2: कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है।
1: पीएम मोदी के संदेश और युवाओं से उनकी अपील के बीच कुछ ऐसे ही तेवर विपक्ष भी दिखा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवार से मुलाकात की, तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, हर युवा की मौत के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जिसका दर्द कभी खत्म नहीं होता। इसके साथ ही हमारी टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं और सालों की तैयारी एक ही रात में बर्बाद हो जाती है। हमारे छात्रों से कहा जाता है कि वो ईमानदारी से मेहनत करें, लेकिन जिस सिस्टम में वो मेहनत कर रहे हैं वही उनके साथ ईमानदार नहीं है। इसके साथ ही पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने लिखा, उन्होंने ना तो किसी ऐसे माता पिता से मुलाकात की है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है और ना ही किसी ऐसे छात्र के साथ बैठे हैं जिसका भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया। छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक पर कड़े कानून के बावजूद इस मुद्दे पर सियासत थमी नहीं है और इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
1: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये खुलासा बेहद सनसनीखेज है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है।
2: जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को चौपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे। और एसटीएफ ने यह भी बताया कि हालिम जिसको पकड़ा गया है, जो उग्रवादी है, उसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर वो लोग इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जाए और वहां पे कोई कैओस तैयार करे, कैओस करे और सरकार की नाम को खराब करे, मोदी जी की नाम को खराब करे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
1: हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जो भी मॉनसून सत्र से पहले सियासी एक्शन, अखिलेश ने 26,000 स्कूल बंद करने का लगाया आरोप, चढ़ावा चोरी पर भी घेरा, शाम को मुख्यमंत्री योगी की सचेतक मंडल, एनडीए विधायकों के साथ मंथन। चढ़ावा चोरी पर चिड़ी सनातन की जंग, बीजेपी और साधु संतों ने पप्पू यादव के प्रदर्शन पर खोला मोर्चा, थाने तक मामला, हावड़ा में फूंका गया पुतला। पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई खुलकर आई सामने, संगरूर के बाद बरनाला की बैठक में भी चन्नी जिंदाबाद के नारे पर बघेल, वर्डिंग की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। ड्रग्स फ्री इंडिया के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ जेंजी से किया सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। और कश्मीर से केरल तक बारिश से बेहाल गांदरबल में बादल फटने से आई बाढ़, गुजरात के खेड़ा, नवसारी, साबरकांठा से सूरत तक भारी तबाही, महाराष्ट्र के नांदेड़, जालना में भी त्राही त्राही।

जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, साफा पूरा इलाके में कई घरों में भरा पानी। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव का अभियान शुरू किया, नुकसान का आकलन कर रहे हैं अधिकारियों की टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते को अब साफ किया जा रहा, बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश से चिकतान और समरा इलाके में अचानक आई बाढ़, कई निचले इलाकों में पानी भर गया। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच में लोग पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर के डल झील में भी खूबसूरत नजारा दिख रहा है, लेक किनारे के वुड हाउस में लोग मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। बारिश से पूरी तरह से भीगी श्रीनगर की सड़कें नहाए हुए से नजर आए पेड़ पौधे भी। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भरा पानी, गंगा किनारे बसे लगभग आधा दर्जन गांवों का कटान का भी खतरा बढ़ा। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, पीड़ितों और राहत के काम में लगे हुए वॉलंटियर्स से बातचीत की, मदद का भरोसा भी दिया। केरला में कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है, कन्नूर में बालपट्टनम नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली। कन्नूर में भारी बारिश के बाद वायाथुर पुल पूरी तरह से डूबा, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप। कन्नूर में राहत बचाव दल पूरी तरह सक्रिय, कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरलम के इडुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलनकारा बांध के 5 गेट, प्रशासन ने जलस्तर पर नजर रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कन्नूर के श्रीकंडापुरम नगर पालिका इलाके में जोरदार बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील। केरलम के पठानमथिगा में जल भराव के बाद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग, अरनमुला इलाके में खोले गए राहत शिविर। कर्नाटक के कबीनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी, भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ा। कबीनी बांध में अचानक से 40,000 क्यूसेक पानी पहुंचा और बांध की सुरक्षा के लिए जलस्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। कावेरी नदी के आसपास जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई, बांध और नदी की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसटीएफ ने जांच की तेज, 200 से ज्यादा लोगों के नोटिस और पूछताछ भी शुरू। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारियां हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी फिर पूछताछ। बैंक खातों, संपत्ति और दस्तावेजों की गहन जांच जारी है, जांच टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ वरिष्ठ सीए भी शामिल है। दानपेटियां अलग अलग दिनों में खोली जा रहे हैं, 360 डिग्री कैमरे और वीडियोग्राफी से रिकॉर्ड भी हो रही है पूरी प्रक्रिया। अवधेश प्रसाद का पुतला फूके जाने पर बीजेपी पर बरसे पवन पांडे, पवन पांडे बोले कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी चुप रहे। E20 पेट्रोल और जौहर यूनिवर्सिटी होने के मुद्दे पर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश, बोले कि पीडीएस समाज को पढ़ने नहीं देना चाहती सरकार। आरक्षण को लेकर बोले अखिलेश यादव कि हमने लैपटॉप और इंटरनेट दिया, नई पीढ़ी अपनी बात खुलकर रखती है, नौकरियां घटाकर आरक्षण से सरकार बच रही है। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, के राज्यों के प्रभारी बदले, कार्यकर्ताओं को साजिशों से सतर्क रहने की अपील। मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से निष्कासित, कहा कि अब पार्टी में कभी नहीं होगी वापसी। नशा मुक्ति कार्यक्रम में बोले सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में बदलाव आया। पंजाब कांग्रेस की कैंपेन मीटिंग में फिर से हंगामा, बरनाला की बैठक के दौरान लगे चन्नी जिंदाबाद के नारे। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने लगाए नारे और जिया सुल्ताना ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई, कहा कि कुछ लोग पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे, कांग्रेस नेता उन्हें कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। संसद में भगवा चोला पहने पर विवाद, हावड़ा में पप्पू यादव का पुतला दहन किया गया, 3 सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा पहने पर दी सफाई, कहा कि भगवा मेरा रंग है, आरएसएस की बपौती नहीं है।
पीएम मोदी ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। 100 हफ्तों तक चलेगा कार्यक्रम। देशभर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। पीएम मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश। पीएम मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला। अगले 100 रविवार तक चलेगा नशा मुक्त अभियान। पीएम मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की बात कही। 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सती नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत। नहाने के लिए गए थे 4 बच्चे, जिसमें से 3 की मौत हो गई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। हंगामे के बाद वहां जाम लगा रहा। एमपी के खरगोन में उफनती नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूबे। एक दोस्त तैरकर किनारे के पहुंचा, दूसरे की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नल जल योजना में बड़ा हादसा हुआ। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन हो गया। 4 दिन के बाद मिट्टी के अंदर शव मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चा। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में कावड़ का रूप दिया गया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न। मां बोली की बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जालंधर में डीएवी हार्ट रेलवे स्टेशन के पास में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर घायल। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी से बरामद। 30 दुर्गंध आने के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में सोना मिला। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को भी स्वर्ण पदक मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल। पदक तालिका में भारत 4 नंबर पर। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम मोदी के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट करके दी शाबाशी। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पति ने पति की हत्या कर दी। नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाकर मर्डर किया। आरोपी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शक है। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई में शिपिंग कारोबारी से 41 लाख रुपए की ठगी। निवेश पर 2 गुना रिटर्न देने का लालच देकर ठगी का आरोप है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा के सोनीपत में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चांदी के गहने लेकर 2 बदमाश फरार, जिसमें से 1 को लोगों ने पकड़ लिया। इंदौर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। सड़क पर हंगामा करने और महिला को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी। स्थायी अवैध निर्माण को हटाने के प्रशासन के एक हफ्ते का अल्टीमेटम था। मेरठ में सरकारी बस अड्डे पर रिटायरमेंट पार्टी में महिला डांसर का वीडियो वायरल। बस ड्राइवर की विदाई पार्टी में सरकारी परिसर में आयोजन पर सवाल उठे। अमरावती में मूसलाधार बारिश से 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल डूबी। बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण। 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय अचानक आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट में 4 घर भी जल गए। 10 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा। बीमा के 44 लाख पाने के लिए हत्या की गई। पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा। प्रेम प्रसंग से नाराजगी में वारदात को दिया गया अंजाम। अमेरिका के इडाहू में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, कई लोगों की मौत। हमलावर भी मारा गया। इडाहू में हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 5 लोग इसमें घायल।
घटना के बाद इलाके में सड़कें बंद की गई। कई एजेंसी इस मौके पर लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इलाके में खतरा खत्म होने का भी दावा किया। मॉस्को में कैफे के पास में धमाका, 3 लोगों की मौत। धमाके में कम से कम 15 लोग घायल भी हैं। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीमें। मॉस्को पुलिस ने धमाके की जांच शुरू की। पेरू में एक पर्यटक विमान हादसा हुआ। 13 लोगों की इसमें मौत। नास्का लाइंस के ऊपर उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे की जांच में जुटे हैं विमान के अधिकारी। हादसे में इटली के पर्यटकों के होने की भी आशंका है। पीयूके की स्थिति पर ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने जताई चिंता। बातचीत और वार्ता जल्द शुरू करने की मांग। खून खराबा नहीं होने देने की भी चेतावनी।

0: हम छत्रपति संभाजीनगर में हैं और छत्रपति संभाजीनगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं सर। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
1: सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बोला था और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट,
0: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
1: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी और उसके साथ कुछ
1: रिफॉर्म्स, व्हाइट पेपर आना चाहिए,
0: व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं।
1: तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है, 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते 50-50 करोड़ के, लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया।
0: उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन,
1: सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं, फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलए खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है, सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारे रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
0: लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है, ठीक है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया है एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, 2 नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं, एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश कर रही है, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार?
1: नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो।
0: ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ,
1: होना भी चाहिए
0: लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा।
1: मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज आ रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है, मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से।
0: उनका ये कहना था कि हम तो, वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना है वो कानूनन पॉसिबल है।
1: कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका हारमाला डालकर, बलात्कारियों का आप हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है
0: तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट?
1: नॉट एट ऑल सर, मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
0: जो पुल उनके पास है उसमें से ही
1: एग्जैक्टली,
0: मैं कल ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से ही,
1: मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
0: कौन आपके चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
1: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार?
0: मतलब आपके दिमाग में कोई
1: नहीं? मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था, मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि एक ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार, दूसरों को बना देते। बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे।
0: ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को आगे।
1: आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर, मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती है या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार, अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट को, रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कांट सपोर्ट दिस सर।
0: क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
1: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं, अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे, और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते, तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा, बचेगा सर।
0: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
1: हम बता देंगे उस पर, अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
0: नहीं। उम्मीद क्या है सरकार की तरफ से, कोई बयान आना चाहिए इस पर?
1: ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर, डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पेलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में?
0: सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ।
1: तो ये बाहर क्यों थे?
0: हिस्ट्री शीटर्स जो बेल पर बाहर होंगे,
1: या किसकी गलती है?
0: केसेस चल रहे हैं,
1: किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर।
0: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
1: जो स्टूडेंट
0: आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको
1: मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था, ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं इस प्रोटेस्ट के स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है, जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते। वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती जो कम्प्लीटली डैमेज है, पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा, अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है, एनडीएमसी का ट्रक है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था। और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था, तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे?
0: फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के लेकर, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई है सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर
1: मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा। और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे।
0: तो जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना?
1: कोई लेना देना नहीं सर।
0: समबड़ी प्लांटेड इट,
1: प्लांटेड इट, नॉट समबड़ी, द बीजेपी प्लांटेड इट। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, द बीजेपी प्लांटेड इट। हम एक महीने से सर प्रोटेस्ट करते, एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, एक महीने में क्यों नहीं हुआ, उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठिया जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठिया दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठिया किसने दी? पुलिस की लाठिया थी वो, जो ट्रांसपेरेंट लाठिया होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे, तो उनके पास लाठिया कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स?
0: क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी देखी नहीं थी।
1: इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे, उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है, दे आर डूइंग अ बिग मिस्टेक।
0: सरकार की तरफ से आपको पहला कॉन्टेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए?
1: सरकार को जो पहला कॉन्टेक्ट था वो 20 के पहले ही था। हाँ। जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट्स मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही
0: है, सपोर्ट हो रहा है।
1: सो दैट इज व्हेन दे इनवाइटेड अस फॉर
0: डायरेक्टली आपको था या सोनम वांगचुक के लिए था?
1: नहीं, डायरेक्टली सौरभ था, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था। पुलिस वाले थे कि आप आइए, बात करना चाहते कुछ लोग, तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
0: लेकिन सोनम वांगचुक, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।
1: yes.
0: और आप कहते हैं कि हम तो हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा, शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको बता
1: के उनके वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया,
0: क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी ऐसा लग रहा है सरकार
1: उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था सर, उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई करना था कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। एंड हाउ वियर्ड इज दिस, जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपी जाते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, मैं मिलने को ट्राई करता हूँ मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था जहां पर बस किडनैपर ही मिल सकता है उनसे।
0: बट उनका खत देख के मुझे भी आश्चर्य लगा क्योंकि उसमें तो वो लिख रहे थे कि मैं तो अनशन तोड़ रहा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार के लिए, मतलब उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी एक तरीके से जो लग रहा था।
1: इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब मैं सर से खुद रिक्वेस्ट कर रहा था जब उनके अनशन को मुझे लगता है 10-12 दिन हुए थे एंड आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, तो मैंने सर को तभी बोला था सर आप अनशन तोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट हम आगे जारी रखेंगे इस्तीफे तक, ये हमारी जिम्मेदारी है।
0: But he seems to be out of the moment now completely. वो बिल्कुल आपके
1: वो अभी रेस्ट कर रहे हैं सर, ही इज ऑल्सो रेस्टिंग, मैं भी बीमार
0: But he's still part of
1: yeah, yeah. और मैं भी बीमार था हाँ। तो मैं भी रेस्ट कर रहा था, वो भी रेस्ट कर रहे
0: हैं, बीमार है लेकिन फिर भी आप तो बात कर रहे हैं आप वही मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन सोनम फाग चुप तो नहीं दिख रहे,
1: वो अभी लद्दाख चले गए ना, एंड सोनम सर का एक है वेरी यू नो ही इज अ ट्रू गांधीयन,
0: ओके
1: ही इज अ ट्रू गांधीयन, तो उनका वो है कि आई विल कम फॉर द कॉज, उसके बाद में मेरे लद्दाख में चला जाऊंगा, आई विल रेस्ट, आई विल रिकवर, मतलब ही इज टू मच इन टू मेडिटेशन पीस एंड ऑल दैट, एंड मैं सीख रहा हूँ उनसे कुछ चीजें, क्योंकि वो मुझे भी बोलते हैं अभिजीत तुम ना थोड़ा शांत रहा करो, सर मैं ट्राई तो करता हूँ बट अभी आपके जैसा बनने में टाइम लगेगा मुझे।
0: पॉलिटिक्स पे बात करना जरूरी है क्योंकि आंदोलन होता है तो पॉलिटिक्स होती है, और बिकॉज आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आशुतोष रांका जो आपके
1: जुड़ा हुआ था
0: बेसिकली, तो चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कहीं हर प्रोटेस्ट में ये देखा गया, जैसे अन्ना आंदोलन था तब भी ये कहा जा रहा था कि आरएसएस कोई उनको मदद करने की कोशिश कर, आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगता था। आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी, तो क्या सपोर्ट था उनका, नहीं था, वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की, नहीं की?
1: सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी जो आपकी खुद की रिपोर्टर है, वो वहां पर एक हफ्ता थी।
0: पर वो कैसे पहचाने की आम आदमी पार्टी का है कि नहीं?
1: उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने क्राउड देखी है, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहां से आए कहां से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए? 70-80% लोग हाथ उठाते थे, इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल थी, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व, पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल था, एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार झारखंड मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरला यहां से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन से
0: आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसी बात को लेकर गुस्सा था उस बात को लेकर,
1: इसलिए नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर, एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए।
0: बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम कर
1: रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे,
0: वो तो आंदोलन के बाद मिलने
1: पर आए थे, इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है।
0: आपने एकनाथ शिंदे के इंटरव्यूज देखे?
1: मैंने नहीं देखे, अच्छा, क्योंकि वहां जंतर मंतर पर तो जैमर्स लगे हुए थे, तो मैं कहां से देखूंगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
0: मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। इस बीच एक घटना ऐसी हुई कि राहुल गांधी ने अचानक आंदोलन शुरू किया प्रधानमंत्री आवास के सामने, कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद वहां पर जाकर पहुंच गए और वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ। पहली प्रतिक्रिया उस बात को लेकर बीजेपी से भी पहले प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी से कि ये आंदोलन में फूट डालने की कोशिश है, ठीक है, राजनीति वहां से शुरू हो जाती है। सवाल इसीलिए उठता है कि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने पूरा उसका जो आंदोलन का जिम्मा है वो उनके पास है और राहुल गांधी उस पर फूट डालने की, यह आरोप उनके तरफ से लगा।
1: देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पॉलिटिक्स चलता रहेगा, उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस हो जिसका जो पॉलिटिक्स करना है वो करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन की जहां तक बात है, ये आंदोलन पूरा इंडिपेंडेंट रहा, इट वॉज टोटली रन बाय द पीपल। वहां पर जो खाना बट रहा था जो मैनेजमेंट थी उसके लिए भी कई सारे लोगों ने डोनेट किया है, मतलब पहले तो लोग आकर कुछ प्रोफेसर आकर कहते थे कि 4 दिनों का खाना हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनके यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाएगी। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आकर कहा कि रोज रात का डिनर हमारी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से रहेगा। सो इट वॉज कम्प्लीटली रन बाय द पीपल। और मैं आंदोलन के ऊपर एक चीज कहना चाहता हूँ सर, हमारे देश में जब जब आंदोलन होता है ना, अन्ना आंदोलन के वक्त में स्कूल में था तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, थोड़ा बहुत टीवी पर देखा क्योंकि टीवी पर 24/7 दिखाया जाता था। जब जब इस देश में आंदोलन होता है उसको बदनाम किया जाता है, इट वॉज नॉट जस्ट अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन जब हुआ तब उसे क्या पेंट किया गया, ये तो खालिस्तानी लोग है, ये एंटी इंडिया लोग है। उसके बाद डॉक्टर्स का एक कुछ हुआ था, डॉक्टर्स को भी पाकिस्तान से जोड़ा गया, सीएनआरसी को भी आप लोगों ने क्या बोल दिया, बांग्लादेशी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बाद में अभी जो रिसेंटली नोएडा का जो हुआ था वर्कर्स का प्रोटेस्ट, उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो इस देश में जब जब आंदोलन होते हैं हमेशा किसी ना किसी से जोड़कर उसको बदनाम किया जाता है। हम लोग ये भूल जाते हैं हमारा जो देश बना है, जो देश खड़ा हुआ है वो आंदोलन से खड़ा हुआ है। जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी तब वो डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हुई वो आंदोलन से हुई है। तो देश में जब भी आंदोलन होगा ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो इट बिकम्स अ पब्लिक मूवमेंट।
0: वो ठीक है, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर अब वो सरकार पर निशाना बनाने की कोशिश करें, वो नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, क्योंकि पेपर लीक तो आज नहीं हो रहा है, पेपर लीक तो सालों से हो रहा है, 2024 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, 26 में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप वहां पर आंदोलन के लिए उतर आए, लेकिन विपक्षी पार्टियां सड़क पर नहीं उतरी। अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी सड़क पर उतरे, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो देखते हुए विपक्षी पार्टियों को लगा भीड़ है हमको जाना चाहिए, और वो आपके कंधे पर बंदूक रख के अब सरकार
1: पर मुझे लगता है इंडिया को
0: आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष।
1: बिल्कुल सर, मतलब
0: पॉलिटिक्स के लिए
1: हम बच्चे सर, इतने भी बच्चे नहीं कि हमें कोई एक्सप्लोइट कर ले। मतलब पढ़ लिख कर आया, मैं यूएसए पढ़कर आया हूँ, आशुतोष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया, सौरभ बहुत ही बड़ा लीगल जर्नलिस्ट रह चुका है, वैष्णवी जो है वो सरकार के साथ काम कर चुकी है, मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी है वो बड़े बड़े, तो रत्ना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस
0: कर,
1: तो बच्चे नहीं है सर हम, हाँ उम्र में बच्चे हैं बट दुनियादारी।
0: तो आपको समझ में आता है कोई अगर आपका पॉलिटिकली इस्तेमाल
1: कर, आपको समझ में आता है सर हमें,
0: आपको लगा ऐसा कि पॉलिटिकली इस्तेमाल?
1: नहीं नहीं, हमने तो मतलब इसलिए हमने पहले से बोल दिया था कि अगर कोई भी आना चाहता है हमें सपोर्ट दे, आर फ्री एंड दे विल बी वेलकम हियर, बट एक कंडीशन है हमारी, आप अपने पार्टी का फ्लैग नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे, आपको यहाँ बात करनी है तो स्टूडेंट्स
0: मुद्दे पर बात,
1: मुद्दे पर बात करनी है, एंड दे रिस्पेक्टेड इट एंड दैट्स व्हाई वी वर वेलकमिंग देम।
0: व्हाई नाउ, व्हाई एजिटेशन नाउ? पेपर लीक इस देश की पुरानी समस्या है, राजस्थान के मतलब अगर आप आंकड़े निकाले तो समझ में आता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये टॉप पर है दोनों राज्य। दूसरा एक आरोप ये लग रहा है कि व्हाई ओनली एनटीए, व्हाई उसी नीट पेपर लीक को लेकर ही क्यों? आज झारखंड के भीतर पेपर लीक हुआ है जेपीएससी का, पंजाब के भीतर पेपर लीक है, महाराष्ट्र में पेपर लीक है, कर्नाटक में पेपर लीक है, हर जगह जाके आप वही मांग रखेंगे कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा, वहां के मंत्रियों का इस्तीफा।
1: इस पर मैं वाई नाउ पर बोल देता हूँ सर। हाँ। तो पहली चीज, मैं तो यूएस में था,
0: ठीक,
1: मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने किया ना, ऐसा तो नहीं चाहता तो मैं यूएस में रहता था, रह सकता था, 22 मिलियन की फॉलोइंग मिल चुकी थी मुझे, 22 मिलियन की फॉलोइंग में मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता, मैं पैसे कमा लेता इंस्टाग्राम से, आई हैड दैट ऑप्शन बट आई चूज टू कम बैक एंड टू फाइट इट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो मैंने वो करा। और दूसरा चीज मैं आशुतोष का बोल देता हूँ, आशुतोष पिछले 1.5 साल से राजस्थान में पेपर लीक पर ही काम कर रहा है, वो अलग बात है, आप लोग अभी फुटेज दे रहे हो,
0: नहीं वो तो ठीक है, कई बार कई चीजें सतह पर नहीं आती,
1: exactly,
0: वो तो ठीक है, वो तो हर जगह।
1: रही बात महाराष्ट्र की, जब मैं पुणे में था एमपीएससी के मुद्दे पर जब भी आंदोलन होता था आई यूज्ड टू गो देयर एज अ स्टूडेंट, कल जो मुझे एमपीएससी के स्टूडेंट्स मिलने आए थे पुणे से जो मेरे से उम्र में काफी बड़े, उनका नाम एक महेश है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुझे याद है तू एमपीएससी के प्रोटेस्ट में आया था, तो मैंने बोला हाँ दादा मैं आया था मुझे याद है। तो एज एन इंडिविजुअल जब जब होता था हम पार्टिसिपेट करते थे जहां जहां जरूरी है सर,
0: ठीक,
1: बट बिकॉज सीजीपी इतना बड़ा बन गया तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला एंड वी डिड समथिंग विद इट। मतलब 12 साल में जो सरकार कहती थी सरकार में इस्तीफे नहीं होते और बहुत ही एरोगेंटली कहती थी, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया सर, तो व्हाई नाउ की जगह इट्स गुड दैट हैपेंड,
0: झुकती है झुकाने वाला चाहिए। मुझे अभी भी याद है आपका वो स्टेज पर होके जो आप खुश हो रहे थे या खुशी जता रहे थे,
1: वो थोड़ा एड्रेनलिन रश आ गया था, टाइफाइड में भी मतलब थोड़ा आई फेल्ट वेरी एनर्जेटिक क्योंकि इट वाज रिमार्केबल सर। मतलब मैं क्या बोलूं, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। आप अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं फोन पर बोल रहा था यार कंफर्म कर लो एक बार सच्ची न्यूज है या नहीं है, क्योंकि हमें तो कैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, हम तो सोच रहा था लंबा खेल।
0: इसीलिए तो सवाल उठता है ना फिर बाकी लोगों, क्या झारखंड में जाके इस्तीफा मांगा जाएगा, क्या पंजाब में इस्तीफा?
1: जहां जहां एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, जहां जहां कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कुछ गलत होता है, एजुकेशन सिस्टम में गलत होता है, वी विल गो देयर सर, बिकॉज द पीपल हैव होप्स फ्रॉम अस नाउ, क्योंकि पहला ही प्रोटेस्ट में हमने डिलीवर कर दिया तो अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है, सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज मच एज पॉसिबल, बट हम लोग भी नहीं है सर, मतलब ये पहला प्रोटेस्ट था जो हाँ हमने ऑर्गेनाइज
0: किया। सीख मिली इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो अपना व्यक्तिगत गुस्सा निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज की गई, उस बात को लेकर भी काफी चर्चा है कि उसको लेकर अभी जीरो एफआईआर भी किया गया है, रुचिका सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो एफआईआर जो हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, पोस्टर्स वहां पर लगे हुए थे उस बात को लेकर भी, तो क्या आपको ये सीख मिली कि ये सारी चीजें अगर दूर रखेंगे तो बेटर रहेगा, या आपको लगता है इट्स पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट और ये होता रहेगा इसी
1: तरह? सर, गाली गलौज का तो
0: दिस इज हाउ न्यू जनरेशन एक्सप्रेसेस देमसेल्फ।
1: गाली गलौज का तो मैं कंप्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्यों हैरेस करना चाहिए? पुलिस आकर सर फोड़ रही है, पुलिस आकर लाठियां चला रही है, और बदले में बच्चे क्या कर रहे हैं? वो मीम्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक देर कुड बी एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस। दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब मीम से दिया जाएगा, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब ह्यूमर और सटायर से दिया जाएगा।
0: इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है और रातों रात 22 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, उसके बाद चर्चा ये हो रही थी कि ये लाइक करना है इसके लिए बड़े आसान है, लोग यहां पर उतर रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सड़क पर भी वही लोग उतर सकते हैं। बिल्कुल यकीन नहीं था। प्रोटेस्ट आपने कूल बना दिया, आपको लगता है आज की भाषा में अगर बात करें तो, टू गो टू द प्रोटेस्ट इज बीइंग कूल।
1: इट्स अ गुड थिंग फॉर अ प्रोटेस्ट टू बी कूल, इट्स अ गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। हमारे देश में एक टैबू बना दिया था प्रोटेस्ट को, आंदोलनजीवी नाम का वर्ड यूज किया गया था बाय द ऑनरेबल पीएम और जो सीएनआरसी के वक्त कहा गया था, लाइक इट वॉज वेरी शेमफुल कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं आप उनको उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। क्यों आप क्या कर रहे हो कपड़ों से पहचान कर, क्या मतलब? क्या कहा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लोग एक सर्टन तरीके के कपड़े पहनते वही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो लोग सर्टन कपड़े पहनते वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो सभी को इक्वल राइट्स दिए, सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड?
0: बड़ी दिलचस्प बात है, अभी आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया है इसके लिए। जब घोषणा हुई आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी, एक तस्वीर लेकर आपको कंधे पर उठाया था लोगों ने, और आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी। अन्ना आंदोलन के समय पे पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन आपके हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन?
1: इसके ऊपर तो मतलब एक चीज ये, आई कम फ्रॉम अ दलित फैमिली, सो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। माय डैड गॉट एजुकेटेड बिकॉज ही रिसीव द फैसिलिटीज दैट वर प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो अगर पढ़ाई नहीं करते तो मैं एक अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाता, और फिर मैं कहां से यूएसए जाता? मैं गांव में होता, खेती करता, मेरे पापा खेती करते, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो। क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली वाले, इमीडिएट फैमिली वाले, मेरे चाचा हो, मेरी बुआ हो, कोई लोग ये मिसकंसेप्शन ना रखे कि मैं यूएसए में जाकर आया हूं तो मैं बहुत ही बड़े खानदान से आता हूं, ये वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा अभी भी छोटे से गांव में, छोटे से घर में रहते हैं, मेरी बुआ अभी भी खेतों में काम करती है, तो उन लोगों को तो एजुकेशन का वो पढ़ नहीं पाए, बिकॉज माई डैड उनका था एक एजुकेशन का जिद, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उनको प्रिविलेजेस, उसकी वजह से वो पढ़ पाए। बट मेरी सारी फैमिली आज भी गांव में ही रहती है, खेती करती है, डेली वेज लेबरर्स। मेरे बहुत सारे इमीडिएट कजन्स, मेरे फर्स्ट कजन्स अभी भी सर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर कम्युनिटी। लेकिन उस कम्युनिटी से हम बाहर क्यों आ पा रहे? बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो एक। और दूसरा चीज, हमारे देश में ना क्या हुआ है सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक रखा गया है,
0: उनका नेता बनाकर
1: रख दिया है। वी डोंट रियलाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट किसी का करा है वो वुमेन का करा है। अगर वुमेन नहीं होती तो क्या उनको जॉब के राइट्स होते? वुमेन नहीं होती तो क्या उनको राइट टू इक्वालिटी होता? प्रॉपर्टी के राइट्स किसको दिए वुमेन ने? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते थे, इस देश की औरतों को उनके अपने घर वाले प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते। इट वॉज डॉक्टर बाबा साहेब हु एंश्योर दिस कि औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए, लड़कियों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आज भी हमारी देश की औरतें बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही होती। और बस वुमेन नहीं सर,
0: और उसी अधिकार के तहत प्रोटेस्ट का भी अधिकार उन्होंने दिया है,
1: प्रोटेस्ट का भी अधिकार दिया है। और वही नहीं, डेली वेज लेबरर्स जो वर्किंग आवर्स है, मिनिमम वेज है, वर्कर के राइट्स किसने दिए आपको? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड जय भीम इज नॉट अ स्लोगन फॉर दलित्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज, इट इज अ स्लोगन फॉर एवरी पर्सन हु इज ऑप्रेस्ड इन दिस कंट्री। तो ये मिसकंसेप्शन हमें हटा देना चाहिए। एंड मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक प्राइड की बात थी कि जहां पर सारे लोग बिना किसी हेजिटेशन के जय भीम का नारा लगा रहे, and I think this is very beautiful for this country.
0: ये नारा कितनी बार देखने मिलेगा हमें इस तरीके से प्रोटेस्ट में?
1: जब जब मैं ग्राउंड पर जाऊंगा।
0: कितनी बार जाएंगे, किस बात मुद्दे पर?
1: हर बार,
0: यही मेरा सवाल।
1: हर बार जाऊंगा, और थैंक्स।
0: क्या रोड मैप है क्या आपके पास?
1: अभी बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 महीने हुए हैं और 2 महीने से 1 महीना तो जंतर मंतर पर ही चला गया है। तो अभी वही टीम के साथ हमारे डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है। पहली जो हमें चीज करनी है वो ये करनी है कि जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस। उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता
0: किसी भी पार्टी का,
1: किसी भी पार्टी का। हाँ। मैं ये सारे लोगों की
0: नेता बनने के बाद कोई सुनता नहीं,
1: कोई सुनता नहीं, बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, या इन लोगों को पता ही नहीं हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते, अपने आप से इशू उठा लेते और अपने आप से सारी चीजें कर लेते। नोबडी आस्क्स, इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो जो हमें पहली चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स।
0: नहीं बट कोई तो 3 पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे बढ़ूं।
1: अभी जो है एजुकेशन का ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार झारखंड,
0: किसी की भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की सरकार
1: किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी हो। ये जो बीजेपी वाले ना जानबूझकर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे क्या? एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन।
0: तो एक हो गया एजुकेशन,
1: यस,
0: ठीक है। दूसरा,
1: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो 26-27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे सर। और कहीं ना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक चीज है और एक मैंने नोटिस करी है थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट, लोगों का इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है हम वोट किसी को भी दे दे, क्या फर्क है, क्या पॉइंट है उसका। जब वोट किसी को भी दे रहे वो जाकर कर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आ ही नहीं है। लोगों का ये बहुत बड़ा ग्रज है।
0: अभिजीत दीप के नेता बन गया अभी?
1: नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
0: आपको कंधे पर, जिसको कंधे पर उठाया जाता है वो नेता
1: सर। मैं इसके खिलाफ हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम,
0: नेता बनने में बुराई क्या है?
1: बुराई कोई नहीं है,
0: फिर
1: बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं हीरो बना देते हैं, बुराई उसमें। हमारे देश,
0: चलिए उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के आंदोलन में एक बार फिर मुलाकात आपसे होगी।
1: ऑफ कोर्स,
0: कौन सा आंदोलन करेंगे उस पर हम भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए, और ये बातचीत इसी तरीके से चलती रहे इसी उम्मीद के साथ।
1: ऑफ कोर्स,
0: फिलहाल तो हम विदा लेंगे आपसे।
1: थैंक यू सो मच।
2: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन प्रधानमंत्री जी। सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
7: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश पर फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाए। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है, यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है। इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है। वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है। जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है। जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं, वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में जिप्टो, शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है, जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश इससे पहले कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई, कर्ज, वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा। वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अभियान के लिए 1 करोड़ जेंजी से प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार।

तैयार विपक्ष योगी के घर सचेतक मंडल के बैठक में माथापच्ची। संसद के सामने साधु की वेशभूषा को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज ने किया घोर विरोध, बीजेपी की उत्तरी केस भी दर्ज करवाया।

0: धर्मशाला में चन्नी जिंदाबाद के नारे, वगेल और वडिंग भी की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। कश्मीर से केरल तक बारिश से बेहाल, गांधरबल में बादल फटने से आई बाढ़, गुजरात में खेड़ा, नवसारी साबरकांठा से सूरत तक भारी तबाही, महाराष्ट्र में नांदेड़ और जालना में भी त्राही त्राही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 5 महीने में 5 बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले करने का दावा किया और फिर यूटर्न ले लिया, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन तमाम चीजों के पीछे इस बार हालात बहुत ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न ना सिर्फ अमेरिका के कम होते हथियारों की वजह से लिया गया है, बल्कि अमेरिका चाहता है कि वो अब ईरान पर ऐसे हमले करे जो निर्णायक मोड पर इस युद्ध को ले जा सके। यानी अभी ये सिर्फ धोखे के तौर पर देखा जा रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक और भीषण जंग की तैयारी अमेरिका और इसराइल मिलकर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। लेकिन आज रणभूमि में हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन रणभूमि स्पेशल में आपको सबसे पहले आपको कुछ हैरान करने वाली और कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आपको बताएंगे। जी हाँ, हमारी सबसे पहली खबर रणभूमि स्पेशल में, पहली खबर हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने वाकई युद्ध रोकना है या फिर ईरान को अमेरिका का ये एक सिर्फ धोखा है। रणभूमि स्पेशल में हमारी दूसरी खबर का जायजा लेंगे कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे अमेरिका की कोई सामरिक मजबूरी तो नहीं, या फिर ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं जिसको लेकर अमेरिका इस युद्ध में आगे बढ़ना चाहता हो। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको लिए चलेंगे मॉस्को में, जहां पर कल हुए धमाके के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है, और यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव इसके बाद और ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन में भीषण वार पलटवार एक बार फिर से देखने को मिलेगा। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको बताएंगे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, जहां पर बगावत की आग अब लाहौर तक पहुंच चुकी है। रणभूमि स्पेशल की पांचवी खबर में आपको दिखाएंगे चीन का वो युद्धाभ्यास जिसने अमेरिका और ताइवान में खलबली मचा दी, टेंशन पैदा कर दी है। आज रणभूमि में हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह सर होंगे, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ही घंटों पहले जो लगातार ईरान पर बड़े हमले की बात कह रहे थे, वो आखिरकार यू टर्न लेना क्यों पड़ेगा? ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी देने के एक दिन बाद ही आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मुलाकातों का दौर शुरू हो गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा और ट्रंप को सीज फायर का ऐलान भी करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और वजह हो, क्योंकि अमेरिका खुद इन हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। क्या सच में ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियार तेजी से कम हो रहे हैं, खासतौर पर इंटरसेप्टेड मिसाइल्स, और उनका खजाना लगातार कम होता जा रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं।

0: ٹرمپ نے کیا سب سے خطرناک حملہ ٹالنے کا اعلان. سیز فائر پر کیوں سہمت ہوئے امریکہ ایران. یدھ سے دوری ٹرمپ کی سب سے بڑی مجبوری. امریکہ کی میزائلیں پوری طرح تیار تھیں, لاکڈ اور لوڈڈ. کھاڑی دیشوں میں موجود 50,000 سینکوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا. ہرمز میں نوسینا حملوں کے لیے تیار تھی, تو پشچم ایشیا کے کئی دیشوں میں امریکی ملٹری بیس ایئر اسٹرائک کی تیاریوں میں جٹ گئے تھے. کیونکہ ٹرمپ نے کچھ ہی گھنٹوں پہلے کیبنٹ میٹنگ میں بھی صاف کہہ دیا تھا کہ دھوکے باز ایران کے ساتھ بات چیت کی اب کوئی امید نہیں ہے, اور اب وہ اتہاس کے سب سے خطرناک حملوں میں سے ایک کو انجام دینے جا رہے ہیں.
1: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day the 5 missiles were shot. We'll be hitting them very hard.
0: جب امریکہ اور ایران کے بیچ بھروسے کی کمزور دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی, تو پھر اچانک ایسا ہوا کہ ٹرمپ کا موڈ بدل گیا. ایسا کیا ہوا کہ حملے کو تیار امریکی سینا کو اچانک بریک لگانے پڑ گئے؟ اس سے پہلے کہ آپ کو اس کی وجہ بتائیں, پہلے یہ بتا دیں کہ 28 فروری سے چل رہے بھیشن یدھ میں اچانک ایسا کیا اعلان ہو گیا کہ پوری دنیا حیران ہو رہی ہے. اپنی تازہ سوشل پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ ایران کے خلاف سینی طاقت اور چھمتا کے ایسے استر پر تیار ہے جیسا دوسرے وشو یدھ کے بعد سے کبھی نہیں دیکھا گیا. اس کے باوجود ایران اور مدھیہ پور کے دوسرے دیشوں نے ہم سے کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے کہا ہے, کیونکہ ایک سمجھوتے کی روپ ریکھا پر سہمتی بن گئی ہے. اس میں ہرمز کو فوراً اور پوری طرح سے کھولنا اور ایران کے پرمانو خطرے کو ختم کرنا شامل ہوگا. اس انوروھ کے آدھار پر میں نے دنیا کے بھوشیہ کے فائدے اور ایک سفل و سمرد ایران کے استتو کے لیے حملے کو رد کرنے پر سہمتی جتائی ہے, بشرطے کہ جلد ہی کوئی سمجھوتا ہو سکے. اسرائیل بھی اس میں میرے ساتھ ہے. لیکن وہ ٹرمپ جو کچھ گھنٹوں پہلے تک ایران کی ایمانداری اور بھروسے پر سوال اٹھا رہے تھے, وہ ٹرمپ جو جلد ہی ایران پر سب سے بڑے حملے کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, اچانک انہیں سیز فائر جیسا فرمان جاری کیوں کرنا پڑا جبکہ ڈیل کے بارے میں ابھی کوئی بھی پختہ جانکاری سارجنک طور پر سامنے نہیں آئی ہے. کہنے کو بھلے ہی ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم ڈیل کے قریب ہونے کی وجہ سے ایران پر حملوں کی بوچھار کرنے جا رہے ہیں, لیکن جو خبریں پینٹاگن سوتروں کے حوالے سے امریکی میڈیا دکھا رہا ہے ان کے مطابق یدھ سے دوری بنانا ٹرمپ کی مجبوری بن گیا ہے. دراصل امریکہ کے ایک ٹاپ سینئر کمانڈر نے پینٹاگن کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ ان کے پاس پریاپت ماترا میں اتنی نوسینا نہیں ہے جتنی ایران کے حملے سے اسرائیل کو بچانے کے لیے چاہیے. واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ یو ایس یوروپین کمانڈ جنرل الیکسس گرین کیوچ نے ہفتے بھر پہلے ہی پینٹاگن کو ہتھیاروں کی کمی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا. انہوں نے بتایا آدھی سے زیادہ ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریل ڈیفنس انٹرسپٹر میزائل ختم ہو چکی ہے. پیٹریٹ انٹرسپٹر میزائل کا بھی قریب 50% اسٹاک ختم ہو چکا ہے. ٹام ہاک کروز میزائل کا قریب 30% حصہ اور 20% سنجکت ایئر ٹو سرفیس میزائل ایران یدھ کی بھینٹ چڑھ چکا ہے. یہی حال SM-3 اور SM-6 انٹرسپٹ میزائلوں کا ہے. نیو یارک ٹائمس نے بھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین ڈین گین کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ کھاڑی دیشوں میں انٹرسپٹر میزائلوں کی تیزی سے کمی ہو رہی ہے. سیز فائر کے اعلان کے پیچھے ایران کا سخت رخ بھی اہم مانا جا رہا ہے. تابڑتوڑ حملے کی ٹرمپ کی دھمکی کے فوراً بعد ایران کے ودیش منتری عباس اراغچی نے نہ صرف امریکہ کو اس کے گمبھیر نتیجے بھگتنے کی چیتاونی دی تھی بلکہ ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کے نیتاؤں کو جھٹ پٹ فون بھی ملا لیے تھے. ادھر سعودی عرب نے بھی ٹرمپ کو فون کر حملوں کی تیاری پر چنتا جتائی تھی. خیر, हमले ना करने के ट्रंप के ऐलान के बाद बेशक दुनिया के कई देशों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन पिछले 5 महीनों में जिस तरह बार बार सीजफायर की धज्जियां उड़ी हैं और बयानों में तलखियां बढ़ी हैं, लगता नहीं कि मुलाकातें और बातें मिसाइलों को गरजने से ज्यादा वक्त रोक पाएंगी। आज तक ब्यूरो।
2: तो आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह आगाह कर दिया था कि ईरान मिडल ईस्ट में उसके ऊर्जा संयंत्रण पर जवाबी हमले कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, ट्रंप को जानकारी दी गई थी कि ईरान खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि मिडल ईस्ट में मौजूद इन मिडल ईस्ट के देशों के ऊर्जा संयंत्रणों पर निशाना बनाया जाए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर वो अमेरिका पर ही एक तरीके से निर्भर हो जाएंगे और पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपने एक बड़ी खबर तो देखी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पीछे या फिर उसके यूटर्न लेने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने फैसले में जब यूटर्न लिया, हालांकि 5 महीने में करीबन 4 से 5 बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार कौन कौन सी बड़ी वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रही थी कि वो युद्ध ना करे। सबसे पहले बात थार मिसाइलों की कमी। आपको याद होगा कि थार मिसाइल सिस्टम्स वही हैं जो मिडिल ईस्ट, जॉर्डन, कई जगहों के ऊपर लगातार अमेरिका ने डिप्लॉय की गई थी और इनकी कमी लगातार अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। माना जाता है कि करीबन 2 से 3 साल लगेंगे अमेरिका को इनको पूरा करने के लिए। अब दूसरा, पेट्रियॉट इंटरसेप्टर मिसाइल 50% कम हो चुकी। मैं आपको जैसा बता रहा था, जो विशेषज्ञ है, रक्षा विशेषज्ञ, वो मानते हैं कि कम से कम अमेरिका को उनको प्रोड्यूस करने में 2 से 3 साल लगेंगे, यानी जो कमी हुई है हथियारों की उसको पूरा करने में 3 साल का वक्त। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के जखीरे में करीबन 30% की कमी आई है, यानी आप टॉमहॉक की बात कर लीजिए, थार की बात कर लीजिए, दूसरे मिसाइल्स की बात कर लीजिए, पेट्रोल, सबकी कमी अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। अमेरिका की नेवी की ताकत भी घटी है लगातार पेट्रोलिंग के हिसाब से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा तैनाती की गई, उनके कई एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद है, डिस्कॉर्ड्स मौजूद है, तो ऐसे में तैनाती फोकस करके यानी मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ की गई है और इसी वजह से उसकी कमी भी अमेरिका झेल रहा है। पांचवी बड़ी खबर, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के हमलों को रोकने के लिए उनसे मांग की। सऊदी प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और यह माना जा रहा है कि उन्होंने प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो कोई बड़े ऑपरेशन ना करे, क्योंकि इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट के इन देशों पर पड़ेगा, खासतौर पर सऊदी पे पड़ेगा। छठी वजह क्या है, लंबी जंग में अमेरिका के सहयोगियों को हार का डर है। उनको ही लगता है कि मिडिल ईस्ट में ऐसा ना हो कि अमेरिका लंबी जंग में कूद जाए और फिर उसका नुकसान सभी को झेलना पड़े और अमेरिका को वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह वहां से बेआबरू होकर निकलना पड़े। अब सातवीं बड़ी वजह, खाड़ी देशों में ईरान के हमले से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल नुकसान सिर्फ ईरान में नहीं हुआ, नुकसान खास तौर पर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को हुआ है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इन तमाम देशों ने आग्रह किया कि आप इस जंग को ना बढ़ाए। आठवीं बड़ी वजह, इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका के पास अब पर्याप्त ताकत नहीं बची है। दरअसल इसराइल को एक शील्ड प्रोवाइड कराना यह अमेरिका की बहुत बड़ी चुनौती है, उसकी ताकत भी अमेरिका के पास अब उतनी नहीं है। अमेरिका की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं रूस और चीन। दरअसल चीन बहुत तेजी से लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और शायद यही कंसर्न अमेरिका के विशेषज्ञों के ऊपर है कि अगर ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट पर फोकस करके बैठ जाए और चीन जो है वो अपने ताइवान के अंदर अपने कदमों को आगे बढ़ा ले। दुनिया के सामने छवि सुधारने की ट्रंप की ये कोशिश है, वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये दिखे कि वो जंग नहीं चाहते, वो जंग रोकना चाहते हैं और शायद ये सारे कदम उन्होंने इसी वजह से मजबूरी में उठाए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो करेंगे क्या। अब एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईरान की सेना ने एक सीनियर प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान के पास एक ऐसे नए ड्रोन उसने बनाए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों तक वो अमेरिका तक जा सकते हैं। यहां ये दावा किया गया है ईरान के एक रक्षा के आपके से बड़े अधिकारी की तरफ से। ईरान की सेना ने दावा किया है कि हमारे ड्रोन इतनी दूरी तक जा सकते हैं कि वो दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। इस बयान का ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो ना सिर्फ इसराइल बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो इराक के जरिए उनको यूरोप तक भी उनको उनका प्रहार कर सके। यानी अगर ईरान के इस दावे में सही माना जाए तो ये खबर अमेरिका और इसराइल के लिए परेशान कर सकती है और खास तौर पर ना सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि यूरोप को भी परेशान कर सकती है। और एक और बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि ईरान ने जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी सेना से किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी और कहा है कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए किसी भी हमले का पलटवार करेगा और दुश्मन को जोर लगाकर उसको बर्बाद करेगा। और देखिए, हमने आपको बताया कि आखिरकार सऊदी ने प्रेशराइज किया खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कि वो हमलों को आगे ना बढ़ाए, और इसकी बड़ी वजह भी है। आपको एक बड़ी स्क्रीन पर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि कैसे लगातार सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर ईरान के हमले से सऊदी को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सऊदी का जाजान का एयर रिफाइनरी है जिसकी सैटेलाइट तस्वीर आई है, और अगर आप बताएं तो 30 तारीख की तस्वीरें बताई जा रही हैं, और खास तौर पर आप देखिए 2 तेल स्टोरेज डिपो को बर्बाद कर दिया गया। अगर आप देखिए जाजान जो है 4 लाख के करीब जो ऑयल है यहाँ पर, जो एलएनजी है वो प्रतिदिन यहाँ से निकालता है, और खास तौर पर एक बड़ी रिफाइनरी के तौर पर इसको सऊदी में देखा जाता है। और आप देखें जो एक तेल टैंकर बर्बाद हो गया, 2 तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा। ये आप जो ब्लॉक देख रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, ये दरअसल ऑयल रिफाइनरी और उनके टैंकर्स थे जिनको नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए जो 2 स्टोरेज टैंकर्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। आप छोड़ दीजिए, अगर ये युद्ध आज भी खत्म हो जाएगा तब भी करीबन साल भर का वक्त मिडिल ईस्ट के देशों को लगेगा अपनी प्रोडक्शन को दोबारा नॉर्मलाइजेशन पर लाने के लिए, और दूसरा इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। और नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, ईरान को भी हुआ है और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को हुआ है, जिसमें ना सिर्फ सऊदी है, यूएई भी है और कुवैत है, कतर है, ये तमाम देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब इस वक्त ईरान की एक और तस्वीर सामने आ रही है, और खासतौर पर इराक के जो सुलेमानिया बेस है, सुलेमानी इलाका है, वहां पर ईरान विरोधी समूह के एक ठिकानों पर ड्रोन से हमले करने की भी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने लंबी दूरी के ड्रोन से इन अलगाववादियों को, सेपरिस्ट को वहां अटैक किया। ये वो समूह है जो लगातार ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे, और मुख्यालय पर यानी इनके मुख्यालय पर, इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ईरान की तरफ से ये अटैक किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केजे सिंह सर। जब हम बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर खाड़ी देश लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ये आग्रह कर रहे हैं, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो युद्ध स्टार्ट ना करें, क्या इसके पीछे सिर्फ एक शील्ड है, या फिर एक आप कह सकते हैं कि ये एक फरेब है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस फरेब में रहे और फिर वो एक सरप्राइज अटैक कर ईरान पर दोबारा से घातक हमले शुरू कर दे।
3: सुमित जी जय हिंद, आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिए ऐसा है कि एक डेट जो हमको जरूर याद रखनी पड़ेगी, 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म पोल्स है, और मिड टर्म पोल से पहले स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेजिंग उनके खुद के सैन्य सलाहकारों ने दे दिया है कि हमारे असले का लेवल बहुत डाउन हो चुका है। उसके अलावा गल्फ की खाड़ी जितने भी देश हैं उन्होंने देखा है किस तरीके से अमेरिका की इसका सुरक्षा चक्र काम नहीं आया है, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ है। और अभी तो अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम और दूसरे प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ गए हैं। तो इन हालतों में इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि आप ये देखिए, और ये बार बार कहना कि ईरान धोखा देता है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
2: बिल्कुल,
3: आप हर रोज अपना नजरिया बदल लेते हो। आपने एक इलॉजिकल स्टैंड लिया हुआ है कि आप इसराइल को कुछ भी करने दोगे, वो तो नहीं चलेगा। मेरे ख्याल मेरा तो ये मानना है कि अब ये मैं रिस्क लेकर आपको कह रहा हूं कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना आज के दिनों में बहुत रिस्क की काम है किसी भी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद अकल आएगी। ये अच्छा हुआ उन्होंने ये गीदड़ भभकी को छोड़ दिया, और अगर वो नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए रेड सी में भी हूतीज ने बबल मंडप पे तेल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कंटेनर्स के ऊपर, हॉर्मुज तो बंद ही है, और स्वेज के पास भी एक ड्रोन आया था। तो इसलिए सालतों में जल्दी से जल्दी कुछ स्थायित्व तो लाना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। और सर हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी हैं। संजय मेस्टन सर, जैसे केजे सिंह सर बता रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिक्कतें बहुत है, लेकिन जब आप अमेरिका की साख की बात करते हैं, आप राष्ट्रपति को हटाइए, अमेरिका की नीतियों को स्ट्रेटजीज पे बात करिए, जब साख की बात करते हैं, अमेरिका के हाथ से मिडिल ईस्ट के देशों का विश्वास चला गया, अमेरिका के हाथ से इसराइल ने अब नई राह पकड़ ली है, वो अमेरिका की सुन नहीं रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ईरान के साथ जो करना चाहते थे वो दरअसल दुनिया को सामने एक एग्जांपल सेट करना चाहते थे कि देखिए हम ईरान को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब अमेरिका के सामने ऑप्शन क्या बचेगा, क्योंकि देखिए चीन भी अपनी तैयारियां कर रहा है, रूस भी अब मानने को तैयार नहीं, तो जो प्रेशर पॉइंट हुआ करता था अमेरिका का वो एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है।
4: सुमित बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रंप का अनाउंसमेंट है इसमें मेरे को दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये है, मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्रेशराइजिंग, और दोनों कामयाब उसकी नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी इसने डिसेप्शन भी किया है तो वो फेल हो जाता है। और ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि ये बोलना कि हम बिल्कुल आपको खत्म कर देते और इतना हम आप पे फायर पावर डालते, लेकिन जो रियलिस्टिक चीजें अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड, अगर उनके ज्वाइंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ केन ने भी बोला है कि हमारे पास अभी मिलिट्री हार्डवेयर काफी खत्म होता जा रहा है। देखिए जहां तक स्ट्राइक का ऑफेंसिव वेपन्स है अमेरिका के, टॉम हॉक हो या जो भी है, वो उसमें इतनी कमी नहीं है, 30% यूज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स है, एयर डिफेंस जिसमें थार्ड है, पैट्रियट मिसाइल्स है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इसराइल के पास भी सबसे बड़ी ताकत है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने शक्तिशाली नहीं है, जबकि चाइना तकरीबन अभी रिपोर्ट्स है Q-W-12 और FM-16 मैनपैड मिसाइल उसको देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जरिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पर ईरान के पास भी सबसे बड़ा फायदा है कि उसके पास ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत है। उसके पास ये जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, और आपने अभी दिखाया ऐसे भी अभी ड्रोन्स हो गए जो मेरे ख्याल यूरोप या मेनलैंड पे भी अटैक।
2: बिल्कुल।
4: तो कहने का मतलब है ये एक बहुत वल्नरेबिलिटी हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और उसके जितने भी गल्फ एलाइज है। और आपने अभी देखा ईरान ने वो भी क्षमता थी कि इजिप्ट के पोर्ट पे भी जाके एक यूएस टैंकर जो खड़ा था उसको टारगेट कर दिया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी अब डाउन होती जा रही है, और ये जो उनके स्टेटमेंट है इनको कोई मतलब कि खुद की जनता उसको ज्यादा वेट नहीं देगी, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है। और इसका मेरे ख्याल जो आपने सवाल, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इनको बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, और बातचीत में भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होने चाहिए कि कोई भी साइड अमेरिका इनके ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकता है ईरान के ऊपर।
2: लेकिन तो, सर, बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो यह कि डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका कोशिश तो ये कर रहा है कि परसेप्शन ये बनाई जाए कि देखिए सारा का सारा काम जो है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो अमेरिका के हिसाब से अमेरिका की शर्तों पर ही चले। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी एक चेतावनी, एक एडवाइजरी जारी करी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। एक बार फिर से कतर, बहरीन और सऊदी के कई देशों में अंदर ये अपने अपने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी किया। ये ऐसे समय पर हो रहा है जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो यू टर्न ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लगातार ये एडवाइजरी जारी किया है कि वो तुरंत निकले। इसी वजह से कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अपने नागरिकों को निकलने के लिए कह रहा है उसके बाद वो वहां पर अटैक शुरू कर दे। अगर आप देखें मिस्र के अंदर, जॉर्डन के अंदर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, इन तमाम देशों के अंदर लगातार अब अमेरिका ने अपने लोगों को कहा है कि वो यहां से निकले, यहां तक कि इसराइल से भी, इसराइल को जिसको अमेरिका खुद शील्ड प्रोवाइड करता है एयर डिफेंस सिस्टम्स की, वो भी उन इलाकों में भी, उन देशों में से भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकलने के लिए तुरंत कहा। और ये भी कहा कि अगर आप कहा जहां पर भी मौजूद है एक अल्टरनेटिव रूट, एक अल्टरनेटिव हमेशा तैयार रखें ताकि आपको कभी भी इन देशों से निकलना पड़ सके। यानी अब तक हम सिर्फ इन इलाकों के अंदर देखते थे कि अमेरिका ऐसी एडवाइजरी जारी करता था, लेकिन अब खास तौर पे अगर आप देखें मिस्र, जॉर्डन, यहां तक कि हमने देखा कि कई और देशों के अंदर भी, जॉर्डन के अंदर भी और इजिप्ट के अंदर भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकलने के लिए कहा है। यानी अब मानिए कि अमेरिका को भी डर है कि ये खतरे या फिर ये अटैक ईरान के इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन पूरे के पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के नागरिकों के लिए एक बड़ी चिंता है। यानी ये बहुत बड़ा अमेरिका की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर इसराइल की मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से भी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच इसराइल ने अपने एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया है। ये कई दिनों बाद ऐसा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ईरान कभी भी इसराइल पर अटैक कर सकता है, ये मानना है। इसराइली मीडिया की तरफ से कहा गया कि अब हाई अलर्ट पर है पूरी की पूरी इसराइली सेना, और तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या उनके दूसरे मैकेनिज्म, उनको हाई लेवल पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जिसका मतलब साफ है कि इसराइल को लगता है कि ईरान कभी भी पलटवार करते हुए इसराइल पर बड़े अटैक्स कर सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल मॉस्को में धमाके में 3 लोगों की मौत से पुतिन का पारा हाई हो चुका है। क्या वो यूक्रेन पर भीषण पलटवार करने वाले हैं? क्या पीओके में बगावत की आग अब लाहौर तक को जला देने वाली है? बताएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रणभूमि स्पेशल।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
6: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
10: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
9: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत के मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर सचेतक मंडल की बड़ी बैठक। संसद के सामने साधु की वेशभूषा को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज ने किया घोर विरोध, बीजेपी भी उतरी, केस भी दर्ज करवाया।

छोटे से ब्रेक के बाद रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, जहां पर यूक्रेन ने अपनी राजधानी कीव पर जानलेवा हमलों के बाद रूस पर ऐसे हमले किए हैं जहां पर यूक्रेन ने बदला लेने का दावा किया। चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। एक तरफ उसने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में एक बम से लगातार बम बरसाकर पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में हुए ताजा हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि अब यूक्रेन भी रूस से बड़े बदले लेने के लिए तैयारियां कर रहा है।

0: रूस यूक्रेन में भीषण घमासान, रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले से मचा कोहराम, धुआं धुआं आसमान, रूस को भारी नुकसान, मॉस्को में हमला, 3 ने गंवाई जान। ये हाहाकारी तस्वीरें रूस के समारा ओब्लास्ट इलाके की है। पूरा आसमान काले धुएं के गुब्बार से ढक गया है। तबाही का यह मंजर कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ये ऑनेल रिफाइनरी रूस की तेल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा थी और इसकी सालाना क्षमता करीब 5 मिलियन टन क्रूड ऑनेल की थी। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन से किए गए विनाशकारी हमले के बाद पूरे परिसर आग की चपेट में आ गया। कीव पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक झेलने के बाद यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए कई हमले किए हैं। यूक्रेन ने सारातोव की तेल रिफाइनरी के अलावा 2 जंगी जहाजों के एयरबेस को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन का ताजा हमला पिछले 15 दिनों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 19वां हमला बताया जा रहा है। इधर मॉस्को में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। विस्फोट सेंट्रल मॉस्को में एक रेस्टोरेंट के पास हुआ। धमाका होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। शुरुआती जांच के बाद इसे एक आतंकी हमला करार दिया गया। हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मौके पर कई एम्बुलेंस भेजी गई और घायलों को अस्पताल से जाया गया। एक तरफ रूस और यूक्रेन की सेनाएं करीब 1200 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है और रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करती जा रही है, तो वहीं यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस में हजारों किलोमीटर अंदर तक घुसकर ऑयल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन लगातार रूसी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। उसका एंटी मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। लिहाजा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप से गुहार लगाई है कि पेट्रियट मिसाइलों का जखीरा उसे दिया जाए ताकि रूस का सामना किया जा सके।
1: Потрібні відповіді на цей російський терор, реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою – це можливість Росії вбивати наших людей.
0: Рус не 2 дні пехле хі Київ пар бішан хамла кар Юкрейн ке захмо пар намак чидка хе. Ек тараф Юкрейн ке пас хатьярон кі камі хо раї хе. वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: यहां यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया, वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कल रात से ही ओडेसा के आसपास के इलाकों में जाटोका में मौजूद एक पुल पर रूस ने भारी बमबारी की है। यह पुल पूरे दक्षिणी यूक्रेन को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जोड़ता था और खास तौर पर जो उनकी दक्षिणी फोर्स ग्रुप के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत अहम ये पुल था। इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। पुल के कुछ हिस्सों के ढहने की पुष्टि भी की जा चुकी है। ये रूस की ओर से एक बड़ा पलटवार यूक्रेन पर कहा जा रहा है। दरअसल दक्षिणी इलाकों से यानी जो साउथ यूक्रेन के इलाके हैं वहां से रूस के कई इलाकों के ऊपर लगातार बड़े ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। इसी वजह से रूस ने यह बड़ा कदम उठाया। दरअसल एक खबर एक आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में मॉस्को या पूरे रूस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से 6000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन ने एक महीने में रूस पर 6225 कामकाजी ड्रोन दागे जिसमें आत्मघाती ड्रोन कहा जा सकता है। हालांकि रूस का दावा है कि इन्हें इनमें से अधिकतर को उसने निष्क्रिय कर दिया। लेकिन आप मानिए कि 6000 से ज्यादा ड्रोन अगर एक महीने के अंदर दागे जा रहे हैं तो यूक्रेन किस तरीके से पूरे रूस के अंदर बड़ी तबाही मचाना चाहता है। खासतौर पर उसका टारगेट है मॉस्को और मॉस्को के आसपास के इलाके। और देखिए ये सबसे बड़ी चिंता इस समय रूस के सामने बन गई है, वो ना सिर्फ यूक्रेन को उसके सदर्न मिलिट्री को खासतौर पे उसके बाकी इलाकों से काटना चाहता, बल्कि जो रसद यूक्रेन के पास पहुंच रही है उसे भी रूस रोकना चाहता। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर 30 जुलाई को ब्लैक सी के अंदर ओडेसा बंदरगाह के आसपास के इलाकों में यूक्रेनी सेना को सप्लाई करने वाले कम से कम 4 जहाजों पर रूस ने सीधे तौर पर अटैक किया और गिरान टाइप के ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह हमलों की तस्वीर भी जारी की गई है और दरअसल रूस की मिलिट्री ने यह जारी की तस्वीरों में दिखाया कि कैसे लगातार यूक्रेन को जो मदद मिल रही थी उसको रूस ने अपने ड्रोन की मदद से टारगेट किया है और इस रसद को यूक्रेन तक जाने से रोका है। और देखिए ताबड़तोड़ हमलों के बीच एक बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत फिर से शुरू होने की कोशिश की जाएगी। यानी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से रूस और यूक्रेन को मनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे अमेरिका की एक रणनीति यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि देखिए जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे थे वो इस समय अमेरिका के आप कह सकते हैं काबिलियत में नहीं है, वो नहीं चाहता कि सारे के सारे जो हथियार हैं वो यूक्रेन को दिए जाए, क्योंकि इस समय अमेरिका ईरान के खिलाफ भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केजे सिंह सर, क्या अमेरिका की बात मौजूदा हालात में रूस मानेगा, रूस छोड़िए क्या यूक्रेन मानेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस समय अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में और ऐसे में कोई भी देश इस समय अमेरिका की शर्तों पर संघर्ष विराम लगाने को तैयार नहीं होगा। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, अगर आप अनम्यूट कर सके अपने ऑडियो को तो।
3: सॉरी सुमित जी, मैं माफी चाहता हूँ
2: जी।
3: उम्मीद करता हूँ अब मेरी आवाज आप तक आ रही है।
2: बिल्कुल, आपकी आवाज
3: श्रोताओं तक जा रही है
2: जी।
3: तो ऐसा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है और चिंता का विषय है। अमेरिका अपनी जो साख है वो खो चुका है, यूक्रेन में हथियारों का जो असला है वो खत्म होता जा रहा है और रूस है उसकी भी हालत काफी पतली है और जो अटैक्स की सिलसिला है वो अभी रिफाइनरीज पर पहुंच चुका है, वो ब्लैक सी के अंदर जो शिप्स है उसके ऊपर जा चुका है। तो एक बार फिर से ये एक लड़ाई, एक ईगो सेंट्रिक, मैं तो इसको सुमित जी मुझे माफ कर दें और आपके श्रोता भी माफ कर दें, एक बेवकूफी से भरी ईगो ड्रिवन सेंसलेस लड़ाई जो 4.5 साल से चल रही है और क्या अचीव करेगी ये, किसको क्या मिलेगा सुमित जी।
2: बिल्कुल, और सही आपकी बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि यूक्रेन ने युद्ध तो शुरू कर दिया, 4.5 साल से खींचा जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की हालत क्या होगी 4.5 साल में यह भी देखना होगा, क्योंकि देखिए इस समय यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अमेरिका और यूरोप की बैसाखी पे यूक्रेन चल रहा है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। संजय मेस्टन सर, एक बात बताइए कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए, क्योंकि जितना हम पहले कहते थे कि 10% 20% का जो इलाका है उसको बफर जोन रूस बनाना चाहता है, लेकिन अभी के मौजूदा हमले तो कीव तक जा रहे हैं, कीव में बर्बादियां हो रही हैं, तो क्या यूक्रेन के लिए इस समय इस जंग को आगे बढ़ाना एक समझदारी का कदम होगा?
4: देखिए, जहां तक यूक्रेन और रूस का सवाल है, ये दोनों की रेड लाइंस बहुत ही क्लियर है। ये रशिया की जो रेड लाइन है वो तो बोलता है कि पूरा डॉनबास का इलाका यूक्रेन को खाली करना है, वो हम सबको पता है, और यूक्रेन की रेड लाइन भी बहुत क्लियर है कि क्रीमिया का इलाका और पूरा डॉनबास और ये जितना ज़ेफोरिज़िया और ये सारे इलाके को वो खाली करे, तो ये तो दोनों साइड नहीं मारेंगे। तो ये जो पहली बात मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है वो मेरे ख्याल वो टोटली फ्लैट पड़ेगा, लेकिन अब सवाल होता है क्या यूक्रेन के इंटरेस्ट में ये लड़ाई को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं है, और ना रशिया के इंटरेस्ट में ये लड़ाई को बढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों पार्टीज या दोनों साइड दोनों देश इस हालात में है कि ईगो तो है ही उनकी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली प्रूव करना चाहते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। आज यूक्रेन की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत है उसकी ड्रोन्स की। और आपने देखा 6,000 से अधिक एक ही महीने में उसने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं और क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। लेकिन इसकी क्या ताकत है रूस की, इसकी भी ताकत है, ड्रोन्स हैं लेकिन मिसाइल्स भी हैं, और जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसका ना के बराबर हो गया, क्योंकि आपने देखा है ये जिस प्रकार ये रिफाइनरी में डैमेज हुआ है वो तो बहुत ही भयंकर डैमेज हुआ है। और ये यूक्रेन यहाँ पर क्यों बार बार रिफाइनरीज को डैमेज कर रहा है, देखिए अमेरिका ये जो रूस की मिलिट्री मशीन है उसको इकोनॉमिक जो मैं बोलूंगा खरीदने के लिए जो क्षमता मिलती है वो है उसके एनर्जी रिसोर्सेज से। रूस का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका ऑयल और गैस, अगर वो यूक्रेन उसको बार बार बर्बाद करेगा तो ऑब्वियसली उस पर फर्क पड़ेगा। और ये काउंटर स्ट्रेटजी,
2: और सर बिल्कुल काउंटर स्ट्रेटजी तो देखिए यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहने की है, लेकिन उस लड़ाई से हासिल क्या हो रहा है, क्या सच में रूस को उतना नुकसान हो रहा है, ये भी शायद यूक्रेन को समझने की जरूरत है। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही। पाकिस्तान को लगा था कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान करके वो सब कुछ अपने मन मुताबिक सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा, लेकिन वहां के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर शरीफ सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ एक गलतफहमी दूर कर दी। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बगावत की आग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर अब लाहौर तक पहुंच चुकी है। इधर भारत सरकार पहले भी कह चुकी है और ये साफ कर चुकी है कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चुनाव के कोई मायने नहीं है, और वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं सबसे बड़ा मुद्दा है।
5: लाहौर तक पहुंची पीओजेके की आग, चुनाव से कैसे बनेगी बुनियादी हक की बात, पीओजेके का ये गुस्सा अब लाहौर की सड़कों तक पहुंच गया है। लोग सालों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने बुनियादी हकों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जवाब में मुनीर की सेना उन पर जुल्म ढा रही है। लोग इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिससे पिछले 4 दिन में 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
6: क्योंकि पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमानों पे यहाँ पे शहादतें हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथियों को जख्मी किया गया है। पीसफुल प्रोटेस्टर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में यह शहादतें हुई, और इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर भी हुई। तो जनाब मोहतरम सेनेटर मुश्ताक साहब ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद F-10 मरकज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का काल दी, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों ने भरपूर शिरकत की और हमारे साथ इजहार यकजहती किया।
5: पीओजेके में हिंसा के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और सुरक्षा की मांग की। लोगों के हाथ में पीओके के झंडे और नारे लिखी हुई तख्तियां थीं। इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। लोगों के रोष को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। रैली ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के समर्थन में निकाली गई थी, जिस पर सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी पीओके में हो रहे जुल्म पर चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ केंद्र सरकार से भी फौरन दखल अंदाजी करने की मांग की।
7: मैं कैसे देखूंगा, वो भी हमारे भाई हैं, अगर उन पे अजाब है तो हम तो बार बार कहते हैं कि साहब इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है, तो उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी हालत क्या है।

0: और चले रणभूमि में आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इंडोनेशिया में, जहां पर एक द्वीप पर के पास एक यात्रियों से भरी बोट में आग लग गई है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी मिल रही है। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास यात्री बोट में आग लग गई। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप में इस यात्री बोट में आग तब लग गई जब ये फेरी पर था, और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा करीबन 41 लोग अब भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बड़ी बोट थी जिसमें जो फेरी कर रहे थे, तभी इसमें आग लग गई, और समंदर के बीच में ही बताया जा रहा है कि इस आग के बाद इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 41 लोग अब भी लापता है। एक बड़ी खबर, एक दर्दनाक खबर इंडोनेशिया से आ रही है, जहां पर एक समुद्र में मौजूद फेरी करती हुई एक बोट में आग लग गई। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
4: Hello, Ted.
3: Your cat seems thirsty-er.
5: Whoa, slow down, buddy.
3: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
4: Veg ER for pets. This is Kate.
3: Veg, the better, kinder ER for pets.
6: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis, so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आठवें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है। इन्हीं छात्रों में पलामू के नक्सल प्रभावित मनातू गांव से आए संतोष भी। संतोष कहते हैं उनके 80 साल के पिता आज भी मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। अगर मेहनत के बाद भी न्याय नहीं मिला तो सिर्फ उनका सपना नहीं टूटेगा बल्कि गांव के बच्चों का पढ़ाई से भरोसा भी खत्म हो जाएगा।
1: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
0: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
2: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
0: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: था संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से प्रहार। चुनावी यूपी इस बार मानसून सत्र में सियासत की हम मूसलाधार बारिश, शराब चोरी समेत कई मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार, योगी के घर सचेतक मंडल की बैठक में माथापच्ची। संसद के सामने साधु की वेशभूषा को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज ने किया घोर विरोध, विरोध में बीजेपी भी उतरी, केस भी दर्ज। पंजाब में कांग्रेसियों के बीच में वर्चस्व के लिए दो दो हाथ, बरनाला में भी चन्नी जिंदाबाद का नारा, बघेल वडिंग की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास में हादसा, यात्रियों से भरी बोट में लगी आग, 5 लोगों की मौत, 41 लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। सियासत में मौसम का भी अपना मिजाज होता है। सावन आते ही आसमान में बादल घिरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में बादलों के साथ साथ सियासी मुद्दे उमड़ घुमड़ रहे हैं। अब कल से शुरू होने जा रहा विधानसभा का मॉनसून सत्र से बजट, बिल और बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाला पहला बड़ा राजनीतिक अखाड़ा भी माना जाए। योगी सरकार अपने 10 सालों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर सदन में उतरेगी और विपक्ष सवालों की पूरी फहरिस्त के साथ जवाब मांगने की तैयारी में जुटा है। अनुपूरक बजट से लेकर कानून व्यवस्था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, किसान, महंगाई, बेरोजगारी और कांवड़ यात्रा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यूपी विधानसभा में तीखी टक्कर देखने को मिल सकती है। यूपी की सियासत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर हो सकता है। जिस राम मंदिर को अयोध्या में बनाने की लड़ाई 500 साल चली, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी विपक्ष के लिए सियासत में संजीवनी का काम उसने किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि यूपी सदन की लड़ाई सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही, विधानसभा में उठने वाली हर आवाज आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं तक पहुंचेगी और हर बहस जनता की अदालत में भी परखी जाएगी। ऐसे में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हर चर्चा, हर टकराव और हर राजनीतिक संदेश पर पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का नैरेटिव कितना मजबूत बना पाएगी और विपक्ष सरकार को कितना मजबूती से घेर पाएगा, इसी पर आज होगी हमारी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की बरसात। कल से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र अगर रिकॉर्ड की दृष्टि देखा जाए, आंकड़ों की दृष्टि देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा दिन विधानसभा चली है। पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार का एजेंडा है 2026-27 अनुपूरक बजट, नए विधेयक, 10 साल की उपलब्धियां, विकास मॉडल। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी की मांग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कांवड़ यात्रा गाइडलाइन। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताकत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
0: दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस अब लखनऊ में बीजेपी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है।
3: कोई भी नियम बनाना सिर्फ नियम को बनाकर पास कर देना नहीं है, उस पर डिस्कशंस होने चाहिए, पक्ष विपक्ष कर बैठकर बात करनी चाहिए उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर, और तब कोई नियम बनता है। लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: सियासत के खेल में बीएसपी भी गोटियां बिछा रही है। मायावती की सियासत का अपना अंदाज है, उनके अपने कोर वोटर हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि योगी सरकार के लिए मॉनसून सत्र आसान रहने वाला है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाता है, लेकिन बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, और चुनाव सिर्फ मतदान से नहीं जीते जाते, उसकी नींव सदन की बहसों में भी रखी जाती है। इसलिए ये सिर्फ मॉनसून सत्र नहीं, मुद्दों का महासंग्राम है। ये सिर्फ अनुपूरक बजट नहीं, 2027 का राजनीतिक बजट भी है। ये सिर्फ बहस नहीं, भविष्य की बिसात है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सदन में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि सदन से निकला संदेश जनता के मन तक किसका पहुंचेगा। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज।
4: अब दंगल की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़े हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जुड़े हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ निशा चौधरी जुड़ी हैं, जो आरएलडी का पक्ष रखेंगी। राघवेंद्र राम द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सुबह सभा का पक्ष रखेंगे। और प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवालों पर डालते हैं नजर, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर एक, क्या यूपी में मॉनसून सत्र 2027 के चुनावी नैरेटिव की दिशा तय करेगा? सवाल नंबर दो, सत्ता का रिपोर्ट कार्ड बोलेगा या विपक्ष की चार्जशीट हावी रहेगी? और सवाल नंबर तीन, चढ़ावा चोरी से लेकर स्कूल बंद के मुद्दे पर योगी सरकार क्या जवाब देगी? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर सवाल सरकार पर दागे। तो इन पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर कल शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर योगी सरकार ने कमर कसी है। बीजेपी सचेतक मंडल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के सारे सवालों पर रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही सरकार अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी रणनीति बनाएगी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या एजेंडा है इस बैठक का?
5: देखिए राजीव, निश्चित तौर पर कल से सदन शुरू हो रहा है और बहुत ही छोटा सत्र है और विपक्ष ने पूरी तरीके से कमर कसा है। तो आज पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे लोग मुद्दों पर अपनी बात रखें, लेकिन मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे ये भी बात तय है। जिस नैरेटिव की बात हो रही थी उसको भी इस सदन के बहाने निश्चित तौर पर, चूंकि 6-7 महीने के बाद चुनाव है तो विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगा। अभी एक बैठक चल रही है सचेतक की कि किस तरीके से सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाएगा। दूसरा विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष की रणनीति क्या होगी ये होगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो भी बेहद अहम है और उसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर चंदा चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। बेशक पिछले कुछ दिनों तक ये दबा रहा क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट पेपर लीक को लेकर चल रहे थे ये कम था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी जो आवाज है उसको और बुलंद करने की कोशिश विपक्ष की होगी। दूसरी तरफ जो पेपर लीक का मुद्दा है और खास करके जेएनजी प्रोटेस्ट इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दिखाई दे रहे हैं, खासकर सुविधाओं को लेकर के, तो आज अखिलेश यादव ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वो स्कूलों में खास करके जो सुविधाएं हैं और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसे लेकर के। तो बहुत ही हंगामेदार सदन रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार को भी कमर कसना है और शायद यही वजह है कि ताबड़तोड़ मीटिंग्स इस वक्त चल रही है। हालांकि ये रेगुलर मीटिंग है लेकिन निश्चित तौर पर कल का जो सदन है, कल से जो शुरू हो रहा है, बेहद हंगामेदार रहेगा।
4: कुमार अभिषेक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं राजेश चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आज आप ही के साथ। मतलब आप सदन में अपनी उपलब्धियों के साथ आना तो चाह रहे हैं लेकिन आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें से बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी है, रोजगार के अवसर है नहीं। वो कह रहे हैं कि नौकरी ही नहीं तो आरक्षण कहां से देंगे। तो आप उपलब्धियों की बात करें, उनको दूसरी तरफ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं।
6: देखिए विपक्ष का काम भी कमियां निकालना है, पर वो कमियां निकालें जो कमियां हों। केवल आरोप लगाना है, इसलिए आरोप लगाना है तो इसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। पर सदन के अंदर वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं सत्ता पक्ष के नाते। जो प्रश्न वो खड़ा करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। 10 साल के अंदर जो हमने कार्य किए हैं, जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, स्कूलों की दशा सुधरी है, रोड का निर्माण हुआ है और दंगा मुक्त प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश में। आज रोजगार के अनेक संसाधन बढ़े हैं, लोगों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं, सब पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं।
4: कितनी नौकरियां मिली है, कोई डेटा आप दे सकते हैं? और दूसरा, 10 सालों में तो आपने 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं।
6: लाखों लोगों को रोजगार मिला, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। स्कूलों की बदतर हालत थी समाजवादी पार्टी के शासन में। हमने ऑपरेशन कायाकल्प अभियान चला करके एक एक स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बनाने का काम किया। हर स्कूल में आज टॉयलेट है, हर स्कूल में आज टाइल लगी हुई है, हर स्कूल में आज बिजली पहुंचाई गई है, हर स्कूल के अंदर आज हमने फर्नीचर लगाने का काम किया है।
4: जमीन में अखिलेश यादव जब अपनी बात रख रहे हैं तो एक डेटा के साथ रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 7,000 स्कूल में बिजली नहीं है, 2,000 स्कूलों में फंक्शनल टॉयलेट नहीं है और 26,000 डेटा तो वो ये दे रहे हैं कि आपने स्कूल बंद किए हैं।
6: उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं हो, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं हो, कोई स्कूल ऐसा नहीं का नैरेटिव खड़ा करने का काम करते हैं अखिलेश जी, तो उसका कोई इलाज थोड़े नहीं। उनको तो अच्छाई में बुराई नजर आती है। उनके जमाने में जो बदहालत हालत थी स्कूलों की, जिस बदतर हालत में वो छोड़ करके गए थे, स्कूल बंद हो रहे थे, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, गिर रही थी, वहां जाने में डर लगता था, स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं था, टीचरों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, धूल मिट्टी में बच्चे बैठते थे, घर से टाट पट्टी ला करके बैठने का काम करते थे, आज वो माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। आज जाकर के देखिए, मॉडल बना एक मॉडल। अनेक माध्यमों से वो सोशल मीडिया में और मीडिया में आप किसी स्कूल का दौरा करें और अखिलेश जी चले ना साथ में, भौतिक सत्यापन करते हैं, समझ में आ जाएगा उनके जमाने में क्या था अब क्या हुआ है, कायाकल्प में पूरा
4: तो मनोज सिंह काका से जवाब ले लेता हूं। मनोज सिंह काका आप बताएं कि आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया? वो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है।
7: राजीव जी, ये आंकड़े कोई घर किसी के तो बनते नहीं, आंकड़े सरकारों के ही होते हैं और जो जनवादी और जो सही पत्रकारिता करते हैं लोग, संस्थानों, आप जैसे यूपी तक के, आज तक के भी बहुत सारे आंकड़े हैं, आपके भी कई सारे कार्यक्रम हैं, श्वेता सिंह जी करती हैं कई सारे उत्तर प्रदेश के भर्तियों का, और ये आंकड़ा हमारा जो है, जो अभी साथी जो बता रहे थे, इनको कम से कम अपने ही सरकार के मिनिस्टर जो केंद्र में है, जयंत चौधरी जी ने इस देश के सदन में आंकड़ा दिया कि इस देश में विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 1,26,000 विद्यालय बंद कर दिए गए प्राथमिक, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यालय बंद करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करे, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां यह है कि विगत 10 सालों में लगभग 22 से 23 पेपर, चाहे वो यूपीएसआई के पेपर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर रहे हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर रहे हो, आरओएआरओ के पेपर रहे हो, सारे पेपर लीक करने की जो उपलब्धियां हैं वो योगी आदित्यनाथ की है। जो कंपनियां पूरे देश में बैन है उन कंपनियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ठेका देती है, चूंकि उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ मतलब होता नहीं है, धार्मिक धंधेबाजी अगर चलती रहे तो उनको कौन सा, अभी हाल ही में जो आंकड़ा आ रहा है कि विद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, अगर आपकी सारी चीजें इतनी ठीक है तो आप विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो? धार्मिक जो कार्य हो रहा है उसे होने दीजिए, आप प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार हमको बताए कि 69,000 और 6,500 के बाद क्या, और वो भी 69,000 में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक सरकार खा गई, जिस पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहिए उनको 3% आरक्षण दिया गया, दलितों को 21 की जगह 17% आरक्षण दिया गया।
4: ठीक है,
7: तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में सरकार,
4: ये तो आप कह रहे हैं धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए क्या है।
6: देखिए एक सरकारी कोई
4: आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी धार्मिक धंधेबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे इस पर थोड़ा, धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी कैसे?
7: ये बिल्कुल वैसे, अगर धार्मिक धंधेबाजी नहीं करती बीजेपी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहां सिर्फ 40 दिन का ही सीसीटीवी क्यों दिया गया? क्यों जिस दिन ये बात प्रकाश में आई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो रही है, उसी दिन वहां का रेडियो मॉनिटर अफसर क्यों हटा दिया गया जो 17 साल से था? सरकार क्यों नहीं ऐसा करे? और सरकार एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें हमारी पहले दिन से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 7 मई को जो ट्वीट करा, पहले दिन से उनकी मांग करी कि किसी न्यायिक व्यक्ति के देखरेख में, किसी न्यायाधीश के, सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में जांच हो, सरकार उससे क्यों भाग रही है? तो सरकार असल में जो सबसे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि 10 साल में कितने विश्वविद्यालय बनाए, हमने तो श्रद्धेय नेताजी ने उत्तर प्रदेश एनएलयू जैसे संस्थान दिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लाई यूनिवर्सिटी बनाई हमने, नेशनल लाई यूनिवर्सिटी, योगी आदित्यनाथ जी कितने लाई यूनिवर्सिटी बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए।
4: आपकी बात आ गई, मैं राजीव जी एक साथ ही आपसे जवाब लूंगा, एक बार दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। अभय दुबे जी, ट्रस्ट का जो ढांचा है वो स्वायत्त ढांचा है, तो ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना उचित है?
8: देखिए, जो जानकारी आपने चाही
6: उसको,
8: वो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम केंद्र सरकार का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 26,000 उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो गए, पूरे देश में 94,000। उसी ने बताया है मोदी जी ने कि 37% रिटेंशन रेट है, 4 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने बताया अपने ई श्रम पोर्टल पर कि 8,37,000 लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, जिन्होंने शपथ पत्र दिया कि उनकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपए है। 9,508 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर है, जिसमें 6 लाख बच्चे आदित्यनाथ जी पढ़ते हैं। 12 हत्याएं रोज हो रही है, 23 हत्या के प्रयास हो रहे हैं, 143 जघन्य अपराध हो रहे हैं, 52,000 अपराध, जघन्य अपराध जिसमें अपहरण है, डकैती है, ये उत्तर प्रदेश में रोज घटित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सुनिए, और जो सबसे बड़ा इस सृष्टि का पाप किया है वो देव द्रव्य की चोरी की है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे की चोरी, पहले चंदा चोरी किया उनके मंदिर निर्माण को लेकर, इनको मार्च 90 में इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस इशू किया चंदे चोरी का, अशोक सिंगल जी को, डालमिया को। क्या किया इन्होंने, उस देश बंधु जो अधिकारी था इनकम टैक्स का उसको तमिलनाडु ट्रांसफर कराया, इनको धमकी दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को कि सरकार गिरा देंगे। तो वित्त मंत्री मधु लिमय ने हाउस में यह एड्रेस किया कि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको सस्पेंड करा दिया। उसके बाद इन्होंने सिस्टमेटिक रूप से 825% पैसा बढ़ाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर की जमीन में चोरी की। अनिल मिश्रा उसमें उस हस्ताक्षर करता थे, अयोध्या के मेयर हस्ताक्षर करता थे, यही चंपत राय थे। उस समय भी हमने कहा था प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। एक मिनट, निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी, निर्मोही अखाड़े ने कहा प्रधानमंत्री जी 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी इन्होंने किया है, अभी जो किया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता गौर से सुनिए, प्रभु श्री राम ने दंडित कर दिया अयोध्या में हराकर, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में हराकर दंडित कर दिया, भगवान ने इनको बद्रीनाथ में हराया, भगवान ने इनको खाटू श्याम से सारे धार्मिक स्थलों से इनको परास्त कर दिया। इन लोगों ने जो जघन्य पाप बच्चों के साथ किया, आखिरी बात राजीव जी, ये कैसे पाप पर पर्दा डालते हैं, इनके साथ विधायक है बेदीराम, जिसके 9 में से 8 मुकदमे भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले के हैं 4 राज्यों में, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा है वीडियो, वो कहता है डीप फेक है, सीबीआई ने जांच की, वो कहता है 50-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। एक ब्रजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आपने, इंडिया टुडे ने किया, मैं साधुवाद देता हूं, वो ब्रजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संजीव मुखिया इसका सरगना है और 2024 की नीट यूजी की परीक्षा लीक होगी, ये मार्च के महीने में उसने कह दिया, तब भी संजीव मुखिया को इन लोगों ने, पापियों ने क्लीन चिट दे दी एक के बाद एक। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इतना बड़ा स्कैम था कि जो एजुटेस्ट कंपनी है विनीत आर्य, जो कि गुजरात का है आदमी, वो जेल में बंद था बिहार में, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कैम किया था, वहां से छूट कर आया और आदित्यनाथ जी ने यहाँ पुलिस कांस्टेबल का ठेका दे दिया, उसमें
4: एक लंबी फेरिस्त हो गई है, एक लंबी फेरिस्त हो गई है। बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मनोज ने भी, आपने भी सवाल पूछे, मैं चाहता हूँ राजेश आप एक एक करके इन सवालों के जवाब दीजिए, मैं दूसरे मेहमान के पास भी जाऊंगा राजेश।
8: और आखिरी कहने दीजिए,
4: कम्प्लीट
8: कर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5000 डॉक्टर इनके पास नहीं है। हेल्थ इंडेक्स में मोदी जी बता रहे हैं कि सबसे वर्स्ट कंडीशन उत्तर प्रदेश की हो गई, तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कर रहे हैं आप, सारे नए हाईवे आप क्षत विक्षत हो गए, नए बनते ही इतना भीषणतम भ्रष्टाचार,
4: कहां से आए आंकड़े, उन्होंने वो भी बता दिया है, इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास?
6: देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर की मैं बात करूंगा, पूरे देश ने देखा है संसद परिसर के अंदर साधु के वेश में किस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कांग्रेस और सपा के लोगों ने किया है। एक सन्यासी को मार रहे थे, उसको भिखारी बता रहे थे, उसका अपमान करने का काम कर रहे थे ये लोग,
8: पिछड़े वर्ग का आदमी साधु नहीं हो सकता है
6: हिंदू धर्म के प्रति। अरे सुनिए जरा,
8: तकलीफ ये है कि पिछड़े वर्ग के आदमी ने साधु का वेश धारण कर लिया।
6: अरे
8: पप्पू यादव पिछड़े वर्ग के व्यक्ति है, वो साधु बन
4: जाए, जवाब देने दीजिए।
6: आप भी बहुत पिछड़े वर्ग से आते हो, आप भी बहुत पिछड़े वर्ग से आते हो, सोनिया गांधी भी पिछड़े वर्ग से आती है, राहुल गांधी का कौन सा वर्ग है जरा बता दो, हम भी जानना चाह रहे हैं और देश जानना चाह रहा है।
8: हो गई आपको,
6: पर जिस तरह से आपने जिस तरह से आपने हिंदुत्व का अपमान किया है, साधु संन्यासियों का, संत महात्माओं का अपमान किया है, मारा है, उनकी मॉब लिंचिंग करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की ही जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण योगी जी ने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, बलिया के अंदर प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस चंदौली तक जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया है। आप क्या कर रहे थे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। और आप तो वो लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा के उनकी जान लेने का काम कर रहे, हत्यारे हो आप लोग, हत्यारे, आप राम भक्तों के हत्यारे हो, सब जानते हैं। मथुरा में बीजेपी जीती है, मथुरा से बीजेपी का एमएलए, अयोध्या से बीजेपी का एमएलए, काशी से बीजेपी का एमएलए, बिंदवासिनी से बीजेपी का एमएलए, कहां से बताऊं मैं आपको, सब जगह से उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ। आप
9: आप क्या करते हो? अरे सबसे ज्यादा पेपर आउट का ही हुआ तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है, वहाँ आपको मुद्दा नजर नहीं आएगा।
4: देखा कि आप संसद में जो हुआ, जो वो नाटक हुआ, उस पर आप बहुत दुखी दिखाई दिए, लेकिन एक रैली में जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था उस पर आपने दुख प्रकट नहीं किया।
9: खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा करके,
4: ठीक है,
9: सरकार के झूठा नैरेटिव खड़ा करके आपके पास मुद्दे नहीं है, जनता को भड़काना चाहते हो। ये पब्लिक है,
10: ये गंगा,
9: ये पब्लिक है।
10: गंगा एक्सप्रेसवे का ठेका दिया अडानी को तुमने, गंगा एक्सप्रेसवे बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर जनता के टोल टैक्स के पैसे से बन रहा है, तुम्हारे जेब के पैसे से नहीं बन रहा है। और नपेंद्र मिश्र जिसको कहते थे तुम किस CIA का एजेंट है, जिसको तुम कहते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, अब चुप कराइए राजीव जी, देश को सच सुनने का अधिकार होना चाहिए। ये नपेंद्र मिश्र को
4: राजेश जी प्लीज एक सारे सवाल आपकी तरफ है, आपको ही जवाब देना है। मैं लौटूंगा एक बार 30 सेकंड में अभय जी को कंप्लीट करने दें।
9: आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा।
10: राजीव जी
9: का काम करोगे,
10: ये कहते राजीव जी ये कहते थे कि नपेंद्र मिश्र ने रक्त रंजित कर दिया सरयू को, राम भक्तों को गोलियां मार दी, इनका RSS आर्टिकल लिखता था CIA का एजेंट है। अभी कंस्ट्रक्शन कमेटी के इंजीनियर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा खाया, नपेंद्र मिश्र से पूछताछ नहीं होगी। अमित शाह जी ने अपना अधिकारी भेज दिया इस राम मंदिर ट्रस्ट में।
4: अभी बात आ गई, ठीक है, मैं राजेश जी लौटूंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखें। आपके सहयोगी निशा चौधरी जी, उनके पास चलते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। निशा चौधरी जी, मतलब बहुत इस बार तैयारी के साथ अपोजिशन आ रहा है, इस बार आपने बहुत सारे मसले असला एक तरीके से उनको दे दिए जो आपकी तरफ है, उसमें किसानों का मुद्दा भी है जो अखिलेश यादव ने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि आपने कहा था दोगुनी कर देंगे किसानों की आय, आपने तो नहीं की, और आप तो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी से हैं।
11: राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल हितैषी पार्टी है। शरद चौधरी चरण सिंह जी का एक ही नारा था कि किसान को सम्मान। अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न देकर के सबसे पहले तो किसान मसीहा शरद चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान इस सरकार ने किया है वो सबके सामने है। दूसरी बात, किसानों का आप कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य अगर ना बढ़ोतरी हुई तो आप बताइए, गन्ने के मूल्य का भुगतान ना हुआ हो तो वो बताइए, पिछली सरकारों से इस सरकार में कितनी तुलना में बढ़ोतरी हुई है उसका कंपैरिजन होना चाहिए।
4: आय दुगनी हो गई आपके कहने और MSP की गारंटी मिल गई है।
11: नहीं, आय दुगनी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछली सरकारों से और योगी सरकार में क्या उसमें बेहतर हुआ कि नहीं हुआ है पहले मुझे बताइए, और बेहतरी के लिए फिर से काम कर रहे हैं, आगे भी काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तुलना ये होती है कि इनकी सरकार में और आज की सरकार में कितना अंतर है, वो उसका जवाब विपक्ष कभी नहीं देता। तो क्या गन्ना बढ़ोतरी नहीं हुई
10: लखीम,
11: क्या गेहूं की खरीद नहीं हुई? क्या किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं में सुविधा नहीं बढ़ी? क्या किसानों को ट्यूबवेल के जो सिंचाई होती है उसके बिल माफ नहीं हुए? जो चीजें आज किसानों के लिए हुई है पिछली सरकारों की तुलना में वो इतनी बेहतर है कि आज किसान वर्ग बहुत ज्यादा खुश है NDA सरकार से, और आने वाले समय में चाहता है किसान कि हमारे को और इससे बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए वो फिर से NDA सरकार में ही भरोसा दिखा रहा है। यही कारण है कि सभी, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, सभी का भरोसा आज NDA सरकार पर है। और जहां तक बात है, आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी तक भी पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई, हम वहीं तो नहीं खड़े जहां खड़े थे। आज किसानों की सिंचाई, आप सोचे जो उस चीज को देखिए, लेकिन विपक्ष को सिर्फ मुद्दे वो दिखते हैं क्योंकि खुद भी नकारात्मक काम किए और नकारात्मक सोच, वो माफिया, वो कानून, वो प्रशासन जिस तरीके से पहले काम करता था योगी सरकार से पहले, वो सबके सामने है, वो जनता देखती थी। और आज की तुलना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, RRTC जो दिल्ली से मेरठ तक गई है, उसे कितने किसानों को फायदा हुआ है। आज किसान सुबह से जा करके शाम को दिल्ली आकर के अपना ट्रैवल सुबह से शाम में कर सकता है, अपने छोटे मोटे काम कर सकता है जो उसकी खेती बाड़ी से संबंधित अपनी आय बढ़ा सकता है। ये शायद विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, उनको देखना चाहिए और ये किसान को ग्राउंड पे जाके पूछना चाहिए कि वो कितना कुछ।
4: ठीक है, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अपोजिशन खासतौर पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर हम बोले तो वो बहुत हमलावर दिखाई देती है, उनके पास एक क्लियर एजेंडा दिखाई देता है कि वो क्या करने वाले हैं। अगर हम बात बहुजन समाज पार्टी की करें, बसपा की करें, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, वो नजर क्यों नहीं आते हैं?
12: नहीं, नहीं, देखिए एक नजरिया है ना, आप अगर जिंदा को भी मरा हुआ समझ लें तो ये तो एक नजरिया हो गया ना। देखिए क्या हो सकता है, अभी अभय जी ने कानून व्यवस्था की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुजन समाज पार्टी की सरकार अभी भी याद आती है। कानून व्यवस्था कैसे होती है, अगर अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, विधायक हो, एमपी हो, अपराध करेगा जेल में जाएगा। बाकायदा बहन जी ने अपराधियों को अपने घर बुला करके अपने एमपी अपने विधायक को जेल में भेजा है। एक बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल में 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, 7.5 लाख पद खाली खड़े हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है लोगों के बीच में जाकर के कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इन 7.5 लाख पदों को हम भर देंगे। योगी जी की समस्या ये है कि अभी अभय जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जो अपराध के आंकड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश इसलिए अपराध की धरती बन गया है कि बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी करी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के कि उत्तर प्रदेश पुलिस भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो अपने राजनीतिक आकाओं के तहत जाकर के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है तो उसको मरने के बाद सरकार उसके पास जाती है, जीते जी उसके पास नहीं जाएगी। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं योगी जी की जात का एक प्रिंसिपल है डीजे कोहली बड़ौद के अंदर, एक दलित जो है गोविंद बाबू, पिछले 5 साल से उसका परिवार भुखमरी के कगार पे है, बाकायदा उसको जेल में भी रखा गया, लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह योगी जी की जात का है इसलिए वो किसी की बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बेरोजगार प्रदेश बन गया, हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। आज उनको यह उम्मीद लग रही है कि वो एक ऐसी सरकार लेके आए जो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा दे, पुलिस जो है अपना काम छोड़ करके तमाम राजनीतिक ताने बाने में लग रही है। आज आप देखेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम क्या रह गया, वो धार्मिक व्यवस्था को संभालने में लग रही है। जब वो धार्मिक व्यवस्था को संभालने में लग रही है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त कैसे हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर अभी राजेश चौधरी जी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने हाईवे बने, भाई साहब उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति जाकर के देखिए, पीडब्ल्यूडी का बजट दिखाइए, आपने पैसा खर्च किया ही नहीं। अगर आंतरिक विकास देखेंगे, नगरों का विकास देखेंगे तो वहां सड़कें नहीं है, वहां गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 बूंद पानी पड़ जाए तो कोई भी शहर, उत्तर प्रदेश के अभी आप पिक्चर्स देखेंगे, अगर आज 10 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा शहर कहीं ना कहीं डूब जाता है, तो ये विकास नहीं हो सकता।
4: पर इतना खर्चा हो रहा है कि वो तो अनुपूरक बजट भी लेकर आ रहे हैं।
12: पर आप सुनिए, अब मुझे बताए ना, राजेश जी यहाँ बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी का काम जो है आंतरिक विकास करना है, और हाईवे आप इसलिए बना रहे हैं, सुनिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का एक समस्या और भी है कि अगर आप गाड़ी खरीदते वक्त उससे टोल रोड टैक्स लोगे, पेट्रोल के टाइम पे भी आपने कहीं ना कहीं रोड टैक्स लिया, जब हाईवे पे जाएगा तब आप टोल टैक्स लेंगे, और 10-10 साल में आप लोगों को, आपको मालूम है भारत
4: ये,
12: में
4: ये हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश जी, आपने
12: राजीव जी
4: 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए।
12: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है भारत में कि गाड़ी को वो यूज ही कर ले, 10-10 साल में सिर्फ गाड़ियों के टायर चेंज हुए हैं, ऐसे में आप नई मौके लेकर के आएंगे और उसको कहीं डैमेज कर लेंगे, ये क्या हालात है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात
4: ठीक है,
12: सुनिए नहीं नहीं एक छोटी सी बात, अभी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी सेक्शन बंद हुए हैं, अगले 4-5 साल में महाविद्यालय बंद हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के अंदर जो स्टूडेंट्स का जो रेशा है वो 50% है, बच्चे वहां एडमिशन लेने के लिए नहीं जा रहे। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो नेता लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से पैसा कमाया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अगर मेरठ यूनिवर्सिटी में देखेंगे अभी एडमिशन शुरू नहीं है, बीएससी का कोई एडमिशन शुरू नहीं है, तो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं बच्चों को।
4: ठीक है, मैं चाहता हूं राघवेंद्र आप इस पर जवाब दें, मतलब सतीश प्रकाश जी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का आप लोगों ने हाल बेहाल कर दिया, मतलब आप तो सरकार के साथ में है, आप रिक्त पदों को नहीं भर रहे हैं, वो करें रिक्त पदों को नहीं भर रहे, आरक्षण मिलना तो बहुत दूर की बात है, और पूरी तरह से व्यवस्था चौपट कर दी है।
13: राजीव जी, सतीश जी को लग रहा है कि वही पिछली सरकार चच्चा और बच्चा होनी चाहिए, कि अगर लड़का कहीं परीक्षार्थी कहीं परीक्षा देता है तो परीक्षा देने के पहले और परीक्षा देने के बाद उसको चच्चा और बच्चा का घर और उनके दुकानों पर जाके वो रेट लिस्ट देना होता था, वो सरकार अब नहीं है, मैं मानता हूं वो सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी मैंने तमाम प्रवक्ताओं को सुना, उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को या किसी आम आदमी को किसी चीज की असुविधा होती तो वो लगातार योगी जी को या एनडीए सरकार को क्यों बहुमत देता? आप 14 में सरकार में थे, स्थिति आपकी क्या थी? 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आपको अभय दुबे जी की पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा और स्थिति क्या हुई? पूर्ण बहुमत की सरकार जो श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पर इतनी बड़ी बहुमत आई थी, अखिलेश जी का चेहरा आते ही आप 47 सीट पर आ गए, और जब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर ऐसा कंधा मिला तो आप सैकड़ा पार कर गए। और जब आज के डेट में 2027 का चुनाव तैयारी चल रही है तो आप विदेश घूम रहे हैं। केवल एसी और पीसी से काम नहीं चलेगा, सपा प्रवक्ता इस समय राजीव जी उलझे हुए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ट्वीट पे। हमारे यहां से रोज एक ट्वीट होता है और रोज इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके पैनलिस्ट और प्रवक्ता है वो एक मीटिंग करते हैं कि आज शाम को इस पे कैसे समाचार चैनलों में जाके इसको डिफेंड करना है। इनकी जो सूझबूझ है ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में एनडीए के साथ है, एनडीए बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यूपी के दो लड़के फिर एक साथ हैं। अब आगे क्या होगी? अब हमने तो मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन रहे थे? कौन? अखिलेश। ये वही अखिलेश यादव है जिनको रात भर जगाया गया और सुबह एक भी टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह का तमाम हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इनका गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद कैसे तुतु मैमे होता है और तुतु मैमे के बाद फिर कैसे एक हो जाते हैं। 2027 में इनकी स्थिति बहुत खराब है, 17 से भी स्थिति इनकी 2027 में खराब रहेगी।
4: मनोज काका, मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने आपको बिल्कुल उलझाए रखा और आप उलझ गए हैं।
7: देखिए, भारतीय राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो स्वयं अपने आप को दोगला कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम दोगला हैं और दो मुहा साफ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जवाब देना बहुत वाजिब नहीं होगा। और आपको भी पता होगा कि इस उत्तर प्रदेश में दो लोग पेपर लीक के दोषी हैं, एक बेदीराम है, विपुल दुबे है, दोनों भारतीय जनता पार्टी में है। और ओम प्रकाश राजभर का जो उनके दरबारी इतना पढ़ रहे थे वो बयान भी उसको याद होगा। ओम प्रकाश राजभर ये कहता है और आपके चैनल ने स्वयं चलाया कि जब कहीं पे कोई फार्म भर देना, कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना हमको, हम कर लेंगे बेदीराम को। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक का जो सरगना है उसका संरक्षण दाता ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण दाता योगी है, योगी के संरक्षण दाता मोदी है। तो ये देश और पूरे देश का नौजवान और जेंजी सब समझ रहा कि पूरे देश को किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, पूरे देश को कैसे धार्मिक दांधलेबाजी में झोंका जा रहा, कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े हजारों करोड़ के दफ्तर बन रहे हैं और भारत में बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। तो ये सब समझ रहा, दरबारियों की अपनी मजबूरी होती है उन्हें गाना। और जिसके ट्विटर और फेसबुक और सब अभी ओम प्रकाश राजभर के हमसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर नहीं होंगे वो क्या मुकाबला करेंगे? तो हमारे यहाँ एक एक से छोटे छोटे कार्यकर्ता है, उनका जवाब नहीं दे पाता, पंकज राजभर का, सीमा राजभर का।
4: ठीक है, अबे जी आप कुछ ऐड करना चाहें फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा। राजेश जी
7: बयान दे दे कि वो दोगले नहीं है, वो दोहरा चरित्र के नहीं है। इस तरह का बयान जो नेता देता है उसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? राजीव जी, और ये जो मैंने बात कही क्या गलत कही? आपके भी संस्थान ने दिखाया।
10: बिल्कुल ठीक कहा मनोज काका।
7: और अगर सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं, अगर सरकार वही शख्स है करना चाह रही
4: है। मनोज जी, तो अभय जी बोल रहे हैं, ठीक है, लौट रहा हूं मनोज जी आपके पास।
7: सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं अभय जी, तो बस 10 सेकंड। ये
4: अच्छा, चलो कंप्लीट करने दीजिए। मैं साथ साथ में बता भी दूं कि इस समय मीटिंग भी चल रही है, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं लखनऊ में।
7: वो बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के लिए भर्ती का आवेदन कब जारी होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के लिए, समूह ग और ख में बहुत सारी वैकेंसियां, कब अभी पे
4: पर्टिकुलर सवाल का भी जवाब
7: बता के जाए।
10: देखिए राजीव जी, जो अनुपूरक बजट ला रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट तो पढ़िए, वो कह रहे हैं कि ये अनुपूरक बजट जो लाते हैं ये तो पैसा सरेंडर कर देते हैं। अभी कैग ने 25 की जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 30,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया, खर्च ही नहीं किया। अरे ना दिल्ली पैसा भेज रहा है ना ये पैसा इनके पास है खर्च करने लायक। अभी जो कह रहे थे सतीश जी लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं बता दूं, मैं जो नाम पढ़ रहा हूं उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। आदित्यनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, क्यों इतने अपराध चरम पर हैं? ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। ये सारे वो लोग हैं जिनको सत्ता की सरपरस्ती है, बड़े अपराधी हैं मगर जेल से बाहर है, सत्ता के आनंद लूट रहे हैं। अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, और एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी शो की। कहां है आदित्यनाथ जी आपका लॉ एंड ऑर्डर? एकमात्र उत्तर प्रदेश है जहां एसिड अटैक महिलाओं पर हो रहे हैं, एकमात्र उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास हैं, एबडक्शन पूरे इंडिया में, अपहरण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। क्या हाल उत्तर प्रदेश का बना दिया आपने? ना शिक्षा की व्यवस्था है, पलायन चरम पर है, अपराधी मान मर्दन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और महिमा मंडन कर रहे हैं जितने सारों में भ्रष्टाचार किया और कोई
4: जवाब
10: नहीं बनाए, वो सारे ट्रांसफर है।
4: जवाब दीजिए।
6: देखिए राजीव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, कितना बड़ा झूठ आज तक जैसे चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं। आप कल्पना करिए, बेदी राम और दूसरे दुबे एमएलए का ये नाम ले रहे थे, तो इन्होंने एमएलए बनाया है उनको, उनके खिलाफ आज मुकदमे हो गए क्या? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके लिए वोट मांग रहे थे जाकर,
7: योगी आदित्यनाथ जी अभी बिल्कुल दुबे के घर गए थे, आपके घर
4: गए थे। जब आप बोल रहे थे राघव जी, बोलने वोट ड्रॉप नहीं कर दो, खामोश
6: रहिए सभी से। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का उससे बड़ा दोस्त अखिलेश यादव का, जिन्होंने उनको चुनाव लड़वाया। एमएलए हमने नहीं बनाया, एमएलए समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आप झूठ भरोसने का काम कर रहे हो जनता में। यदि वो अपराधी है तो इस अपराध का पाप समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव जी ने इसका पाप किया है। आपने उनको चुनाव लड़ाया, आपने उनको समर्थन दिया। सुनिए सुनिए, आपकी समस्या यह है कि आज अतीक अहमद माफिया नजर नहीं आता, मिट्टी में मिल गया वो। आज आपके सामने समस्या ये है कि आज मुख्तार अंसारी जैसा माफिया का उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है। आज आपकी समस्या ये है कि आजम खान जैसा माफिया आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है।
4: मनोज जी,
6: और आपकी समस्या
4: उनको एक बार कंप्लीट करने दे। आपका लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, उस पर भी जवाब दे दीजिए। और
6: आपकी समस्या के भी सवाल थे। हाँ, आपकी समस्या ये है कि बाबा विश्वनाथ की काशी कॉरिडोर बन गया, ये समस्या है। आपकी समस्या है कि नैमिषारण्य में नैमिषारण्य धाम बन गया। आपकी समस्या है विंध्यवासिनी देवी के कॉरिडोर का निर्माण हो गया। आपकी समस्या है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज में काम कर रहा है। आपकी समस्या है चित्रकूट में चित्रकूट धाम का विकास हो रहा है। हज हाउस बनवाते थे आप लोग, तो कब्रिस्तान बनवाते थे आप, तो मुसलमान बेटियों को 30,000 रुपया देने का काम करते थे। हिंदू बेटियों ने क्या बुरा कर दिया था भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी और हमारी वर्किंग का ये अंतर है? आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कितनी बड़ी, आपने देखा नोएडा के अंदर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे। अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? कुशीनगर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये विकास आपको नजर नहीं आएगा। आज लखनऊ से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो दंगा चाहते हो। आपको तो तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, आपको मुस्लिम तुष्टिकरण करना है। आज किस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए का आज इन्वेस्ट आता है, साढ़े आठ लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी दिया, 8.5 लाख। अभी आप आंकड़ा पूछ रहे थे, 8,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। आप आंकड़ा पूछ रहे थे ना, झूठ रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती है, आपको नहीं दिखाई देगा? नहीं देगा।
4: तो राजेश जी, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर दीजिए कि सपा के राज की तुलना में ये कितना ज्यादा या कितना कम है?
6: देखिए, सपा के राज में तो अपराध होता था, 36% अपराध कम। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर आता है आज कानून व्यवस्था की स्थिति में। पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश का 18वां नंबर है अपराध में। ये आज हमारी स्थिति है। रात में यमुना एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे बंद हो जाते थे। अरे भाई सबसे कम अपराध कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के ही अंदर है। आज योगी जी के नाम से अपराधी कांपता है उत्तर प्रदेश में। अपराधी अपराध करेगा।
4: मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, समय भी इतनी ज्यादा दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, हालांकि सत्र छोटा है लेकिन वहां जो घमासान होगा वो जरूर बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी से उसके संकेत मिलने शुरू हो गए। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
5: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
6: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

0: अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज ही रहा है कि अब एक और धार्मिक स्थल पर सियासी विवाद छिड़ गया। ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उसे और भी विपक्षी पार्टियों का साथ मिल गया।
1: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया लगातार, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे आप प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या का देख लीजिए, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये सरकार, देखिए, सिर्फ मंदिर नहीं, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की आस्था है। ये सरकार लोगों की भावनाओं से, लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ करने का काम कर रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है। बटेश्वर कॉरिडोर में जो शिकायतकर्ता है, जो विसिल ब्लोअर है, उसी के खिलाफ बातें की जा रही, उसी को पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र धमकाने में।
0: उधर इन हमलों के बीच बीजेपी ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि बिना तथ्य झूठे आरोप लगाकर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जा रहा है।
3: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
0: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की बरसात। कल से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र अगर रिकॉर्ड की दृष्टि देखा जाए, आंकड़ों की दृष्टि देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा दिन विधानसभा चली है। तो पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार का एजेंडा है 2026-27 अनुपूरक बजट, नए विधेयक, 10 साल की उपलब्धियां, विकास मॉडल। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी की मांग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कांवड़ यात्रा गाइडलाइन। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताकत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए, सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
0: दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस अब लखनऊ में बीजेपी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है।
3: कोई भी नियम बनाना सिर्फ नियम को बनाकर पास कर देना नहीं है, उस पर डिस्कशन होने चाहिए, पक्ष विपक्ष कर बैठ कर बात करनी चाहिए उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर, और तब कोई नियम बनता है। लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत खराब है।
0: सियासत के इस खेल में बीएसपी भी गोटियां बिछा रही है। मायावती की सियासत का अपना अंदाज है, उनके अपने कोर वोटर हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि योगी सरकार के लिए मॉनसून सत्र आसान रहने वाला है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाता है, लेकिन बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, और चुनाव सिर्फ मतदान से नहीं जीते जाते, उसकी नींव सदन की बहसों में भी रखी जाती है। इसलिए ये सिर्फ मॉनसून सत्र नहीं, मुद्दों का महासंग्राम है। ये सिर्फ अनुपूरक बजट नहीं, 2027 का राजनीतिक बजट भी है। ये सिर्फ बहस नहीं, भविष्य की बिसात है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सदन में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि सदन से निकला संदेश जनता के मन तक किसका पहुंचेगा। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आठवें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है। इन्हीं छात्रों में पलामू के नक्सल प्रभावित मनातू गांव से आए संतोष भी हैं। संतोष कहते हैं उनके 80 साल के पिता आज भी मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। अगर मेहनत के बाद भी न्याय नहीं मिला तो सिर्फ उनका सपना नहीं टूटेगा बल्कि गांव के बच्चों का पढ़ाई से भरोसा भी खत्म हो जाएगा।
1: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
0: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
2: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
0: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल के बाद अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नशा मुक्ति अभियान के लिए एक करोड़ जेन जी से पीएम का सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार, योगी के घर सचेतक मंडल की बैठक में माथापच्ची। संसद के सामने साधु की वेशभूषा को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज ने किया घोर विरोध, विरोध में उतरे बीजेपी, केस भी दर्ज। पंजाब में कांग्रेसियों के बीच वर्चस्व के लिए दो दो हाथ, बरनाला में भी चन्नी जिंदाबाद के नारे, बघेल बडिंग की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास में हादसा, यात्रियों से भरी बोट में लगी आग, 5 लोगों की मौत, 41 लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here.
3: कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है।
4: एंड AK-47 यूज्ड इन
5: भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं, देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
6: बेसिकली वो मिसलेड द हाउस, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मिसलेड द हाउस। वी आर गोइंग टू मूव ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हिम।
7: आपको 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी।
8: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे।
9: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।
10: छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का या उससे समझौता करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
11: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
12: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुका है, लेकिन संसद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद KC वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर संसद को गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है। इसे बीजेपी के दाव का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कहे गए शब्दों और 2 असंसदीय शब्दों का आरोप लगाकर स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। इस बीच CJP प्रोटेस्ट के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने संसद से पूछा है कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। मेरे देश की संसद हमारी चोटों पर, हमारे परिवार वालों की चोट पर मौन क्यों है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिस अफसर की पत्नी, एक ACP का बेटा, एक और पुलिस अफसर की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक पक्ष देखा है। ड्यूटी कर रहे घायल पुलिस वालों के गुनहगारों पर बात क्यों नहीं हो रही है। संसद में विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट, विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी।
13: The use of force can only be authorized by the Home Minister.
14: ये गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ,
12: पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब के सी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है। अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
15: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
6: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
12: पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया। तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है।
7: He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
16: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था।
17: जो पुलिस कर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए।
12: पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही।
18: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने
19: कहा बीजेपी के हो गया।
18: नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
20: राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोले सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप
12: पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खींच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है।
21: देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है।
12: पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है। उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया।
11: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
12: पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सांसद जी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने राज्यसभा में इस पर बोला भी और बहुत पैशनेट तरीके से बोला, लेकिन ये नोटिस वर्सेस नोटिस की लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है बच्चे पीछे छूट गए हैं और आज घायल पुलिस वाले आए हैं, उनके परिवार वाले आए हैं। पुलिस वाले तो खुद वर्दी की वजह से नहीं सामने आ सकते, लेकिन परिवार वाले आए हैं, वो बता रहे कितने टाके सिर में लगे हैं। संसद इस पर मौन क्यों है?
22: देखिए, बच्चे कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही कब, जब अनशन चल रहा था 20 दिनों तक, राहुल गांधी जी धरती के किसी अज्ञात कोने पे आनंद मंगल करते हुए विचरण कर रहे थे। एक भी कंसर्न का एक स्टेटमेंट था नहीं। अचानक संसद शुरू होने से 2-3 दिन पहले धरती पे अवतरण करते हैं और प्रधानमंत्री आवास पे जाकर लोटपोट होने लगते हैं। छात्रों ने कहा भी कि आइए, जंतर मंतर गए क्या? नहीं गए। कभी प्रधानमंत्री आवास पे गए, कभी गांधी स्मृति में गए, कभी इंदिरा भवन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको अपना फुटेज खींचना था, वो बच्चों से कंपटीशन में थे कि कैसे इन्होंने इनको ज्यादा फोकस मिल गया है तो मैं अपनी तरफ फोकस कर लूं, बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी इस कंसर्न को नहीं उठाया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी तरफ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त कराने के लिए नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, देर रात्रि में बच्चों के लिए अपना संदेश किया, फिर बिल पास किया कैबिनेट ने और हमने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया, संसद में विधेयक बना दिया। तो अगर देखें तो हमारी अप्रोच अलग थी। इनकी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो ऐसे बच्चे मचल जाते हैं ना, कोई बराबर बड़ा, अरे नहीं नहीं इतना क्रेडिट उनको तो मैं थोड़ी और बड़ी बात करूं, तो अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, इडियट शब्द उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके लिए है। अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बाल बुद्धि शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने असंसदीय घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य तो राहुल गांधी जी थे नहीं ना, वहां भी नाम लिया गया था, तो किस कैपेसिटी में क्या मान के छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि को असंसदीय घोषित कर दिया था। दूसरी बात, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है, सीधे की मतलब आपने गोली चलवाई, अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार उस पर सोचिए क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना नजला उतार रहा है। मैं अंत में अंजना जी अभी कहना चाहूंगा, हाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पुराने सबको ध्यान होगा, आशुतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवाओं की एक क्रांति जेपी के नेतृत्व में भी हुई थी, तो ये बताइए तब युवाओं को भरोसा था ना इस देश के नेतृत्व पे, तो युवा किसके पास गए थे, जयप्रकाश नारायण के पास, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, और इन्होंने विषय उठाया था और एक तोड़फोड़ की घटना हुई हो कहीं बताइए, एक गाली गलौज की घटना हुई हो तो कहीं बताइए। आज वास्तविकता यह है कि छात्रों को विश्वास नहीं है विपक्ष पे, इसलिए वो अपनी राह चल रहे हैं और चूंकि अपनी राह चलते हुए उन्हें दिख रहा है, इनको लग रहा है कि सरकार का विरोध ज्यादा प्रबल दिख रहा है, तो केवल माइलेज पाने के लिए छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में इस ढंग की चीजें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर बढ़ रही है और ये लोग कुटिलता के साथ घमासान की ओर बढ़ रहे हैं।
12: चलिए ठीक है आलोक जी, अब आप आइए जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है।
0: देखिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की, गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृहमंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए, ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठी चार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं, जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की। अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मांग रहा मार रहा है भाई। दो महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी। क्या दो महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से। समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखानी है भाई, पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस, एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले, जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने, आप 4 साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया, पार्लियामेंट से एक पास करते कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडल सप्रेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे, एक दिन पहले 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा, उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए, आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए, आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पायलट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ट्विटर
12: सुधांशु जी, तीन बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी, आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी चली, किसके आदेश पर चली, कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भी कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। हालांकि आलोक जी अगले राउंड में आऊंगी तो बताइएगा, राहुल जी से 2 बार सवाल पूछा गया, एक बार तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि बीजेपी वाले हो, नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। लेकिन 3 पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य 2 सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी।
22: हाँ देखिए, पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं कि रोकने का प्रावधान कानून में। अरे कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता है? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी, आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के बचकाने हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। अब पैलेट गन पे आता हूं। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, बाराबोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी,
12: तो
22: 10-15-20-25
12: सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में
22: 4-6 राउंड भी फायर हो गए।
12: सुधांशु जी आपको टोक रही हूँ, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी?
22: हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल, हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। मैं, आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जो छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि ये गीला हुआ है, तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस जगह पे था, क्या था, वो एक अलग जांच
12: बताएगा।
22: तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं,
12: ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा?
22: हाँ तो आप सुनिए, इसमें आप बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं, वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं अंजना जी, सवाल पुलिस से ही पूछेंगे ये, और इसलिए यहां पर जो बच्चे हैं वो तो भले ही इमेच्योर थे, उनको उतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनके सिस्टम में किस ढंग से अपराधी घुस गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वहां पे व्यवस्था रहती कि वो ना आए, और बच्चों की मैच्योरिटी देखिए, उनका एक प्रवक्ता बेचारा बर्गर खाते पकड़ लिया गया तो उसके लिए हटा दिया गए। सोनम वागचुक ने कहा कि मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे सामने बैठे लोग पूरी सब्जी खा रहे थे। मगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील है वो तो सामान्य है अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं।
12: अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके अर्थ में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर।
0: अंजना जी होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का ही प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो।
12: रोहित जी जल्दी से कमेंट उनकी बात पर, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए नहीं आएगी इस तरह की संवेदनाएं क्योंकि उधर से निर्मम व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ।
1: देखिए मैं बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ देश के जनमानस के मन में जो बातें आ रही हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यह कहा कि पुलिस के वेश में संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की, देश ये मान रहा है कि 20 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी जी जो लोकसभा में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष हैं वो गायब थे भारत के पटल से, श्रीमान अखिलेश यादव जी नदारद थे, तेजस्वी यादव तो गोविंद गौन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे, आदरणीय सोनम वांगचुक जी से और विद्यार्थियों से मिलने कोई नहीं गया, पार्लियामेंट के 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पूरा प्रपंच रचा जाता है। देश का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्थिर सरकार को, लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोगों के सहयोग से, या यूं कहें तो सोरोस जैसे लोगों के सहयोग से, देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच में भेजकर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। और जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर, मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड के पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए जहां हथियार रखा जाता है, कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर कांग्रेस ने यह चक्रव्यूह तो नहीं रचा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में रहा है, कांग्रेस का इतिहास सिख दंगों में रहा है, कांग्रेस के हाथ हमारे यहाँ बिहार के भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं, ये लोग खून की होली और दिवाली खेलते हैं, कैसे कैसे लोग को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, कैसे लोग को, आप कैसे लोग हैं, आपके नेता कैसे लोग हैं, सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप भारत के चरित्र प्रमाण पत्र के पदाधिकारी नहीं है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत कीजिएगा और देश का चौथा स्तंभ आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरांत निर्णय लेकर तय करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं।
12: कह रहे हैं कि एक स्थिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट कॉज करने के लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्यूल किया है, इसको कराया है इस तरह से, और पुलिस वालों का जो आज दर्द आया उस पर मैं चाहती हूं आप भी बोले।
2: सॉरी मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना, अच्छा हाँ ठीक है सॉरी, मैं तो समझा था कुछ और। देखिए पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस बात के 26 मिनट 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल यह नहीं है, असल सवाल यह है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना, देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से।
12: सुधांशु जी,
2: और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दोरा है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके सांसद संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं।
12: सुधांशु जी जवाब दीजिए, अचानक से ही आशुतोष जी रुक गया,
22: जवाब दे दो
12: आशुतोष जी। हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए।
22: अब मैं बता,
12: देखिए लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है कहता है पैलेट गन चला ही नहीं, आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो, 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला,
22: ऐसा करिए ना,
12: तो 20 तारीख जी एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है?
22: हाँ तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए, जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, खोने इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं, और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में वो बैठे। मैं तीन उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ, यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले एक महीने से लगातार हम लोगों से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्फ बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड पे चुप, कर्नाटक में चुप। बस ये तीन उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे चुप रहो चुप हो जाए, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है पूरी तरीके से समझा जा सकता।
2: महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृहमंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों के संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे और जिन लोग और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या कि जब एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, सोशल कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको, वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है।
12: आलोक जी
0: देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो, दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठी चार्ज और सब कुछ हो जाता है, डीडीएनटी को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जेंजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, दो दो बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे, याद होगा ना आप लोगों को, मणिपुर में क्या हुआ वो कंप्लीटली आप ही का फेलियर था, एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए मणिपुर का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को, इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है केवल इन 2 कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में, पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर के कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां अफवाह हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे भाई, आपकी सरकार है 12 साल से देश की राजधानी में, अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दियो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक FIR करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो RSS के गुंडे हैं, और RSS के गुंडे इसी तरह से यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था, मुझे बताइए केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए, अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री MA के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था, और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया, लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन CBI को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये CBI का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था, 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई CBI के निकम में डायरेक्टर से, उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं, क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि NTA हो, CBI हो, ED हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए, वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते।
12: लेकिन केरला का जो PSC पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है वहां पर भी कई जगह। हाँ।
0: देखिए दोनों चीजें अलग हैं, देखिए दोनों चीजें अलग हैं,
12: अलग है।
0: पेपर
12: झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता है चला,
0: पेपर था और पेपर शुरू होने से पहले,
12: लेकिन लेकिन
0: एक प्रांजना जी,
12: हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना,
0: वो भी गलत है।
12: ठीक है, ठीक है, अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौच पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौच की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 FIR ये वो, फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौच कर देती हैं। भाई किसी भी जेनरेशन को गटर जेनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती है क्या ये?
3: अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं, चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। और अंजना जी एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग, इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया,
4: देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आड़ में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी कर रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए।
5: इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा
4: सरकार को अस्थिर कराने के लिए।
5: एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब अरे सवाल है, सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री सर, जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये।
2: देखिए मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है? अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लाख लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए, क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पर। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा?
4: अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो मन में आएगा बोलिएगा, लोकतंत्र में बोलिए।
2: मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ,
4: देश के नागरिक दिया है,
2: मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ।
5: सुधांशु जी देखिए, ये आंदोलन हुआ, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक के बाद छात्र सड़कों पर उतरे। ये एक सच्चाई है कि बहुत जगह पर पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी में मारा गया, पुलिस वाले भी कई जगहों पर घायल हुए हैं, लेकिन छात्रों पर भी खूब लाठियां चलाई गई हैं, उनको जगह जगह पर चोटें आई, बहुत सारे छात्रों पर भी इस तरह से ज्यादतियों की खबर आई। अब आपकी सरकार को ट्रस्ट जो खोया हुआ था, उस डेफिसिट को दूर करने के लिए दो दो मंत्रियों को लगातार भेजना पड़ा, आपको इनसे बात करनी पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से, है? उसके बाद आती है कंगना रनौत, ऐसे ही पहले खालिस्तानी ये वो कर करके नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद से पूरा एकदम मतलब ऐसी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, गटर जेनरेशन कह देना, लड़कियां हैं, मतलब अगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता है सर? ये
22: आप बिल्कुल, आपने बात सही कही, बिल्कुल आपने जो बात कही है। तो अंजना जी ये मंडी में क्या भाव चल रहा है ये स्वीकार्य था?
5: अगर वो गलत है तो ये भी तो गलत है ना।
22: था और उसके बाद बचाव लिया गया कि वो हैक हो गया था। हैक की दिखाएं कब रिपोर्ट की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया? और क्या क्या भाषा शब्द प्रयोग नहीं की गई प्रधानमंत्री जी के लिए? बिहार चुनाव में मां की गाली बोली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चुनावी सभा में मां की गाली, और बाकी सब तो कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, वो तो बहुत सारा होता रहा, अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि कैसे बैल बुद्धि है भाई रोहित सिंह के लिए, कि ये कह रहे कांग्रेस के लोग थे। भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के लोग थे? वो जैसी बुद्धि उनकी वैसे आपकी, आप भी अपना हवा में लंतरानी फेंक रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे। और आशुतोष जी गंभीर व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं मीडिया की बात पे, जो मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, आशुतोष जी आप ही अपने वक्तव्य बता दीजिए, वक्फ बोर्ड पे कितनी आलोचना की थी, संदेश खाली पे कितनी आलोचना की थी, पंजाब और उस पे। और देखिए यह भी ध्यान रखिए, रोहित क्या है इनकी बैकग्राउंड के बारे में तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर आप तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रहे और आप तो उस भीड़ में भी शामिल थे जो मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमला करने के लिए आई थी। अब खैर छोड़िए, मीडिया पे वो क्या होती, भक्ति क्या होती, खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे गांधी परिवार की मैंने बहुत सेवा की, इस कारण से मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा दी गई। अरे ये तो साहब इंडिपेंडेंट मीडिया था, क्या गजब था साहब। अब आइए राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे, एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लेके आए।
19: एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इसी समय पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि एक हमलावर आया और उसने मुझे चाकू से मारने का प्रयास किया है। दिल्ली में घर पर ही दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव को लेकर एक कंट्रोवर्सी चली रही है, जो आप जानते हैं कि संसद भवन परिसर में एक उन्होंने व्यंग करते हुए एक नाटक रचा, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को अलग तरीके से उठाया, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। लेकिन इस समय बड़ी खबर आपको दे दें, जो हंगामा मचा उसकी तस्वीर भी है।
8: भैया मेरे घर में कोई ढूंढ के हमला करेगा, आप बताओ। आपके साथ आए क्या?
9: नहीं सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, नहीं,
10: मीडिया में
9: और बहुत सारे लोग बैठे थे,
10: आप लोगों के नॉलेज में था।
9: और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे
10: दो लोग आया स्टिंग करेंगे,
9: कुछ और लोगों ने क्यों नहीं बताया? आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हुए थे।
8: हमसे मिलने नहीं बैठे
9: जी, कौन थे सर वो, कुछ पता?
8: हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता है।
23: देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है, मैं तो देखिए मैं सांप को बचा रहा हूँ,
10: ब्लड निकल रहा
23: है, चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को
24: मेरी जान बच गई, वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है
23: देखिए आप लोग
24: मेरे चेस्ट पे मारा है,
8: चाकू लेके मारने आया भाई,
24: चाकू
23: लेके साथ आगे पीछे पीछे मैडम आपके
24: अभी अभी मैं हाँफ रहा हूँ, अब मेरी स्थिति देखिए,
9: बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं,
8: इसको
24: अभी मेरी सांस
23: लेके मैडम हमला कर रहा है, अब हम बचाव को ना बचाएंगे,
24: और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप हत्या कर देंगे,
8: अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे,
24: हत्या कर देंगे,
23: ऐसे जननेता के लिए तुम्हारी जान भी हाजिर है, अगर ऐसे ऊपर दबरी ऊपर दबी आएंगे ना
24: हमारे सांसद
23: जी के लिए हमारी जान भी जाएगी,
24: हमारी जान दे देंगे,
23: हमारी जान दे देंगे
24: पप्पू यादव जी के लिए,
23: जितना उक्ता लगा ले पप्पू यादव का है क्या कार्यकर्ता काफी है, हमला कर रहा है वो और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, शाम के ऊपर हमला कर रहा है,
24: साजिश के साथ आ गया सर।
10: कौन थे ये लोग? एक सेकंड भाई, बोल सकते एक
8: सेकंड जिंदा चला
19: इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए पीयूष। ये कौन था जो पप्पू यादव के घर पर आया था, क्या ये पत्रकार बनकर गया हुआ था, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
25: ये देखिए अभी जो आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाए गए काफी गंभीर आरोप है, फिलहाल अभी इसको जिस आदमी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं जब हंगामा हुआ तब पुलिसकर्मियों ने उनको जो वहां पहुंचे थे उनको हिरासत में ले लिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल पप्पू यादव ने बुलाई थी उसके मद्देनजर जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कैसे चंदा चोरी का मुद्दा
8: संसद और भवन इसको मारना हो मार दे।
26: सर जो आज घटना घटी उसके ऊपर देखिए आज की घटना बहुत निंदनीय है, दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है, दिल्ली पुलिस की षड्यंत्र गर्दी दिखाती है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से 6 बार सुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र।
19: तो आप ये भी सुन रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस किसी विफलता नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी साजिश है। पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष लेकिन मामला तो गंभीर है, मतलब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में ये कैसे हो गया और उसके पास क्या हथियार था, और था तो कौन सा हथियार था?
25: जी बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है। पप्पू यादव 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, पिछले काफी लंबे समय से जो है वो सक्रिय रहे राजनीति में, बिहार से आते हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इसलिए की जा रही थी क्योंकि आपको याद होगा संसद भवन में जो चंदा चोरी को लेके पूरा एक स्किट को इनैक्ट किया गया था उनके द्वारा, जिसमें दिखाया गया था कैसे चंदा चोरी यूपी में हो रही है और उसी चंदाचौधरी के मुद्दे को लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने बुलाई अपने घर पर, तब वहां पर पत्रकार तो पहुंचे ही काफी भारी संख्या में, लेकिन वहां पर एक शख्स पहुंचा। अभी आरोप लगाया जा रहा है कि उस शख्स के हाथ में चाकू था, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस चाकू का इस्तेमाल करके पप्पू यादव की हत्या करने की साजिश भी रची जा रही थी। हालांकि पुलिस जो वहां मौजूद थी उन्होंने तुरंत उस आदमी को हिरासत में लिया, और फिलहाल आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कैसे उस शख्स को वहां से लेकर भी जाया जा चुका है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जैसे ही बयान आता है तब हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन
19: पीयूष, चूंकि वो विजुअल तो नहीं है कि जब वो हमला कर रहा है, लेकिन क्या उसने हमला किया, पप्पू यादव तक पहुंच पाया या नहीं? उनके समर्थकों का तो कहना है कि उनको चोट भी आई है।
25: अभी तक जो हमला करने की बात कही जा रही है, हमला कब हुआ कैसे हुआ इसके बारे में पप्पू यादव की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की ये पूरी तरह से साजिश थी, ये आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। और जैसे ही वो शख्स वहां पहुंचता है, तुरंत आसपास खड़े जो सुरक्षा कर्मी है पप्पू यादव के, उन्होंने उस आदमी को रोक लिया। उस शख्स को फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा हो रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये हंगामा जो है वो काफी जोरों शोरों से शुरू हो गया, जब अचानक से ये शख्स जो है वो वहां पर पहुंच गया। अब पप्पू यादव के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की साजिश है, ये साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चंदाचौरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और कल से फिर से संसद शुरू होने वाली है और संसद में जरूर इस मुद्दे को पप्पू यादव लेकर जरूर जाएंगे,
19: वो तो बिल्कुल विषय बनेगा। लेकिन पीयूष ये बताएं कि ये जो शख्स है, क्या इसके बारे में कोई भी डिटेल मिली है कि कौन है ये?
25: अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान जरूर निकल के सामने आएगा, और जैसे ही बयान आता तब हम अपने दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सिर्फ एक शख्स वहां पर पहुंचा था, उसके हाथ में चाकू था, और उस चाकू से उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, उनकी हत्या करने की कोशिश की, ऐसा आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाया जा रहा है।
19: पत्रकार ये बात भी कह रहे थे, क्या कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ भीतर जब कोई भी गया, और कैसे भीतर तक पहुंचा, क्योंकि सांसद के अगर आवास के भीतर जा रहे हैं तो बाहर तो सिक्योरिटी होती है और चेकिंग भी होती है।
25: जी बिल्कुल, चेकिंग भी होती है, और जब सांसद 6 बार के चुने सांसद है तो उनका उनको पूरी तरह से सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है, घर भी बड़ा होता है, और इसीलिए आप देखिए उनके घर का जो आंगन है वहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही वहां पर लोग पहुंचते हैं, जब हम भी वहां पहुंचते हैं तो कैमरा और माइक को पूरी तरह से स्कैन करने के बाद ही।
19: ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर, इस पर नजर लगातार बने हुए हैं हमारे। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर,
5: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
8: Digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
9: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
10: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Tune in to How To, a brief look at all the special functions.

0: पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी का पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जेन जी के गुस्से को आवाज दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कड़े कानून, टास्क फोर्स और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन की इस आंधी के बाद आखिर जेन जी खड़ा किसके साथ है? कौन है जो आज के युवा के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है? सीजेपी के नेतृत्व में जब सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तो उसमें पारंपरिक राजनीति से दूर रहने वाली जेन जी पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहीं से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस लड़ाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। संसद के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी नेताओं ने मंच संभाला, युवाओं की आवाज बनने और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेन जी के सबसे बड़े हमदर्द हैं।
1: एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे हैज अ वाइस चांसलर फ्रॉम द आरएसएस। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल। योर रियल एनिमी इज द आरएसएस। कीप इट इन माइंड। दे आर द पीपल हु आर नॉट letting you be students. They are the people who want you to be unbhakt.
0: लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जेन जी की ताकत का असर ये हुआ कि सरकार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। सरकार ने पेपर लीक पर रोक के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेखनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीकों से हटकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और जेन जी से सीधा संवाद स्थापित किया।
2: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
0: यानी एक तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं जो युवाओं के गुस्से को ऊर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का पॉलिसी ड्रिवन और टेक फ्रेंडली अप्रोच है जो समाधान देने का दावा कर रहा है। आज देश का जेन जी सिर्फ नारे नहीं सुन रहा बल्कि वो विपक्ष के तेवर और सरकार के एक्शन दोनों को बारीकी से तौल रहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन युवाओं के जज्बात को वोटों में बदल पाया है या फिर सरकार का संवाद जेन जी की उम्मीदों पर खरा उतरा है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, चाकू लेकर आया हमलावर, कहा मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल, बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत के मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। नशा मुक्ति अभियान के लिए 1 करोड़, जेन जी से पीएम का सीधा संवाद, कहा दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को बर्बाद कर रहे, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। पंजाब में कांग्रेसियों के बीच वर्चस्व के लिए दो दो हाथ, बरनाला में भी चन्नी जिंदाबाद के नारे, बघेल बडिंग की बोलती बंद, पार्टी में एकजुटता पर जोर। इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से कर रहे हैं। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दरमियान हंगामा हो गया। पप्पू यादव पर जब दिल्ली में वो अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमले का आरोप है कि उन पर हमला किया गया, जमकर वहां हंगामा हुआ। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि एक शख्स पहुंचा वहां पर, उसने हंगामा किया, फिर चाकू निकाला और उन पर हमला करने की कोशिश की। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर जान से मारने के लिए उन पर आया था। उनके समर्थकों का आरोप है कि उनको चोट भी आई है। इसके साथ साथ उनके समर्थकों का आरोप है कि ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये साजिश के तहत करवाया गया है। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव कुछ दिन पहले संसद में एक नाटक उन्होंने किया था जिसमें राम मंदिर चंदा चोरी के विषय को उठाया था, उन पर कई FIR भी हुए हैं। हिंदू संगठनों का भी आक्रोश देखा था, बीजेपी भी हमलावर थी, लेकिन इस बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा हुआ है।
1: किस तरह हमला किया, उकारा जान से मारे।
2: क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी?
1: आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। आप तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए। हाँ। कि नहीं सोए
2: पुलिस का आप? हम उस पर सो गए, पुलिस को दे दिया
3: उनको।
1: भैया तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे
2: जी, पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है।
1: आपको तो मैंने अभी फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। हाँ। वो तो बच गया, लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते।
0: हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। अनमोल, बड़ा सवाल, ये हमलावर कौन था, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, दिल्ली पुलिस का क्या बयान है?
4: इस समय मैं राजीव पप्पू यादव के घर पर खड़ा हूं। तकरीबन 6 बजे के आसपास पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्योंकि अभी वो सवालों और सुर्खियों के घेरे में है, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि संसद में वो भगवा कपड़े पहने दिखे, जिसको लेकर देखा गया कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी पर सफाई को लेकर उन्होंने 6 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पर 6 बजे देखा गया कि जब वो PC संबोधन कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से बात करे, तो उस समय एक शख्स आता है, उनकी तरफ चप्पल फेंकता है, जिसको लेकर यहां हंगामा देखा जाता है, भगदड़ मच जाती है। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, जिस शख्स ने उन पर जो चप्पल फेंकी है उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। बाद में कहा जाता है कि पप्पू यादव के जो लोग हैं, पप्पू यादव का दावा है कि कहीं ना कहीं उन पर चाकू चलाने की भी कोशिश की गई, हालांकि उनका दावा है। पर अभी की अगर मैं आपको तस्वीरें उनके घर की दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस समय उनके समर्थकों का और मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है यहां पर लगना राजीव शुरू हो चुका है। हालांकि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। कुछ देर पहले देखा गया था कि दिल्ली पुलिस के जो कुछ अधिकारी थे जो आसपास थाना क्षेत्र जो लगता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो शख्स है उसको डिटेन कर लिया गया और उससे पूछताछ कर जाना जाएगा कि मोटिव क्या था, वो यहाँ कैसे पहुंचा, क्या कहकर वो अंदर घर में घुसा, उसका मोटिव क्या था, सबकी जांच करके दिल्ली पुलिस बताएगी कि ये कैसे हुआ। पर एक तरफ पप्पू यादव जो है दिल्ली पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी VSP उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ ओपोजिशन भी चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी पर आक्रामक थी। राजीव,
0: अनमोल भीतर कैसे गया वो शख्स, सिक्योरिटी चेक क्या नहीं होता है? पत्रकार भी जाते हैं तो पहले तो उनको जानकारी भी होती है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये भीतर गया कैसे?
4: राजीव, देखा गया कि 6 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। देखा गया था कि बहुत से मीडिया कर्मी जो थे वो अंदर जा रहे थे। हालांकि देखा जाता है कि जब मेंबर पार्लियामेंट के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इतना चेक नहीं किया जाता, इतना पूछा नहीं जाता। शायद इसी चीज का फायदा लेकर जो शख्स अंदर घुस गया होगा, अंदर घुसने के बाद और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, शख्स ने जो है फेंकने की, चप्पल फेंकने की पप्पू यादव की तरफ कोशिश की। हालांकि इसको समय रहते ही काबू कर
0: बिल्कुल,
4: लिया गया।
0: लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि धारदार हथियार अंदर चाकू से वो दावा कर रहे हैं कि उन पर हमला किया गया, इसमें कितनी सच्चाई? दिल्ली पुलिस बयान क्यों नहीं दे रही?
4: राजीव, अभी दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी। अभी ये दावा ही है जो पप्पू यादव और उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है, पर अभी पुलिस जांच कर ही फाइनली बताएगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमने कुछ चश्मदीदों से बात करने की कोशिश की, यहाँ पर जो मौजूद थे, तो उनका सबका अभी तक जो बयान है कि चप्पल ही का ही उनका बयान है। अभी कोई भी चाकू को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। तो हालांकि ये जो मामला है, अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि चाकू वाली बात में कितनी सच्चाई है। पर कहीं ना कहीं इसको लेकर पप्पू यादव के जो समर्थक है अब यहाँ पर इकट्ठे होने भी शुरू हो गए हैं।
0: हम एक विजुअल भी दिखा रहे हैं, उसमें एक चाकू रखा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो वो शख्स क्या उसी चाकू के साथ है जो पप्पू यादव शायद अपने घर पर दिखा भी रहे? एक टेबल पर उन्होंने वही चाकू रख दिया है।
4: राजीव, हालांकि उस समय देखा गया कि हंगामा था, सबका ध्यान पप्पू यादव की तरफ हो गया था, तो इस बीच कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि चाकू कहां से आया, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। अभी इसकी मामले की जांच चल रही है और इसमें तो देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस ही जांच कर फाइनल बताएगी।
0: दिल्ली पुलिस की जांच सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका बयान का इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस मामले पर अब राजनीति का परवान चढ़ना तय है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चढ़ावा चोरी पर छिड़े हुए नए संग्राम के। शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में विरोध करते हुए नजर आए और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब सियासत जो है जबरदस्त है, बवाल जबरदस्त है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन दिखा, वाराणसी में FIR हुई। बीजेपी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
6: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेष में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: बात अब उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना था, मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 10,000 से ज्यादा स्कूल ही बंद कर दिए गए।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए। सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान किया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकारी पूरी तरीके से अधिकार उनके पास ही है।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज नौवां दिन है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करने, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा।
5: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
6: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है नखो हुआ।
7: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
5: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
8: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर।
5: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
9: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
5: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इस समय बड़ी खबर आपको देते हैं कि मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। रांची में ये छात्रों का हुजूम है जिनके हाथों में मशाल है और सरकार से निष्पक्ष जांच की सीधी सीधी सी मांग है। कथित गड़बड़ियों के आरोप है, सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी इस मामले में जांच करे। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हाथों में इनके पोस्टर्स, बैनर्स, प्लाकार्ड सब हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाथों में एक मशाल भी है और अंधकार में जो ये परीक्षाएं हुई हैं उजाले की तरफ ले चलने कम से कम ये मांग कर रहे हैं। हाथों में इस समय जुलूस की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, मसाल उनके हाथों में है और भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी निष्पक्ष और समयबद्ध व्यवस्था तय हो ये मांग की जा रही है। पारदर्शिता तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई की मांग है और ये मांग कोई अनुचित भी नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और पूरा देश एकजुट होकर स्टूडेंट्स उनके साथ आ गया। अब आप एक तस्वीर ये देखिए, ये रांची की तस्वीर है और झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार के बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम कल आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो भारी मतों से जीतने वाले हैं।
0: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
10: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
0: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है, बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
10: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे,
0: टीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, स्वस्थ जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
11: क्योंकि आज जब देश ने
12: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
11: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
12: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
11: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
12: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
11: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
12: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए
11: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
12: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
4: आगे बढ़ते हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ही घंटों में यू टर्न क्यों लेना पड़ा? ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी देने के एक दिन के बाद ही मेल मुलाकातों से ऐसा क्या बदल गया कि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वजह और हो? क्या अमेरिका खुद इन हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है?
13: अमेरिका की मिसाइलें पूरी तरह तैयार थी, लॉक्ड और लोडेड। खाड़ी देशों में मौजूद 50,000 सैनिकों को भी अलर्ट कर दिया गया था। हॉर्मुज में नौसेना हमलों के लिए तैयार थी तो पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस एयर स्ट्राइक की तैयारियों में जुट गए थे। क्योंकि ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले कैबिनेट मीटिंग में भी साफ कह दिया था कि धोखेबाज ईरान के साथ बातचीत की अब कोई उम्मीद नहीं है और अब वो इतिहास के सबसे खतरनाक हमलों में से एक को अंजाम देने जा रहे हैं।
14: I'm losing faith in them because they do lie and do they do misrepresent? Well, the other day the five missiles were shot. We'll be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say we just can't take it anymore.
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं भी साझा की। आज तक ने भी इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है और नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंग्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Die Hard Music Fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू
3: टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट।
4: नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड टेस्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर।
5: टू मोर टेस्ट वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन 13th मई 1998।
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: Jai Hind friends, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

केरल में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी और कई जगहों से भारी बारिश के बीच मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है, कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है, बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब पथानमथिट्टा का हाल देखिए, यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में, घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है। कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो गुजरात में भी मानसून ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच दक्षिण में केरलम में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसका असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। लेकिन विशेष की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां पर बादलों ने तबाही मचा दी है।
1: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
2: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
1: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार बहाव में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
2: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद है और यहाँ ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
3: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की, तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं, लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
2: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक केरल।
0: अब बात केरलम की, जहां पर बेहिसाब बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केरलम में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बाढ़ बारिश के चलते अब तक यहां 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसे लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए वहां राहत अभियान भी चलाया जा रहा है।
1: बाढ़ में आदमी किस तरह बेबस हो जाता है, किस तरह बेचारा हो जाता है, किस तरह असहाय हो जाता है, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें केरलम के पथानमथिट्टा की हैं। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। देखिए पथानमथिट्टा में कमर तक पानी भरा हुआ है, जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। जो लोग अलग अलग हिस्सों में बाढ़ में फंसे हैं उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में इस तरह से इन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को जरूरी सामान। पथानमथिट्टा की दूसरी तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, घुटने तक भरे पानी में लोग आने जाने को मजबूर है।
4: Peroor in Pathanamthitta, and as you can see, there's no rainfall, but the waterlogging continues in many regions. And here also, the entire road is filled with water. Also, the houses also are experiencing waterlogging even at this point. They have not received heavy rainfall. This region has not received heavy rainfall since morning, but the waterlogging continues. They're saying that it's lowered a little bit compared to what it was yesterday, but you know, life and things can get back to normalcy only after the water is completely drained out from this region.
1: केरलम में ऐसे ही पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है। कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की हैं। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है, बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरलम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है, कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाढ़ की इस भयानक मार के बीच केरलम के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। देखिए केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां वो लोगों से मिल रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, खाने के लिए 56 भोग लगा हुआ है। इसी कार्यक्रम में वीडी सतीशन एक प्राइवेट ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करते दिख रहे हैं। उनकी फीता काटने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल किया जा रहा है कि जब राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है तो उससे निपटने की बजाय मुख्यमंत्री पार्टी कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सीएम 56 भोग लगा रहे हैं। आज तक पेरो।
0: जम्मू कश्मीर केरलम के बाद अब असम भी चलिए। असम में बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। अब तक बाढ़ के चलते असम में 82 लोगों की मौत हो गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात शिवसागर जिले में है। इस बीच शिवसागर से एक्टर रणदीप हुड्डा की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर वो राहत और बचाव का कार्य करते हुए मदद करते दिख रहे हैं।
1: असम में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, मगर जो तबाही मची है वो भयानक है। अभी भी असम के ज्यादातर इलाके लबालब हैं। देखिए ये असम के शिवसागर की तस्वीरें हैं। घर के भीतर पानी भरा हुआ है, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, सड़कें पानी में गायब हो गई हैं, रास्ते बह गए हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि ना कहीं आ सकते ना जा सकते, और घर के जरूरी सामानों के लिए अब किल्लत बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी गर्दन तक चढ़ाया था, करीब 5 फीट तक पानी भर गया था, सब कुछ टूट गया।
5: तो कब से ये पानी
6: 18 तारीख से हुआ है?
5: 18 तारीख
6: से हुआ है।
5: तो कितना पानी हुआ आप लोगों
6: का? पानी घर का तो सब ही डूब गया, कुछ नहीं बसा, सब गया।
5: कितना फीट पानी?
6: लगभग 5 फुट
5: अंदर
6: अंदर में है। अभी तो कुछ भी नहीं है घर।
1: इसी शिव सागर की दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी सब पानी पानी है। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। देखिए ये एक्टर रणदीप हुड्डा है जो शिव सागर में बाढ़ पीड़ितों को मदद दे रहे हैं। उसके लिए खाने पीने के सामान, दवाइयां और कपड़े चप्पल पहुंचा रहे हैं। रणदीप हुड्डा लगातार मदद कर रहे हैं। शिव सागर में ग्लोबल सिक्स द्वारा आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम का वो हिस्सा है।
7: ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जहां भी ये पानी कम हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा स्लश हो रही है कई कई जगह, तो अगर आप चलो तो इतना इतना आप मिट्टी में धस जाते हैं, वेट मिट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे, और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए, जिससे भी पूछा, उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है।
1: असम में लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स आगे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना और सलमान खान ने भी मदद की है। अब सारी कोशिश ये है कि बाढ़ में डूबते उतराते असम को हर हाल में सुरक्षित बचाया जाए। आज तक ब्यूरो।
0: गुजरात में भी बारिश आफत बनकर ही बरस रही है। साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी, सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव जलमग्न है, तो कहीं डैम के गेट खोलने पड़े हैं।
8: जहां मैदान थे वहां तालाब, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है, जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर बह रही हैं। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। नवसारी में प्रशासन अलर्ट मोड में है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नौसारी शहर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया है जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी मां की गाली देना इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन प्रधानमंत्री जी। सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे, कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
3: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है, यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है। इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है। वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है। जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है। जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं, वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में जिप्टो, शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है, जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश इससे पहले कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई, कर्ज, वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा। वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कामा कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी, साजिश आरोपी गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल, बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ाव चोरी समेत कई मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। नशा मुक्ति अभियान का 1 करोड़, जेन जी से पीएम का सीधा संवाद, का दुश्मन देश ड्रग्स देकर बच्चों को कर रहे हैं बर्बाद, इसके खतरे को समझे युवा, 100 हफ्तों में 100 कदम से बड़ा प्रहार। असम के बाद कश्मीर से केरल तक पानी से परेशानी, गांधरबल में बादल फटने से बाढ़, गुजरात के खेड़ा नवसारी साबरकांठा से सूरत तक तबाही, महाराष्ट्र के नांदेड़ जालना में भी त्राहिमाम।
1: एक समय था जब राजनीति नेताओं के भाषणों और चुनावी रैलियों से तय होती थी, आज एक हैशटैग, एक वायरल वीडियो और लाखों युवाओं की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया भर की सरकारों को अब केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि जेन जी की आवाज, उनके सवालों को भी गंभीरता से लेना पड़ रहा है। ये वो पीढ़ी है जो सड़क पर प्रदर्शन भी करती है और सोशल मीडिया पर जनमत भी तैयार करती है। रोजगार, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे मुद्दों पर यह पीढ़ी बेझिझक बोलती है, बहस करती है, अपनी बात खुलकर रखती है। भारत में जहां विपक्ष सालों से सरकार को मुकम्मल चुनौती देने में पिछड़ता रहा, जेन जी ने कुछ हफ्तों के प्रदर्शन में अपनी बात मनवा ली।
2: पहली बार मंत्री का इस्तीफा जेन जी की वजह से।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: पहली बार आंदोलनकारियों की हर मांग पर मंजूरी जेन जी की वजह से।
4: उन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
2: पहली बार सरकार के सामने मुद्दा उठाने में विपक्ष से ज्यादा युवा आगे, जेन जी की वजह से।
5: जहां छात्रों के लिए दिक्कत समस्या पैदा होती है, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका था, आंदोलन करना चाहिए।
6: प्रोटेस्ट में तो गए थे, शामिल हो पाए, कुछ चीजें देखी, कुछ नेगेटिव भी थी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिले थे।
7: कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो भी था अपना, उनका जो मुद्दा था वो सफल रहा। एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए।
2: पहली बार जेन अल्फा भी हक मांगने उतरने लगे जेन जी की वजह से।
8: खाना सर है ना, खाना कराने थे सर, खाना में कभी कीड़ा वगैरह निकल जाता है सर, कुछ भी सही है सर वहाँ स्कूल का। आप लोग चल के देखिए सर, पंखा खराब है सर, कितने दिन से हम लोग 6-7 दिन से बोल रहे हैं।
9: डिपोर्टेशन पे टीचर नहीं चाहिए हमें, हमारे परमानेंट टीचर चाहिए। ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे टीचर नहीं आते।
10: हमें एक माध्यमिक का गुरु चाहिए और विज्ञान और गणित के लिए चाहिए।
2: भारत में अब तक राजनीति हो, सोशल मीडिया हो, समाज हो, दो ही धड़े बटे दिखते आए, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त मजबूत होकर अपनी बात रखने उभरे हैं जेन जी। वो जेन जी जिनकी मांग, जिनकी आवाज को कोई किसी हालत में खारिज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।
11: आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
12: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है।
13: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
14: समाजवादी पार्टी में जेन जी भी बड़ी संख्या में थे, जेन अल्फा भी बड़ी संख्या में थे, कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने।
15: अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है।
16: ये जनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है।
17: आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा करने के लिए आज एक ऐसा बिल लाए हैं, पेपर लीक पर प्रहार करेंगे।
18: देश की युवा पीढ़ी ने, जेन जी ने ये दिखा दिया कि देश में, प्रजातंत्र में असली मालिक प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है।
2: जेन जी की ताकत के आगे सियासत नतमस्तक है, तो इसकी वजह इनका अपनी बात को कहने में रत्ती भर संकोच करना ना होना है, और संकोच से दूरी के साथ इनकी ताकत इनकी तादाद है। दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी की संख्या भारत में ही है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है भारत में जेन जी यानी 14 से 29 साल के लोगों की आबादी इस वक्त 40.7 करोड़ हो सकती है, जो चीन के 26.4 करोड़ जेन जी से कहीं ज्यादा है। और तब देश में जेन जी को लेकर अगर सरकार संजीदा और विपक्ष के लिए चुनौती पेचीदा हो रखी है, तो इसकी वजह जेन जी का वोटर बेस है। केवल राजनीतिक तौर पर बड़े राज्यों की स्थिति पर अगर आप नजर डालें, तो 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 33.9% वोटर जेन जी वाले हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में जेन जी वोटर की तादाद 26.3% है। 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में 25.8%, 40 सीट वाले बिहार में तो जेन जी की ताकत वोटर के तौर पर सबसे ज्यादा 36.2% तक है। 39 सीट वाले तमिलनाडु में 22.6% जेन जी हैं। 29 सीट वाले मध्य प्रदेश में 31% से ज्यादा इनकी संख्या है। जेन जी के आंदोलन को लेकर हालत ये कि जिस बिहार में 2 साल से टीचर भर्ती का रास्ता खुलवाने के लिए प्रदर्शनकारी युवा अपनी पीठ पर लाठी खाते रहे, वहां 29 जुलाई को बिहार सरकार को रास्ता देना पड़ा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आखिरकार यह ऐलान करना पड़ा कि TRE4 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 के तहत 32,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई। इसकी वजह केवल जंतर मंतर पर चला आंदोलन नहीं, बल्कि जंतर मंतर जगह जगह बनने और बनाने की ताकत रखने वाला जेन जी है। 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच पूरे देश में 27 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी हर दिन औसत 9 विरोध प्रदर्शन। इसी तरह 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 224 विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका मतलब ये था हर दिन औसतन 81 प्रदर्शन हुए। 18 जुलाई को पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर समेत कुल 11 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, और 19 जुलाई को इनकी संख्या 13 थी। इसके बाद 20 जुलाई को 62, 21 जुलाई को 75 और 22 जुलाई को पूरे भारत में 107 जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। और बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में कुल 412 विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इनमें से 328 शांतिपूर्ण थे। 63 जगह पुलिस या सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और 21 जगह पर विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक हिंसक रहा, यानी आंदोलन बड़ा था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। और कारण यही है कि ज्यादातर जेन जी युवा अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे। जेन जी की अपनी मांगों को लेकर इसी स्पष्टता ने हर सियासतदान को ये महसूस कराया है कि ना तो इनकी बात को नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही अब खारिज।
1: आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिस शब्द की चर्चा हो रही है वो है जेन जी। लेकिन आखिर ये जेन जी है कौन? इसे जेनरेशन जी ही क्यों कहा गया? क्या ये नाम केवल जन्म के साल तय करते हैं, या फिर किसी दौर की तकनीक, समाज और बदलते हालात भी एक नई पहचान गढ़ते हैं? दरअसल देखा जाए तो अधिकांश बड़े नेता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकले हैं, लेकिन इस बार स्टूडेंट ही तय कर रहे हैं कि देश की पॉलिटिक्स कैसी हो।
19: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो।
2: फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर।
20: जब आंदोलन इन्हें लगा के उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन जी की जबान में MIA हो गया।
2: MIA यानी मिसिंग इन एक्शन, एक्शन में मौजूद ना होना। चाहे 59 साल के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हो या फिर 48 साल के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, संसद में दोनों की जुबान और निशाना एक ही, क्योंकि सियासत के लिए जेन ज़ी अच्छा है।
18: जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है।
2: कुचू पुचू अक्सर सोशल मीडिया पर प्यार करने वाले जोड़ों की भाषा देखी गई। वही वास्ते गुना हुई या भी कुछ इसी बर्ताव को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता
0: है। अंकल वास्ते गुना हुई है,
21: वास्ते गुना हुई है,
2: लेकिन शाब्दिक तौर पर इनका सीधा कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है।
22: चाचा वास्ते गुना हुई है,
2: लेकिन फिर भी जेन ज़ी की यह भाषा संसद में गूंजी, लोग हैरान भी हुए, पर सबसे ज्यादा खुश वो जेन ज़ी हुआ जो कोने में अपनी भाषा के इस्तेमाल पर हंस रहा था। जंतर मंतर के प्रदर्शन से पहले 19-20 साल वाले जेन ज़ी अब सरेआम रील्स बनाते देखते थे तो आम लोग सोचते थे कि इनका क्या ही होगा, लेकिन जेन ज़ी ने दिखा दिया कि जेन ज़ी के पास साफ गोई भी है और प्रैक्टिकल समझ भी, जो अपने काम के लिए जुनूनी है।
23: नहीं रोक सकते
24: आप तो लाठी अभी मारोगे।
2: तभी तो जो काम विपक्ष पिछले 12 साल में एक बार नहीं कर सका उस असंभव को जेन ज़ी ने संभव कर दिखाया।
25: सर इतना गर्मी लग रहा सर, वाटर कैनन का व्यवस्था है कि नहीं है सर? सर बहुत गर्मी लग रहा सर, रेन डांस करने का दिल कर रहा सर।
2: जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भले खत्म हो गया, लेकिन जेन ज़ी से संवाद की प्राथमिकताएं सभी दलों की बढ़ गई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जेन ज़ी से इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बातचीत करके उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं।
13: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
26: विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
13: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।
19: आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े।
2: जेन ज़ी की नब्ज पकड़ने की ये कोशिश सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में भी जेन ज़ी का असर साफ साफ देखा जाने लगा है। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए भारत सरकार देशव्यापी अभियान चला रही है। जेन ज़ी अगेंस्ट एडिक्शन, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, इस कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों के साथ परिजनों को भी जोड़ने की पहल की गई।
13: देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है, इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है।
2: जेन ज़ी को इंस्टाग्राम की रील बनाकर पीएम मोदी जहां सीधे संबोधित करते हैं, वही उन्हें गाली देने वालों को गुमराह बताकर माफ करके बड़ा दिल भी दिखाते।
26: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: तो प्रधानमंत्री परिवार के बड़े सदस्य की तरह 19-20 साल के नौजवानों की गलतियों को माफ करने की अपील समाज से भी करते हैं, ताकि सही राह दिखाई जा सके।
26: समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है।
2: सरकार जहां जेंजी को जोड़ने में लगी, तो विपक्ष और कांग्रेस आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR को मुद्दा बनाकर करीबी दिखाते हैं।
3: लोगों पर जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया FIR करवा रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा, हाउंड किया जा रहा, जो सर्वथा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और अग्रीमेंट के खिलाफ।
4: जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएं।
2: जेंजी को अपने पाले में लाने की ये होड़ अब सियासी मजबूरी भी बन गई, क्योंकि वोट देने वालों में जेंजी करीब 30% का वोट बैंक बन चुका है, जो धर्म संप्रदाय या जाति से ज्यादा सोशल मीडिया की कम्युनिटी से जुड़ा है। ये किस तरह चुनावी परिणाम पूरी तरह से पलट सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु में देश देख चुका है, जहां विजय ने TVK से द्रविड़ राजनीति की दो बड़ी पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर दिया। विजय ने यह कमाल जेंजी के 50% के वोट पाकर किया है, जो DMK AIADMK से ऊब चुके हैं और राजनीति में नए लोगों की एंट्री चाहते हैं। इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में विजय के बाद धनुष की एंट्री की अटकलें यूं ही नहीं उड़ रही हैं।
1: भारत में जेंजी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। कभी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, कभी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग, कभी शिक्षा और रोजगार का सवाल, तो कभी करप्शन और रिजर्वेशन पर तकरार। आज युवाओं की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों की सड़कों पर जेंजी के आंदोलन को पूरे देश ने देखा है।
5: मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर। हम ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गांव एक टोला, मतलब खानदान का पहला आदमी है ना, कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किसे देख के मोटिवेट। क्यों, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिएगा हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा, हम कैसे, हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करें। बहुत दुख के बात है सर।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के प्रदर्शन में आए मदद के खाने की प्लेट पकड़कर वो बातें पलामू के संतोष कहते हैं, जिसे सुनकर झारखंड के मुख्यमंत्री के गले से एक दाना खाने का नीचे नहीं उतरना चाहिए। हाथ में संविधान की कॉपी, भारत माता की जय के नारे और इंकलाब जिंदाबाद की गूंजती आवाज। हाथ में मोबाइल टॉर्च वाली मशाल रूपी रोशनी लेकर ये उस अंधेरे से आजादी मांगते युवा जो झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और JSSC के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
6: तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप FRO का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यमीय आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के आप यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश है। रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है, और यही देखिए यही रेट होता है।
7: अगर स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको एटलीस्ट रिव्यू तो करना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। यहाँ तो बहरी हो जाती है गवर्नमेंट, उनको सुनना चाहिए, अगर उनको सही लग रहा है तो करना भी चाहिए। और ये बहुत वैलिड चीज है, ये पेपर लीक बहुत बड़ी चीज होती है सर। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, उसके लिए अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो होना चाहिए।
2: झारखंड के युवाओं के साथ जिस तरह का बुरा हाल किया गया है वो सुनकर ही आपको लगेगा कि ऐसा कौन कर सकता है, जिसकी वजह से ये धरने और प्रदर्शन की नौबत आई है।
8: हम लोग केस को लड़ रहे थे, एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस को दिए। DGP महोदय जो झारखंड के DGP हैं, वो बोले जहाँ भी पेपर लीक का मामला है वो हमें मेल कर दें। 53 लड़कों ने मेल किया, जब रिपोर्ट आया हाई कोर्ट का फाइनल सबमिट आया, एक भी उसका मेंशन नहीं था। हम लोग जिसपे बोल रहे कि ये पेपर लीक है, आप JSSC सचिव से पूछे, अध्यक्ष से पूछे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछे, नहीं पूछे, इसका मतलब आप जांच कर ही नहीं रहे हैं, आप तो लीपापोती कर रहे हैं।
9: एक सुमन सौरभ जैसा लड़का जो 45 क्वेश्चन मात्र बबल्स भर के उसका सिलेक्शन हुआ और उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है, जब यह
10: गिरफ्तारी
9: ये जब आंदोलन धीरे धीरे सरकार के कानों में गूंज रही है तो कैसे लोग पकड़ा रहे हैं आप देख रहे होंगे।
11: लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर, पढ़ तो रहे, दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया।
2: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच CBI कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
23: CM सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना लें।
2: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। CID जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने OMR शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
27: 14वीं JPC में जब मामला खुल के आया है कि TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है, मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो JPC का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। 14वीं JPC सबके सामने आया है।
2: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
10: घर वाले क्या बोल रहे हैं?
12: सर कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली, हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
10: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है।
2: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
14: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
2: अब सवाल दो हैं। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा।
1: अगर जेन जी डिजिटल दुनिया में बड़ी हुई तो जेनरेशन अल्फा एआई की दुनिया में जन्मी है। इनके लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, वर्चुअल क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये वो पीढ़ी है जो आने वाले सालों में सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगी बल्कि तकनीक के साथ मिलकर दुनिया के काम करने का तरीका तय करेगी। और देखिए ना, एक तरफ भारत ने जंतर मंतर पर एक कामयाब जेनजी प्रोटेस्ट देखा तो जेन अल्फा ने अलग अलग राज्यों में अपना अपना जंतर मंतर खुद बना लिया।
2: राजस्थान के जालौर में टीचरों के लिए प्रदर्शन कर रहे जेन अल्फा ने प्रशासन को खबरदार करके अपनी मांग मनवा ली। जेन अल्फा ने ऐसा ही कमाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करके दिखाया, जिसे लेकर आज तक ने जब प्रशासन को खबरदार किया तो छात्रों की मांग पर स्कूल के भीतर पंखे लगते सबने देखा। जेन अल्फा का अब ये प्रदर्शन फतेहपुर से 500 किलोमीटर दूर बिहार के गया जी पहुंच गया, जहां जेन अल्फा ने सिस्टम को झकझोर दिया। गया जी में जेन अल्फा के आक्रोश की आवाज बने उज्जवल कुमार ने एक सांस में अफसरों को अपने स्कूल से जुड़ी एक एक समस्या से खबरदार किया।
15: किसी भी चीज का सुविधा नहीं है सर, पहले तो बिजली, पानी और सर जो बुक वगैरह आता ना सर, बुक भी नहीं मिलता है, कभी कभी किसी को मिल गया तो मिल गया और फिर किसी को नहीं मिलता है सर। और जब बोले जाते हैं तो बोलते हैं
2: तो गया जी में कहानी फतेहपुर वाली, जहाँ के स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरतों का अभाव, पंखा, साफ पानी, साफ शौचालय और मिड डे मील से जुड़ी समस्याओं के गुस्से ने ऐसा उबाल मारा कि जैन अल्फा की आवाज सुनकर अफसर हिल गए। गया जी के टिकारी में अनुमंडल कार्यालय के दरवाजे पर जैन अल्फा छात्र धरने पर बैठ गए और लगे नारेबाजी करने। अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए जैन अल्फा इस तरह से जिम्मेदार अफसरों के दफ्तर पर बैठ जाएंगे, इसका अंदाजा इन अधिकारियों को कभी नहीं रहा होगा। इसीलिए एसडीएम कार्यालय में हलचल मच जाती है, तुरंत छात्रों की समस्या सुनने के लिए अधिकारियों को भेजा जाता है, लेकिन छात्र एसडीएम से मुलाकात करने पर अड़ जाते हैं।
25: आएंगे तो हम लोग,
0: चलो तो ऊपर बैठो, रूम पर
25: यहाँ पर क्या दिक्कत है सर?
0: वहाँ बैठो आराम से, रूम में
25: नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सही है सब लोग।
2: गया जी में ये छात्र स्कूल में लंबे समय से छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से भड़के हुए, जब प्रिंसिपल तक ने उनकी एक नहीं सुनी तो इन जेन अल्फा छात्रों के पास सीधे एसडीएम दफ्तर पर धावा बोलकर अपना हक मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा।
25: जो खाना वगैरह बनता ना है, खाना वगैरह में जो है जो कीड़ा निकलता है, तो वही हम लोग बोले उनसे, एसडीओ सर से, तो वो बोले कि अब चेकअप नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि हम चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो बोले कि चेक आप कर सकते हैं ना, थोड़ा सा भी टेस्ट कर सकते हैं ना कि कैसा बना है खाना, तो वो बोल रहा है कि रसोईया चेक करता है।
0: आप कभी शिक्षक खाते हैं ना? कभी
25: हम लोग नहीं खाते, शिक्षक भी नहीं खाते।
16: पता चला कि उनका कुछ शिकायत है जिसको लेकर बच्चे लोग आए हुए, तो हम तुरंत फिर यहाँ पे जैसे ही आए और उन लोग से फिर बात हुई, तो जानकारी प्राप्त हुआ कि बेसिक सुविधा जैसे मूलभूत सुविधा जो होता है, पानी, शौचालय, मिड डे मील में जो खाना, फिर उनका जो वस्त्र को लेके बहुत सारा उनका डिमांड था अलग अलग, पंखा को भी लेके उनका डिमांड था कि पंखा नहीं है, तो इसके आलोक में हमने फिर अभी तत्काल रूप से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ADSO और हमारे जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं उनका हमने एक जाँच टीम बना दिया है, और प्रिंसिपल को भी हमने एक मौखिक चेतावनी दी है कि जो भी इनका समस्या है 4-5 दिन के अंदर निष्पादन कर दिया जाए, और जो टीम हमारी है वो भी कल जाएगी वहाँ पे, जो भी उनका कंप्लेन होगा और उसको गहन रूप से उसका जांच किया जाएगा।
2: जैन अल्फा की मांग पर प्रशासन ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं, ये देखने के लिए आज तक एसडीएम के आश्वासन के अगले दिन गया जी के स्कूल दोबारा पहुंचता है, यहां पर हमें क्लास में लगे पंखे दिखते हैं।
17: इन बच्चों के प्रदर्शन के बाद आप देख सकते हैं कि स्कूल में जिला प्रशासन के द्वारा पंखा लगा दिया गया है, और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजली की तार जो खराब थी, वायरिंग खराब था, उसको यहाँ पर सुदृढ़ किया।
2: जैन अल्फा लगातार देश में शिक्षा की बदहाली पर सरकारों को जगा रहा है। पहली बार है जब देश के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अफसर और मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। जैन अल्फा के इस अभियान में अजमेर के बच्चों तक बात पहुंच चुकी है, जिन्होंने शिक्षकों की कमी से तंग आकर स्कूलों में ताला जड़ दिया, हाईवे तक जाम कर दिया। शिक्षा के अधिकार को लेकर देश में अफसरों और नेताओं के मुंह से आपने भाषण बहुत सुने होंगे, लेकिन हकीकत सबको पता है। अब जैन अल्फा ने ठान लिया है कि वो जमीनी हकीकत भी बदल कर रहेंगे।
18: हमारी स्कूल 2 साल पहले 12th तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी लेक्चरर नहीं आया है, और हमें संस्कृत विज्ञान और बहुत सारी 2-3 लेक्चरर भी चाहिए, और हमारे जल्द से जल्द टीचर लगा हुई है।
2: अजमेर के सरवाण तहसील के सापला गांव की ये छात्राएं शिक्षकों की कमी के खिलाफ इस तरह लामबंद होकर नारेबाजी करेंगी। शहर के लोगों को छोड़िए, खुद इनके माता पिता और अफसरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन छात्राओं का कहना है कि 2 साल पहले स्कूल को 12वीं तक कर दिया गया, लेकिन अब तक लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा स्कूल में पिछले 5 साल से गणित का कोई स्थायी टीचर भी नहीं, और विज्ञान संस्कृत के टीचर की भी कमी है। बार बार शिकायत के बाद जब इन बच्चों की सुनी नहीं गई, तो ये सड़क पर उतर आए।
18: हमें डिपोर्टेशन पे टीचर नहीं चाहिए, हमें हमारे परमानेंट टीचर चाहिए। ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारे टीचर नहीं आते।
2: मामले ने तूल पकड़ा। सालों से शिक्षकों की मांग पर सुस्ती दिखाता जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आए। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि छात्राओं की मांगों की सूचना मिलते ही अधिकारियों को मौके पर भेजा गया।
20: छात्राओं की जो भी डिमांड थी उसको सुनने के लिए CBO को, SDM को, तहसीलदार को तुरंत हमने मौके पर भेजा, और जैसे ही सूचना मिली ये लोग सभी मौके पे गए और छात्राओं से उन्होंने चर्चा की, और क्या वहाँ की आवश्यकता है, क्या डिमांड है, उसके बारे में जब चर्चा हुई तो सामने आया कि कुछ विषय के जो शिक्षक थे उनको लेकर जो रिसेंट जो ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें काफी लोग ट्रांसफर्स इन एंड आउट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से, उससे कुछ स्कूल हमारे जरूर उससे प्रभावित हुए हैं।
2: तो विरोध होने पर तत्काल 3 टीचर दे दिए गए, लेकिन छात्राओं की मांग स्थायी शिक्षक की है, इसीलिए ये कहती हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन करेंगी। जैन अल्फा का प्रदर्शन राजस्थान से आगे महाराष्ट्र तक पहुंचा है, जिसके धाराशिव में जैन अल्फा का साथ देने के लिए उनके माता पिता भी धरने पर बैठ गए। यानी अब तक सिर्फ बच्चे ही विरोध करते आए, लेकिन धाराशिव में परिजनों ने उनका साथ देकर नए चलन की शुरुआत कर दी। मामला जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय का है, जहां ये विरोध पिछले 4 सालों से टीचर और अन्य कर्मचारियों के खाली पदों को लेकर होता आया है। इसमें एक तरफ विद्यार्थी और दूसरी तरफ अभिभावक और गांव के लोग गुरुवार को स्कूल पर ताला लगाने के बाद छात्र और अभिभावक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए
3: और ऐसा बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर सिर्फ बेटी बचाओ हो गया पर बेटी पढ़ाओ उसका क्या होगा? हमको गुरु नहीं है सिखलाने के लिए, तो हमें एक माध्यमिक का गुरु चाहिए और विज्ञान और गणित के लिए चाहिए, क्योंकि आगे हमें भविष्य में उस जो विषय है उसमें आगे बढ़े, और इसलिए हमें माध्यमिक का गणित विज्ञान के लिए शिक्षक चाहिए।
2: अब आप सोचिए, जब स्कूल में गणित और विज्ञान के ही टीचर नहीं होंगे तो क्या ही पढ़ाई होगी। इस धरने के बाद अब अफसर अस्थाई टीचर देकर बीच का रास्ता निकालने की बात करने लगे।
4: हमने तुरंत एक यहाँ पे एक मार्ग निकालने की हमने कोशिश की, और जब तक नई पद भर्ती नहीं होती तब तक के लिए हमने गणित और विज्ञान के लिए एक शिक्षक की उपलब्धि वहाँ पर कर दी है। और आशा है कि विद्यार्थियों का ये जो आंदोलन था उसका ये सोल्यूशन देने का हमने प्रयास किया।
2: भारत की विडंबना दिखी, जेन अल्फा टीचर की मांग की वजह से पढ़ने के बजाय प्रदर्शन को मजबूर है, वहीं जेन जी नौकरियों के लिए भटक रहा है। सरकारें पेपर लीक तक नहीं रोक पाई, लेकिन शिक्षा को लेकर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। भारत में यूं तो हर चीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन तेलंगाना के स्कूल में लाइन टॉयलेट के लिए है। तेलंगाना के मंजुलापुर के स्कूल में 250 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनमें 130 छात्राएं हैं, जिन्हें हर रोज स्कूल आने पर इसी तरह से टॉयलेट के लिए लाइन में खड़े होकर समय बर्बाद करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ एक टॉयलेट है। गौर करने की बात है कि इस स्कूल में मिड डे मील से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था पहली नजर में ठीक ठाक लगती है, लेकिन टॉयलेट मानो प्रशासन की प्राथमिकता में ही ना हो। स्कूल कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले को कई बार अफसरों के आगे उठाया जा चुका है, शिकायत की गई, कोई तवज्जो नहीं मिली। सवाल है कि क्या यहाँ भी प्रशासन जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद ही जागेगा।
1: राजनीति अब सिर्फ मंचों और रैलियों तक सीमित नहीं है, अब चुनावी लड़ाई मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। ये वो पीढ़ी है जिसने सोशल मीडिया को राजनीतिक हथियार बनते देखा है। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक हैशटैग लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल है, क्या जेन जी राजनीति से दूर है या फिर लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका ही बदल चुका है?
2: बहुतों के लिए मैं ऐसे समझ से परे हूं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो जेन जी, या फिर जो समझना चाह रहे हैं वो असल में जेन जी को समझना चाह रहे हैं।
13: दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ भाई स्टारबक्स की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कॉफी। भाई अंदर चलते हो,
19: इसको घबराना मत, सीट लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये जो आइटम देख रहे हो ये कितने रुपए की है कमेंट करके बता दो, तुम्हारे साथ कितने की हो सकते हैं। 20 रुपए की बैठी होगी, ये बड़ा है तो 80 रुपए का होगा, 40-40 रुपए की दूंगी, बट नहीं, ये है 1480 रुपए की आइटम है भाई।
2: ये वो जनरेशन है जिनके दिमाग में कंटेंट घूमता है, जिन्हें लगता है कि ये तो रील वाला कंटेंट है, जो सोचते हैं कि ये तो वीडियो ब्लॉग बनाया जाने लायक है।
21: आजकल के चौंचले मेरी फ्रेंड ने रखी है ब्रेकअप पार्टी,
22: जिसके लिए मैं बन के जाऊंगी सुंदर सी, क्योंकि ब्रेकअप पार्टी उसकी है मेरी नहीं।
21: बहुत सारे प्रोडक्ट निकले हैं, ब्रश, क्लीनर, आईलैशेस, दो ड्रेस है, बट इसको बाद में खोलूंगी, पहले ये खोल लेते हैं। आई होप ये अच्छी निकली।
22: पांची दुकान, फीके पकवान।
2: जो खाना ऑर्डर करने से लेकर खाना आने तक ये सोचते हैं कि किस पोज में क्लिक करना है।
22: आज मुझे तंदूरी मोमोज खिलाओ।
24: ये कौन से मोमो होते हैं?
22: होते हैं बाबा, इसके अलावा अफगानी मोमोज और मलाई मोमोज भी होते हैं, पर फिलहाल तुम तंदूरी मोमोज लेकर आओ।
24: रुको, पता करके आता हूँ। ये लो तंदूरी मोमोज।
22: वाह, ये तो तंदूर में बने हैं, है ना टेस्टी? बहुत यम है।
2: घूमने जाने से पहले लोकेशन टैग होती और कई बार घर वालों को फोन करने से पहले स्टोरी अपलोड हो जाती है।
22: तो मेरी ट्रेन थी चेन्नई सेंट्रल से और मैं वहीं पहुंच जाती हूं। और भाई यहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। और आप सोच रहे होगे कि इतने सारे बैग लेके जा रही हूं मैं? नहीं भाई, ये सब खाली है, उधर से सामान लेके जो आना है।
26: हमने जो जेंजी का एक आंदोलन देखा जंतर मंतर पे, और इसकी बहुत इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, और वाकई में ये देखना दुखद रहा कि अपने स्त्री अंगों की स्त्रियां, लड़कियां स्वयं गालियों के रूप में पेश कर रही थी। जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, वो पिछली पीढ़ी या उनकी पिछली पीढ़ी ने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया, भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में हमने इस तरह से देखा नहीं, तो ये देखना दुखद रहा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वहां पर ऐसा दिखाई पड़ा कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिश्तों से ज्यादा या अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा महत्व देते हों, लेकिन हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की कुल आबादी का जो 22% हमारी युवा आबादी है उसके मुट्ठी भर बच्चे हैं।
2: सिर्फ इंटरनेट के ये शब्द नहीं बल्कि जेनरेशन जी की नई भाषा है। जहां हर चीज कंटेंट है, कॉफी पीना भी कंटेंट, जिम जाना भी कंटेंट।
5: और जल्दी उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरे दिन का टाइम मैनेज करना होता है तो जल्दी उठना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चले जाता हूँ।
2: कंसर्ट में जाना भी कंटेंट।
6: बोल आई लव यू।
7: आई लव यू।
6: आपके घर वालों को दिखाऊंगा, शादी करेगी मुझसे?
7: नहीं,
6: आई लव यू वाली वीडियो दिखाऊंगा।
7: करेगी
6: ना?
8: ए फटाक वाले भैया, अरे फटाकवा खोल दे, ओ गर्लफ्रेंड को मैंने भगा के लेके जाई था, घर वाले पिछवा, जल्दी खोलना है, बहुत मरी है भैया।
2: यहाँ तक दुख, ब्रेकअप और नौकरी मिलने की खुशी भी कंटेंट ही है। इन्फ्लुएंसर अब कई फिल्मी सितारों जितना असर रखते हैं, लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
9: 2 लाख का फोन लेकर स्टोरियां लानी स्टार्ट कर देंगे, मैं यू ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने 25 लाख का लोन ले रखा, मैंने कहीं स्टोरी पाई।
2: क्या ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट और वायरल होना अब आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन चुका है? क्या लाइक्स और फॉलोअर्स पहचान का नया पैमाना बन चुके?
11: हम बात करते हैं तो एक ऐसा युवा है जो 24/7 डिजिटल वर्ल्ड में 90% पॉपुलेशन है जो डिजिटल एंगेजमेंट से, उनके वो उनको दुनिया भर की सारे नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा अपडेटेड हैं, नॉलेज है, तो उसमें गलत भी नॉलेज वो कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आप मानसिकता में बदलाव देखेंगे। आज के समय में आप देखेंगे कि हर आदमी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो सारे इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से धीरे धीरे उसके मानसिकता में चेंजेस आता है। लोग इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं पॉजिटिवली, जैसे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी आता है, उसके वजह से लोगों में एक एक, एक पॉजिटिविटी भी आती है, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन और कुंठा भी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे सोच में, समझ में लोगों के परस्पर बदलाव आ रहे हैं। युवाओं में तो खासकर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
2: लेकिन जनरेशन जी की पहचान सिर्फ डिजिटल लाइफस्टाइल नहीं बल्कि डिजिटल एक्टिविज्म भी। हैशटैग मीटू आंदोलन पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ करोड़ों लोगों को एकजुट किया था। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन सत्ता परिवर्तन की वजह बना। बांग्लादेश में छात्रों ने वर्षों पुरानी सरकार को बाहर किया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू में भी युवाओं ने व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद। भारत में भी पेपर लीक को लेकर जनरेशन जी का आंदोलन सफल रहा। जब आंदोलन नई शक्ल ले रहे थे उसी समय तकनीक भी नई रफ्तार पकड़ रही थी। 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब ने दुनिया को बदल दिया। अब खबर अखबार में आने से पहले फोन पर पहुंचती है। एक वीडियो कुछ मिनट में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। एक पोस्ट सरकार से जवाब मांग सकती है। एक हैशटैग वैश्विक आंदोलन का चेहरा बन जाता है।
23: हाँ, मतलब सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी समझते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ में, बट कुछ चीज़ें वो नहीं भी समझते उतना, और टीचर्स भी लाइक कुछ चीज़ों में दे सपोर्ट, बट कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, और सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव्स तो बताते ही हैं। जो हमारे खेल कूद वाले फॉर एग्जाम्पल ऐसे अट्रैक्शन के लिए अलग जैसे इंस्टा, वो उनको समझने में थोड़ा बेशक मुश्किल आती होगी, बट सिंस द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग और टीचर्स भी अब समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि ये भी नेसेसिटी है।
27: ऑब्जेक्शन तो नहीं करते हाँ, बट ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा कम, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम है, इस पे कम फोकस करके थोड़ा अपने स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो।
2: जेनरेशन जी सिर्फ डिजिटल दुनिया की पहली पीढ़ी नहीं बल्कि ये पहली ऐसी वैश्विक पीढ़ी है जिसने मोबाइल को आंदोलन का मंच, सोशल मीडिया को संगठन की ताकत और इंटरनेट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। रील्स और रील लाइफ के बीच जीने वाली पीढ़ी अब प्रशासन से सवाल पूछती है, समाज को आईना दिखाती है और आने वाले समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दिशा भी तय कर रही है।
1: एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग सोच के साथ क्यों होते हैं? दादा दादी की दुनिया अलग, माता पिता की अलग, आज के युवाओं की बिल्कुल अलग। वजह सिर्फ उम्र नहीं है, हर पीढ़ी अपने समय की तकनीक, घटनाओं और सामाजिक बदलावों से बनती है। यही कारण है कि पिछले करीब 125 सालों में दुनिया ने कई अलग अलग जेनरेशन देखी जिनकी पहचान भी अलग अलग रही। जेन जी की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि इस जेनरेशन की आवाज सीमाओं में नहीं बनती है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, कहीं लोकतंत्र की मांग, कहीं जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, सोशल मीडिया ने दुनिया भर के युवाओं को एक साझा मंच दे दिया।
0: एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वो पहले जो 90s में चलता था, जो पहले बहुत पहले चलता था, वैसे ही चलता आ रहा है। कुछ भी नया इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है। जो जबकि जो आज सिचुएशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए, तो इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को।
10: छात्रों ने प्रदर्शन किया है अपने हक की लड़ाई लेने के लिए क्या है, और पेपर लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। ये कई युवाओं का भविष्य तैयार करता है और इसको बड़ा मुद्दा मानना भी चाहिए।
0: अगर वो इस्तीफा दिए तो वो जायज था, लेकिन इससे हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला ना। पेपर लीक आगे अगर रुक जाए, अगर ऐसे ही मतलब उसके लिए हमें कुछ ऐसा नया बिल पास करना चाहिए जिससे आगे चल के ये ना हो।
2: जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन ने दिखा दिया कि वो अपने हक और भविष्य को लेकर सजग, और सबसे बड़ी बात उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि वो देश में शिक्षा की तस्वीर बदलते हुए देखना चाहते हैं।
12: अरविंद प्रधान का इस्तीफा बहुत जायज़ है, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये बात, और चीज़ें ठीक होंगी। सरकार से यही उम्मीद है कि अभी तक जितना भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ी है उन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा।
2: जेन जी वो पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, जो अपनी समस्याओं को सिर्फ निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखना चाहती।
14: हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हम लोग छोटे छोटे आंदोलन यहाँ करते रहते अपनी मांगों को लेके, लेकिन हम बार बार ये सोचते थे कि हम ही लोग आगे आ रहे हैं। एक जनरेशन है जो आराम से घूम टहल रही है, रील चला रही है, वो लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने एकदम हमारी आंखों की पट्टी और हम जो सोचते थे, जो धारणा थी, उसको एकदम पलट के रख दिया, और जेन जी ने एक नया नजरिया दिया सोचने का। आप देखिए ना, कमाल की क्रिएटिविटी। जैसे आप वॉशिंगटन डीसी में हम लोग पहले प्रोटेस्ट देखा करते थे, क्या लेवल है डेमोक्रेसी का, या यूरोपियन कंट्रीज में, वो अब इंडिया में देखने मिल रहा है अलग अलग क्रिएटिव तरीके से पोस्टर्स के साथ।
2: भारत के जेन जी ने विरोध का नया मॉडल विकसित किया है जिसमें छात्र छात्राएं केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हैशटैग कैंपेन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। बीते कुछ सालों में नीट भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इनका संतोष लगातार सामने आया जिससे सोशल मीडिया ने आवाज दे दी। भारत में अगर पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों ने आंदोलन की नींव तैयार की है, तो नेपाल, बांग्लादेश में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन ने सत्ता का चेहरा बदल दिया। नौजवानों का प्रदर्शन दुनिया में राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 से 2026 के बीच दुनिया में कम से कम 10 देशों में नौजवानों के नेतृत्व वाले बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। जेन जी के इन आंदोलन के कारण भले ही अलग रहे हों, लेकिन इनकी मूल मांग एक जैसी दिखती है जिसमें बेहतर शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार पर रोक और जवाबदेही शामिल है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सर्बिया, मेडागास्कर, मोरक्को, इन देशों में अलग अलग मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन विरोध में शामिल रहे लोगों में छात्र और पेशेवर नौजवान बड़ी तादाद में देखे गए। लेकिन भारत के जेन जी ने अपने आंदोलन को कई मायनों में अलग कर दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी की वो भावना दिखी जिसने बांग्लादेश और नेपाल की उलट शांति का रास्ता चुना, शब्दों, पोस्टर और रील्स को अपनी बात पहुंचाने का जरिया बनाया और अपनी मांग पूरी करके ही माने। जेन जी के इस आंदोलन ने जेन एक्स और मिलेनियल्स का भी नजरिया बदला, जिन्होंने बचपन में यही सीखा कि 12वीं के बाद फॉर्म भरो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और फिर नौकरी करो, भले ही उसमें तुम्हारा दिल लगे ना लगे। लेकिन भारत के जेन जी ने दिखाया है पुरानी लकीरों पर चलने में उनकी दिलचस्पी नहीं है और वो अपने आप को लेकर क्लियर है, इसलिए उनका पूरा फोकस अपने पैशन पर है। जेंजी का फंडा क्लियर इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि पहले की जनरेशन को डर और शर्म खा गई, इसलिए जेंजी का सीधा मंत्र है खुद को समझना कमजोरी नहीं स्किल है। इस आंदोलन में हल्के फुल के अंदाज में रील्स बनाकर चर्चित हुए कई जेंजी बदलते भारत की पहचान हैं।
1: जेंजी की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके खुद एक मिलेनियल हैं, उनकी उम्र 30 साल है, लेकिन उनके उठाए मुद्दे और प्रोटेस्ट करने के तरीके ने जेंजी को आकर्षित किया, उनका भरोसा हासिल किया। अभिजीत मानते हैं कि जब तक शिक्षा और रोजगार के मुद्दे का पूर्ण समाधान नहीं निकलेगा, जेंजी विरोध प्रदर्शन से नहीं हिचकेगा।
3: जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस, उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता,
4: किसी भी पार्टी का
3: कोई सुनता नहीं, बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, या इन लोगों को पता ही नहीं हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते, अपने आप से इशू उठा लेते और अपने आप से सारी चीजें कर लेते, नोबडी आस्क अस। इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो जो हमें पहले चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स। मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा बचेगा।
1: राजनीति और उसके मुद्दों की बदलती पीढ़ी पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: अब बात पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे की। पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान जमकर हंगामा हो और पप्पू यादव का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है और फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था, उन्होंने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाया है।
4: यादव जी, आज देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
5: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखता, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पे हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना।
4: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया। मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं। अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेकर लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया और मैंने क्या किया।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.

0: where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aaj.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजनाओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल नहीं हुआ है, बल्कि उसका सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और ये बात खुद पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कबूल की है। एक तरफ संसद में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खौफ सता रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक सेना के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है। हालात यह है कि अब पाकिस्तान में बड़े जेंजी आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे गाजा का नक्शा और उसका वजूद अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसराइल ने गाजा में मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। गाजा के करीब 50% हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद इसराइल ने इस बफर जोन के जरिए आबादी वाले इलाकों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। जहां इसराइल इसे अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा दीवार बता रहा है, वहीं गाजा समर्थकों के मुताबिक यह घेराबंदी और नाकेबंदी का एक खतरनाक रूप है, ठीक वैसा ही जैसा साल 2002 में वेस्ट बैंक में किया गया था। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान सरकार के कामकाज का सिस्टम धराशायी हो चुका है, और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम भारतीय हैं और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते तल्ख हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने खुद इस सच को कबूल किया है। उसने खुद दुनिया को ही आकर बताया है कि पाकिस्तान की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कार्यक्रम के दौरान खुद कबूल किया। कार्यक्रम में सरकार के कामकाज पर उठे सवालों के जवाब में ये बातें उन्होंने कही हैं। मोहसिन नकवी के इस बयान से ऐसा लगा कि जैसे उनमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का खौफ खत्म हो गया है। वो इतनी निराशा के साथ पाकिस्तान का सच कबूल कर रहे थे जैसे वो अब पाकिस्तान सरकार को लेकर पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। भारत तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। जिस देश पर आतंकियों, कट्टरपंथी मौलानाओं का राज हो, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम ये बात पहले से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव दिखावे के लिए होते हैं, क्योंकि फैसला पाकिस्तानी सेना करती है, पाकिस्तानी सेना के जनरल्स पहले कर लेते हैं। आज बस ये बात मोहसिन नकवी ने दुखी मन से लोगों को बताई है। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी सरकार के हालातों से इस कदर नाउम्मीद हो चुके हैं, खुलकर कहते हैं कि आज से 10 साल बाद और 10 साल बाद भी पाकिस्तान की जनता वही सवाल पूछेगी जो आज पूछ रही है, क्योंकि हालात नहीं सुधरने वाले।
1: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, जमहूरियत के अंदर भी तो 3-4-5 किस्म के निजाम हैं, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई।
0: पाकिस्तान के गृहमंत्री द्वारा इस तरह की बातें कहने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सैन्य शासन की तरफ बढ़ रहा है, दिखावे के लिए सही, लेकिन जो प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा है वो जनता की नजरों में फेल हो चुका है। वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का 70 साल पुराना सरकारी सिस्टम बर्बाद था, बर्बाद है, बर्बाद ही रहेगा। हालांकि मोहसिन नकवी गलत नहीं कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कत्लेआम मचा है। पीओके का सच छिपाने की जितनी कोशिश पाकिस्तानी सेना कर ले, सरकार कर ले, वो सच उतनी ही ताकत से दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया समझने लगी है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार मासूम नागरिकों को भी मारने से पीछे नहीं हटती। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने का डर फैल गया है। पाकिस्तानी सांसद इस बात से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आएगा जब उन्हें अपने प्रांतों में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चेतावनी दी, कहा कि अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और वहां पासपोर्ट लेकर जाना होगा। मौलाना ने संसद में दावा किया कि पाकिस्तान जल्दी टूटने वाला है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलोच और टीटीपी के हमले लगातार बढ़े हैं और इसे संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। सुनिए,
2: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
0: मौलाना अताउर रहमान पाकिस्तान के चर्चित नेता मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। फजलुर रहमान पहले ही पाकिस्तानी सेना को धमकाने, चुनौती देने के लिए जाने जाते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने आसिम मुनीर को सेना की वर्दी छोड़कर नेतागिरी में उतरने के लिए कहा था और अब उनका भाई पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना जता रहा है। वैसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मौलाना अताउर रहमान का आकलन गलत तो नहीं कहा जा सकता। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सही बात, अभी जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह छिड़ा हुआ है। इन विद्रोहों को देखें तो अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के 6 टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा है। बलूच लोग जो है वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचों का हथियार बंद आंदोलन चल रहा है और ये पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, पाकिस्तानी सेना सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं और उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचों का शोषण करती है। दूसरा बड़ा विद्रोह खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। टीटीपी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले करती है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफूज मूवमेंट एक बड़ा आंदोलन वो चला रही है और इनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना खैबर में लोगों पर जुल्म करती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पिछले कई वर्षों से ये सब चल रहा है। सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और यहां के लोग भी अपनी अलग पहचान और शासन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अब देखिए, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आजादी के नारे उठ रहे हैं। हमने आपको कई दिनों से दिखाया है, 3 वर्षों में पीओके में मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाजें उठ रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, सरकार सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना खुलेआम गोलीबारी तक कर रही है, जिसमें पिछले 3 से 4 दिनों में 40 से ज्यादा मासूम मारे जा चुके हैं। अब पीओके के लोग पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ चुका है। और अगर हम मोहसिन नकवी के एक और डर की बात करें तो पाकिस्तान के टुकड़े होने का माहौल बनने लगा है। मोहसिन नकवी ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान में भी जेंजी आंदोलन होने वाला है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि पाकिस्तान के कॉकरोच आंदोलन करने सड़कों पर उतर सकते हैं और जिस तरह से भारत में सीजेपी का धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ इसी तरह की स्थिति पाकिस्तान में बनेगी। मोहसिन नकवी को डर है कि पाकिस्तान सरकार युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने में नाकाम है। वो शिक्षा, न्याय, मेरिट, नौकरी के मौके चाहते हैं और पाकिस्तान सरकार उन्हें दे नहीं पा रही है। अगर पाकिस्तान के जेंजी का गुस्सा फूटा तो लोग पाकिस्तान में सरकार गिरा सकते हैं। सुनिए,
3: ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और हमें अगर कहीं सरकारी तरफ पे जॉब है तो उस पर हमें जायज तरीके से हर चीज मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए।
0: कॉकरोच आंदोलन का खतरा, बलूचिस्तान में हथियारबंद आंदोलनकारियों के हमले, अब पीओके में आजादी की आवाजें शहबाज और मुनीर को सोने नहीं दे रहे। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि भले ही पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम कर रही हो लेकिन आंदोलन अभी जारी है। जिस रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला, शाहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हुई।
4: इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ बाहर निकलिए।
5: सालमों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को, क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं।
6: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
7: सबसे बहुत बुरी है, सबको मारी जा रही है लगातार, इतने तक तीन बंदूक का हेड शॉट किन्होंने किया, कुत्ते के बच्चों ने
8: 15 से 20
7: बहुत सारे बंदूक ने जख्मी किया।
0: संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक रोकने से जुड़ा संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर हमले रोके नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि कानून में संशोधन होने से पेपर लीक के दोषियों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकेंगे, उनको रोकना कैसे मुमकिन होगा? इस मुद्दे पर आज भी काफी बवाल हुआ। दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 FIR दर्ज की थी उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर यह कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा।
9: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही है, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने FIR दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी FIR उस जमाने में दर्ज हुई उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक FIR का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है और इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें एआई की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कंटेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे एआई की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें एआई की मदद से बदला गया या तैयार किया गया और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका, यानी वही सवाल जो दो दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हां। अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला, तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौच वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में नोएडा में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसे अब जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां हम इस आपत्तिजनक वीडियो को बनाने वाली लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने और कोई ठोस कार्रवाई होने तक उसकी पहचान सार्वजनिक ना की जाए। हालांकि इस एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहे हैं। एफआईआर का विरोध करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास है। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसके बाद इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह असीमित हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है लेकिन यह अधिकार पूरी तरह एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर किसी बयान से हिंसा, भड़कने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने, मानहानि होने या कानून का उल्लंघन होने की स्थिति बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और इन मामलों में भी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन हो रहा है और ये बहस आज देश के युवाओं के बीच चल रही है, खासकर जेंजी युवाओं के बीच जो सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई प्रदर्शनकारी युवाओं ने अब अपने कुछ व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है। जैसे जिस छात्रा ने आरएएफ के जवान के साथ मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था, उसने एक नया वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हालांकि इस छात्रा का यह भी आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उसे सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला बनता है कि किसी बच्ची को रेप या फिर किसी भी तरह की धमकी दी जाए। लेकिन सवाल है कि जांच होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह किसी लड़की को जान से मारने की धमकियां या रेप की धमकियां देना गंभीर अपराध है और पुलिस को इसे रोकना चाहिए।
10: मोदी ने करा क्या? मोदी
11: को लेके बहुत सारे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट।
10: जंतर मंतर में लड़की को मारा है, ये हम मार के दिखा।
12: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
13: नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए।
14: कुछ लोग कूल बनने के लिए मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं तेरे को इधर पकड़ के ये करूंगा।
15: मोदी जी, हाँ मोदी जी,

0: गाली गलौज का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या करें ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स, वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों के जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तुम नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, जेंजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ और वो होना भी नहीं चाहिए।
1: खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ कैसे? इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी। और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे, यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का, और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। ये भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों कई राज्यों तक पहुंचाए गए, यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। अब सीबीआई के मुताबिक अगर ये ब्यूटिशियन इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती तो शायद ये सवाल इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलते और मामला सामने भी नहीं आता, या फिर ये प्री प्लान था। इस पूरी कहानी से ये भी समझ आता है कि जिन युवाओं ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया वो गलत नहीं थे, उनकी मांगे सही थी। परीक्षा व्यवस्था में कमियां हैं और जवाबदेही कोई नहीं लेता। और जानते हैं ये गंभीर क्यों है? एक छात्र जो सालों साल मेहनत करता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर पर भरोसा करता है, उसका पूरा जीवन जैसे इसी पर टिका हो। उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में सभी को बराबर मौका मिलेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो नुकसान सिर्फ उन छात्रों का नहीं होता जो परीक्षा देते हैं, नुकसान पूरे सिस्टम के भरोसे का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदर का हो बाहर का हो, टीचर हो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है? सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें तीन बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउडस्पीकर्स और जो दूसरे अस्थाई सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है। यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर ये कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है। पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी यह दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेन जी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां यह भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थे कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाए उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई, बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। अब पहले ये देखिए,

0: इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशालकाय जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त आप देखें तो जंतर मंतर पर भी इस तरह के बैरिकेड्स जो एंट्री पर हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज इस वक्त दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे वो है इन बैरिकेड्स का आपस में वेल्ड होना। ये देखिए इस तरीके से इन बैरिकेड्स को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया है, जिससे फायदा क्या होगा, फायदा अमूमन ये होगा कि अगर कोई इन बैरिकेड्स को गिराना चाहेगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे और बैरिकेड्स को गिराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो नया एक तरीके से एसओपी हम देख रहे हैं या जो नए चेंजेस किए गए हैं इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिस तरीके से 20 तारीख को हमें बैरिकेड्स गिरते हुए दिखे वो हो सकता है आगे देखने को ना मिले, या अगर आगे होता भी है तो और ज्यादा भीड़ और ज्यादा ताकत लगेगी इन बैरिकेड्स को गिराने में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
1: इस सब के बीच सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने जवानों और अधिकारियों से कहा है कि ड्यूटी निभाते समय अगर वो ईमानदारी और नियमों के तहत कोई फैसला लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करने की जरूरत पड़ी तो उसे वो खुद स्वीकार करेंगे और जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को सीआरपीएफ पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए।
2: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें, जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
1: इस पूरी राजनीति को देखकर आज सिर्फ एक बात याद आती है। अब तक इस देश में बच्चों की परीक्षा ली जाती थी, लेकिन आज वही बच्चे इस देश की राजनीति की परीक्षा ले रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बच्चों के सामने प्रश्न पत्र रखा जाता था और आज बच्चों ने नेताओं के सामने सवालों की एक कॉपी खोल दी है। यह बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार देश का युवा सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी तरह नौकरी दे दीजिए, वो कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं पूछा जा रहा, जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां उसी से जवाब मांगा जा रहा है। कहीं पेपर लीक पर सवाल है, कहीं भर्ती में देरी पर सवाल है, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है। यानी अब युवा राजनीतिक झंडे लेकर नहीं अपने भविष्य को लेकर खड़ा है और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर होती है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता नेताओं से सवाल पूछ सके। और अगर इस देश के युवा शिक्षा, रोजगार, अपने भविष्य पर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है। आप खुद सोचिए, किसने सोचा था कि इस देश की संसद में राजनीतिक मुद्दों से इतर शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए ये नेता मानेंगे। और हमें लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की एक नई परीक्षा है। इस परीक्षा में पास वही होगा जो युवाओं का भरोसा जीत पाएगा। यानी इस बार रिपोर्ट कार्ड बच्चे लिख रहे हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो लोग पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के इस मुद्दे को सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी का मुद्दा बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो तो इस जरा इन घटनाओं पर एक बार नजर डालकर देखिए। महाराष्ट्र में 28 जून को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले खुलासा हुआ कि इस परीक्षा के का पेपर लीक हो चुका है और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। पंजाब में भी फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल रैकेट पकड़ा गया। वायरलेस ईयरपीस, मॉडिफाइड मोबाइल फोन्स जैसे उपकरणों के जरिए परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश की गई। 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो मौजूदा सेमेस्टर है उसकी 2 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आरोप ये लगा कि इन परीक्षाओं का पेपर पहले ही लीक हो गया था और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में भी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके कारण परीक्षा के पास हुए उम्मीदवारों की सूची रोकनी पड़ गई। पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड, और झारखंड में तो कमाल ही हो गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है। CID ने पूर्व अध्यक्ष तक को पूछताछ के लिए बुलाया है और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था झारखंड में एग्जाम में, सोचिए, बच्चों का एग्जाम देने के 1-2 घंटे पहले उनको मेल आ रहा था कि उनका सेंटर कहां पर है और वो सेंटर जहां पर वो मौजूद थे वहां से 1-2-3-3 घंटे की दूरी पर। इसीलिए हम कह रहे हैं समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, समस्या किसी एक सरकार की नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। और जो लोग राजनीति में उसको उलझाकर कहते हैं कि यहां की बात मत करो, वहां की बात मत करो, वहीं की बात करो, वो सिर्फ भटकाना चाहते हैं। इन राज्यों में सरकार अलग अलग है, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या पेपर लीक को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मानेंगी या वो अपने राज्यों में भी पेपर लीक के खिलाफ कदम उठाएंगी, और इसमें बीजेपी के राज्य भी शामिल हैं। कई लोगों ने इन राज्यों में भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं इन राज्यों में शिक्षा मंत्री कौन है और कितने राज्यों के शिक्षा मंत्री दागी है? तो हमने सोचा कि इन माननीयों के बारे में जरा सा आपको बताया जाए। वो माननीय जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं। झारखंड को साल 2001 में एक अलग राज्य बनाया गया था और तभी से वहां पेपर लीक के मामले हर साल आते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 21 सालों में अलग अलग भर्तियों के लिए 21 परीक्षाएं करानी थी, जिनमें वो 13 परीक्षाएं ही करा सका और इनमें भी सभी परीक्षाएं अलग अलग विवादों और गड़बड़ियों से घिरी है। इनमें भी एक परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए साल 2015 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। साल 2024 में जब ये परीक्षा हुई तब शाम को ही यह खबर आ गई कि इसका पेपर लीक हो चुका है, जबकि दूसरी बार जब यह परीक्षा कराई गई और इसके लिए सरकार ने इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया तब भी पेपर लीक हो गया और आज यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। यह स्थिति भी तब है जब हेमंत सोरेन 2019 से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी वही है। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हेमंत सोरेन के शिक्षा मंत्री रहते जो पेपर लीक हुए उनके लिए उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में पेपर लीक की कहानियां हजारों युवाओं का दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं। जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा लीक हुई उसमें CID ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अभय तिवारी नाम का आरोपी भी शामिल है। इसने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की है। उसका भाई, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा यह आरोपी पहले उस कंपनी में प्रबंधक का काम संभालता था जिसे झारखंड में परीक्षा कराने का ठेका मिला हुआ था और इस कंपनी ने जो परीक्षाएं कराई वही बाद में लीक हुई। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब यह दिखाना चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर इतनी बहस तो हो रही है लेकिन कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं और उन जिनके खिलाफ सोचिए आपराधिक मामले दर्ज है। तो हमने सोचा कि हर जगह का देखिए, कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है, TDP की भी सरकार है, लेकिन आप देखिए कि कितने कितने मामले हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो वो है ये देखिए तेलंगाना। शिक्षा मंत्री हैं A. Rewant रेड्डी, इन पर कितने मामले चल रहे हैं जरा ये वाले कलर से दिखाते हैं तो साफ दिखेगा। 89। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आइए तो आपराधिक मामले डीके शिव कुमार के खिलाफ हैं 19 और वो फिलहाल डीके शिव कुमार है शिक्षा मंत्री। अब आ जाइए आप 17 के साथ, टीडीपी की सरकार सहयोगी है बीजेपी की, 17 मामले हैं नारा लोकेश पर, वो शिक्षा मंत्री है। फिर आइए राजस्थान, शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, 14 आपराधिक मामले, 14। उसके बाद आ जाइए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहीं पर है, शिक्षा मंत्री है हेमंत सोरेन, 5 आपराधिक मामले उन पर है। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश, जहां पर योगेंद्र उपाध्याय है उच्च शिक्षा मंत्री, ये आपको योगेंद्र उपाध्याय का चेहरा देखिए, 4 आपराधिक मामले हैं इनके खिलाफ। उसके बाद से आ जाइए आपराधिक मामले 3 वाले केरलम में एन शमशुद्दीन है शिक्षा मंत्री, और 1 आपराधिक मामले वाले बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में उदय प्रताप सिंह ये है। तो ये सारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके चेहरे आप देख लीजिए, और इसी के साथ साथ उनके बगल में बने जो आपराधिक मामले हैं वो देख लीजिए, और फिर आप ये तय कीजिए कि क्या ऐसे बेदाग नहीं मिलते जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला ना हो और वो इस देश के शिक्षा मंत्री बन सके। आज बड़ा सवाल यही है, और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या भी यही दिखाई दे रही है। अब सोचिए, आज हम शिक्षा व्यवस्था को दागी होने से बचाने की बात कर रहे हैं, और इसी दौरान कई राज्यों में शिक्षा मंत्री बने नेता खुद दागी हैं, ये कैसे चल सकता है?
3: आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए, और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। क्योंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं, छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त है।
4: पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है, पंजाब में पेपर लिख।
5: लेकिन सर, बच्चों ने प्रदर्शन किया पंजाब में, उसका कोई असर नहीं? बच्चे भी कहीं दिखा है, कहीं जगह में पंजाब में बच्चों ने भी वो किया है, प्रोटेस्ट किया है बकायदा कि वहाँ भी एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, वहाँ पर जवाब दे।
4: पंजाब आज पहली बात तो जो है एजुकेशन मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट, वो तो फार्मेसी है, वो तो मेडिकल, वो हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है।
5: तो क्या हेल्थ मिनिस्टर पता क्या देंगे सर?
4: नहीं नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही ये क्लियर किया है, देयर वाज नो चीट, नो पेपर लीकिंग, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई, वही एग्जाम हुआ है सक्सेसफुली।
6: आम्ही तर टीईटीच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली, त्यामुळे आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पायचं वाकून हे बंद करा।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो है कुछ घंटे के लिए क्यों हटाया गया। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटा सकती है, वही फेक खबरों डीप फेक वाले अकाउंट्स को आखिर क्यों नहीं हटा पाती। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ समझौता नहीं होगा। इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। 28 जुलाई की सुबह कई सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि यह फेसबुक वीडियो पर दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो की जगह यह लिखा था, इस कॉन्टेंट को लीगल रिक्वेस्ट के कारण भारत में रोका गया है। यानी पहली नजर में ऐसा लगा कि किसी कानूनी आदेश या सरकारी अनुरोध के कारण इस वीडियो को हटाया गया है, लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने सफाई दी कि यह किसी कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं था बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गलती थी, और इसके बाद इस वीडियो का वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोबारा बहाल कर दिया गया। अब इस घटना के बाद बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन करोड़ों पोस्ट, वीडियोस, तस्वीरें अपलोड होती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट को संभालने के लिए कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग मॉडल, ऑटोमेटेड फिल्टर, कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। ये सिस्टम कुछ शब्दों, तस्वीरों, विषयों, संदर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि कोई कॉन्टेंट नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न को लेकर ऐसी या आत्महत्या कोई संवेदनशील जानकारी हो जो लोगों को विचलित कर सकती है, इस पर कोई वीडियो या पोस्ट है तो इसे कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम हाइड कर देता है या उसे हटा देता है। अब यह होता सिर्फ संवेदनशील मामलों में है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं और इसी वजह से अब इस मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी सवाल यह है कि क्या फेसबुक ने नीट के मुद्दे पर कोई ऐसा कीवर्ड या कंटेंट हाईलाइट किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट हट गया। और सोचिए अगर जंतर मंतर आंदोलन और पेपर लीक को लेकर वाकई में ऐसा कोई कीवर्ड हाईलाइट हुआ होगा तो फिर इस मुद्दे पर और कितने लोगों के पोस्ट हटाए गए होंगे। इन्हीं बातों को देखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट तो हटा देता है, लेकिन जिन डीप फेक अकाउंट से जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई उन अकाउंट्स को ये कंपनियां नहीं हटाती या उन पोस्ट को नहीं हटाती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने खुद ऐसे 450 अकाउंट्स की पहचान की जो आंदोलन को लेकर झूठी खबरें फैला रहे थे और वो भी एआई के जरिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को इन कंपनीज के पास जाकर ये बताना पड़ा कि इनके प्लेटफॉर्म कैसे फेक न्यूज का माध्यम बन गए हैं। यहाँ ये भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक अकाउंट कोई अगर आप देखिए तो एक राष्ट्राध्यक्ष का अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है और उसमें टेक्निकल ग्लिच की बात की जा रही है। दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनका अकाउंट सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। लेकिन यहां अगर जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक को एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट हट जाता है और कंपनी इसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लगभग 6.1 करोड़ लोग फेसबुक पर, वहीं इंस्टाग्राम पर 10.5 करोड़ लोग। और यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया। जानते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी पोस्ट को हटाया गया है, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उन सभी मामलों में कोई ना कोई विवाद था। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स अकाउंट निलंबित हुआ तो उसका कारण अमेरिकी संसद में हुई हिंसा थी। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। 28 मार्च 2021 को जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फेसबुक अकाउंट निलंबित हुआ तब भी उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप था। और 2021 में जब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट बंद किया गया तब उन पर भी आरोप था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर गलत दावे किए थे।
7: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
8: I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. What was done was wrong. The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. Meta realized that they had to apologize for this mistake, and their unconditional apology for the mistake is a good step.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और दुनिया में सवाल ये नहीं है कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: मैं करता हूँ ना,
4: मैं करूँगा।
5: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
3: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
5: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
3: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
5: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल बीजेपी के नीरज कुमार और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांझलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दिपके बोले, हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड, 7 लोगों की मौत, 18 लोग गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश में मॉनसून आए लगभग दो महीने होने वाले हैं, लेकिन बारिश का मिजाज भारत में इस समय बहुत असंतुलित है। वैज्ञानिकों के अनुसार 27 जुलाई तक पूरे देश में 16% बारिश की कमी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद असम में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन ने तबाही मचा रखी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश कम भी हो रही है और बाढ़ भी आ जाए? हम देश भर में बाढ़ की बेहद खतरनाक तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कुदरत के वो कौन से फैक्टर हैं जो इस भयानक तबाही के लिए जिम्मेदार है।
1: अभी कुछ राज्यों में अभी कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन अगर हम देश का औसत देखें तो वो अभी भी लगभग मतलब जो सामान्य से कम ही है।
2: मानसून है वो डेफिसिट है, जब जुलाई खत्म हुआ तो 13% के डेफिसिट पर खत्म हुआ है।
3: सुना आपने मौसम वैज्ञानिक का ये हैरान करने वाला बयान, बारिश इस साल कम हो रही है, देश भर में बारिश कम हो रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं, बारिश कम हो रही है तो हर जगह इतनी बाढ़ क्यों है? बूंदे कम बरस रही हैं, तो फिर तबाही का ये आलम क्यों है? आसमान कम बरस रहा है तो फिर जमीन ज्यादा क्यों डूब रही है? बारिश का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा तो सैलाब का रिकॉर्ड कैसे टूट रहा है? अगर बारिश कम हो रही तो नदियां उफान पर क्यों? अगर बारिश कम हो रही है तो सड़कें दरिया क्यों बन रही हैं? अगर बारिश कम हो रही है तो शहर तालाब क्यों बनते जा रहे हैं? देश भर में 16% कम बारिश हुई तो आधा भारत डूबा क्यों? दक्षिण भारत में 29% कम बारिश हुई तो केरल में तबाही क्यों? पूर्वोत्तर भारत में 30% बारिश कम हुई तो असम बाढ़ से लाचार क्यों? उत्तर पश्चिम भारत में 10% बारिश की कमी तो गुजरात बेबस क्यों? कभी महीनों में होने वाली बारिश अब घंटों में हो रही है। पहले बारिश होती थी फिर बाढ़ आती थी, अब बारिश शुरू होते ही शहर डूब जाते हैं। कम बारिश ज्यादा तबाही, क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या हमारे शहरों और नदियों के साथ हुई छेड़छाड़ का नतीजा?
0: ओडिशा में भी बाढ़ का संकट गहरा गया है, महानदी उफान पर है। हालांकि बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन हीराकुड बांध में पानी बढ़ने से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। अब तक 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, जबकि करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
3: भयंकर बारिश के कारण ओडिशा में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महानदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में लोगों के जीवन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। करीब 20 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। पूरे ओडिशा में सैकड़ों हेक्टेयर खेती खराब हो चुकी है, कई पुल और सड़कें पानी में समा चुके हैं, कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नोवापाड़ा में टिखाली बांध से ये पानी छोड़ा गया है, प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी जारी कर रहा है। तीन लोगों की जान अब तक जा चुकी है और लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच ढेंकानाल से आई इस तस्वीर ने सबको चौंका दिया।
4: जेसीबी मशीन मार्थापुर गांव से ओधाना गांव की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों ने ऑपरेटर को कई बार चेतावनी दी कि पुल के ऊपर से तेजी से बह रहे पानी के बीच वाहन लेकर आगे न बढ़े, लेकिन उसने जोखिम उठाते हुए पुल पार करने की कोशिश की। पुल पूरी तरह पानी में डूबा होने के कारण ऑपरेटर सड़क का सही अनुमान लगा नहीं सका। तेज बहाव के दबाव में जेसीबी का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नीचे पलट गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ऑपरेटर तुरंत केबिन से बाहर निकल आया और धीरे धीरे पानी में समा रही मशीन के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। ऑपरेटर की तो जान बच गई, लेकिन जेसीबी मशीन तेज बहाव के कारण नदी में समा गई। रायगढ़ के हालात भी मूसलाधार बारिश के कारण चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में नागावली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से बीच धारा में एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसमें सवार चालक और उसके साथ मौजूद एक नाबालिग की जान पर बनाई। दोनों काफी देर तक ट्रैक्टर के ऊपर बैठे रहे और मदद का इंतजार करते रहे। बाद में स्थानीय मदद मिलने पर दोनों की जान बचाई जा सकी। ओडिशा के जाजपुर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं। साफ देखा जा सकता है कि कैसे गांव और आसपास का हिस्सा पानी में समा चुका है और धीरे धीरे तेज बहाव बाकी हिस्सों को भी निगल रहा है। कई लोगों के घर इस तेज बहाव में बह गए। असहाय लोग सुरक्षित स्थानों पर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आने वाले वक्त में और तेज बारिश का अनुमान है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है।
5: लगभग इस घाई के वजह से 20-30 हजार लोग इफेक्ट हुए।
4: जाजपुर से ही एक और तस्वीर आई, जिसने ये साबित कर दिया कि हौसले मजबूत हों तो इरादे टलते नहीं। गांव जलमग्न है, सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। ऐसे में एक दूल्हा अपनी बारात के साथ बाढ़ के पानी को चीरते हुए मोटर चलित देसी नाव में दुल्हन के गांव पहुंचा और एक सामान्य शादी को असाधारण सफर में बदल दिया। बाढ़ से प्रभावित ओडिशा के बालासोर जिले में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। लगातार बारिश और आसपास की नदियों के जलस्तर में चढ़ावे के कारण सड़क के ऊपर से तेजी से पानी बह रहा था। चेतावनियों के बावजूद एक स्कूटी सवार ने इस डूबे हुए मार्ग को पार करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में तेज बहाव ने स्कूटी का संतुलन बिगाड़ दिया और स्कूटी समेत सवार बाढ़ के पानी में बह गया।
3: प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि स्कूटी सवार तेज बहाव में खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहले से राहत एवं बचाव कार्य में तैनात एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्कूटी सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए शख्स को चोटें आईं, लेकिन उसकी जान बच गई। स्कूटी पानी की धार में समा गई। बालासोर के कई इलाके जल भराव की दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं। जगह जगह गाड़ियां बंद हैं, जिससे जाम की स्थितियां हैं और लोग जैसे तैसे अपने काम पर निकल रहे हैं। पूरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मूसलाधार बारिश से दया नदी पूरे उफान पर आ गई और कनास क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई।
6: सालनी का नदी जो है, उसका जो बांध था, पर का पानी नहीं आने का जो बांध दिया जाता है वो था, उसको काट दीजिए, आदमी काट के बेच दीजिए, इसलिए पानी घुस रहा है गांव को, उसका कोई बंदोबस्त नहीं है।
3: भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। सानदी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू बनते दिख रहे हैं। गलियां और सड़कें सब तालाब बन गई। इस क्षेत्र में पड़ने वाले मंत्री महोदय का घर भी इसकी चपेट में आ गया। टीटलागढ़ में हालात और भी खराब है। नदियों ने सड़क को निगल लिया है और लोगों का जीवन मुश्किल में आ गया है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और किसी अनहोनी को रोकने के लिए बचाव दल भी लगातार गश्त कर रहे हैं।
0: असम इस वक्त भयानक बाढ़ की तबाही से दो चार हो रहा है। कई लोगों की जान चली गई है, लाखों बेघर हो चुके हैं, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में तबाह हो चुका है। लेकिन असम में इस भयानक तबाही के पीछे जिम्मेदार कौन सी चीज है? क्या केवल भारी बारिश या फिर कारण कुछ और है?
4: हर तरफ पानी ही पानी, शहर हो या गांव, स्कूल हो या स्टेडियम, सड़क हो या रेलवे स्टेशन, खेत हो या बाजार, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल।
7: ना भी सामान कमाया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा भैया लोग।
4: पिछले 10 दिनों से असम के हजारों परिवार इसी हाल में जी रहे हैं। किसी की सुबह नाव पर होती है तो किसी की रात राहत शिविर में गुजरती है। पीने का पानी मुश्किल से मिल रहा है, खाने का कोई भरोसा नहीं है, बिजली गायब है और हर दिन एक नई चुनौती है।
8: तो घर पे था पानी, मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे दूसरे का बचाने लग गए। घर का आदमी पानी में, इतना इतना पानी में उन लोग खड़ा था, हम लोग नाव लेके दूसरे दूसरे को बचा रहा था, फिर भी हम लोग सोचा नहीं थे घर पर इतना पानी हो गया है। नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा पानी हुआ है।
4: शिव सागर की हालत देखिए, अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अपने पीछे जो मंजर छोड़ रहा है वो और भी डरावना है। जहाँ कल तक पानी था वहाँ आज कीचड़ है, दलदल है, टूटी हुई सड़कें हैं, बर्बाद खेत हैं और ऐसे घर हैं जिनमें अब रहने लायक कुछ भी नहीं बचा। 19 जुलाई को आई इस विनाशकारी बाढ़ ने असम के हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। असम के कई जिलों में लोग अब भी सामान्य जिंदगी से बहुत दूर हैं। पानी कम जरूर हुआ है लेकिन दर्द अभी भी उतना ही गहरा है। जोरहाट में तो हाल और भी खराब है, खेत पानी में है, घर पानी में है, कुछ नहीं बचा है। लोगों की आंखों में सिर्फ बेबसी है, लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में फंस गई।
9: तो मान लीजिए हम लोग में से लड़का बच्चा को निकलते निकलते मैंने पूरा पानी हो गया एकदम, तो गरू गाय छगली बच्चे लोग मैंने निकलने नहीं सका, सब चला गया, खाली हम लोग आदमी लोग के बच्चा मैंने सब चला गया, घर के जितना सामान सामान रहा सब खत्म हो गया।
10: अगर हम लोग का छह नाव अगर नहीं रहता तो आज के डेट पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाय और बकरी जैसे मरे पड़े हुए हैं, तो वैसा ही बोलना तो नहीं चाहिए, तो वैसा ही परिस्थिति हो जाता इंसानों का।
4: इस बाढ़ में किसी का घर बह गया, किसी की दुकान उजड़ गई, कई गांव अब चारों तरफ पानी से घिरे छोटे छोटे टापू बन चुके हैं। शिव सागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। करीब 379 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लगभग 1,92,799 लोग इस बाढ़ से प्रभावित है। 15,430 हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।
11: लगभग 1,00,000 परिवार और 4,00,000 पीपल अफेक्ट हुए हैं। अभी भी हमारी नदियों का जो लेवल है, दीखो, दीमो, दिसांग, गोरिका, सबका लेवल डेंजर लेवल से ज़्यादा है। समस्या इम्प्रूव हुई है, वाटर लेवल गिरा है, लेकिन अभी भी हमारे 40-50 रिलीफ कैंप चल रहे हैं और हम लगभग 100-150 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो राहत सामग्री है वो सब तक पहुँचा रहे हैं।
4: हर कुछ दूरी पर बर्बादी की एक नई कहानी दिखती है। नजीरा की यह तस्वीर देखिए, किस तरह से बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरा घर डूब गया, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। एनडीआरएफ की टीम को खबर मिली तो शुरू हुआ ऑपरेशन राहत, पहले माँ को बचाया, उसके बाद बच्चे को और फिर धीरे धीरे परिवार वालों को मुश्किल से निकाला गया। लोगों को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। असम के कई गांवों में अब नाव ही लोगों का सहारा है। एनडीआरएफ, सेना और कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार राहत और बचाव में जुटी हैं, लेकिन बाढ़ इतनी बड़ी है कि हर जरूरतमंद तक पहुंचना आसान नहीं है।
12: बहुत ही भयानक परिस्थिति है, स्थिति है, लोगों का खाने के लिए तरस रहे लोग, तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ, हम खुद भी और जो एनजीओ लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए जो लोग आ रहा है, कुछ खाने को ले दे रहे हैं, ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं।
4: बक्सा, धेमाजी, गुवाहाटी, चिरांग, कोकराझार, नलबाड़ी, जिला कोई भी हो, गांव कोई भी हो, तस्वीर लगभग एक जैसी है। इस बाढ़ में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 19 जुलाई को इस तरह से ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ा कि लोगों को बचने का वक्त तक नहीं मिला। 24 घंटे में घरों का नजारा बदल गया, लोग अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार असम में बाढ़ इतनी भयानक क्यों हुई। एक एक करके वजहों का विश्लेषण करते हैं।
3: वजह नंबर एक, रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 18-19 जुलाई को नागालैंड के वोखा, मोकोंगचुंग, मोन और असम के चराई देव में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हुई। चराई देव में 436% और मोकोंगचुंग में 493% अधिक वर्षा दर्ज की गई। लगभग 8-9 घंटे में 137 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों में अचानक उफान आ गया। नागालैंड से आने वाली नदियों का पानी पहले से उफन रही ब्रह्मपुत्र में समा नहीं पाया। ब्रह्मपुत्र पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। नतीजतन दिखो, दिसांग और धान सिरी जैसी सहायक नदियों का पानी उल्टा फैलने लगा। इसे बैक वाटर इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें मुख्य नदी का ऊंचा जल स्तर सहायक नदियों के बहाव को रोक देता है और बाढ़ फैल जाती है। वजह नंबर 3, नदी की घाटियों में खुदाई और खनन। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों में पाया कि नदी की घाटियों के किनारे बड़े पैमाने पर खुदाई और खनन किया गया। इससे बारिश के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा नदियों में बहकर पहुंचा। नतीजा, पहले जितनी बारिश में बाढ़ नहीं आती थी, अब उतनी ही बारिश में नदियां उफनने लगी। वजह नंबर 4, वनों की कटाई ने बढ़ाया खतरा। जंगल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, ये बारिश के पानी को कुछ समय तक रोककर उसे जमीन में समाने का मौका देते हैं। इसे इनफिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम कहा जाता है। लेकिन जहां जहां जंगल काट दिए गए, वहां पानी तेजी से ढलान से नीचे बहा। इसके साथ भारी मात्रा में मिट्टी भी नदियों में पहुंची। इससे नदी का तल ऊंचा हो गया और गहराई कम होती गई, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। वजह नंबर 5, जलवायु परिवर्तन का असर। विशेषज्ञों के अनुसार क्लाइमेट चेंज ने संकट को और गंभीर बना दिया है। अब 50 से 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश वाले हाई इंटेंसिटी रेन इवेंट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी।
0: कुछ राज्यों का हाल हमने आपको दिखाया, इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में भी इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं वो अब दिखाते हैं।
3: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। केरलम में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां राहत शिविरों में हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। गुजरात के कई इलाके अब भी भारी बारिश के बाद उपजी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगह बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश के कारण केरलम के मल्लापुरम में चालियार नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके कारण लगातार आसपास के इलाकों में संकट मंडरा रहा है। केरलम के ही किन्नूर में पड़ने वाले श्रीकंदपुरम नगर का ये हाल देखिए, जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी। चौक, चौराहे, गलियां, मकान, दुकान सब पानी की चपेट में है। गाड़ियों को बड़ी सावधानी से भरे हुए पानी के बीच से निकाला जा रहा है। उस पर से मौसम और बारिश का संकेत दे रहा है। इडुक्की क्षेत्र में वन्नापुरम चेलाकोड हाईवे की हालत भूस्खलन के कारण खस्ता हो गई। इडुक्की में लगातार बारिश से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर के अंदर भी हालात सामान्य नहीं रहे हैं। थोडुपुझा क्षेत्र की ये तस्वीरें भारी बारिश के कारण होने वाली दिक्कतों की एक बानगी है। पथनमथिट्टा का हाल बेहाल है। दूर तक बस पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। दुकानों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजौरी इलाके में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद चिंताजनक हालात है। पानी का सैलाब समंदर की तरह रिहायशी इलाकों के बीच ऐसे बह रहा है जैसे जो रास्ते में आएगा उसे साथ बहा ले जाएगा। कटरा रियासी हाईवे पर भारी बारिश के कारण अचानक से पहाड़ी ढह गई और पूरा रास्ता बंद हो गया, लेकिन लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। त्रास के पास मीना मर्ग इलाके में एक गाड़ी पानी की धार के बीच में आकर फंस गई। पुलिस प्रशासन ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कार को पानी से बाहर निकाला। सोनमर्ग के सरबल क्षेत्र में भी अचानक ऊंचे स्थानों से तेजी से नीचे आता पानी किसी भी समय बड़े हादसे की शक्ल ले सकता है। करगिल के चिकतन इलाके में कई घर पानी के तेज बहते सैलाब के सामने तिनके की तरह फंसे हुए हैं। सपोरा में बादल फटने से अचानक हालात बेकाबू हो गए। शोपिया में भारी बारिश ने घरों को खिलौने जैसा बना दिया है, जो पानी में किसी कागज की नाव जैसे नजर आ रहे हैं। पानी इतना भर चुका है कि मकानों की खिड़कियों तक पहुंच चुका है। साबरकांठा के इडर इलाके में एक घंटे में 2 इंच बारिश होने पर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली डेबोल नदी अचानक उफान पर आ गई और तेज बहाव में एक कार को बहाकर ले जाने की डरावनी तस्वीर सामने आई है। गुजरात में सबसे ज्यादा बेकाबू हालात खेड़ा जिले के वसो इलाके से हैं, जहां महज 24 घंटे में 17 इंच से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। वसो गांव की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां मुख्य बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। गांव का मुख्य बाजार, काछिया पोल, इंदिरा नगरी और खाली कुई क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहां तक कि पंचायत ऑफिस, सरकारी स्कूल भी जलमग्न है। नांदेड़ जिले में भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। नदियां और नाले उफान पर हैं। गढ़चिरौली के खेड़े गांव में सती नदी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। जलगांव जिले के अमलनेर में बाढ़ के कारण भालेराव नगर में 1 महीने के बच्चे समेत एक परिवार घर में पानी घुसने के बाद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। फायर ब्रिगेड और हेल्थ वर्कर्स ने बड़ी कोशिश करके बच्चे और परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रेस्क्यू की इन तस्वीरों ने हर किसी को भावुक कर दिया, क्योंकि पूरा शहर बाढ़ की ऐसी चपेट में है कि मकानों की दूसरी मंजिल तक पानी आ चुका है। खेत, खलिहान, मंदिर सब पानी में डूब रहे हैं। जलगांव जिले में भारी बारिश के कारण हथनूर बांध के 36 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के कारण आसपास के इलाके में हर तरफ पुल, रास्ते, छोटे छोटे गांव सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। जलगांव जिले के भुसावल तहसील में तापी नदी पर हथनूर बांध में पानी के भारी प्रवाह के कारण नदी के किनारे के गांव वालों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।
13: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: With Instacart Shopper Notes, you can be incredibly specific about your produce. Take heirloom tomatoes. Maybe you want one that's more than just red. You want a tomato that's cultured, one that knows words in a different language. Ciao, Balsamico, or Caprese. A tomato you can wrap your arms around on a breezy warm day as it guides you through Naples' volcanic landscape. Woo-hoo! Okay, so maybe you can't get quite that specific with Shopper Notes, but you get the idea. Want to get groceries just how you like? Download the Instacart app.
16: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
9: These two biggest blunders have defined Indian politics since. He responded to the Shahbano judgment.
10: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
9: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
11: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
12: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
11: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
13: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
11: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
14: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हाई प्रोफाइल मांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल। बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर। दतिया और मांझलपुर पर भी नजर। यूपी चुनाव में मानसून सत्र में उस पर पड़ सकता है इम्पैक्ट। चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार है विपक्ष। योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ। अभिजीत दीप के बोले, हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ। रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस। सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा। कहा, चाकू लेकर आया था हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश। आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक, 14 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।

2026 का मॉनसून इस बार बेहद असामान्य नजर आ रहा है। 27 जुलाई तक पूरे देश में सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर पड़ा है, जहां 30% तक बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बारिश कम होने के बावजूद देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ से तबाही हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मॉनसून के अस्थिर मिजाज के पीछे कई वजह एक साथ काम कर रहे हैं।

0: इस समय देश में बारिश कम है लेकिन आफत ज्यादा है। बारिश में 16% की कमी है लेकिन बाढ़ में कोई कमी नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को भारत पहुंच चुका था लेकिन इसकी चाल थोड़ी हिचकोले खाती रही है। कभी कई कई दिन तक बारिश गायब हो जाती है और फिर अचानक कुछ घंटों में आसमान मानो फट पड़ता है। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे मौसम का एक्टिव और ब्रेक फेज कहते हैं। वैसे तो ये सामान्य प्रक्रिया है लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि बारिश का दौर बेहद हिंसक हो गया है।
1: अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो।
0: जैसा हमने पहले भी बताया था, मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई तक देश में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 30% कम बारिश दर्ज हुई। दक्षिण भारत में 29% की कमी रही। उत्तर पश्चिम भारत में 10% और मध्य भारत में 4% बारिश कम हुई। उधर सूखा भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। आधे से ज्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। अगर राज्यों और जिलों की तस्वीर देखें तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश सामान्य से कम रही। सबसे ज्यादा कमी मेघालय में दर्ज हुई जहां 56% कम बारिश हुई। वहीं लद्दाख में सामान्य से 196% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। देश के लगभग 53% जिलों में सामान्य से 20-99% तक कम बारिश हुई है। सिर्फ 12% जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। यानी मानसून पूरे देश में समान रूप से नहीं बरस रहा।
2: अभी तक तो मानसून की स्थिति है, अभी कुछ राज्यों में अभी कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन अगर हम देश का औसत देखें तो वो अभी भी लगभग मतलब जो सामान्य से कम ही है। तो कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि सामान्य से कम बारिश का जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान था तो हरदम वो कमी होगा। उसमें भी ऐसे कुछ दिन आएंगे जहां पे कहीं कुछ कुछ दिन बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन जो औसत से जो है मतलब सामान्य से जो कम का जो पूर्वानुमान है वो अभी भी बरकरार है।
0: लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बारिश कम फिर बाढ़ क्यों? यही इस साल के मॉनसून का सबसे बड़ा रहस्य और विरोधाभास भी है। असम में अब तक सामान्य से 30% कम बारिश हुई है लेकिन वहां 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 850 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और 7,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वैज्ञानिक इसके पीछे 4 बड़े कारण मान रहे हैं। पहला कारण अल नीनो। प्रशांत महासागर में अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच सुपर अल नीनो बनने के 81% संभावना है। अल नीनो आम तौर पर भारत के मॉनसून को कमजोर करता है यानी बारिश कम कर देता है। दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग। धरती का औसत तापमान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब तक 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, यानी गर्मी बढ़ी है। इस अतिरिक्त गर्मी का असर यह है कि जब बारिश होती है तो पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है, यानी कम दिनों में ज्यादा पानी। तीसरा कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में सक्रिय रहते हैं लेकिन 2025 और 2026 में ये मॉनसून के दौरान भी लगातार सक्रिय है। जब इनकी मुलाकात मॉनसून की नमी से होती है तो हिमालयी राज्यों में बादल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा कारण मॉनसून की प्राकृतिक अनिश्चितता। मॉनसून कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, लेकिन इस बार प्राकृतिक उतार चढ़ाव, अल नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ग्लोबल वार्मिंग चारों मिलकर मौसम को और ज्यादा अस्थिर बना रहे हैं।
2: हमारा जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान था कि औसत से कम बारिश होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही जो 4 महीने है मानसून के, जून से सितंबर, उसमें पूरे ही कम बारिश होगी। उसमें ऐसे भी कुछ स्पेल्स आएंगे, जैसे अभी सिनोप्टिक स्केल सिस्टम बना, जैसे डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया बना, तो वो कुछ दिनों के लिए उस राज्य में अच्छी खासी वर्षा देगा, तो उसके चलते कहीं कहीं कुछ दिन के लिए अच्छी बारिश होगी, कुछ दिन के लिए बाढ़ जैसी स्थिति भी कुछ राज्यों में बन सकती है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त में मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। पूर्वी तट पर बना डीप डिप्रेशन देश के भीतर आगे बढ़ सकता है और कई राज्यों में फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
3: अरब सागर के ऊपर बह रही हवाएं तय कर रही हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में कितनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की हो सकती है, असम में पानी का कहर कितना बढ़ेगा और देश के किस हिस्से में आसमान आफत बनकर बरसेगा। इस वक्त भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 मौसमी सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। मौसम विभाग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आमतौर पर मॉनसून 2 या 3 सिस्टम के सहारे चलता है, लेकिन इस बार 7 मौसमी ताकतें मिलकर ऐसा माहौल बना रही हैं जो देश के नक्शे पर बारिश का पूरा समीकरण बदल सकता है।

0: सोमाली जेट का नाम सुना है आपने? अगर नहीं तो हम बता देते हैं, ये पूरे मॉनसून का इंजन माना जाता है। इसे कहते हैं सोमाली जेट। इसे तूफान मत समझिए, बल्कि समुद्र की सतह से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर बहने वाली तेज हवाओं की एक सकरी सी पट्टी कह सकते हैं। लेकिन यही सकरी पट्टी इस साल भारत में कितनी बारिश होगी ये तय कर रही है। इसकी शुरुआत मेडागास्कर के पास होती है, फिर ये सोमालिया के तट से भूमध्य रेखा को पार करते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है और सीधे भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। अरब सागर से भारी मात्रा में नमी उठाकर भारत तक लाती है। यही नमी बाद में बादलों में बदलती है और बारिश बनकर बरसती है। आईएमडी का अनुमान है कि इस हफ्ते सोमाली जेट और मजबूत होगी, यानी मानसून को और ज्यादा ईंधन मिलेगा।
1: सोमालिया जेट जो है वो एक तरह से पश्चिमी हवाएं हैं, जो पहले तो वो ईस्ट से सोमालिया की तरफ जाती हैं और वहां से टर्न होती हैं और ये भारत की तरफ आती हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर इनका काफी असर होता है और ये मानसून के ऑनसेट में काफी ज्यादा सहायक होती है। अगर सोमालिया जेट स्ट्रांग है तो पश्चिमी तट पर मानसून एक्टिव हो जाता है और काफी अच्छी बारिश होती है। इस बार जो पश्चिमी तट पर मानसून काफी लेट आया और काफी ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ, खास करके मुंबई और उसके आसपास के इलाकों तक हमने देखा कि मानसून काफी देरी से पहुंचा, तो उस समय सोमालिया जेट स्ट्रीम काफी ज्यादा कमजोर पड़ी।
0: मानसून का सबसे ताकतवर खिलाड़ी डीप डिप्रेशन, यानी गहरा निम्न दबाव क्षेत्र। जब किसी इलाके में एयर प्रेशर कम हो जाता है तो चारों ओर से हवाएं उसी ओर दौड़ती हैं, ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये सिस्टम 27 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराया और अब विदर्भ होते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने गुजरात में आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
1: जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी वेदर सिस्टम जैसे कि लो प्रेशर एरिया बना तो वो धीरे धीरे मजबूत होता है, डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो लो प्रेशर एरिया था ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ के आसपास आकर के डीप डिप्रेशन बना, तो ये मानसून को एक्टिव करता है। जब ये पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है, बंगाल की खाड़ी से जब अंदर की तरफ आता है तो इसका जो असर है वो भारी बारिश के रूप में दिखाई देता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही थी, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में इसका असर हुआ।
0: मॉनसून ट्रफ तय करता है कि बारिश कहाँ होगी और कहाँ नहीं। ये उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा के मैदानों और बंगाल की खाड़ी तक फैली कम दबाव की एक लंबी पट्टी होती है। पिछले कुछ दिनों से इसका झुकाव मध्य भारत की तरफ था, लेकिन जैसे जैसे डीप डिप्रेशन कमजोर होगा ये ट्रफ उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी में खिसक जाएगा। यही बदलाव बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की वजह बनेगा। मध्य भारत के ऊपर एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन बना हुआ है, यानी अलग अलग ऊंचाइयों पर हवाओं की दिशा और रफ्तार में तेज बदलाव हो रहा है। ये सिस्टम बिखरे हुए बादलों को एक साथ लाता है और तेज बारिश की लंबी पट्टियां तैयार करता है। उत्तर पश्चिमी तट पर दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तरी केरल तक समुद्र के किनारे एक ऑफ शोर ट्रफ सक्रिय है। ये अरब सागर की नमी को लगातार तट की ओर धकेल रहा है। नतीजा कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। उत्तर भारत में एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सक्रिय है जो हमेशा नॉट आउट रहता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से आने वाला सिस्टम है जो पंजाब और हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। जब इसकी मुलाकात मानसून की नमी से होती है तो हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश कई गुना बढ़ जाती है, यही वजह है कि इन पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वैसे तो मानसून के समय कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस बीच बीच में आते रहते हैं। पूरे साल का यह सिस्टम होता है। मेडिटेरेनियन सी से जब बादल उठते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, और जब पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उस समय बारिश देते हैं, खास करके सर्दियों में स्नोफॉल देते हैं, और जब गर्मियां आती हैं मानसून से पहले वो अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फीवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो मानसून की सर्ज को एक्टिव कर देते हैं। अगर मानसून ट्रफ नॉर्थ में है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मेल होता है उसके कारण ये एक्टिव हो जाता है, और जो बारिश है वो उत्तर भारत में और पहाड़ों पर शुरू हो जाती है।

0: पूर्वोत्तर भारत में एक अलग सिस्टम सक्रिय है। मध्य असम के ऊपर बना लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार नमी को रोक कर रखे हुए है। जैसे ही मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर पहुंचेगी, ये सिस्टम और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यही वजह है कि ऊपरी असम और पूरे पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन सातों सिस्टम की चाल अब मिलकर पूरे देश का मौसम बदल रही है। सोमाली जेट लगातार नमी पहुंचाएगी। डीप डिप्रेशन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश कराएगा। इसके बाद मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकेगा। अगस्त के पहले हफ्ते में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेजी से बढ़ने लगेगी। नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश कुछ ही घंटों में उत्तर भारत, उत्तर बिहार और पूर्वी यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ा सकती है। ब्रह्मपुत्र पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, यानी असम में हालात और बिगड़ सकते हैं। इन इलाकों में बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका सबसे ज्यादा है।
1: आगे मानसून की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल जो है अगले 10-12 दिन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में बारिश अच्छी होगी, लेकिन पश्चिमी भारत एक बार फिर से सूख जाएगा। गुजरात और राजस्थान के साथ साथ देश के पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है जैसे जुलाई में ब्रेक मानसून देखा था, तो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में हो सकता है कि ब्रेक मानसून कंडीशन भी देखने को मिल जाए।
0: हालांकि यही बारिश वाटर टेबल को बढ़ाएगी। अगर यही बारिश धीरे धीरे हुई तो खेतों के लिए अमृत होगी, और अगर कुछ घंटों में मूसलाधार बरस गई तो वही बारिश बाढ़, तबाही और फसलों की बर्बादी बन जाएगी।
2: ये भी अपने आप में विरोधाभास है कि जहां दुनिया के अधिकांश हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं, यूरोप में आग लगी हुई है। स्पेन से लेकर फ्रांस तक जंगलों में लगने वाली आग हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार यही रही तो आने वाले सालों में यूरोप में जंगलों की आग का खतरा और बढ़ जाएगा।
3: जहां देखिए दूर तक सिर्फ आग ही आग, आसमान भी धुएं से काला पड़ा है। ये तस्वीरें हैं यूरोप की, जो इन दिनों भयंकर जंगलों की आग से जूझ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव, सूखा और तेज हवाएं इस आग को और ईंधन दे रही हैं। ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, तुर्की में हजारों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, सैकड़ों गांव खाली कराए जा रहे हैं और लाखों लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रीस की हैं। एथेंस से करीब 60 से 80 किलोमीटर दूर पोर्टो जर्मेनो और बयोटिया में जंगल बुरी तरह झुलस रहे हैं। 400 से अधिक दमकल कर्मी, दर्जनों फायर इंजन और विशेष विमान आग बुझाने में जुटे हैं। करीब 300 लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। कई इलाकों में सड़क के दोनों ओर पेड़ धधक रहे हैं, हाईवे तक सुरक्षित नहीं है। फ्रांस में इस साल जंगल की आग ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 29 जुलाई तक करीब 91,000 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार इस साल अब तक 308 लोगों को आग लगाने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। स्पेन के जमोरा और लियोन प्रांतों में जंगलों में आग भड़कने के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए। 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सेना के मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट भी आग बुझाने के अभियान में लगी रही। तुर्की के आयदिन प्रांत में हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें चलती रही। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में सिर्फ 3 दिनों में 80 जंगलों में आग लगी, जिनमें कई अब भी जल रहे हैं। तेज हवाओं और बेहद कम नमी के कारण आग तेजी से फैल रही है। पूरे यूरोप में हालात गंभीर हैं। 29 जुलाई 2026 तक 434,976 हेक्टेयर क्षेत्र आग में जल चुका है। ये पिछले साल के रिकॉर्ड और पिछले 20 वर्षों के औसत दोनों से कहीं ज्यादा है। इस साल अब तक 1407 जंगलों की आग दर्ज की जा चुकी है। आग से 1,79,00,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी भीषण आग क्यों लग रही है? लगातार

0: पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी का पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जेन जी के गुस्से को आवाज दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कड़े कानून, टास्क फोर्स और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन की इस आंधी के बाद आखिर जेन जी खड़ा किसके साथ है? कौन है जो आज के युवा के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है? सीजेपी के नेतृत्व में जब सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तो उसमें पारंपरिक राजनीति से दूर रहने वाली जेन जी पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहीं से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस लड़ाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। संसद के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी नेताओं ने मंच संभाला, युवाओं की आवाज बनने और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेन जी के सबसे बड़े हमदर्द हैं।
1: एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे हैज अ वाइस चांसलर फ्रॉम द आरएसएस। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल। योर रियल एनिमी इज द आरएसएस। कीप इट इन माइंड। दे आर द पीपल हु आर नॉट letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts.
0: लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जेन जी की ताकत का असर ये हुआ कि सरकार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। सरकार ने पेपर लीक पर रोक के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेखनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीकों से हटकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और जेन जी से सीधा संवाद स्थापित किया।
2: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
0: यानी एक तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं जो युवाओं के गुस्से को ऊर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का पॉलिसी ड्रिवन और टेक फ्रेंडली अप्रोच है जो समाधान देने का दावा कर रहा है। आज देश का जेन जी सिर्फ नारे नहीं सुन रहा बल्कि वो विपक्ष के तेवर और सरकार के एक्शन दोनों को बारीकी से तौल रहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन युवाओं के जज्बात को वोटों में बदल पाया है या फिर सरकार का संवाद जेन जी की उम्मीदों पर खरा उतरा है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: मैं उन्हें माफ करना चाहता।
1: पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला, जबरदस्त सियासी बवाल उठा। आंदोलन के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां हुई, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए गाली देने वाले छात्रों को माफ कर दिया।
0: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
1: लेकिन पीएम मोदी की इस पहल के बाद भी सवालों और हमलों का दौर जारी है। पीएम के इस वीडियो पर अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया है और मांग की है कि पीएम मोदी को माफी देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए।
2: कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है।
1: पीएम मोदी के संदेश और युवाओं से उनकी अपील के बीच कुछ ऐसे ही तेवर विपक्ष भी दिखा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवार से मुलाकात की, तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, हर युवा की मौत के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जिसका दर्द कभी खत्म नहीं होता। इसके साथ ही हमारी टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं और सालों की तैयारी एक ही रात में बर्बाद हो जाती है। हमारे छात्रों से कहा जाता है कि वो ईमानदारी से मेहनत करें, लेकिन जिस सिस्टम में वो मेहनत कर रहे हैं वही उनके साथ ईमानदार नहीं है। इसके साथ ही पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने लिखा, उन्होंने ना तो किसी ऐसे माता पिता से मुलाकात की है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है और ना ही किसी ऐसे छात्र के साथ बैठे हैं जिसका भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया। छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक पर कड़े कानून के बावजूद इस मुद्दे पर सियासत थमी नहीं है और इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हाई प्रोफाइल मांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल। बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर। दतिया और मांझलपुर पर भी नजर। यूपी चुनाव में मानसून सत्र में उस पर पड़ सकता है इंपैक्ट। चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार है विपक्ष। योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ। अभिजीत दिपके बोले, हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ। रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस। सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा। कहा, चाकू लेकर आया था हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश। आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक, 14 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स।
2: आमतौर पर लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। क्यों डरते हैं मालूम नहीं, लेकिन डरते हैं। कहते हैं कि पुलिस वालों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तीन बच्ची, तीन लड़की, जिसकी मां ही उसकी दुनिया थी, क्योंकि पिता से बचपन में ही अलगाव हो गया था। और अब एक अकेली मां अपनी तीन बेटियों को पाल रही है, तीनों को पढ़ा रही है, एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनाना चाहती है। और तीनों अपनी मां के उस सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही हैं। मां एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में वार्डन है। एक रोज मां की मौत हो जाती है। पुलिस से लेकर अदालत तक सब ये कहते हैं कि ये कोई ऐसा केस नहीं है, ये मर्डर नहीं है, तुम्हारी मां ने खुद जान दे दी। लेकिन ये तीनों बेटियां कहती हैं कि मेरी मां किसी भी कीमत पर अपनी जान दे ही नहीं सकती, वो इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, और उसकी पूरी दुनिया तो हम तीनों हैं, और उसे पता है कि उसके अलावा इस दुनिया में हम तीनों का कोई और नहीं, तो हम तीनों को यूं छोड़कर वो कभी नहीं जा सकती। लेकिन सिस्टम कुछ और ही कहानी कह रहा था। पुलिस थाने से लेकर एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, मतलब जितने सीनियर पुलिस अफसर हैं, आप सोचते जाइए उनके रैंक और नाम, हर एक के दरवाजे खटखटा लिए, हर एक ने लौटा दिया। फिर वो कोर्ट पहुंचती है। जिंदगी में जो लड़कियां कभी अदालत को देखा नहीं होगा, वो तीनों बहनें कोर्ट पहुंचती हैं। कोर्ट में जाकर फरियाद करती हैं कि मेरी मां ऐसे नहीं मर सकती, मेरी मां को मारा गया है, हमें इंसाफ दो। चार साल तक लोअर कोर्ट इन तीन बेटियों को सिर्फ तारीख देता है, सिर्फ तारीख। एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई इन बेटियों की, तारीख पे तारीख। और बिना सुनवाई के चार साल बाद निचली अदालत लोअर कोर्ट एक दिन इस केस को क्लोज कर देती है, कहते हुए कि जो पुलिस ने कहा वही सही है, तुम्हारी मां की मौत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कत्ल नहीं है, उसने खुद जान दी है। फिर भी बेटियां नहीं आती। इसके बाद वो पटना हाई कोर्ट का रुख करती हैं, फिर वहां उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहती है, और फिर एक फैसला आता है। और ये एक फैसला ये बताता है कि अगर कोई ठान ले तो पूरे सिस्टम, पुलिस, कानून, अदालत, हर एक से लड़कर जीत सकता है। और इन तीन बेटियों के जज्बे ने यह कर दिखाया। पूरे समाज को प्रेरणा देने वाली ये कहानी बिहार के बेगूसराय की है। बेगूसराय में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं और सभी वहीं हॉस्टल में रहती हैं, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है। और इसी स्कूल की वार्डन थी रिंकू कुमारी। वहीं स्कूल के पास उनका घर, घर पे तीन बेटियाँ, एक तेजस्वनी, एक चेतना और सबसे छोटी लूसी। चूंकि माँ खुद एक स्कूल में वार्डन थी, चाहती थी कि उनकी तीनों बेटियां खूब पढ़े लिखे और कामयाब हो, इसलिए वो तीनों बेटियों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती। बेटियां पढ़ भी रही थी। तभी एक मनहूस तारीख आती है, 4 अप्रैल 2021। रिंकू कुमारी उसी स्कूल में थी, दोपहर के करीब 1 बजे थे। अचानक रिंकू कुमारी की बेटी, बड़ी बेटी तेजस्वनी के पास एक फोन आता है कि तुम्हारी मां ने जान दे दी स्कूल में। बदहवास तीनों बहनें स्कूल भागती हैं। जब भागती हैं तब वहां जाकर देखती हैं कि एक क्लासरूम में उनकी माँ की लाश जमीन पर पड़ी है। पुलिस वाले पहुंच चुके हैं, गले में फंदा, स्कूल के गार्ड ने ही लाश उतारी। लेकिन लाश की जो हालत थी उसे देखकर पहली नजर में तीनों बहनों को लगता है कि नहीं, मामला कुछ और है। जो पहली चीज उन्होंने सुनी कि माँ ने अपनी जान दे दी, ये उनके गले से बात उतरी ही नहीं, इसलिए कि उन्हें पता था कि उनकी माँ उनके लिए क्या कुछ कर रही है। और उन्हें यह भी पता था कि अगर माँ का साया सा सूट गया तो तीनों बेटियां पूरी तरह यतीम हो जाएंगी, क्योंकि बाप पहले से ही परिवार से अलग, और माँ भी अगर दुनिया में चली जाए तीनों बेटियों को बेसहारा छोड़कर ये मुमकिन नहीं है। इन तीनों का इतना भरोसा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर मर नहीं सकती, गड़बड़ है। पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे सामने ये देखो फंदा है, गले में फंदा था, लेकिन लाश उतारी जा चुकी थी। बेटियां फिर भी नहीं मानती। इसके बाद पुलिस वाले अपना काम करते हैं, लाश को भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। कमाल ये कि उस वक्त फॉरेंसिक टीम को भी नहीं बुलाया जाता। ये 2021 की बात कर रहा हूँ, तब कोरोना था और कोरोना की वजह से एक तरह से सारे स्कूल कॉलेज तो बंद ही थे, तो इस स्कूल में भी छुट्टी थी, बच्चे आ नहीं रहे थे, 2 गज की दूरी और वो सारी चीज़ें थी उस वक्त। फॉरेंसिक टीम ऐसे केस में पहुंची नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में क्या लिखा गया कि यह हैंगिंग का केस, मरने की वजह क्या मालूम नहीं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं, बता नहीं सकते। अब किसी भी एक आम थोड़ी बहुत जो फॉरेंसिक साइंस जानता उससे पूछिए कि एक इंसान जिसे मारकर लटकाया जाए और एक इंसान जिसे लटका कर मारा जाए, दोनों में फर्क होता है। बड़े बड़े जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़े भी नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसी डेड बॉडी को देखकर नंगी आंखों से बता देंगे कि ये मामला क्या है। क्योंकि एक आदमी जो खुद से टंगता है और उसके बाद फंदे से झूलकर उसकी मौत होती है, उसके निशान से लेकर बाकी चीज़ें अलग होती हैं, और एक जिसे किसी गला घोंटकर मारा जाए फिर फंदे पर टांगा जाए, उसकी निशान, उसकी बाकी सारी चीज़ें अलग होती हैं। क्योंकि एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम दोनों में फ़र्क होता है। एंटीमार्टम मीन्स मरने से पहले के जख्म, और पोस्टमार्टम मीन मौत के बाद के जख्म। दोनों के रंग, खून के निशान, गले के निशान सब चुगली खा जाते हैं। मतलब एक कोई भी नया नया भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच जाता, लाश देखकर बता देता मामला क्या है, लेकिन यहां तो फॉरेंसिक टीम ही नहीं पहुंची। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो लोकल पुलिस है, जो थानेदार साहब है, तीनों बेटियों से कहते हैं कि देखो खामोश हो जाओ, मैं जो कह रहा हूं साइन कर दो, तुम्हारी मां ने खुद जान दी है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। पर बेटियां मानने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने तरीके से छानबीन सारी शुरू की। जो पहली चीज शक पैदा कर रहा, मतलब एक कोई भी ठीक ठाक थाना और पुलिस वाला हो, वहीं से वो पकड़ लेता केस को। इस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे सारे चालू हैं, लेकिन 4 अप्रैल को सुबह जिस वक्त रिंकू कुमारी इस स्कूल के अंदर दाखिल होती हैं, तब भी कैमरा चालू है, वो जाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बाद अचानक कैमरा खराब हो जाता है, और फिर दोपहर 1 बजे वही सीसीटीवी कैमरा अपने आप ठीक भी हो जाता है। सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक अगले 6-7 घंटे कैमरा अपने आप सीसीटीवी का खराब हुआ और अपने आप ठीक हो गया। किसी भी ऐसे केस में डाउट पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन लोकल पुलिस ने कहा यह सब करने की क्या जरूरत, उन्होंने ये भी नहीं किया। इस दौरान भी पुलिस वाले रटते रहे, बेटियां थाने के चक्कर काटती रहीं, उन्हें लगा थाने वाला मिला हुआ है। वो आरोपी का नाम भी बता रही और क्यों मार सकता है ये भी बता रही। पर पुलिस वालों ने कहा नहीं, तुम लोगों की गलतफहमी है। उसे दौड़ाते रहे, भगाते रहे, थाने आते रहे, ये तीनों बेटियां जाती रहीं। फिर उन्हें लगा कि नहीं, इस दर से कोई उम्मीद नहीं इंसाफ की। किसी ने कहा बड़े बाबू के पास जाओ, बड़े पुलिस अफसर के पास जाओ। फिर वो इलाके के SP, SSP, IG, DIG जितने नाम, चूंकि पढ़ी लिखी बच्चियां, ढूंढ ढूंढ कर पता निकाल निकाल कर उनके दफ्तर गई, कागज के अंबार तैयार करती जा रही हैं। जो इन्हें मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो FIR की कॉपी, सारी चीजें ले लेकर धक्के खा रही। हर दर से इन्हें लौटा दिया गया कि इस केस में कोई दम नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारी मां ने खुद जान दी है। फिर किसी ने सुझाव दिया कि अदालत जाओ, अदालत के हुक्म पर हो सकता है मामले की जांच हो। अब ये लोअर हाई कोर्ट पहुंचती है 2021 में, जिस साल कत्ल हुआ उसी के कुछ महीने बाद बेगूसराय के लोअर कोर्ट में ये अर्जी देती है कि मेरी मां की मौत की सही जांच कराई जाए, इसके लिए अलग से पुलिस टीम बनाई जाए। अर्जी दाखिल हो गई, लेकिन अगले 4 सालों तक लोअर कोर्ट सिर्फ तारीख देता है, एक भी सुनवाई नहीं। उस सुनवाई में तीनों का भी ये बेटी हिस्सा भी नहीं ले पाई। 21 से 25 आ गया, 2025 में अचानक एक रोज इन बच्चियों को पता भी नहीं है, लोअर कोर्ट कहता है कि ये केस क्लोज, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो पुलिस ने कहा कि ये मर्डर का मामला नहीं है, खुद ही जानती है, वही है, केस क्लोज है, इसमें कोई जांच वांच की जरूरत नहीं है। वक्त की बर्बादी है, छोड़ दिया, अब क्या कर। फिर भी तेजस्विनी चेतना और लूसी हिम्मत नहीं आ रही। तीनों बहनों ने कहा कि सिस्टम कुछ भी कर ले, लड़ेंगे तो आखिर तक। इस दौरान में इनकी पढ़ाई भी चलती रही। तेजस्विनी और उसकी जो बीच वाली बहन चेतना, इन दोनों ने ग्रेजुएशन किया। छोटी बहन लूसी अभी ग्रेजुएशन में, सेकंड ईयर में शायद, तो दो बहन ग्रेजुएशन हो, मतलब ग्रेजुएट हो चुकी। फिर इन्हें किसी से पता चला कि एक अच्छी वकील है जो मदद करती है ऐसे केसेस में, और उनका नाम है आकांक्षा मालवीय। ये पटना हाई कोर्ट में वहीं प्रैक्टिस करती हैं। तीनों बहनों ने किसी तरह आकांक्षा मालवीय को कांटेक्ट किया और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई कि पिछले 5 सालों से कैसे वो दर दर भटक रही हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी माँ की मौत की सच्चाई क्या है। लेकिन पुलिस तो छोड़िए, निचली अदालत ने भी मायूस कर दिया, दिल तोड़ दिया। तब आकांक्षा मालवीय ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस लड़ाई में तुम्हारी साथी बनूंगी। उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मैं खुद एक आईपीएस का नाम लेता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आईपीएस एक एसआईटी की टीम बनाए और वो टीम अपनी मर्जी से बनाए, जिस पुलिस अफसर को रखना रखे, और वो इस केस की जांच करें और सच्चाई सामने लाए। उन आईपीएस का नाम है आईजी विकास वैभव, ये मगध रेंज के आईजी विकास वैभव। हाईकोर्ट का हुक्म था, आईजी साहब ने एक एसआईटी की टीम बनाई, टीम में अपने हिसाब से अफसरों को रखा और कहा जांच शुरू कर। अब ये लोग जांच शुरू करते हैं, कदम कदम पर एसआईटी की टीम हैरान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं, फॉरेंसिक टीम जो शुरुआत में गई नहीं, बाद में जब गई तो फिर उसकी जो रिपोर्ट उसने अंदेशा जताया उस पर कोई सुनवाई नहीं। सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हुआ कुछ पता नहीं। अब ये जांच चलती रही। सिर्फ उसके बाद जब ये जांच शुरू हुई सारी, 15 दिनों के अंदर एसआईटी ने खुलासा कर दिया और एसआईटी ने कहा कि तीनों बेटियां सच कह रही थी, इनकी मां ने जान नहीं दी, इनकी जान ली गई है। और इसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से एक उसी स्कूल का गार्ड जिसने उस लाश को उस दिन नीचे उतारा, और दूसरा एक कौशल कुमार। ये दो लोग रिंकू कुमारी के कातिल थे। अब सवाल यह था कि इन्होंने कत्ल कैसे किया, क्यों पुलिस ने इन्हें नहीं पकड़ा, क्यों पुलिस ने इसे एक खुद से जान देने का रंग दिया, सीसीटीवी कैमरे की सच्चाई क्या थी, स्कूल में ये लोग दाखिल कैसे हुए। तो जब इस कत्ल का खुलासा हो गया, उसके बाद एक एक चीज पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जाकर घटना स्थल का दौरा किया, उसको देखा, बेटियों के बयान लिए, जब सारी चीजें ली तो फिर कुछ कहानी सामने आई। पता चला कि उस दिन सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं था, खराब किया गया था, और उसे करने वाला खुद उस स्कूल का गार्ड जिसका नाम है अजीत कुमार, उसने किया था। क्यों किया था? क्योंकि असली कातिल को उस दिन उस स्कूल में आना था, और वो कातिल स्कूल के पिछली दीवार से फांद कराने वाला था ताकि कोई देखे नहीं। लेकिन उसे पता था कि सीसीटीवी कैमरा स्कूल प्रेमाइसेस में हर तरफ कैप्चर करेगा उसे, तो गार्ड ने पहले कैमरा बंद किया फिर वो पीछे से आया, फिर ये दोनों उस क्लासरूम में गए जहाँ कुछ काम कर रही थी रिंकू कुमारी। दोनों ने गला घोंट कर मारा, फिर फंदा डाला, फिर फंदे को ऊपर पंखे से डाला और इस तरीके से लाश को टांग दिया कि लगे कि जान दिए। इसके बाद जब कौशल कुमार वहां से निकल गया तो गार्ड ने दोबारा सीसीटीवी कैमरा चालू कर दिया। अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन कौशल कुमार और गार्ड ने क्यों रिंकू कुमार, तो उसकी कहानी थी। रिंकू कुमारी के पास कुछ जमीन थी जो अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई बेहतर भविष्य के लिए रखी थी, कुछ जरूरत थी पैसे की, तो उन्होंने एक जमीन दी कौशल कुमार को, 15 लाख रुपए कौशल कुमार को देने थे। कौशल कुमार ने वो पैसे दिए नहीं, वो लगातार मांगती रही, वो टालता रहा। फिर वो पंचायत के पास पहुंच गई। रिंकू कुमारी ने जाकर पंचायत से कहा कि इस तरीके से 15 लाख रुपए मेरी 3 बेटियां उनकी पढ़ाई लिखाई भविष्य की बात है। पंचायत ने कहा ठीक है। फिर तय हुआ, पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि 4 अप्रैल 2021 के शाम 4 बजे कौशल कुमार पंचायत में आएगा और पंचायत के सामने रिंकू कुमारी को 15 लाख रुपए लौटाएगा। और ये वही तारीख थी जिस दिन रिंकू कुमारी का कत्ल हुआ। 4 बजे पंचायत में पहुंचने से पहले कौशल ने प्लान बना लिया। उसे पता था वो स्कूल जाती हैं, कोरोना की छुट्टी है, बच्चे होंगे नहीं। गार्ड को साथ मिलाया, उसे पैसे का लालच दिया, जाकर सीसीटीवी कैमरा बंद करवाया, गला घोटा, लाश को टांगा और पीछे से निकल गया। तीनों बेटियां ने जब ये मामला हुआ उसके बाद जिस पर शक जताया था उनमें कौशल कुमार का नाम था, पुलिस ने कभी पूछताछ ही नहीं की। अब इस एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक खुलासा यह भी हुआ है कि उस वक्त के थाने के पुलिस वाले और उस थाने का इंचार्ज, उसका रोल भी संदिग्ध है, कहीं ना कहीं कातिल से मिला हुआ है। अगर सबूत मिल गए तो सस्पेंशन नहीं, इस मामले में तो गिरफ्तारी बनती है। मैंने आज कहानी सुनाने से जस्ट कुछ देर पहले इनमें से एक बेटी तेजस्विनी से बात की फोन पर। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पहला शक कब हुआ कि तुम्हारी मां जान नहीं दे सकती। उसने कहा कि जब मैं वहां पहुंची और मैंने लाश की हालत देखी तब, और उसके अलावा मैं ये जानती हूं कि मेरी मां इतनी मजबूत है कि वो कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती हम तीनों बेटियों के रहते हुए। पर उसने कहा सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर ये वकील आकांक्षा मालवीय न मिलती या फिर पटना हाईकोर्ट के स्पेशली जस्टिस संदीप साहिब जिन्होंने फैसला सुनाया ये न सुनाते तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाता। हालांकि तेजस्विनी का कहना था कि अगर यहां से भी इंसाफ नहीं मिलता जब तक वो जिंदा होती तब तक लड़ती। अब दोनों पढ़ाई कर चुकी, मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहोगी, अब तुम्हारे लिए एक बड़ी जीत है। उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूं जो दूसरों को इंसाफ दिला सके। तब आप इन बेटियों के जज्बे को देखिए, जो काम पुलिस ने नहीं किया, जो काम लोअर कोर्ट ने नहीं किया, जो फॉरेंसिक वालों ने नहीं किया, सिर्फ अपने जज्बे और हौसले से इस देश की 3 बेटियों ने कर दिखाया। जस्ट ग्रेजुएट हुई पर इनकी लड़ाई एक तो मैंने अभी आपको वैसी सुनाई, 2021 से 2026 5 साल की अगर इनकी आप जद्दोजहद, जो हर रोज कोर्ट जाना, हर रोज अलग अलग पुलिस अफसर के दफ्तर जाना, मतलब अगर आप उसको गिनने बैठे ना तो फिर आपको सही तकलीफ का एहसास होगा। लेकिन इस पूरे केस की सबसे खूबसूरत 2 तस्वीरें थी। एक इन दोनों खासतौर पर तेजस्विनी और चेतना की बातें, और दूसरी ये पहुंची उन्हीं आईजी साहब के पास, आईजी विकास वैभव, थैंक यू बोलने के लिए। कई बार पुलिस वालों के साथ ऐसी तस्वीरें देखकर हम जैसे जर्नलिस्ट भी अक्सर हम पुलिस की कमियां ही निकालते हैं, लेकिन ऐसे अफसर जिन्होंने बिन माँ बाप के 3 बेटियों को इस तरह इंसाफ दिलाया और वो पहुंचती हैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए, तो ऐसे पुलिस वालों पर भी गर्व होता है। और सारे पुलिस वाले अगर इसी ईमानदारी से काम करें तो फिर सोचे कि क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों बहनों की बातें सुनिए और फिर वो तस्वीर भी देखिए जो थैंक यू बोलने के लिए गई थी, और इन्हीं के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर, इसके लिए बहुत ज्यादा सहयोग है सर। 5 साल हम लोग किस तरह गुजारे हैं, जिंदगी किस तरह जिए हम लोग जानते हैं, और आप सब ना जल्दी इस चीज का खुलासा कर दिए, इसके लिए हम हमेशा आभारी हैं।
4: मेरी माँ का 15 लाख रुपए का कौशल कुमार से लेन देन चल रहा था, जमीन के लिए वो पैसा दी थी, लेकिन ना हम लोगों को जमीन मिला ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन जिन से पैसे लिए थे उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे, तो उन लोगों का क्या, फिर मेरी माँ ने कौशल कुमार को कहा कि मुझे मेरा जमीन दे दो या फिर मेरा पैसा लौटा दो। फिर 4/21 को वो पैसा देने का वादा किया था कौशल कुमार ने, और हम लोगों को 1 बजे के दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। फिर हम लोग जब मम्मी के स्कूल पे पहुंचे, कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय पहुंचे, तो वहां पे देखे मेरी माँ का सब फर्श पे लिटाया हुआ है, फर्श पे लिटाया हुआ देखे, और पुलिस प्रशासन और अन्य लोग जो वहां पे फोटोग्राफी किए थे वो सब हम लोगों को दिखाए, तो उसमें देखे कि मेरी माँ का सब गले में 2 फंदे का निशान था, एकदम गाढ़ा करके एक निशान था, और एक जो टांग के गया था उसका निशान था, तो हम लोगों और फिर घुटने के बल बैठी हुई थी, तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है। और इस चीज के लिए हम हर दरवाजे पे जाके खटखटाए, सबको आग्रह किए कि सर ये आत्महत्या नहीं, हत्या है।
5: हमें घटना के दिन से ही कोई संदेह नहीं था कि ये आत्महत्या है, ये हमें पूर्ण भरोसा था कि ये हत्या ही है, वो बहुत ही साजिश के तहत ये हत्या किया गया है। हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, वो इतनी वो काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी, और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुंचे हैं, और हम पता है हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, और हम बहुत खुश हैं कौशल और बबलू को गिरफ्तारी देख के, हम बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं उसके तक आवाज जाएगी, हम बहुत खुश हैं उसके इस हत्या से। पुलिस समरेंद्र कुमार इस चीज को बता दिया कि आत्महत्या है, क्योंकि वो भी मिले हुए थे इसमें, हमें पूरा भरोसा है कि वो भी मिले हुए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ऐसे एविडेंस थे जिससे पता लग सकता था, प्रूव हो सकता था तुरंत का तुरंत कि ये हत्या ही है, लेकिन उसने उसका सब चीज सारे एविडेंस को समरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने मिलके जो भी इसमें था मिला हुआ सब ने उस प्रूफ को सारे एविडेंस को उसने डिलीट कर दिया, उसने खत्म कर दिया, ये उसी टाइम सिद्ध हो जाता कि ये हत्या ही है, लेकिन नहीं, उसने दबाते गया है। और हम लोग का बेगूसराय में हर जगह अपना गुहार लगाए, लेकिन हम पीड़ित परिवार का उस समय नहीं सुने, और इतना जल्दी SIT टीम वाले सर ने, हम उसका हमेशा आभार रहेंगे, इतना जल्दी खुलासा कर दिए कि सच क्या है, क्योंकि हमें पूर्ण भरोसा था ये आत्महत्या है ही नहीं, ये हत्या है, हम शुरू के दिन से ही बोले जा रहे हैं।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
8: I think we still can win the World Cup with this squad.
7: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

हाई प्रोफाइल मांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल। बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर। दतिया और मांझलपुर पर भी नजर। यूपी चुनाव में मानसून सत्र में उस पर पड़ सकता है इम्पैक्ट। चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार है विपक्ष। योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ। अभिजीत दिपके बोले, हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ। रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस। सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा। कहा, चाकू लेकर आया था हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश। आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक, 14 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात में भी मॉनसून ने तबाही मचाई है। इस बीच में दक्षिण में केरलम में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसका असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर बादलों ने तबाही मचाई है।
1: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
2: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
1: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
2: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद है और यहाँ ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
3: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
2: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो
0: बाद अब केरलम की, जहां पर बेहिसाब बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है। केरलम में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते एक इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
1: बाढ़ में आदमी किस तरह बेबस हो जाता है, किस तरह बेचारा हो जाता है, किस तरह असहाय हो जाता है, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें केरलम के पथानमथिट्टा की हैं। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। देखिए पथानमथिट्टा में कमर तक पानी भरा हुआ है, जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। जो लोग अलग अलग हिस्सों में बाढ़ में फंसे हैं उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में इस तरह से इन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को जरूरी सामान। पथानमथिट्टा की दूसरी तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, घुटने तक भरे पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं।
4: Iraviperur in Pathanamthitta, and as you can see, there's no rainfall, but the waterlogging continues in many regions. And here also, the entire road is filled with water. Also, the houses also are experiencing waterlogging even at this point. They have not received heavy rainfall. This region has not received heavy rainfall since morning, but the waterlogging continues. They're saying that it's lowered a little bit compared to what it was yesterday, but you know, life and things can get back to normalcy only after the water is completely drained out from this region.
1: Keralam mein aise hi pura ka pura ilaka hai pani mein dooba nazar aa raha hai. Kahin pani gharon ke andar tak pahunch gaya hai aur kahin landslide se sadkon ko bhari nuksan hua hai. Lagatar ho rahi barish ne Keralam ke kai ilakon mein halaat behad kharab kar diye hain. Bhari barish ke beech kai zilon mein log sankat mein ghire hain. Ye tasveerein Kunnur ke Srikandpuram ki hain. भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है, बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरलम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है, कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाढ़ की इस भयानक मार के बीच केरलम के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। देखिए केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां वो लोगों से मिल रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, खाने के लिए 56 भोग लगा हुआ है। इसी कार्यक्रम में वीडी सतीशन एक प्राइवेट ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करते दिख रहे हैं। उनकी फीता काटने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल किया जा रहा है कि जब राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है तो उससे निपटने की बजाय मुख्यमंत्री पार्टी कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सीएम 56 भोग लगा रहे हैं। आज तक पेरो।
0: असम में भी भारी तबाही बाढ़ के चलते हुए अब तक बाढ़ की वजह से 82 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा शिव सागर जिले में हालात खराब हैं। इस बीच शिव सागर से एक्टर रणदीप हुड्डा की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर वो राहत बचाव कार्यों में मदद करते दिख रहे हैं।
1: असम में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, मगर जो तबाही मची है वो भयानक है। अभी भी असम के ज्यादातर इलाके लबालब हैं। देखिए ये असम के शिवसागर की तस्वीरें हैं। घर के भीतर पानी भरा हुआ है, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, सड़कें पानी में गायब हो गई हैं, रास्ते बह गए हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि ना कहीं आ सकते ना जा सकते हैं और घर के जरूरी सामानों के लिए अब किल्लत बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी गर्दन तक चढ़ाया था, करीब 5 फीट तक पानी भर गया था, सब कुछ टूट गया।
5: तो कब से ये पानी
6: 18 तारीख से हुआ है?
5: 18 तारीख
6: से हुआ है।
5: तो कितना पानी हुआ आप लोगों
6: का? पानी घर का तो सब ही डूब गया, कुछ नहीं बसा, सब गया।
5: कितना फीट पानी?
6: लगभग 5 फुट
5: अंडर
6: में है। अभी तो कुछ भी नहीं है घर।
1: इसी शिव सागर की दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी सब पानी पानी है, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए ये एक्टर रणदीप हुड्डा हैं, जो शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों को मदद दे रहे हैं। उसके लिए खाने पीने के सामान, दवाइयां और कपड़े चप्पल पहुंचा रहे हैं। रणदीप हुड्डा लगातार मदद कर रहे हैं। शिवसागर में ग्लोबल सिक्स द्वारा आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम का वो हिस्सा है।
7: आई मीन ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है कई कई जगह, तो अगर आप चलो तो इतना इतना आप मिट्टी में धंस जाते हैं, वेट मिट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे, और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए, जिससे भी पूछा, उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है, वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है।
1: असम में लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स आगे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना और सलमान खान ने भी मदद की है। अब सारी कोशिश ये है कि बाढ़ में डूबते उतराते असम को हर हाल में सुरक्षित बचाया जाए। आज तक ब्यूरो।
0: गुजरात में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई नदियां उफान पर है, कहीं गांव जलमग्न है और कहीं पर डैम के गेट खोलने पड़े हैं।
8: जहां मैदान थे वहां तालाब, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है, जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर बह रही हैं। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। नवसारी में प्रशासन अलर्ट मोड में है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नौसारी शहर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, घोघा, अलंग और अन्य इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई है। पालीताना में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या है। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। इसे सूरत की ये तस्वीर देखिए, किम नदी का जलस्तर ऐसा बढ़ा कि आसपास के इलाके पानी पानी हो गए। देखिए, यह स्टेट हाईवे 65 की तस्वीर है जहां समंदर उफनाया हुआ है। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। नाडियाड में भारी तबाही हुई है। पूरा नाडियाड शहर जलमग्न है। सड़कें समंदर बन गई हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो रहे हैं। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है।
9: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए वर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
8: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम न हो घर से बाहर न निकले। इधर भरूच में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है, आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया है। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासोट, जघड़िया, वालिया तहसीलें पानी पानी हो गई हैं। जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम को जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण के लिए स्टैंड बाय रखा गया है।
10: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.25 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
8: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई है कि करजन डैम से 5000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। जिले के गरुणेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गाँव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फीट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
11: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटादेवपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटादेवपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
8: कुल मिलाकर गुजरात में बरस रहे बादल लोगों की परेशानी पर बल ला रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
8: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
14: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
8: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।

0: इमिजिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
1: बंगाल SIT की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
2: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, CBI जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
3: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। JPSC और JSSC में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की CBI जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
4: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी करते थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना खो हुआ।
5: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
3: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
6: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
3: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
7: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर CBI ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ED को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार CID के जरिए, अपनी स्टेट CID के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
3: पूर्व JPSC चेयरपर्सन L खियांगते से CID पहले ही 14वीं JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गाँवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, शराबा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

के वोट दतिया और मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज, दांव पर दिग्गजों के साथ। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर में टक्कर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद हुआ चुनाव। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, पटना एसएसपी गैर पेशेवर, चुनाव आयोग से शिकायत भी। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मतगणना केंद्र में जाने वाले लोगों के पास के लिए पास जारी किया। एमपी के दतिया में सीट पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत का दावा किया, अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत का दम भरा। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, चढ़ावा, चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 10 सालों में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन, चुनावों के मद्देनजर अब ब्राह्मण वोट बैंक पर सपा की नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ निष्कासित, अनुशासनहीनता के मामले में मायावती ने किया बाहर। दिल्ली में पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, पप्पू यादव का दावा, चाकू लेकर मारने की कोशिश हुई, आरोपी पकड़ा गया। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, सीएम योगी के साथ परी तस्वीर में आरोपी का नाम हिमांशु शर्मा बताया गया। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, अनियमितताओं के विरोध में उठाया आवाज, सीबीआई जांच की मांग। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, अब झारखंड का युवा जाग चुका है, कांग्रेस का समूल नष्ट करने का समय। झारखंड के छात्रों के समर्थन में कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीप के बोले, छात्रों से बात हुई, सीजेपी उनकी मांगों का समर्थन कर दिया। रांची की नगरी पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, सीएम योगी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में यह कार्रवाई। जनसी आंदोलन पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा, आप शब्दों का इस्तेमाल गलत है। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा चलने के समर्थन में नारेबाजी, बैठक में मौजूद थे राजा वर्डिंग और भूपेश बघेल। कोलकाता में तस्लीम नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता पर जोर। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने दिखाया रास्ता, पीएम सूर्य घर योजना में लखनऊ देश में नंबर वन, टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल। पीएम मोदी ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत, 100 हफ्तों तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश दिया। संसद में आज भी हंगामे के आसार, चढ़ावे, चोरी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार संसद में एफसीआरएस संशोधन बिल कर सकती है पेश, कई एनजीओ ने भी इसका विरोध किया। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की, कहा कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा करेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों को मंजूरी दी, आज सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया, एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर्स से घड़ी भी बरामद। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने पर की फारूक अब्दुल्ला की मांग है, कहा कि अगर बॉर्डर सील है तो आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों का ठिकाने का खुलासा हुआ, तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर, आपत्तिजनक सामान भी जब्त। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर तैनात किया चीन से मंगाया गया 250 होवित्जर तोप, 72 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकती। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बने मिसाल, भारी बारिश और सड़क पर गिरे विशालकाय पेड़ के बीच खुद संभाली कमान, आधे घंटे में खुलवाया नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। कटरा रियासी हाईवे पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मलबा सड़क पर फैला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश के चलते चिकतान और समरा इलाकों में अचानक बाढ़, कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गंगा किनारे बसे लगभग आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा बढ़ा। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विशेष अभियान चल रहा है, सीआरपीएफ लोगों की मदद के लिए भोजन परोस रहा है। सूरत का डुमास, भारी बारिश की वजह से यहां पर मार्ग बंद है, पुलिस गश्त कर रही है। केरलम के कई इलाकों में, कई जिलों में जोरदार बारिश, कन्नूर में बालपट्टनम नदी का जलस्तर बढ़ गया।
कनाडा के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी, भारी बारिश के बाद से जलस्तर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर पुल ढह गया, बीच बस जो है बीच में फंस गई, यात्री हालांकि सुरक्षित। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, विधि विधान से पूछा। बॉलीवुड स्टार सनी देओल बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी। बीतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूबे बच्चे की जान बचाई। झांसी में मदर सिपाही कमलेश श्रीवास्तव को शानदार विदाई दी गई, नियम तोड़ने पर अधिकारी की गाड़ी पर ही कार्रवाई करने के लिए शहर में मशहूर। महाराष्ट्र के अमरावती में 41 लाख रुपए से ज्यादा के ड्रग्स जब्त, 22 साल का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में 70 साल के बुजुर्ग ने 4 साल के बच्चे के साथ छेड़खानी की, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, वीडियो वायरल। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्चे ने आत्महत्या की, 2 युवक गिरफ्तार। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर भर भरा कर गिर गया, गनीमत रही कि बाल बाल बच्चे सभी बस। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, आरोपी तजम मलिक के सवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में घर के बाहर बंधे पालतू कुत्ते को एक तेंदुआ उठाकर ले गया, बिजनौर में गांव में दहशत। बिहार के हाजीपुर में घर में सो रहे दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, वारदात के गुत्थे सुलझाने में पुलिस जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में मां बेटे की निर्मम हत्या में खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 10 दिनों के बाद झाड़ियों से मिला शव। बिहार के मोतिहारी में चकिया में निर्मम हत्याकांड का खुलासा, मृतक की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार, आशिक के साथ वारदात को दिया था अंजाम। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर फूटा गुस्सा, दानापुर के गोला रोड पर नगर निकाय अधिकारियों ने शव के साथ किया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गोरखपुर जेल से 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागा कैदी, रेप केस में आरोपी था। सूरत में कार को ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ऑटो रिक्शा, घटना सीसीटीवी में कैद। पालघर में नाले में गिरकर बुजुर्ग हुआ घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। अमरावती के दरियापुर में बंदूक और चाकू की नोक पर ज्वेलर दुकान में डकैती हुई, 500 ग्राम सोना और 13 किलो चांदी। महाराष्ट्र के जालना में गौमांस बरामदगी पर हंगामा, बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया। हैदराबाद में नाबालिग ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आज सावन का पहला सोमवार, काशी उज्जैन देवघर समेत अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट पर, जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में आज से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद, शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, ईडीजी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हरिद्वार में 3 कांवड़ियों को एसडीआरएफ और पुलिस की टीम संयुक्त टीम ने बचाया, कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था हादसा। गुजरात के गिर जंगल के पास में एक साथ दिखा 12 शेरों का झुंड, कार रोककर लोगों ने कैमरे में कैद किया नजारा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आज रात होगा भव्य समापन, भारत की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जैस्मीन करेंगे नेतृत्व। कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा, 39 में से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। भारत का ग्लासगो अभियान खत्म, 122 में से 38 खिलाड़ियों ने जीते पदक और देश का नाम किया रोशन। आज रात समापन समारोह में भारत को सौंपा जाएगा ध्वज, 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारत एक ही पदक जीतने में कामयाब नहीं हो सका और शनिवार को 8 गोल्ड जीते थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान धमाका, 14 लोगों की मौत का यह हाल। बांग्लादेश हाई कोर्ट से चीन में कृष्ण दास को दी मामलों में जमानत दी गई, 4 दूसरे केसेस के कारण जेल में रहेंगे। रूस के शैडो फ्री टैंकर पर इटली की नौसेना का छापा, यूरोपीय संघ की कड़ी कार्रवाई का बताया हिस्सा। इसराइल के दावा, 7 अक्टूबर हमले में शामिल हमास कमांडर ढेर। इंडोनेशिया में फेरी मार्ग, 5 लोगों की मौत, 41 लोग लापता।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल नहीं हुआ है बल्कि उसका सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और ये बात खुद पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कबूल की है। एक तरफ संसद में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खौफ सता रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक सेना के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है। हालात यह है कि अब पाकिस्तान में बड़े जेंजी आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे गाजा का नक्शा और उसका वजूद अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसराइल ने गाजा में मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। गाजा के करीब 50% हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद इसराइल ने इस बफर जोन के जरिए आबादी वाले इलाकों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। जहां इसराइल इसे अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा दीवार बता रहा है, वहीं गाजा समर्थकों के मुताबिक यह घेराबंदी और नाकेबंदी का एक खतरनाक रूप है, ठीक वैसा ही जैसा साल 2002 में वेस्ट बैंक में किया गया था। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान सरकार के कामकाज का सिस्टम धराशायी हो चुका है और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम भारतीय हैं और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते तल्ख हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने खुद इस सच को कबूल किया है। उसने खुद दुनिया को ये आकर बताया है कि पाकिस्तान की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कार्यक्रम के दौरान खुद कबूल किया। कार्यक्रम में सरकार के कामकाज पर उठे सवालों के जवाब में ये बातें उन्होंने कही हैं। मोहसिन नकवी के इस बयान से ऐसा लगा कि जैसे उनमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का खौफ खत्म हो गया है। वो इतनी निराशा के साथ पाकिस्तान का सच कबूल कर रहे थे जैसे वो अब पाकिस्तान सरकार को लेकर पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। भारत तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। जिस देश पर आतंकियों, कट्टरपंथी मौलानाओं का राज हो, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम ये बात पहले से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव दिखावे के लिए होते हैं क्योंकि फैसला पाकिस्तानी सेना करती है, पाकिस्तानी सेना के जनरल्स पहले कर लेते हैं। आज बस ये बात मोहसिन नकवी ने दुखी मन से लोगों को बताई है। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी सरकार के हालातों से इस कदर नाउम्मीद हो चुके हैं, खुलकर कहते हैं कि आज से 10 साल बाद और 10 साल बाद भी पाकिस्तान की जनता वही सवाल पूछेगी जो आज पूछ रही है क्योंकि हालात नहीं सुधरने वाले।
1: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। जमहूरियत के अंदर भी तो 3-4-5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई।
0: पाकिस्तान के गृहमंत्री द्वारा इस तरह की बातें कहने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सैन्य शासन की तरफ बढ़ रहा है, दिखावे के लिए सही, लेकिन जो प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा है वो जनता की नजरों में फेल हो चुका है। वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का 70 साल पुराना सरकारी सिस्टम बर्बाद था, बर्बाद है, बर्बाद ही रहेगा। हालांकि मोहसिन नकवी गलत नहीं कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कत्लेआम मचा है। पीओके का सच छिपाने की जितनी कोशिश पाकिस्तानी सेना कर ले, सरकार कर ले, वो सच उतनी ही ताकत से दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया समझने लगी है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार मासूम नागरिकों को भी मारने से पीछे नहीं हटती। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने का डर फैल गया है। पाकिस्तानी सांसद इस बात से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आएगा जब उन्हें अपने प्रांतों में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चेतावनी दी, कहा कि अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और वहां पासपोर्ट लेकर जाना होगा। मौलाना ने संसद में दावा किया कि पाकिस्तान जल्दी टूटने वाला है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलोच और टीटीपी के हमले लगातार बढ़े हैं और इसे संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। सुनिए,
2: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
0: मौलाना अताउर रहमान पाकिस्तान के चर्चित नेता मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। फजलुर रहमान पहले ही पाकिस्तानी सेना को धमकाने, चुनौती देने के लिए जाने जाते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने आसिम मुनीर को सेना की वर्दी छोड़कर नेतागिरी में उतरने के लिए कहा था और अब उनका भाई पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना जता रहा है। वैसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मौलाना अताउर रहमान का आकलन गलत तो नहीं कहा जा सकता। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सही बात, अभी जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह छिड़ा हुआ है। इन विद्रोहों को देखें तो अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के 6 टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा है। बलूच लोग जो है वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचों का हथियार बंद आंदोलन चल रहा है और ये पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, पाकिस्तानी सेना सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं और उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचों का शोषण करती है। दूसरा बड़ा विद्रोह खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। टीटीपी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले करती है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफूज मूवमेंट एक बड़ा आंदोलन वो चला रही है और इनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना खैबर में लोगों पर जुल्म करती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पिछले कई वर्षों से ये सब चल रहा है। सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और यहां के लोग भी अपनी अलग पहचान और शासन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अब देखिए, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आजादी के नारे उठ रहे हैं। हमने आपको कई दिनों से दिखाया है, 3 वर्षों में पीओके में मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाजें उठ रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, सरकार सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना खुलेआम गोलीबारी तक कर रही है, जिसमें पिछले 3 से 4 दिनों में 40 से ज्यादा मासूम मारे जा चुके हैं। अब पीओके के लोग पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ चुका है। और अगर हम मोहसिन नकवी के एक और डर की बात करें तो पाकिस्तान के टुकड़े होने का माहौल बनने लगा है। मोहसिन नकवी ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान में भी जेंजी आंदोलन होने वाला है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि पाकिस्तान के कॉकरोच आंदोलन करने सड़कों पर उतर सकते हैं और जिस तरह से भारत में सीजेपी का धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ इसी तरह की स्थिति पाकिस्तान में बनेगी। मोहसिन नकवी को डर है कि पाकिस्तान सरकार युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने में नाकाम है। वो शिक्षा, न्याय, मेरिट, नौकरी के मौके चाहते हैं और पाकिस्तान सरकार उन्हें दे नहीं पा रही है। अगर पाकिस्तान के जेंजी का गुस्सा फूटा तो लोग पाकिस्तान में सरकार गिरा सकते हैं। सुनिए,
3: ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और हमें अगर कहीं सरकारी तरफ पे जॉब है तो उस पर हमें जायज तरीके से हर चीज मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए।
0: कॉकरोच आंदोलन का खतरा, बलूचिस्तान में हथियारबंद आंदोलनकारियों के हमले, अब पीओके में आजादी की आवाजें शहबाज और मुनीर को सोने नहीं दे रहे। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि भले ही पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम कर रही हो लेकिन आंदोलन अभी जारी है। जिस रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला, शाहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हुई।
4: इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ बाहर निकलिए।
5: सालमों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को, क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं।
6: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
7: फतेह को बुरी अच्छा को मारी जा रही लगातार, इतने तीन बंदूक का हेड शॉट किन्होंने किया, कुत्ते के बच्चों ने
8: 15 से 20
7: बहुत सारे बंदूक जख्मी किया।
0: संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक रोकने से जुड़ा संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर हमले रोके नहीं है। विपक्ष का कहना है कि कानून में संशोधन होने से पेपर लीक के दोषियों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकेंगे, उनको रोकना कैसे मुमकिन होगा? इस मुद्दे पर आज भी काफी बवाल हुआ। दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 FIR दर्ज की थी उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर यह कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा।
9: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही है, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने FIR दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी FIR उस जमाने में दर्ज हुई उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक FIR का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है और इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें एआई की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कॉन्टेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे एआई की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें एआई की मदद से बदला गया या तैयार किया गया और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका, यानी वही सवाल जो दो दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हां, अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौच वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में नोएडा में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसे अब जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां हम इस आपत्तिजनक वीडियो को बनाने वाली लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने और कोई ठोस कार्रवाई होने तक उसकी पहचान सार्वजनिक ना की जाए। हालांकि इस एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहे हैं। एफआईआर का विरोध करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास है। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसके बाद इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह असीमित हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है लेकिन यह अधिकार पूरी तरह एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर किसी बयान से हिंसा, भड़कने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने, मानहानि होने या कानून का उल्लंघन होने की स्थिति बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और इन मामलों में भी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन हो रहा है और ये बहस आज देश के युवाओं के बीच चल रही है, खासकर जेंजी युवाओं के बीच जो सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई प्रदर्शनकारी युवाओं ने अब अपने कुछ व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है। जैसे जिस छात्रा ने आरएएफ के जवान के साथ मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था, उसने एक नया वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हालांकि इस छात्रा का यह भी आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उसे सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला बनता है कि किसी बच्ची को रेप या फिर किसी भी तरह की धमकी दी जाए। लेकिन सवाल है कि जांच होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह किसी लड़की को जान से मारने की धमकियां या रेप की धमकियां देना गंभीर अपराध है और पुलिस को इसे रोकना चाहिए।
10: लेके बहुत सारे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट
11: जंतर मंतर में लड़की को मारा है, यहाँ मार के दिखा।
12: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
13: नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए।
14: कुछ लोग कूल बनने के लिए मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं तेरे को इधर पकड़ के ये करूंगा।
15: मोदी जी, हाँ मोदी जी,

0: गाली गलौज का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स। वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों के जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तुम्हें डरना चाहिए। और दूसरा, जेंजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ और वो होना भी नहीं चाहिए।
1: खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ कैसे? इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था। लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी, और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे, यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का, और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली, और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। ये भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों कई राज्यों तक पहुंचाए गए, यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। अब सीबीआई के मुताबिक अगर ये ब्यूटिशियन इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती तो शायद ये सवाल इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलते और मामला सामने भी नहीं आता, या फिर ये प्री प्लान था। इस पूरी कहानी से ये भी समझ आता है कि जिन युवाओं ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया वो गलत नहीं थे, उनकी मांगे सही थी। परीक्षा व्यवस्था में कमियां हैं और जवाबदेही कोई नहीं लेता, और जानते हैं ये गंभीर क्यों है। एक छात्र जो सालों साल मेहनत करता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर पर भरोसा करता है, उसका पूरा जीवन जैसे इसी पर टिका हो। उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में सभी को बराबर मौका मिलेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो नुकसान सिर्फ उन छात्रों का नहीं होता जो परीक्षा देते हैं, नुकसान पूरे सिस्टम के भरोसे का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदर का हो बाहर का हो, टीचर हो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है? सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें तीन बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउडस्पीकर्स और जो दूसरे अस्थायी सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है। यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है, लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर ये कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है। पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी ये दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेनजी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ये भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थे कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई, बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। अब पहले ये देखिए,

0: इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशाल का जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त आप देखें तो जंतर मंतर पर भी इस तरह के बैरिकेड्स जो एंट्री पर हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज इस वक्त दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे वो है इन बैरिकेड्स का आपस में वेल्ड होना। ये देखिए इस तरीके से इन बैरिकेड्स को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया है, जिससे फायदा क्या होगा, फायदा अमूमन ये होगा कि अगर कोई इन बैरिकेड्स को गिराना चाहेगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे और बैरिकेड्स को गिराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो नया एक तरीके से SOP हम देख रहे हैं या जो नए चेंजेस किए गए हैं, इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिस तरीके से 20 तारीख को हमें बैरिकेड्स गिरते हुए दिखे वो हो सकता है आगे देखने को ना मिले, या अगर आगे होता भी है तो और ज्यादा भीड़ और ज्यादा ताकत लगेगी इन बैरिकेड्स को गिराने में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
1: इस सब के बीच CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने जवानों और अधिकारियों से कहा है कि ड्यूटी निभाते समय अगर वो ईमानदारी और नियमों के तहत कोई फैसला लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करने की जरूरत पड़ी तो उसे वो खुद स्वीकार करेंगे और जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को CRPF पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। और ऐसे में CRPF के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए।
2: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें, जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
1: इस पूरी राजनीति को देखकर आज सिर्फ एक बात याद आती है। अब तक इस देश में बच्चों की परीक्षा ली जाती थी, लेकिन आज वही बच्चे इस देश की राजनीति की परीक्षा ले रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बच्चों के सामने प्रश्न पत्र रखा जाता था और आज बच्चों ने नेताओं के सामने सवालों की एक कॉपी खोल दी है। यह बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार देश का युवा सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी तरह नौकरी दे दीजिए, वो कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं पूछा जा रहा, जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां उसी से जवाब मांगा जा रहा है। कहीं पेपर लीक पर सवाल है, कहीं भर्ती में देरी पर सवाल है, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है। यानी अब युवा राजनीतिक झंडे लेकर नहीं, अपने भविष्य को लेकर खड़ा है और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर होती है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता नेताओं से सवाल पूछ सके। और अगर इस देश के युवा शिक्षा, रोजगार, अपने भविष्य पर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है। आप खुद सोचिए, किसने सोचा था कि इस देश की संसद में राजनीतिक मुद्दों से इतर शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए ये नेता मानेंगे। और हमें लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की एक नई परीक्षा है। इस परीक्षा में पास वही होगा जो युवाओं का भरोसा जीत पाएगा। यानी इस बार रिपोर्ट कार्ड बच्चे लिख रहे हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो लोग पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के इस मुद्दे को सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी का मुद्दा बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो इस जरा इन घटनाओं पर एक बार नजर डालकर देखिए। महाराष्ट्र में 28 जून को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले खुलासा हुआ कि इस परीक्षा के का पेपर लीक हो चुका है और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। पंजाब में भी फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल रैकेट पकड़ा गया। वायरलेस ईयरपीस, मॉडिफाइड मोबाइल फोन्स जैसे उपकरणों के जरिए परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश की गई। 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो मौजूदा सेमेस्टर है उसकी 2 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आरोप ये लगा कि इन परीक्षाओं का पेपर पहले ही लीक हो गया था और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में भी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके कारण परीक्षा के पास हुए उम्मीदवारों की सूची रोकनी पड़ गई। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में तो कमाल ही हो गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है। सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष तक को पूछताछ के लिए बुलाया है और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था झारखंड में एग्जाम में, सोचिए, बच्चों का एग्जाम देने के 1-2 घंटे पहले उनको मेल आ रहा था कि उनका सेंटर कहां पर है और वो सेंटर जहां पर वो मौजूद थे वहां से 1-2-3-3 घंटे की दूरी पर। इसीलिए हम कह रहे हैं समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, समस्या किसी एक सरकार की नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। और जो लोग राजनीति में उसको उलझाकर कहते हैं कि यहां की बात मत करो, वहां की बात मत करो, वहीं की बात करो, वो सिर्फ भटकाना चाहते हैं। इन राज्यों में सरकार अलग अलग है, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या पेपर लीक को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मानेंगी या वो अपने राज्यों में भी पेपर लीक के खिलाफ कदम उठाएंगी और इसमें बीजेपी के राज्य भी शामिल हैं। कई लोगों ने इन राज्यों में भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या आप जानते हैं इन राज्यों में शिक्षा मंत्री कौन है और कितने राज्यों के शिक्षा मंत्री दागी है? तो हमने सोचा कि इन माननीयों के बारे में जरा सा आपको बताया जाए। वो माननीय जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं। झारखंड को साल 2001 में एक अलग राज्य बनाया गया था और तभी से वहां पेपर लीक के मामले हर साल आते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 21 सालों में अलग अलग भर्तियों के लिए 21 परीक्षाएं करानी थी, जिनमें वो 13 परीक्षाएं ही करा सका और इनमें भी सभी परीक्षाएं अलग अलग विवादों और गड़बड़ियों से घिरी है। इनमें भी एक परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए साल 2015 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। साल 2024 में जब ये परीक्षा हुई तब शाम को ही यह खबर आ गई कि इसका पेपर लीक हो चुका है, जबकि दूसरी बार जब यह परीक्षा कराई गई और इसके लिए सरकार ने इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया तब भी पेपर लीक हो गया और आज यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। यह स्थिति भी तब है

0: शिक्षा मंत्री भी वही है। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हेमंत सोरेन के शिक्षा मंत्री रहते जो पेपर लीक हुए उनके लिए उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में पेपर लीक की कहानियां हजारों युवाओं का दिल तोड़ने वाली कहानियां, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा लीक हुई उसमें सीआईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें अभय तिवारी नाम का आरोपी भी शामिल है। इसने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की है। उसका भाई, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा यह आरोपी पहले उस कंपनी में प्रबंधक का काम संभालता था जिसे झारखंड में परीक्षा कराने का ठेका मिला हुआ था, और इस कंपनी ने जो परीक्षाएं कराई वही बाद में लीक हुई। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब यह दिखाना चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर इतनी बहस तो हो रही है लेकिन कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं और उन जिनके खिलाफ सोचिए आपराधिक मामले दर्ज है। तो हमने सोचा कि हर जगह का देखिए, कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है, टीडीपी की भी सरकार है, लेकिन आप देखिए कि कितने कितने मामले हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो वो है ये देखिए तेलंगाना। शिक्षा मंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, इन पर कितने मामले चल रहे हैं जरा ये वाले कलर से दिखाते हैं तो साफ दिखेगा, 89, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आइए तो आपराधिक मामले डीके शिव कुमार के खिलाफ हैं 19, और वो फिलहाल डीके शिव कुमार है शिक्षा मंत्री। अब आ जाइए आप 17 के साथ टीडीपी की सरकार, सहयोगी है बीजेपी की, 17 मामले हैं नारा लोकेश पर, वो शिक्षा मंत्री है। फिर आइए राजस्थान, शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, 14 आपराधिक मामले, 14। उसके बाद आ जाइए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहीं पर है शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन, 5 आपराधिक मामले उन पर है। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश, जहां पर योगेंद्र उपाध्याय है उच्च शिक्षा मंत्री, ये आपको योगेंद्र उपाध्याय का चेहरा देखिए, 4 आपराधिक मामले हैं इनके खिलाफ। उसके बाद से आ जाइए आपराधिक मामले 3 वाले केरलम में एन शमशुद्दीन है शिक्षा मंत्री, और 1 आपराधिक मामले वाले बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में उदय प्रताप सिंह ये हैं। तो ये सारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके चेहरे आप देख लीजिए, और इसी के साथ साथ उनके बगल में बने जो आपराधिक मामले हैं वो देख लीजिए, और फिर आप ये तय कीजिए कि क्या ऐसे बेदाग नहीं मिलते जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला ना हो और वो इस देश के शिक्षा मंत्री बन सके। आज बड़ा सवाल यही है और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या भी यही दिखाई दे रही है। अब सोचिए, आज हम शिक्षा व्यवस्था को दागी होने से बचाने की बात कर रहे हैं और इसी दौरान कई राज्यों में शिक्षा मंत्री बने नेता खुद दागी हैं, ये कैसे चल सकता है?
1: आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। क्योंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं, छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त है।
2: पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है पंजाब में पेपर लीक।
3: लेकिन सर बच्चों ने प्रदर्शन किया पंजाब में, उसका कोई असर नहीं, नहीं। बच्चे भी कहीं दिखा है कई जगह में, पंजाब में बच्चों ने भी वो किया है, प्रोटेस्ट किया है बकायदा, वहाँ भी एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, वहाँ पर जवाब दे।
2: आज पहली बात तो जो एजुकेशन मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट, वो तो फार्मेसी है, वो तो मेडिकल, वो हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है।
3: तो क्या हेल्थ तो पता क्या सर?
2: नहीं नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही ये क्लियर किया, देयर वाज नो चीट, नो पेपर लीकिंग, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई, वही एग्जाम हुआ है सक्सेसफुली।
4: आम्ही तर टीईटीच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली। त्यामुळे

0: आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पायचं वाकून हे बंद करा.
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो है कुछ घंटे के लिए क्यों हटाया गया. सबसे बड़ी बात, जो कंपनी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटा सकती है वही फेक खबरों डीप फेक वाले अकाउंट्स को आखिर क्यों नहीं हटा पाती. 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया था. इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ समझौता नहीं होगा. इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा. 28 जुलाई की सुबह कई सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि यह फेसबुक वीडियो पर दिखाई नहीं दे रहा था. वीडियो की जगह ये लिखा था, इस कॉन्टेंट को लीगल रिक्वेस्ट के कारण भारत में रोका गया है. यानी पहली नजर में ऐसा लगा कि किसी कानूनी आदेश या सरकारी अनुरोध के कारण इस वीडियो को हटाया गया है. लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने सफाई दी कि यह किसी कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं था बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गलती थी और इसके बाद इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोबारा बहाल कर दिया गया. अब इस घटना के बाद बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है. फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन करोड़ों पोस्ट, वीडियोस, तस्वीरें अपलोड होती हैं. इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट को संभालने के लिए कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग मॉडल, ऑटोमेटेड फिल्टर, कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं. ये सिस्टम कुछ शब्दों, तस्वीरों, विषयों, संदर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि कोई कंटेंट नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं. उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न को लेकर ऐसी या आत्महत्या कोई संवेदनशील जानकारी हो जो लोगों को विचलित कर सकती है, इस पर कोई वीडियो या पोस्ट है तो इसे कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम हाइड कर देता है या उसे हटा देता है. अब यह होता सिर्फ संवेदनशील मामलों में है लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं और इसी वजह से अब इस मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यानी सवाल यह है कि क्या फेसबुक ने नीट के मुद्दे पर कोई ऐसा कीवर्ड या कंटेंट हाईलाइट किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट हट गया. और सोचिए अगर जंतर मंतर आंदोलन और पेपर लीक को लेकर वाकई में ऐसा कोई कीवर्ड हाईलाइट हुआ होगा तो फिर इस मुद्दे पर और कितने लोगों के पोस्ट हटाए गए होंगे. इन्हीं बातों को देखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है. और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट तो हटा देता है लेकिन जिन डीप फेक अकाउंट से जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई उन अकाउंट्स को ये कंपनियां नहीं हटाती या उन पोस्ट को नहीं हटाती. दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने खुद ऐसे 450 अकाउंट्स की पहचान की जो आंदोलन को लेकर झूठी खबरें फैला रहे थे और वो भी एआई के जरिए. लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. दिल्ली पुलिस को इन कंपनीज के पास जाकर ये बताना पड़ा कि इनके प्लेटफॉर्म कैसे फेक न्यूज का माध्यम बन गए हैं. यहां ये भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक अकाउंट कोई अगर आप देखिए तो एक राष्ट्राध्यक्ष का अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है और उसमें टेक्निकल ग्लिच की बात की जा रही है. दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनका अकाउंट सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है. लेकिन यहां अगर जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक को एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट हट जाता है और कंपनीज की मंशा पर सवाल उठते हैं. ये देखिए, प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लगभग 6.1 करोड़ लोग फेसबुक पर, वह इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ 10.5 करोड़ लोग. और यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया. जानते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी पोस्ट को हटाया गया है, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उन सभी मामलों में कोई ना कोई विवाद था. जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स अकाउंट निलंबित हुआ तो उसका कारण अमेरिकी संसद में हुई हिंसा थी. राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया. 28 मार्च 2021 को जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फेसबुक अकाउंट निलंबित हुआ तब भी उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप था. और 2021 में जब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट बंद किया गया तब उन पर भी आरोप था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर गलत दावे किए थे.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है.
3: A I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. What was done was wrong. The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. Meta realized that they had to apologize for this mistake, and their unconditional apology for the mistake is a good step.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और दुनिया में सवाल ये नहीं है कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है. नमस्कार.
4: बाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की. पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ. पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है. पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था.
5: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश.
6: सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है. और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो. हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते. पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे. एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे. रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं. ये बोल रहे हैं. अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही. शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया कालनेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना.
5: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
6: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया. मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे. यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं. अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है. तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेकर लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं. मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया. और मैंने क्या किया?
4: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे.
7: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ. बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए.
8: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन चीज पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
7: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
8: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
7: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो
4: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
7: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दाम अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
9: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
7: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
10: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
7: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
11: आज जब देश ने
12: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
13: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
12: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
13: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
12: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
13: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
12: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
13: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
12: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिसार। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात, लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया, उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटरस्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
7: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
12: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार बहाव में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
7: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
13: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
7: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंग्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप ने हमारे नोटिस नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नोटिस के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नोटिस वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मॉनसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीप के बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। आवाज पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखता, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन होगा। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
6: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
7: आज जब देश ने
8: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
9: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
8: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
9: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
8: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
9: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
8: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
9: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
8: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात, लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है, उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठके कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना खो हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटरस्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को बुलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।

0: से कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
1: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
0: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे धरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
1: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
2: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक्स की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
1: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक के रोड।
3: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुलावा

0: मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप ने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
1: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
1: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया? और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
1: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मॉनसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीप के बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो, हम बोल रहे हैं क्या। दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही, शंकराचार्य पर हमला हुआ ये लोग कुछ बोले, 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले, काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले, सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले, बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के यहां से पुलिस ने पकड़ी कुछ बोले, हनुमान जी को नचाया कुछ बोले, संविधान जलाया कुछ बोले, भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने कुछ बोले, झंडा नहीं लगाया कुछ बोले, आप हमको बताओ ना।
1: यादव जी आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम की। शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
6: कि आज जब देश ने
7: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
6: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
7: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
6: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
7: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
6: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
7: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
6: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
7: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिसार। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे, दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए, सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है, उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है नखा हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग आप बताएं हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटरस्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को बुलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहराम, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़। भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई, जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
13: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है, ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
14: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
13: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक के रोड।
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की है, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नोटिस नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नोटिस के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नोटिस वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के हाथ से, पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे,
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के। शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: तो सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
6: आज जब देश ने
7: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
6: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
7: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
6: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
7: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
6: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की एक ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
7: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
6: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
7: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए। सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमी मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है न खो हुआ।
9: सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग की से देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़। भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला।

0: अब बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद है और यहाँ ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
1: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए, और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की, तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं, लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
2: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंग्स इंडिया रेस्टोरेंट्स के पेपर नैपकिन की है, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नोटिस नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नोटिस के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नोटिस वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।

0: बोला कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
1: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, शराबा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के हाथ से, पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना।
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
0: चढ़ावा चोरे पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरे के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मानसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
6: कि आज जब देश ने
7: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
6: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
7: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
6: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
7: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
6: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की एक ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
7: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
6: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
7: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिसार। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठके कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना हुआ।
9: सपना तो देखे मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहां पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किस देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बात।
7: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
12: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
7: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
13: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
7: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक बिरो
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंग्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की है, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे
0: सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, शराबा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के हाथ से, पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
6: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को हो, उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेष में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
7: आज जब देश ने
8: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
7: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
8: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
7: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
8: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
7: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की एक ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
9: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
7: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
9: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिसार। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है, उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं इन सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया, उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रिक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रिक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना हुआ?
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहराम, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बात। भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई, जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
13: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है।

0: कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
1: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक्स की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
2: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंग्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मॉनसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल सम तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया?
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में एफआईआर हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
6: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
7: आज जब देश ने
8: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
7: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
8: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
7: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
8: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
7: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की एक ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
9: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
7: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
9: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात, लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है, उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठके कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया, उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं, सर सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहां पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटरस्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
13: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
12: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई, जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
13: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है, ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
14: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार अब ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
13: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की है, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोला कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया, और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, शराबा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी।

0: अब आज पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की। पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के यहां से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेकर लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है, ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है, बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम की शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए, विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में FIR हुई और BJP भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने BJP को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। BJP इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर BJP प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर BJP के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं BJP की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेष में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
6: कि आज जब देश ने
7: PM मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। PM ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
8: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
7: PM ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
8: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
7: PM मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
8: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
7: PM ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए
8: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
7: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात, लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए, सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है, उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठके कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमी मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी करते तू इनके सिलेक्शन का है न खो हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
13: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
12: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार बहाव में फंस गई, जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
13: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है।

0: दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
1: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
2: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ। रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो, हम बोल रहे हैं क्या। दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखता, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही। शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ की आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है, ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
3: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है ना मैदान। आज तक ब्यूरो।
0: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में FIR हुई और बीजेपी भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
3: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
5: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
3: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
2: तो सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
3: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेष में विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
6: कि आज जब देश ने
7: PM मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। PM ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
6: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
7: PM ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
6: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
7: PM मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
6: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
7: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए,
6: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
7: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में यह कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।

हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिशा। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने एजेंडे। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत तक जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।
2: चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए, तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में।
3: लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है।
0: एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में ये तय हो जाएगा कि 27 के समर में पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव में गूंजेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं इन सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
5: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
6: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
5: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
7: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
8: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न खो हुआ।
9: सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
7: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
10: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर।
7: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
11: कि ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी को मिलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
7: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
12: इसे कहते हैं कुदरत का कोहराम, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
13: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
12: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार पहाड़ में फंस गई, जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
13: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है, ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है, यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
14: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक्स की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
13: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
4: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज बीजेपी के नीरज कुमार और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर, दतिया और मांजलपुर पर भी नजर। चुनावी यूपी में इस बार मानसून सत्र में सियासत की मूसलाधार बारिश, चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों के साथ तैयार विपक्ष, योगी के घर बीजेपी की बैठक में मंथन। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला सीजेपी का साथ, अभिजीत दीपके बोले हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, रांची में अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा, कहा चाकू लेकर आया हमलावर, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। अबाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचे हंगामे की, पप्पू यादव जब दिल्ली में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा एक शख्स पहले हंगामा करता है, फिर चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर उन्हें जान से मारने आया था।
1: क्या देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
2: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना
1: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया, मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल सम तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया?
0: बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आज आएगा, मगर परिणाम से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में वो बड़े मतों से जीतेंगे।
3: बस रात भर का इंतजार है और मालूम चल जाएगा कि बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ। बांकीपुर में हुए उपचुनाव का कल परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
4: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे, ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
3: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
4: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता